भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे कोई बच नहीं पाया। और नारद जी भला कैसे बच सकते? तो भगवान ने एक ऐसा संसार की रचना की, एक नगर बसाया, नगर सिटी, और सिटी में चारों दरवाजे, सुंदर महल, वहां का एक सुंदर राजा। बसही नगर सुंदर नर नारी, और जन बहु मन सज रति तन धारी। सब नगर के लोग बड़े बड़े सुंदर भगवान ने बनाए। लेकिन एक और कृपा की भगवान, बोले क्या? बोले जो वहां का राजा था उसका नाम शील निधि था। शील निधि राजा के यहां पर एक बेटी का जन्म हुआ, और नारद जी यहां भगवान के यहां से निकले तो उसी रास्ते से धोखे से गए जहां भगवान ने ये नाटक किया, माया का प्रपंच किया था, उसी रास्ते से निकले। जैसे ही निकले तो राजा का ये नगर देखकर नारद जी को लगा ये नगर तो बड़ा सुंदर है, राजा से मिलना चाहिए। तो राजा के महल में गए तो राजा ने स्वागत किया, बा बा बा पधारो पधारो पधारो, आप बहुत अच्छे आए, पधारो पधारो। तो नारद जी ने कहा कि आप कौन? बोले महाराज मेरा नाम शील निधि है, मैं यहाँ का राजा हूँ, ये पूरा साम्राज्य भगवान की कृपा से, आप संतों की कृपा से मेरे अधीन है और मैं सेवा कर रहा हूँ। महाराज आप सही समय पर आए। नारद जी बोले क्यों? बोले महाराज मेरी एक बेटी और उसका स्वयंवर होना, तो आप जरा हस्तरेखा देखते हो क्या? नारद जी बोले हाँ, आई एम स्पेशलिस्ट, हम तो इसमें बहुत माहिर हैं, दिखाओ। लड़की को, बेटी को बुलाओ। जो बेटी थी वो कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी थी, और इतनी सुंदर के भगवान ने उनको कहा, कह के ही भेजा था कि तुम विश्व मोहिनी बनो।

युवती कन्या तो पूछो मत। जैसे ही कन्या को नारद जी ने देखा तो अभी अभी काम को जो जीत के आए थे ऊपर देखें नीचे देखें बाल को देखें चाल को देखें और नारद जी सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। कन्या ने प्रणाम किया, नाटक था, प्रणाम किया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया, बढ़िया बल में ले लाओ हाथ। और जैसे ही हाथ देखा ओ हो ऐसी रेखाएं हस्त रेखा किसी की नहीं, हाथ की जो रेखा है विश्व में किसी की नहीं जैसी इस कन्या की है। बोले कैसी है? बोले जो भी इस कन्या से विवाह करेगा उसे कोई जीत नहीं पाएगा, अजेय रहेगा और बैकुंठ का राजा बनेगा। जो इस बेटी से विवाह करेगा एक तो अजय रहेगा बैकुंठ का राजा बनेगा और वो कभी मरेगा नहीं। नारद जी ने सोचा किसी और की जगह यदि मेरा ही विवाह हो जाए, आहा, एक तो सुंदर कन्या ऊपर से इससे विवाह करेंगे तो हमें कोई जीत नहीं पाएगा और बाद में बैकुंठ भी मिलेगा, क्या गजब। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग शादी कर लेते हैं, बोले कन्या के भाई भी नहीं है और परिवार में फैमिली में कोई है नहीं, अकेली लड़की है और जो बाप है ना वो बहुत बड़ा रईस है, बहुत रईस है, उसके पास बहुत सोना चांदी पैसा है, तो कुछ लड़के लट्टू हो जाते हैं कि हमको ऐसी ही चाहिए और ऐसी ही के चक्कर में फिर वही नारद जी के साथ हुआ कि यही चाहिए।

करें, पर अपने रूप को देखा, उसके रूप को देखा कि बरमाला डालनी है ये हमारे गले में तो 100 जन्म नहीं डाली। तो वो नारद जी को एक उपाय सूझा कि एक काम करते हैं, भगवान से सुंदरता उधार मांगते हैं। जैसे आज के जमाने में ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, अब ब्यूटी पार्लर वाले काले को गोरा बना देते हैं। हाँ, लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले क्या गजब सुंदरता कर देते हैं। तो नारद जी ने सोचा भगवान सबसे ज्यादा सुंदर, उनकी सुंदरता उधार मांग लाते हैं, अब वो हमें सुंदरता दे देंगे। उस सुंदरता को पाकर हम इससे पहले विवाह कर लें और एक बार माला पड़ जाए फिर कह देंगे वापस ले लो। और गले में माला पड़ी नहीं कि घरवाली हमारी, ऐसा सोचकर भगवान के पास नारद जी गए। तो रस्ते में सोचा जब तक जाए तब तक ये किसी और की ना हो जाए। तो नारद जी ने सोचा भगवान तो सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, एक काम करते हैं यही बुलाते हैं, वही खड़े होकर के।

प्रकट हो गए। बोलो नारद जी, तो हाथ जोड़ करके नारद जी खड़े हुए, बोले प्रभु आप तो आदि हो, अनंत हो, अखंड हो, आपकी महिमा को रूप को कोई नहीं जान सकता, आपकी माया बड़ी अद्भुत है। भगवान बोले मलाई बाद में लगाओ, पहले ये बताओ इधर बुलाया क्यों। नारद जी ने नीचे देखा, बोले शंकर जी हैं और पार्वती। बोले हैं? बोले नारायण मतलब आप हो तो लक्ष्मी जी हैं। बोले हाँ हैं। बोले ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्माणी हैं। बोले हाँ। नारद जी बोले यदि नारद जी के बगल में नारदी खड़ी हो जाए तो कैसा लगेगा। भगवान बोले कहना क्या चाह रहे। नारद जी बोले अब बहुत भटक लिया हमने, भजन करना है कुछ दिन बैठ के, तो बैठ के भजन करेंगे तो रोटी कौन बनाएगा, और रोटी यदि हम बनाने लगेंगे तो भजन में बाधा पड़ेगी, तो हम सोच रहे हमारा भी घर बस जाए और कोई मिल जाए। भगवान बोले आपको मिली क्या, एक लड़की देखी। अच्छा बहुत, कहाँ की है। यही बगल में एक गांव है, नगर है, वहां का राजा सील निधि है, उसकी बेटी है, बड़ी सुंदर। तो भगवान बोले हम क्या बारात की तैयारी करें, बारात बाद में, पहले सुनो तो सीधा बोलो ना। सीधी बात ये है कि आप अपनी कुछ घंटों के लिए सुंदरता दे दो और कुछ बस इतना चाहिए। भगवान बोले बस इतनी सी बात दी। नारद जी बोले आपने सुंदरता दी नहीं कि हमारी शादी हुई। भगवान ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। देखते ही देखते नारद जी गले से नीचे एकदम भगवान की तरह हो, नील नील सरोर नील मणि नील नील धर श्याम, बढ़िया भुजाएं भर गई, ऐसे बढ़िया वो भुजाएं, समझ गए ना, बढ़िया भुजाएं भर गई, बढ़िया सीना भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया, गला भी ठीक ठाक हो गया, एकदम पहले पतले से थे महात्मा हमारी तरह रहे हो, एकदम ठीक ठाक हो गया, बाजू बंद पीतांबर पहन लिया, आहा। लेकिन भगवान ने नाटक क्या किया, पूरा शरीर अपने जैसा कर दिया, चेहरा बंदर का बना दिया, चेहरा बानर का बना दिया, बाकी ठीक, बस फेस बंदर का कर। अब नारद जी गए, नारद जी तो फुल कॉन्फिडेंस में थे, सीता देखा नहीं, उधर स्वयंवर चलने वाला था, स्वयंवर में लोग बैठते हैं, लड़की चयन करती है, स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयंवर, कि बहुत से वर बैठते हैं, लड़की चयन करती है कि ये वाला लड़का ठीक है, उसके गले में माला डाल देते हो, वो वर उसका हो जाता और कन्या उसकी हो जाती। तो नारद जी ने सोचा कि अब फेस कौन देखें, पता लग ही गया कि सुंदर है हम। तो नारद जी सीधे भागे भागे गए और राजा के महल में गए तो पता किया स्वयंवर कहां है, बोले 6 नंबर हॉल में, ग्राह सिंधु वाले हॉल में। अच्छा हाँ तो ठीक है। भागे भागे गए तो पूछा लड़की किधर से निकलेगी ताकि डायरेक्ट हम पर नजर पड़े और कोई दूसरा देखे ही ना, और भी बैठे हैं लड़के, बड़े बड़े राजा आए पर वो उतने सुंदर नहीं है जितने हम हैं, ऐसा नारद जी को कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने कुर्सी ली, बोले लड़की किधर से निकलेगी, बोले इधर से निकलेगी। तो नारद जी सामने में ही कुर्सी पर बैठ गए। अब लड़की आई विश्व मोहिनी, जैसे ही नारद जी पर नजर पड़ी तो बाकी शरीर तो ठीक है, फेस बंदर का, बिचारी हंस गई, नारद जी को लगा हंस गई, काम हो गया, हो गया, मतलब हम सच में सुंदर हैं, काम हो गया।

0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: अब नारद जी थोड़ा वो होते ही थोड़ा और ठीक ठाक होके बैठे तो वो जो विश्वमोहिनी थी वो वहां से निकल गई। नारद जी को लगा आई देखी हंसी, लगता है इसने ठीक से नहीं देखा, तो कुर्सी उठाई और दूसरी लाइन में डाली इस तरफ जहां वो जा रही थी। तो उसने वो लाइन ही चेंज कर दी इनके चक्कर में, वो गई ही नहीं दूसरी लाइन में। नारद जी बड़े परेशान। शंकर जी के गण तो आए थे, शंकर जी ने भेज रखा कि पता करो नारद जी कहां कहां जा रहे हैं क्या हाल है। भोलेनाथ ने भेजे ही जानबूझ के था कि हमें लाइव अपडेट बताना, क्योंकि हमें पता है कि इनको अभिमान आया है, भगवान निपटाएंगे इनको, और अभिमानी को भगवान निपटाते। इसलिए भक्त को एक बात याद रखनी चाहिए, जीवन में अभिमान से नहीं भरना चाहिए, भगवान से दिल को भरना चाहिए। तो भगवान शंकर के दो गण बीच में बैठे थे, एक तरफ बीच में नारद जी अपनी चेयर डाले लड़की को देकर, तो लड़की लाइन ही चेंज कर लो, हर बार नारद जी उठे हर बार जाए हर बार वो लड़की ने उनकी तरफ दोबारा देखा ही नहीं। तो वो भगवान शंकर के गण हंसने लगे, बोले हंस क्यों रहे हो। धीरे से बोले कि बुरा ना मानो बाबा जी, तो जरा पानी में अपना मुंह देखो। नारद जी को लगा हम ज्यादा सुंदर हैं इसलिए जल गए, तो कुछ नहीं बोले। इधर विश्वमोहिनी जो लड़की थी, एक सुंदर राजकुमार आता है उसके गले में माला डालती है और वो लड़की किसी दूसरे की विश्वमोहिनी हो जाती है और चली जाती है, और वो कोई और राजकुमार नहीं था, स्वयं नारायण हरि राजकुमार बनकर वो आए बैठे। चूंकि नाटक था तो गले में माला डाली और वो दोनों चले गए। इधर नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, एक तो मिली नहीं ऊपर से सुंदरता उधार ली, और तीसरा ये दोनों हम पर हंस रहे हैं और जो देखे वो हम पे हंसे। तो पानी में जब मुंह देखा नारद जी ने, ओ आग बबूला हो गए भगवान के ऊपर। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भगवान हो तो कुछ भी करो, परम स्वतंत्र हो। जितनी गालियां मन में आती थी, जो जो मन में गालियां तो नहीं, जो जो मन में आता था कहते गए, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, परम स्वतंत्र हो कोई सर पर नहीं, भगवान हो तो कुछ भी करो। आज तो हम बदला लेके, आज नारद से पाला पड़ा, आज बताएंगे। मारे गुस्सा के तम तमाते हुए वैकुंठ की तरफ जा रहे थे कि आज हम बताएंगे। नारद जी से पाला पड़ा, अब तक हमारे जैसे महात्माओं से पाला नहीं पड़ा है, आज हम ठिकाने लगाएंगे, हो गए भगवान। ये सुनाते जा ही रहे थे कि रस्ते में वो कन्या और वो राजकुमार मिल गए। उन दोनों ने, राजकुमार ने और कन्या ने नारद जी को देखा तो राजकुमार कोई और नहीं भगवान ही थे। भगवान अपने रूप में प्रकट होकर के बोले, कौन नारद जी कहां जा रहे हैं। तो बोले आपके ही पास जा रहे थे, ठीक मिल गए, रुको इधर आओ सामने आओ इधर आओ, आज आपने हमारी हंसी कर, पहली बात तो आपको मना कर देना था कि आप विवाह मत करो, दूसरी बात सुंदरता उधार नहीं दे, मांगी थी ना देते, आपने बंदर बना दिया बानर बना दिया, जाओ हम भी श्राप दे रहे हैं, आपने नार हमार बानर बना करके हमारा उपहास कराया है, करी है कीस सहाय तुम्हारी, जब आप त्रेता युग में राम अवतार लेकर के आओगे तब यही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे, तब तुम शत्रु का हनन कर पाओगे, करी है कीस सहाय तुम्हारी, आपने हमारी आज उपहास उड़ाया, हम तुमको श्राप देते हैं, ये बानर ही और नारी के वियोग के कारण हमको रोना पड़ा, हम श्राप देते हैं तुम्हें भी अपनी नारी के वियोग में रोना, श्राप दे। जैसे ये श्राप दिया तो भगवान ने हाथ जोड़कर सिर पर रख ली श्राप को, और भगवान ने उस कन्या की तरफ देखा, वो विश्वमोहिनी कन्या तुरंत लक्ष्मी बनकर के प्रकट हो। नारद जी ने जब उस कन्या को विश्वमोहिनी देखा तो बोले, हम तो इसको उस राजा की लड़की समझ रहे थे, ये तो माता, अरे माता आप। तो भगवान हंस के बोले, नारद जी आपके अंदर ये जो गृहस्थ में जाने का भाव था ना, उसको हमें मिटाना था, जो काम के कारण अहंकार आ गया था उसको हमको मिटाना था, इसलिए हमने ये नाटक किया, ना वो कोई राजा है ना ये कोई विश्वमोहिनी कन्या, ये हम श्री लक्ष्मी जी हैं, श्री हैं। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, आप तो हमारा भला चाहते थे, और हमसे अपराध हो गया कि हमने आपको श्राप दे दिया, अब कैसे मिथ्या हो। भगवान बोले, अब मिथ्या तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आपने श्राप दिया तो त्रेता युग में हम ऐसी ही लीला करेंगे। नारद जी ने कहा, भगवान आपको हम क्या कहें, बड़े दयालु हो, फिर भी हमारे मन में बड़ा क्षोभ है, कोई प्रायश्चित बताओ। तो भगवान ने कहा, जाओ जाकर के तप करो, जप करो। जप तप करने चले गए तो भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि से पूछा कि आपने नारद जी,
0: क्या गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना कर सकता है? गुप्त नवरात्रि में साधना और पूजा का क्या है विधान, और कौन से मिलेंगे इसमें वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: No.
3: Oh, no.
4: Welcome to Get Real.
2: I got something to say.
4: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
3: Oh, my God.
2: It's got to be deliciously desperate.
3: Why do these girls forgive him?
5: Well, she has a soft spot for troubled men.
2: Boo bloody hoo.
4: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
3: Love runs deeper than we know.
4: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया, शुभमन गिल अक्षर पटेल रहे जीत के हीरो, 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया, 16 साल बाद स्पेन के फाइनल में पहुंचने पर फ्रांस ने जमकर मनाया जश्न। आठ महीने के मिशन पर अंतरिक्ष पहुंचे अनिल मेनन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई एक्सपेरिमेंट में होंगे शामिल। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी तेज, दर्शन के लिए बड़ी तादाद में जुटने लगे श्रद्धालु, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान। रेल यात्रियों को आज मिलेगी IRCTC की नई वेबसाइट की सौगात, टिकट बुक करना होगा पहले से आसान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: टीम इंडिया ने इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज का जीत से किया शुभारंभ, बर्मिंघम वनडे में 6 विकेट से शानदार जीत। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 10 विकेट पर 558 रन बनाए, जवाब में भारत ने 86वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए, अक्षर पटेल ने नाबाद 57 और वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार को 2-2 विकेट मिले, अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। दूसरा मैच 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया। स्पेन की महाजीत पर फैंस ने मनाया जश्न। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन के ओया जबाल ने 22वें मिनट में किया पहला गोल। 98वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल कर स्पेन की जीत पक्की की। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। फ्रांस लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने से चूका। 20 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में भिड़े फ्रांस और स्पेन। 2006 में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराया था। ओवरऑल दोनों टीमों के बीच अब तक 39 से मुकाबले, स्पेन ने 19 और फ्रांस ने 13 मैच जीते जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने से गर्मी से मिली राहत। आने वाले दिनों में तेज हवा के साथ बादल छाए रहने के अनुमान। गुरुग्राम में भी मॉनसून हुआ मेहरबान, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। ओडिशा में आज कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान, आने वाले दिनों में 20 जुलाई तक कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। कोंकण गोवा और तटीय कर्नाटक में बारिश का दौर, 17 जुलाई से बारिश तेज होने की संभावना। अमरनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बर्फानी के दर्शन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए लिखा कि बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण। सामान्य मौसम के बीच शांतिपूर्ण ढंग से जारी है यात्रा। यात्रा मार्ग पर तैनात माउंटेन रेस्क्यू टीमें लगातार सतर्क, जरूरत पड़ने पर कर रहे हैं श्रद्धालुओं की मदद। सत्तावन दिनों तक चलेगी इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा यात्रा का समापन। श्रीनगर में बाबा बर्फानी का दिखा अनोखा भक्त, दिल्ली से कश्मीर तक साइकिल चलाकर पूरी की अमरनाथ यात्रा। हरिद्वार में जोरों पर कावड़ यात्रा की तैयारी, कावड़ियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए किए जा रहे हैं प्रबंधों का निरीक्षण किया। प्रशासन ने 25 जुलाई तक सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, एसएसपी के साथ डीएम ने की यात्रा मार्ग की समीक्षा। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की फूलों की घाटी, अब तक 11,000 पर्यटकों ने दीदार किए। रंग बिरंगे दुर्लभ हिमालय फूलों का दिखा मनमोहक नजारा, जुलाई अगस्त के मुख्य सीजन में घाटी पर दिखता है प्रकृति का सुंदर नजारा। इस साल 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई फूलों की घाटी, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच अपने चरम सौंदर्य पर होती है वैली ऑफ फ्लावर्स। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, महज 2.5 महीने में पहली बार 14 लाख श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, अब तक कुल 14,82,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, पिछले 2 दिनों में लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी, कल निकली भव्य रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, एकांतवास खत्म होने के बाद भगवान के नव यौवन दर्शन का उत्साह। कल भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए रथ पर निकलेंगे, दिव्य दर्शन के लिए जुटते हैं लाखों लोग। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी का 139वीं भव्य रथ यात्रा से पहले ग्रैंड रिहर्सल, 30 1000 से अधिक पुलिस समेत सुरक्षा जवान रहे मौजूद। रिहर्सल से पहले जगन्नाथ मंदिर में ध्वजारोहण और महाआरती के बाद परंपरागत नेत्रोत्सव विधि। राज्य के उप मुख्यमंत्री हर सांगवी रहे उपस्थित। अहमदाबाद में सुरक्षित रथ यात्रा के लिए गुजरात पुलिस की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। 100 से अधिक ड्रोन से होगा यात्रा मार्ग का सर्विलांस। देवघर में भी बालानंद ब्रह्मचारी आश्रम में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। 2005 से निकाली जा रही है रथ यात्रा। फूलों से सजा जाता है विशाल रथ। पुरी से लाई गई नीम की लकड़ी से बनाई जाती है भगवान की प्रतिमा। विरासत आधुनिकता पर्यटन और राष्ट्र सुरक्षा को का बेजोड़ संगम बना जैसलमेर रेलवे स्टेशन। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ पुनर्विकास। 10 लिफ्ट और 10 स्वचालित सीढ़ियों से यात्रियों को मिलेगी सुविधा। करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को मिल गया है विश्वस्तरीय स्वरूप। प्लेटफॉर्म्स के बीच आसान आवाजाही के लिए बनाए गए हैं 6 मीटर चौड़ाई वाले 2 नए फुटओवर ब्रिजेस। जल्द ही राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा आधुनिक रेलवे स्टेशन। अब हैप्पी सिटी के नाम से भी मशहूर हुआ पिंक सिटी जयपुर। दुनिया के टॉप 10 सबसे खुशहाल शहरों में शामिल। टाइम आउट 2026 की सूची में जयपुर बना दुनिया का 6ठा सबसे खुशहाल शहर। भारत का एकमात्र शहर है जिसने टॉप 10 में बनाई है जगह। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने भरी अंतरिक्ष की उड़ान। नासा के विमान से आईएसएस का सफर। कजाकिस्तान के ऐतिहासिक बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों प्योत्र ड्रुब्रोव और अन्ना किकीना के साथ उड़ान भरी। करीब 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर करेंगे रिसर्च। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:17 पर अंतरिक्ष यान सोयूज MS-29 में भरी थी उड़ान। करीब 3 घंटे बाद ISS के संपर्क में अंतरिक्ष यान। यूक्रेनी और भारतीय मूल के माता पिता के घर पैदा हुए अनिल मेनन अमेरिकी स्पेस फोर्स में कर्नल और इमरजेंसी मेडिसिन में फिजिशियन है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के दौरे के दौरान माइक्रोग्रेविटी सेमीकंडक्टर समेत कई प्रयोग करेंगे अनिल मेनन। अनिल मेनन की पत्नी एना विल्हेम भी अंतरिक्ष यात्री हैं। रेल यात्रियों के लिए आज लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट। टिकट बुक करना होगा पहले से आसान। रेलवे के मुताबिक लोगों को मिलेगी फास्ट टिकट बुकिंग की सुविधा। मिलेंगे AI फीचर्स। नई वेबसाइट में इंटरफेस को बनाया गया सरल। बुकिंग के पूरे प्रोसेस में समय की होगी बचत। भारत यूके के बीच आज से लागू होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारतीय एक्सपोर्ट को मिलेगा इससे बढ़ावा। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से टेक्सटाइल लेदर ज्वेलरी समेत कई कारोबार को होगा फायदा। ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाले सामान मिलेंगे सस्ते। दिल्ली NCR से सामने आई स्मार्ट फायर सेफ्टी सिस्टम की शानदार तस्वीर। गुरुग्राम द्वारका टनल में चलती कार में अचानक आग लगने के बाद तुरंत एक्टिव हुआ फायर सेफ्टी सिस्टम। गुरुग्राम द्वारका टनल में कार में लगी आग पर 12 मिनट में पाया गया काबू। हादसे में कार सवार लोग पूरी तरह से सुरक्षित। गुजरात में साबरमती यार्ड में खाली कोच में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बिहार के बगहा में बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए पिता ने पार की नदी की तेज धारा। गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में तेजी से बढ़ा जलस्तर। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। धुरंधर के बाद अब बॉक्स ऑफिस पर आएगी रणवीर सिंह की प्रलय। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने शुरू हो जाएगी इस मूवी की शूटिंग। तुम्बाड़ 2 में नजर आएंगी आलिया भट्ट। 3 दिसंबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। पनोरमा स्टूडियोज में पंजाबी सिनेमा में मजबूत की अपनी पकड़। 3 पंजाबी फिल्में अर्जेंटीना थापी और रांझा के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स हासिल किए। धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस पर कमाल जारी। 85 करोड़ के पार रहा अब तक का ग्रॉस इंडिया कलेक्शन। हॉलीवुड फिल्म इविल डेड बर्न के लिए भारत नंबर 1 मार्केट। वीकेंड पर भारत में फिल्म का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12 करोड़ जबकि ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ 36 लाख रहा। 17 जुलाई को पीएम मोदी का पंजाब दौरा। 2500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। स्वास्थ्य रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा इससे बढ़ावा। बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजेस में शुरू होगी पढ़ाई। सीएम सम्राट चौधरी 211 डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाई को लेकर कल भागलपुर में करेंगे शुभारंभ। योगी सरकार में मेरठ बना स्पोर्ट्स हब। पारंपरिक लकड़ी के क्रिकेट बैट के साथ बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं आधुनिक तकनीक से प्लास्टिक और फाइबर के बैट। नई मशीनें लगाने पर मिल रही है 50% तक सब्सिडी। ब्याज मुक्त ऋण मिलने से छोटे उद्योगों को भी विस्तार का मौका। सैलानियों के लिए सुरक्षा के लिए कुल्लू प्रशासन का फैसला। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक। मॉनसून के चलते एहतियात।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: क्या गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना कर सकता है? गुप्त नवरात्रि में साधना और पूजा का क्या है विधान और कौन से मिलेंगे इसमें वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें Good News Today बनाता है।
4: Good News Today.
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे मंगल के लक्षणों की, मंगल की शुभता और अशुभता के प्रभाव क्या होते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 15 जुलाई बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के लक्षणों के बारे में। किन लक्षणों से जान सकते हैं कि हमारा मंगल शुभ है या अशुभ है? तो सबसे पहले कैसे जाने कि हमारा मंगल खराब है? देखिए, मंगल अगर अशुभ होगा, मंगल अगर खराब होगा तो व्यक्ति क्रूर और हिंसक स्वभाव का होगा, वायलेंट होगा, क्रोध तुरंत प्रकट होगा। मंगल अगर गड़बड़ है तो आत्मविश्वास और साहस का जो स्तर है, आत्मविश्वास और साहस का जो लेवल है वो कमजोर हो जाएगा। व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामले में, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अगर मंगल गड़बड़ होगा तो व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करेंगी। मंगल अगर गड़बड़ है तो अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी जीवन में लगी रहेगी। और ज्यादा अशुभ अगर मंगल हुआ तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा, जेल के दर्शन हो सकते हैं। अगर विवाह भाव से मंगल का संबंध हो और मंगल नकारात्मक हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। वैवाहिक जीवन में मुकदमेबाजी, मारपीट, तलाक, डिवोर्स, ये सब स्थितियां पैदा हो जाती हैं। मंगल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो मंगल जब अशुभ होगा तो क्या प्रभाव होगा वो आपने जाना। अगर आपका मंगल अनुकूल है, शुभ है, तो इसके क्या प्रभाव होंगे? अगर मंगल शुभ है, अनुकूल है, तो व्यक्ति साहसी और उदार होगा, दूसरों की सहायता करेगा, बड़ा कॉन्फिडेंट होगा, उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़िया गजब का होगा। मंगल अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति को साहस के क्षेत्र में, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। जब मंगल शुभ होता है तो व्यक्ति धनवान होता है
और उसके पास प्रॉपर्टी काफी होती है, काफी जमीन जायदाद उसके पास रहती है, और मंगल के अच्छा होने पर व्यक्ति का पारिवारिक संबंध, फैमिली के साथ रिलेशन बेहतर बना रहता है। नॉर्मली जिनका मंगल शुभ होता है उनके जीवन पर एक सुरक्षा हमेशा रहती है, और ऐसे लोगों को सामान्यतः कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सामान्यतः उम्र के 28 साल के बाद इनको जीवन में ज्यादा सफलता मिलती है। तो अगर आपका मंगल शुभ है तो दो लक्षण जरूर है उसके, आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास बहुत होगा, और अगर मंगल आपका शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी, जमीन ये ज्यादा होने की संभावना रहती है। मंगल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो आपने अगर लक्षणों से ये जान लिया, लक्षणों से ये समझ लिया कि मंगल आपका अशुभ है, मंगल आपका गड़बड़ है, तो क्या उपाय करेंगे? मंगलवार का उपवास रखना शुरू करिए, मंगलवार का व्रत रखिए, और इस दिन नमक का सेवन मत करिए, इस दिन नमक मत खाइएगा। एक नियम बना लीजिए, रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। मंगल के मंत्र का जप मध्य दोपहर में करिएगा, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। जमीन पर या जमीन के निकट सोने का प्रयास करिए, लो फ्लोर की पलंग पर या जमीन पर दरी और बिस्तर डालकर सोइए, भूमि की ऊर्जा से आपका मंगल बेहतर होगा। और मंगल को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते आपको बेहतर बनाए रखने चाहिए। अगर आप मंगल को अच्छा रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़िए, और परिवार में रिश्तों को ठीक बनाए रखिए। अगर मंगल बहुत ही ज्यादा खराब है, मंगल अगर मारक है, जीने मरने का प्रश्न पैदा कर रहा है, तब मंगल के लिए कुमार कार्तिकेय की पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय की पूजा करने से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, मंगल की अशुभता सबसे ज्यादा दो जगहों पर दिखाई देती है। अगर मंगल ज्यादा अशुभ हो, ज्यादा नकारात्मक हो, तो जीवन में सर्जरी होने की, दुर्घटना होने की और मुकदमेबाजी की संभावना जरूर बनती है। और दूसरे नंबर पर मंगल, अगर मंगल दोष पैदा कर रहा हो या विवाह के मामले में असर डाल रहा हो, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है।
तो अगर मंगल इतना ज्यादा खराब है कि आप मुकदमे में उलझे हुए हैं या बार बार सर्जरी हो रही है, तब आप भगवान कार्तिकेय की पूजा करिए, जिनको सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं, उनकी पूजा करना बहुत उत्तम होगा। और अगर कुंडली में मंगल दोष की वजह से या मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तब आप मंगल के मंत्र का जप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करें, यानी मंगल को शांत करने के लिए, मंगल की खराब से खराब स्थिति से निपटने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा और मंगल का मंत्र जप करना अनुकूल होगा। तो आज हमने बात की मंगल के शुभता और अशुभता के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य के लिए एक लकी टिप। अपने घर के बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखिए और प्रयोग करने के बाद इसका दरवाजा बंद रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में लोगों का स्वास्थ्य हमेशा बेहतर बना रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करिए, कोई भी लड्डू, और घर से निकलते समय उस लड्डू को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
3: बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया, शुभमन गिल अक्षर पटेल रहे जीत के हीरो, 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया, 16 साल बाद स्पेन के फाइनल में पहुंचने पर फैंस ने जमकर मनाया जश्न। आठ महीने के मिशन पर अंतरिक्ष पहुंचे अनिल मेनन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई एक्सपेरिमेंट में होंगे शामिल। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी, दर्शन के लिए बड़ी तादाद में जुटने लगे श्रद्धालु, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान।

0: टीसी की नई वेबसाइट की सौगात, टिकट बुक करना होगा पहले से आसान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर।
2: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। आज का चर्चा का विषय है गुप्त नवरात्रि। चूंकि सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, तो आज के इस शो में पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है और गुप्त नवरात्रि के दौरान कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो आप सब कर सकते हैं जिससे आपकी किस्मत पलट सकती है। इस बारे में तमाम जानकारियां पंडित जी आपको देंगे, महामंत्र भी बताएंगे, खास उपाय के बारे में जानकारी भी देंगे, आपके सवाल भी हम इस शो में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आती है गुड लक मंत्र की।
3: गुप्त नवरात्रि में अगर आप पूजा उपासना करते हैं, अगर आप साधना करते हैं, तो अपनी पूजा उपासना को, अपनी साधना को पूरी तरीके से गोपनीय रखिएगा। जितना सीक्रेट रखेंगे, जितना गोपनीय रखेंगे, आपको आपकी पूजा उपासना और साधना का लाभ प्राप्त होगा।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 15 जुलाई 2026 बुधवार के पंचांग के बारे में।
3: दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 11:50 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 9:46 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
2: और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। शुरुआत में हमने आपको बताया गुप्त नवरात्र का आज जिक्र करेंगे, लेकिन उसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करें। सवाल ये उठता है पंडित जी, क्या है नवरात्र का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, वो समझाइए
3: जी। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसको गुप्त नवरात्रि कहते क्यों हैं? तो सबसे पहले नवरात्रि के बारे में जानते हैं। देखिए, नवरात्रि वास्तव में आप समझते हैं कि साल में 2 आती है, जबकि वास्तव में नवरात्रि साल में 4 मनाई जाती है। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य नवरात्रि। चैत्र की नवरात्रि यानी अप्रैल वाली और आश्विन की नवरात्रि यानी अक्टूबर वाली नवरात्रि ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा माघ में यानी जनवरी में और आषाढ़ लगभग जुलाई में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। सामान्य लोग गुप्त नवरात्रि का पालन नहीं करते, गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसमें गुप्त साधनाएं की जाती हैं, तंत्र मंत्र के उपाय किए जाते हैं, सिद्धियां हासिल की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं के नाश करने का वरदान मांगा जाता है। जो चारों नवरात्रियां पड़ती हैं, अगर आप उस समय को देखें तो वैज्ञानिक रूप से उस समय में ऋतुओं में बदलाव होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन के समय शरीर में तमाम परिवर्तन होते हैं। शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। तो चाहे सामान्य नवरात्रि हो चाहे गुप्त नवरात्रि हो, अगर इस समय उपवास रखा जाए या खान पान का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और इस समय साधना करने से उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से 22 जुलाई तक रहेगी।
2: और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। पहली तीन राशियों का नाम है मेष, वृष और मिथुन।
3: मेष राशि, रिश्तों की समस्या पर इस समय ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम

0: मान्य और गुप्त नवरात्रि में इस अंतर को कैसे समझा जाए और इसका प्रभाव क्या होता है?
1: देखिए, अगर सामान्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि के अंतर को समझना चाहें तो सामान्य नवरात्रि में जो चैत्र और आश्विन में पड़ती है, इसमें सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर गोपनीय साधनाएं और तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आम तौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें अपनी पूजा को और मनोकामना को आप जितना ज्यादा गोपनीय रखेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। चूंकि इसमें साधना गोपनीय होती है, साधना गुप्त रखी जाती है, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। शाक्त तंत्र के लिए, देवी के उपासकों के लिए गुप्त नवरात्रि एक बड़ा अच्छा मौका है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का फायदा लेना चाहते हैं, रात्रि सूक्त पढ़ना चाहते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि का समय बड़ा अच्छा समय है। इसमें आप गंभीरता से, गोपनीय तरीके से अपनी साधनाओं को कर सकते हैं।
0: और चलिए राशिफल पर वापस आते हैं और अगली तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। कर्क, सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में आज का लिखा है, पंडित जी से जानते हैं।
1: कर्क राशि, करियर में आपके लाभकारी बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, यात्राओं से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, स्थान परिवर्तन हो सकता है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, जीवन साथी को लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसका आपको इंतजार रहता है, आप सब दर्शकों के सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले कि पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका

0: कोई परेशानी है उसका निवारण चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल ईमेल के माध्यम से इस शो में भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ।
1: जी, आज का पहला प्रश्न प्रतिभा दीक्षित जी ने हमें लिखा है और प्रतिभा जी हमें कानपुर से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 20 अक्टूबर सन 1998, जन्म का समय रात में 10:15, जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अभी एक सामान्य नौकरी करता है और आगे उच्च पद प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो क्या मेरा बेटा आगे गवर्नमेंट जॉब में जा सकेगा? प्रतिभा जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो उच्च पद के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो साल 2027 में उनके सफल होने की संभावना जरूर बनती है। साल 2027 में वो सफल होंगे। एक उनको मूंगा बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाइए और उनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनको लाभ होगा।
0: चलिए, इसी के साथ वक्त तो चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का और जानते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक आया है। पंडित जी,
1: जी अगला प्रश्न अभय कौशिक जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जून 1975, दोपहर के 2:40, जन्म स्थान है दिल्ली। अभय जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, काफी समय से व्यर्थ का आरोप मेरे ऊपर लगा हुआ है, उस मुकदमे से मुझे मुक्ति कब तक मिलेगी? अभय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो मुकदमा व्यर्थ का आपके ऊपर चल रहा है उससे आप अगले साल तक छुटकारा पा सकेंगे। साल 2027 में आपको मुक्ति मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 2027 के अप्रैल के बाद इस मामले का निपटारा हो सकेगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ या हलवा पूड़ी निर्धनों में बांटिए। ऐसा करने से आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
0: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से ये जानते हैं कि पंडित जी, क्या होगी गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा विधि, किस तरह से माँ को प्रसन्न करें ताकि माँ की असीम कृपा हम सबको प्राप्त हो?
1: देखिए, गुप्त नवरात्रि में भी भगवती दुर्गा की ही पूजा की जाती है, या जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो 10 महाविद्या की पूजा भी करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा कैसे करेंगे? आप चाहें तो 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना कर सकते हैं, और अगर आपने कलश की स्थापना की है तो दोनों समय सुबह और शाम मंत्र का जप करें, 40 पढ़ें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या साधना करें, दोनों समय सुबह भी और शाम को भी। दोनों समय आरती भी अगर आप देवी की करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और माता की जब आप पूजा करें सुबह और शाम, तो दोनों समय भोग भी लगाइएगा। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माता के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है। मां की पूजा में आप लाल फूल अर्पित करें, लाल फूलों से उनकी पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन देवी को पूजा में आक, मदार, दूब और तुलसी ये आप अर्पित नहीं करेंगे। पूरे 9 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखेंगे। देखिए एक अलग से बात मैं बताऊं कि गुप्त नवरात्रि में आप जब विशेष साधना करना चाहते हैं या विशेष पूजा करना चाहते हैं तो मध्यरात्रि में साधना करना या मध्यरात्रि में पूजा करना ज्यादा बेहतर होगा। पूरे गुप्त नवरात्रि में मध्यरात्रि के 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप साधना करें, अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय में साधना करने से, इस समय में मंत्र जप करने से उसके ज्यादा बेहतर परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। तो गुप्त नवरात्रि में भी आप कोशिश करें कि आपकी साधना अगर मध्य रात्रि की रहे तो इसके प्रभाव ज्यादा बेहतर आएंगे।
0: और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु वालों की बारी आती है और पंडित जी से जान लेते हैं कि इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
1: तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। रिश्तों की समस्या आपकी दूर होगी। करियर की रुकावट दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई मनोकामना पूरी होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ का तनाव ना पालें। जल्दबाजी में काम करने से बचें। बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: और चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पंडित जी से अब ये जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान ऐसे कौन से विशेष प्रयोग किए जा सकते हैं जिसके जरिए जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो। पंडित जी
1: देखिए, गुप्त नवरात्रि में आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं और देवी की विशेष कृपा पाकर अपनी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। जैसे अगर आप शीघ्र रोजगार की प्राप्ति चाहते हैं, आपके रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? देवी के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं, 9 बताशे ले लें और हर बताशे पर 2 लौंग रखेंगे। अब एक एक करके सारे बताशे देवी को अर्पित करिए और अर्पित करने के बाद शीघ्र रोजगार के व्यवस्था की प्रार्थना करिए। बाद में उन लौंग और बताशों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। ये प्रयोग नवरात्रि में किसी भी रात को अगर आप करें, गुप्त नवरात्रि में, तो आपके रोजगार की व्यवस्था शीघ्र होगी।
0: चलिए, रोजगार के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, गुप्त नवरात्र के दौरान आपको क्या कुछ करना है। अब जानते हैं कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, शीघ्र विवाह आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए गुप्त नवरात्र में कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो आप सभी कर सकते हैं?
1: अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए गुप्त नवरात्रि में क्या करें? देवी के सामने पूरे गुप्त नवरात्रि में रोज एक घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद रोज उनको लाल फूलों की माला अर्पित करें या कम से कम 2 लाल फूल रोज अर्पित करिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग गुप्त नवरात्रि की हर रात को आपको करना चाहिए। अगर रोज नहीं कर पाते तो कम से कम गुप्त नवरात्रि में लगातार 3 रातों को अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और ये प्रयोग करके अगर आप शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, आपका विवाह शीघ्र होगा।
0: और चलिए, इसी के साथ पहुंच गए हैं अंत की तरफ और पंडित जी से जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों का हाल भी। मकर, कुंभ और मीन वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है वो पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
1: मकर राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, नया काम कर सकते हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी दर्शकों का सवाल। तो पंडित जी ही आपको जानकारी देंगे कि कौन सा है पंडित जी के पास अगला सवाल।
1: जी अगला प्रश्न सरिता जी ने हमें लिखा है और सरिता जी हमें मेल लिखती हैं हरियाणा से। इनकी जन्म की तारीख है 2 जनवरी 1973। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है कैथल हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और तमाम तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे हो गई हैं, तो मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन कब तक बेहतर हो सकेगा? सरिता जी, आपके साथ ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो हड्डियों की हैं, नसों की हैं, उनका आपको ध्यान देना होगा, डॉक्टर का परामर्श मानना होगा। ज्योतिष के हिसाब से इस साल के अक्टूबर के बाद से आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक माणिक्य, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार की प्रातः धारण करिए, आपको लाभ होगा।
0: चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है इस शो में दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि कौन से दर्शक की समस्या का समाधान पंडित जी करने वाले हैं।
1: जी आज का अंतिम प्रश्न अंबुज भटनागर ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। 11 जून 1992 का जन्म है, जन्म का समय है रात में 8 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। अंबुज कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अंबुज, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और ये संभावना आपके लिए बनती है कि आपकी शादी 2027 के आरंभिक समय में हो सकेगी। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर है और आपका विवाह दिल्ली या दिल्ली के निकट होगा, ऐसी संभावना बन रही है। एक ओपल बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह और शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 15 जुलाई को, उनका बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 15 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य के लिए समस्या हो सकती है, हालांकि करियर की स्थिति ठीक बनी रहेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा और साल के अंत में विदेश यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए पंडित जी से अब जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
1: सामान्य नवरात्रि में हम अपने आहार पर ध्यान देते हैं, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या गुप्त नवरात्रि में भी आहार पर ध्यान देना चाहिए? चूंकि इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है, इसलिए इस समय भी आहार पर ध्यान देना उचित है। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए आहार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी लोग भी अगर पवित्र आहार ग्रहण करें, सात्विक आहार ग्रहण करें तो उनके लिए बेहतर होगा।
0: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 15 जुलाई 2026 बुधवार के शुभपहर के बारे में।
1: दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा। आपके काम में जो रुकावटें चली आ रही हैं वो तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 15 जुलाई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
0: और जैसा कि आप सबको ज्ञात है, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज के शो की गुडलक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है, पंडित जी से जानते हैं।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह का दान करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मेष राशि। इनको बुध और शुक्र ग्रह का दान करना अच्छा होगा। अगर ये नियमित रूप से बुध और शुक्र ग्रह का दान करें तो इससे करियर और धन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी।
0: चलिए, शो से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उपाय तो पंडित जी ने आपसे साझा कर दिए हैं। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी से ही जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी
1: जी, गुप्त नवरात्रि में आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपकी धन की मुश्किलें दूर हो जाएं, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। पूरी गुप्त नवरात्रि में मध्य रात्रि को मिडनाइट में 11 बजे से 1 बजे के बीच में माता लक्ष्मी की उपासना करें। उनके सामने घी का दीपक जलाकर श्री सूक्तम का पाठ करें और पूरी नवरात्रि में सात्विक रहें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। तो पूरी नवरात्रि में जितने दिन भी कर सकें, अगर मध्य रात्रि में श्री सूक्तम का पाठ करें तो आपका कल्याण होगा।
0: तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।
2: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
3: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: क्या आप छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हैं? क्या आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना नहीं कर पाते? क्या बार बार मुकदमेबाजी और सर्जरी के योग बन जाते हैं? कहीं आपका मंगल अशुभ तो नहीं? क्या है मंगल की शुभता अशुभता के लक्षण और क्या हैं इसके उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: No.
3: Oh no.
4: Welcome to Get Real.
3: I got something to say.
4: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
3: Oh my god.
5: It's got to be deliciously desperate.
6: Why do these girls forgive him?
7: Well, she has a soft spot for troubled men.
5: Boo bloody hoo.
4: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
6: Love runs deeper than we know.
4: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: और चलिए अब बात करते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या की। रामलला के मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस वर्ष भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाल ही में चढ़ावा चोरी की घटनाओं के दावों के बीच भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने साफ किया कि भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है और ज्यादातर दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 2025 से अधिक रही है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े में दावा किया गया है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1,00,000 के पार भी पहुंच रही है।
9: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद से अयोध्या में रामलला के दर्शनार्थियों में कोई कमी नहीं आई है। राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की एक रिपोर्ट वायरल हो रही है। देश के तमाम राज्यों से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में दर्शन पूजन का क्रम सामान्य रूप से जारी भी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि किसी एक घटना को करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। रामलला हमारे आराध्य है और अयोध्या हमारी सनातन आस्था की प्रतीक है। रिपोर्ट के अनुसार 21 जून से 3 जुलाई के बीच 11,54,793 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 2025 में 9,12,540 लोगों ने मंदिर में दर्शन किए थे। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें दर्शन व्यवस्था काफी सुव्यवस्थित और संतोषजनक लगी। दूर दराज से पहुंचे कई भक्तों ने ये भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, दर्शन की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम भी हैं। श्रद्धालुओं ने इसके साथ ही कहा कि रामलला के दर्शन कर उन्हें आध्यात्मिक शांति और भावनात्मक संतोष की अनुभूति हुई।
10: राम जन्मभूमि का ये यात्री सुविधा केंद्र है और यहाँ पे जो आंकड़े दर्शा रहे हैं उसके साथ जो भीड़ है, जो भरमार है, वो लोगों को दिखा रहा है। सीधा सीधा 9,00,000 से संख्या जब 11,00,000 की होती है, 11,50,000 तक वो पहुंचती है, ये इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और यहाँ पे लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कब से दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे किस हिसाब से दर्शन चल रहे हैं, सीधा बात करने की लोगों को कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग बैठे भी हैं। आप लोग भैया कहाँ से हैं? दर्शन किए नहीं?
11: गया जी।
10: दर्शन कर लिया?
11: हाँ हाँ।
10: दर्शन बढ़िया से हो रहा है?
11: हाँ बढ़िया से हो रहा है।
10: इसके पहले भी आए कि नहीं?
11: हाँ हाँ।
10: कितनी बार?
11: पिछले साल आए थे नहाने के लिए, वो हुआ था ना कुंभ मेला, उसी में।
10: उसमें काफी भीड़ थी?
11: बहुत भीड़।
10: आज भी भीड़ है?
11: आज भी भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन हम लोग सुबह में दर्शन किए थे पिछली बार तो उतनी भीड़ नहीं थी, जल्दी जल्दी दर्शन हो गए।
10: इस वक्त ज्यादा भीड़ है?
11: हाँ हाँ, इस वक्त ज्यादा भीड़, आज मंगलवार भी है।
10: देखिए दर्शनार्थी भी खुद कह रहे हैं इसके पहले भी हम आए थे वो भीड़ वो संख्या नहीं थी, लेकिन आज की जो आंकड़े बता रहे हैं वो भीड़ वो संख्या है और यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे श्रद्धालु है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से?
12: गया जी से।
10: गया जी से दर्शन किया?
12: हाँ जी दर्शन किया।
10: भीड़ बढ़िया थी कि नहीं?
12: अब बहुत अच्छी भीड़ है।
10: पहले भी आप आए थे कि नहीं?
12: हाँ आई थी, कुंभ मेला में आई थी।
10: कुंभ मेला में उस वक्त भी काफी भीड़ होगी?
12: बहुत ज्यादा, एक्सेस बहुत ज्यादा।
10: कैसे दर्शन हुए? अच्छे?
12: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल खुश हो गया, मन बाग बाग हो गया। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया,
10: रामलला के अच्छे दर्शन,
12: बहुत अच्छे, रामलला की जय हो।
10: देखिए लोग हैं यहाँ पे दर्शनार्थी है तो काफी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और 2025 के जो आंकड़े हैं उससे जो अधिक आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं 2026 के वो मौजूदा हालात में है।
9: श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस साल भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि 21 जून 2026 को 94,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि इसी दिन 2025 में ये संख्या 81,303 थी। 28 जून 2026 को सबसे ज्यादा 1,02,672 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जो इस अवधि का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। 26 जून को 97,603, 27 जून को 97,134 और 30 जून को 96,112 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि कुछ दिनों में 2025 की तुलना में दर्शनार्थियों की संख्या कम भी रही। 22 जून 2026 को 75,845 श्रद्धालु आए, जबकि 2025 में ये संख्या 88,756 थी। इसी तरह 29 जून 2026 को 84,102 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि साल 2025 में 84,443 श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं 3 जुलाई 2026 को 87,652 श्रद्धालुओं ने श्री राम लला के दर्शन किए, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 83,863 था। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। वहीं छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1,00,000 के पार भी पहुंच रही है। ऐसे में प्रशासन भी इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर स्नान करते नजर आए।
13: हमारी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से, और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा, और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल बनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है, और कहीं ना कहीं ये अयोध्या को जीने वाले लोग हैं। दूर दूर से आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब यहाँ के हैं, होंगे यहाँ के भी, साउथ से, मध्य प्रदेश से, आप माने राजस्थान से ये लोग आए हुए हैं। कितने विदेशी आपको दिख रहे हैं आज अयोध्या में।
9: स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तरह बनी हुई है। होटल्स, धर्मशालाएं, बाजार और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से चल रहे हैं और पूरे शहर में धार्मिक वातावरण बना हुआ है।
14: होटल में लाइक जैसा पहले अपना ये वाला सीजन वैसे भी ऑफ सीजन हुआ करता था, और इस टाइम पे अमूमन जो है भीड़ कम ही रहती है अयोध्या में। मौसम का आप कह सकते हैं, ज्यादातर ये टाइम लोगों का हिल स्टेशन में जाने का होता है, तो ये वाला सीजन वैसे भी हम लोगों के लिए ऑफ सीजन का रहता है। तो बट हाँ, मेरे को नहीं लगता कि इस वजह से भीड़ में कुछ असर पड़ा होगा, क्योंकि हमारे अभी भी कुछ डेट्स ऐसी हैं जिसमें ऑक्यूपेंसी हमारा 80% से ऊपर है, और कुछ डेट्स तो हमारा खैर जाएगा 50% से नीचे भी है, बट कई डेट है।
9: राम मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या ये संकेत देती है कि अयोध्या देश के सबसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रही है। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय धार्मिक पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: दुनिया की सबसे रोमांचक रेस में गिनी जाती है सैन फर्मिन फेस्टिवल की बुल रन, जहां परंपरा का मेल रोमांच से होता है। स्पेन के पाम्पलोना शहर में बुल रन का ये सदियों पुराना रिवाज आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। देखिए,
9: स्पेन के पैम्पलोना शहर में मशहूर सेंट फर्मिन फेस्टिवल का आखिरी बुल रन भी पूरे जोश और रोमांच के साथ पूरा हुआ। परंपरा, रफ्तार और हिम्मत का अनोखा संगम दिखाई दिया। सुबह सुबह पैम्पलोना की सड़कों पर उत्साह साफ नजर आता है। बुल रन शुरू होने से पहले प्रतिभागी सेंट फर्मिन की प्रतिमा के सामने जुटते हैं, नारे लगाते हैं और सुरक्षित दौड़ की कामना करते हैं। फिर आती है वो घड़ी जो वहाँ मौजूद सभी लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है। एक पटाखे की आवाज और गेट खुलते ही तेज रफ्तार से बुल बाहर निकलते हैं और उनके साथ शुरू होती है दुनिया की सबसे चर्चित और रोमांचक रेस। संकरी गलियों में बुल के आगे आगे दौड़ते प्रतिभागी, दोनों तरफ खड़े हजारों दर्शक और हर मोड़ पर रोमांच अपने चरम पर नजर आता है। इस दौरान कुछ लोग फिसलकर गिर भी जाते हैं, लेकिन दौड़ लगातार आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही मिनटों में बुल शहर की गलियों से होते हुए बुल रिंग के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। प्रतिभागी भी उनके साथ एरीना में दाखिल होते हैं और इसी के साथ इस साल आखिरी बुल रन सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। सेंट फर्मिन फेस्टिवल सिर्फ एक दौड़ भर नहीं, बल्कि स्पेन की संस्कृति और परंपरा का बड़ा उत्सव है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस अनोखे आयोजन का हिस्सा बनने और इसे करीब से देखने पैम्पलोना पहुंचते हैं। यही वजह है कि बुल रन आज भी दुनिया के सबसे चर्चित पारंपरिक आयोजनों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या आप छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हैं? क्या आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना नहीं कर पाते? क्या बार बार मुकदमेबाजी और सर्जरी के योग बन जाते हैं? कहीं आपका मंगल अशुभ तो नहीं? क्या है मंगल की शुभता अशुभता के लक्षण और क्या हैं इसके उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
15: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
16: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
0: Good news today is really good. In this case, वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
8: बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। शुभमन गिल, अक्षर पटेल रहे जीत के हीरो। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया। 16 साल बाद स्पेन के फाइनल में पहुंचने पर फैंस ने जमकर मनाया जश्न। आठ महीने के मिशन पर अंतरिक्ष पहुंचे अनिल मेनन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई एक्सपेरिमेंट में होंगे शामिल।
19: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी, दर्शन के लिए बड़ी तादाद में जुटने लगे श्रद्धालु। कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान।
8: रेल यात्रियों को मिलेगी आज IRCTC की नई वेबसाइट की सौगात, टिकट बुक करना होगा पहले से आसान।
3: टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।
8: उम्मीदों भरे पहर की खुशबू भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
19: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: शुभ समाचार की शुरुआत जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ करेंगे। अब बस कुछ घंटों का वक्त बाकी है, कल सुबह भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस दौरान ओडिशा के पुरी में आस्था और भक्ति का आनंद सैलाब उमड़ेगा। पुरी की सड़कों पर चारों तरफ भक्तों की भीड़ होगी और होगा उत्सव का माहौल। तो इसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां हैं आगे आपको दिखाएंगे।
19: तो जिस जीत का इंतजार लंबे वक्त से था वो आखिर आ गई है। भारत ने बर्मिंघम के एजबिस्टन में हुए पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया है और इस महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो अक्षर पटेल रहे, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर दिखाया। रन चेज में शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने भी शानदार पारियां खेली और क्या रहा मैच में खास बताएंगे आगे।
8: तो विश्व कप 2026 का पहला फाइनलिस्ट मिल गया है और वो है स्पेन। फ्रांस जैसी मजबूत टीम को 2-0 से हराकर स्पेन ने सिर्फ फाइनल का टिकट ही नहीं कटाया बल्कि पूरी दुनिया को ये भी बता दिया कि आखिर क्यों उसे इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक फुटबॉल टीम माना जा रहा है। 37 मैचों से अजय स्पेन अब इतिहास रचने से सिर्फ एक जीत दूर है। सेमीफाइनल में जीत के साथ ही मैड्रिड की सड़कों पर जश्न का समंदर उमड़ पड़ा। ये सभी तस्वीरें थोड़ी देर में होंगी आपके सामने।
19: तो वहीं साथ ही आपको भी बताएंगे कि रेल यात्रियों को मिलने वाली IRCTC की नई वेबसाइट की बात करेंगे। अब टिकट बुक करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा, क्या और खास सुविधाएं मिलने वाली हैं इस वेबसाइट में बताएंगे आगे।
8: तो इसके अलावा आपको प्रकृति की ओर भी हम लिए चलेंगे। उत्तराखंड के चमोली में मशहूर फूलों की घाटी इन दिनों अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आ रही है, जहां हर कदम पर प्रकृति का करिश्मा देखते ही बन रहा है। तो इस प्यारी खुशबू का एहसास भी हम आपको करवाएंगे इसी बुलेटिन में, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रियों का पवित्र गुफा में पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। अमरनाथ यात्रा में अब तक श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख तक पहुंच चुकी है। इन सब के बीच राजस्थान के जयपुर से पैदल यात्रा कर रहे 13 श्रद्धालुओं का एक जत्था 33 दिन की यात्रा के बाद काजीगुंड पहुंचा और सभी तीर्थयात्री यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं को और सुरक्षा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के रथों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर ओडिशा के डीजीपी ने रथ यात्रा को लेकर मंदिर परिसर का निरीक्षण किया, साथ ही जवानों की तैनाती के बारे में भी जानकारी ली। बारिश का सिलसिला बंद होने से चारधाम यात्रा में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या नजर आ रही है। बाबा बद्री विशाल का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी श्रद्धालु का बद्रीनाथ धाम पहुंचना जारी है। यहां भी बारिश को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या में कोई भी कमी नहीं देखी गई। इस वर्ष 14,82,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी कर चुके हैं। हरिद्वार में सावन के महीने में कांवड़ मेले की तैयारियां जोरों पर है। डीएम खुद यहां तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कांवड़ मार्गों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित संस्थाओं को 25 जुलाई तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार कांवड़ मेला और कुंभ मेले के कार्य समांतर रूप से चल रहे हैं, तो कुंभ मेले के कार्यों में जुटी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन से कांवड़ मेले के काम भी हो रहे हैं। तो वही महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए टिहरी गढ़वाल इलाके की एसएसपी ने सभी थानों में टीम गौरा शक्ति का गठन किया है। प्रशिक्षित टीम स्कूल कॉलेजों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त करेगी, छात्रों को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और महिला हेल्पलाइन की जानकारी देगी तथा उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करेगी। टीम गौरा शक्ति का मुख्य उद्देश्य स्कूल कॉलेज और अन्य संवेदनशील स्थानों पर छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना।
5: भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। एजबेस्टन में 259 रन का पीछा करते हुए भारत ने 45.2 ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। जीत के हीरो ऑलराउंडर अक्षर पटेल रहे। उन्होंने पहले गेंदबाजी में 4 विकेट झटके, फिर नाबाद 57 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। कैप्टन शुभमन गिल ने 80 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन की पारी खेली।
8: वहीं स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। टीम ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। स्पेन की जीत पर स्पेन में लोगों ने जमकर जश्न भी बनाया, जहां पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। वहीं स्पेन 2010 के बाद फाइनल खेलेगा और फ्रांस 2018 और 2022 के बाद लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच

तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज के साथ। पवित्र और पावन जगन्नाथ रथ यात्रा में अब बस कुछ घंटों का वक्त बाकी है। कल की सुबह भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे और पूरी नगरी में आस्था और भक्ति का अनंत सैलाब उमड़ेगा। पूरी की सड़कों पर चारों तरफ भक्तों की भीड़ होगी और होगा उत्सव का माहौल, जिसमें क्या आम और क्या खास, हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को बेताब दिखेगा ताकि महाप्रभु के मनोहारी दर्शन का लाभ उठा सके। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कल यानी 16 जुलाई से शुरू होगी, जो 24 जुलाई तक विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होगी। वहीं इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, ऐसे में प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की हैं। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे रथ मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरेज और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं, एम्बुलेंस, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करेंगे और वहीं गुंडीचा मंदिर में 9 दिन विश्राम भी करेंगे। इसके बाद बहुधा यात्रा के रूप में महाप्रभु वापस अपने मुख्य मंदिर लौटेंगे और इन 9 दिनों के दौरान पुरी में जैसा भक्तिमय माहौल देखने को मिलता है वैसा कहीं और दिखाई नहीं देता। इसलिए ये रथ यात्रा सनातन परंपरा के सबसे भव्य और आस्थावान उत्सवों में गिनी जाती है। तो वो इंतजार खत्म हो गया है जिसका भक्तों को काफी समय से था। पुरी में कल से रथ यात्रा का आगाज हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ पुरी वासियों के लिए ही एक बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में मौजूद तमाम जगन्नाथ भक्तों के लिए भी किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है।

0: बस कुछ घंटों का इंतजार, वो घड़ी आने ही वाली है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। रथ तैयार है। ये पीले और लाल रंग का विशाल रथ नंदी घोष है। करीब 45 फीट ऊंचे इस रथ में 16 पहिए लगे हैं। भगवान जगन्नाथ इसी रथ में विराजेंगे और लाल और हरे रंग के कपड़ों से सजा ये है ताल ध्वज रथ। 44 फीट ऊंचे इस रथ में 14 पहिए लगे हैं। इस रथ में भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र सवार होंगे और ये है बहन सुभद्रा का रथ दर्प दलन। 43 फीट ऊंचा 12 पहियों वाला इसे लाल और काले कपड़ों से सजाया गया है।
1: ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रथ है ये नंदीघोष रथ है और ये नंदीघोष रथ का जो आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये जो कलर है रेड और येलो ये कलर भगवान को बहुत पसंद है और इसलिए भगवान को ये कपड़ा वाला रथ में लिया जाता है। नंदीघोष रथ में आप अगर देखेंगे तो 16 चक्का और 4 घोड़े रहते हैं और आप देख सकते हैं नंदीघोष के साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के भी अलग अलग रथ रहता है और अलग अलग रथ में अलग अलग पहिया अलग अलग चक्का और इसके साथ अलग अलग की घोड़े भी रहते हैं। अगर हम ये बात करेंगे तालध्वज रथ का बात करेंगे तो तालध्वज रथ में 14 चक्का और 4 घोड़े। दर्प दलन रथ का अगर बात करेंगे तो दर्प दलन रथ में इस हिसाब से 12 चक्का 4 घोड़े और नंदीघोष रथ में 16 चक्का 4 घोड़े रहते हैं।
0: पूरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है,

0: बल्कि सदियों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसमें भक्तिभाव की पराकाष्ठा के साथ साथ सामाजिक समरसता, जन भागीदारी की सुंदर झलक भी मिलते हैं और प्रकृति का सम्मान भी। तभी तो अक्षय तृतीया से शुरू हुआ ये उत्सव रथ यात्रा के समापन तक पूरी के वातावरण में उल्लास और उमंग का एक ऐसा वातावरण तैयार कर देता है मानो हर घर में उत्सव हो। और रथ यात्रा के एक एक अनुष्ठान में दिखता है भगवान जगन्नाथ के लिए अगाध भक्ति और अटूट प्रेम। पुरी में 9 दिनों तक चलने वाले इस रथ यात्रा उत्सव को देखने और उसका हिस्सा बनने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। ऐसे में यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के भीतर, बाहर, रथ यात्रा मार्ग, समंदर, सड़क, हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और आपात स्थिति में उन्हें तत्काल मदद मिल सके।
1: 220 प्लाटून का पका पकी फोर्सेस है, 13,000 के आसपास फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। जोन वाइज क्राउड का जोन मैनेजमेंट किया हुआ है, वीआईपी मैनेजमेंट का किया हुआ है, पार्किंग मैनेजमेंट के लिए किया हुआ है, देन कोस्टल सिक्योरिटी के लिए भी कोस्ट गार्ड और नेवी से हमारा टाई अप उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, एंड फायर और मेडिकल एम्बुलेंस के साथ भी कैसे ग्रीन कॉरिडोर बन पाएगा, कुछ डिवोटीज अनइजी फील हो गया तो उनका कैसे ट्रीटमेंट हो पाएगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है सीनियर सिटीजन्स, वीमेन एंड चिल्ड्रेन, उनके लिए स्पेशली थोड़ा सा अरेंजमेंट में थोड़ा सा किया हुआ है, बेटर अरेंजमेंट, सो दैट हमारा वीमेन एड पोस्ट है, पेट्रोलिंग टीम है, एंड आंटी स्नैचिंग, आंटी इफ्टीजिंग टीम है, वो सब हमने एक्टिवेट किया हुआ है।
0: रथों की सजावट हो या मंदिर की रंगोली या फिर सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों की गहमा गहमी, पूरी में इन दिनों उत्सव सा माहौल है। दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए ये एक अनूठा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भक्ति का एक ऐसा वातावरण जहां पहुंचकर सब खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं, भाव ऐसे कि व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे।
2: जगन्नाथ जी की कृपा है, बात की पाए, जगन्नाथ जी ने हमें को बार बार बुला रहा है, हम भक्त लोगों को इसलिए हम आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जी आप में आके इतना आनंद लग रहा है, क्या बताया है हमको, इतना खुशी हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है जो बता के हम बोल नहीं सकते,
3: कुछ भी बोल नहीं सकते। मन में इतना खुशी है कि हम लोगों को स्वामी ने बुलाया हुआ है।
4: हम बहुत बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भगवान के लिए, हम किंचित पुण्य काम करके हैं उसके लिए भगवान दर्शन के लिए हमको मिल गया।
5: भगवान का रथ देख रहे हैं, कैसा लग रहा है?
4: बहुत बहुत मन बहुत बहुत संतोष लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, इट्स वेरी ग्रेटफुल टू अस। एक्चुअली हम कर्नाटक से हैं, सो जगन्नाथ रथ यात्रा द फर्स्ट टाइम हम आ रहे हैं,
6: मैं पहली बार हूँ, इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मैं पुण्य है इधर आने का, मैं कभी नहीं आई हूँ इधर, भगवान ही मुझे बुलाए हैं।
0: रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। इस भव्य और दिव्य रथ यात्रा का साक्षी बनने देश दुनिया से हजारों श्रद्धालु पुरी पहुंच चुके हैं। अब बस इंतजार उस घड़ी का है जब भगवान सज संवर कर रथ में सवार होंगे और पूरा मंदिर परिसर जय जगन्नाथ के जयकारे से गूंज उठेगा। पुरी से अजयनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो रथ यात्रा की तैयारी केवल पुरी में ही नहीं चल रही है, अहमदाबाद और कोलकाता भी इस पावन यात्रा के साक्षी बनने की तैयारी कर रहे हैं।

0: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 16 जुलाई वो शुभ घड़ी होगी जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भी रथ यात्रा की भव्य तैयारी है। रथ यात्रा के दिन सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में पाहिंद विधि होगी और भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलदेव के तीनों रथ मंदिर से प्रस्थान करेंगे। अहमदाबाद में ये रथ यात्रा 16 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी और 1 बजे तक सरसपुर पहुंचकर रात 8 बजे तक वापस जगन्नाथ मंदिर लौटेगी। भक्तों की भीड़ इस खास पल का साक्षी बनने के लिए उमड़ने लगी है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी की रथ यात्रा के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है। जाहिर है 16 जुलाई को यहां आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने खुद सड़कों पर उतरकर तैयारियों का जायजा लिया।
1: 16 जुलाई के दिन अहमदाबाद में 149वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन 149वीं रथ यात्रा के पहले अहमदाबाद की सड़कों पर ग्रैंड रिहर्सल आयोजित हो रहा है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरों में देख पा रहे हैं गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के साथ गुजरात के डीजीपी और सीपी की मौजूदगी में ये पूरा ग्रैंड रिहर्सल हो रहा है, जहाँ 31,000 पुलिस जवानों का बंदोबस्त सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और जिस रूट से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का रथ निकलेगा, उसी रूट पर ये ग्रैंड रिहर्सल आयोजित हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। साथ ही में आरएएफ की टुकड़ियां हो या जो भी सुरक्षा बल की तैनाती इस रथ यात्रा के रूट पर की जाएगी, उनकी मौजूदगी इस पूरे ग्रैंड रिहर्सल में देखने को मिल रही है। तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं गाड़ियों का लंबा एक काफिला और उसके बीच पुलिस जवानों की मौजूदगी। और खास करके इस रथ यात्रा की बात करें तो साल में ये एक पहला मौका होता है कि जब भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर निकलते हैं और सड़कों पर भारी संख्या में भक्तों की मौजूदगी होती है। हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी इस रथ यात्रा में होती है।
0: अहमदाबाद की तरह ही कोलकाता में भी रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। मंदिर परिसर को खूबसूरती से सजाया गया है, रथ भी सज धज कर तैयार हैं।
2: पर रथ यात्रा में ये स्पेशलिटी है, इस बार हम लोग दिखा रहे पहले बार ऐसे यूनिक मॉडल, हम लोग तिरुपति बालाजी का मॉडल बना रहे और बहुत सुंदर पंडाल बनेगा। सो हम लोग पूरा कलकत्ता को निवेदन करते हैं कि आप आइए दर्शन लीजिए कि कैसे कलकत्ता में हम लोग इस तिरुपति बालाजी का मॉडल बना रहे और हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे मंदिर के अंदर सब लोग आ सकते हैं और वहाँ पर आप शांति और समृद्धि पा सकते हैं।
0: अब इंतजार उस ऐतिहासिक क्षण का है जब भव्य रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच निकलेंगे। इस दौरान जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देगी और अहमदाबाद में एक बार फिर आस्था, एकता और सनातन परंपरा की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। अहमदाबाद से तुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है और अब तक करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर चुके हैं।
0: हर बीते दिन के साथ अमरनाथ यात्रा की रौनक बढ़ती जा रही है। यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की चहल पहल है, हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष है। भक्तों की लंबी कतारें हैं, सब चले जा रहे हैं उलझनों को कहीं दूर रखकर, बस एक ही धुन बाबा बर्फानी के दर पर हाजिरी लगाने है। सुरक्षा और प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच पहलगाम और बालटाल के दोनों रास्तों से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, जिसे जैसे बन पड़ रहा है बाबा अमरनाथ के दरबार पहुंच रहा है। कोई घोड़े से तो कोई खच्चर पर, तो कोई पैदल ही बम बम भोले की रट लगाए बढ़े जा रहे हैं। जयपुर से आए 13 श्रद्धालुओं का ये जत्था भी इसी आस के साथ बाबा बर्फानी के दर पर हाजिरी लगाने निकला है। खास बात ये है कि ये लोग पिछले 33 दिनों से पैदल यात्रा पर हैं और अब काजीगुंड पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वो देश की खुशहाली, विकास और शांति के लिए महादेव से प्रार्थना करेंगे।
4: हम जिला गुना एमपी के रहने वाले हैं। एमपी से चलते हुए राजस्थान आते हैं और राजस्थान से चलते हुए अमरनाथ तक हम पहुँचते हैं। हम निकले यहाँ से, हमारे घर से ये समझ लो 14 मई को निकले हैं।
5: हम 12 जून को यहाँ से पैदल यात्रा चल रहे हैं, तो वैष्णो देवी होते हुए आज हमारे को 33 दिन हो गए। कठिन कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ आदमी की सोच है, कठिन कुछ भी नहीं है।
6: खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता और पल पल बदलता मौसम, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश कम नहीं है। बस एक भाव है जो आंखों में नमी बनकर तैर जाता है, उत्साह है जो जयकारे में बदल जाता है। बाबा बर्फानी में आस्था का आलम ये कि अब तक 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अगर आप भी प्रकृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स आपका इंतजार कर रही है। पहाड़ों के बीच जहां तक नजर जाए रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछी हुई है। उत्तराखंड के चमोली जिले की मशहूर फूलों की घाटी इन दिनों अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आ रही है। आइए चलते हैं उस घाटी में जहां हर कदम पर प्रकृति का करिश्मा देखते ही बन रहा है।
6: नजारों को देखिए, हरे भरे पहाड़, बादलों की छांव और रंग बिरंगे फूलों से सजी पूरी की पूरी घाटी। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बनाकर छोड़ दी है। कहीं गुलाबी रंग बिखरा है तो कहीं नीले, पीले और बैंगनी फूलों ने धरती को इंद्रधनुष जैसा बना दिया है। उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है और इसकी खूबसूरती लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच रही है।
7: विश्व धरोहर, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार दिखाई दे रही है। फूलों की घाटी का मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है। इस दौरान मानसून होने के साथ ही जो घाटी का दायरा है वो हर तरफ अलग अलग रंग के, अलग अलग किस्म की जो प्रजातियां हैं यहाँ पे खिली हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी अब फूलों की घाटी पूरी तरह से यहाँ पे खिल चुकी है। हर तरफ पर जो प्रकृति का यौवन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
6: जुलाई के मध्य से अगस्त के बीच तक का समय इस घाटी का सबसे खास मौसम माना जाता है। यही वो दौर होता है जब दुर्लभ हिमालयी फूल एक साथ खिल उठते हैं और पूरी घाटी रंगों की ऐसी चादर ओढ़ लेती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। यही वजह है कि ट्रैकिंग के शौकीन हों, फोटोग्राफर हों या फिर प्रकृति प्रेमी, हर कोई इन दिनों फूलों की घाटी का रुख कर रहा है। वैसे इस घाटी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। साल 1932 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ की वजह से ये घाटी दुनिया की नजरों में आई। आज ये घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जहां मध्य जुलाई से सितंबर तक करीब 500 दुर्लभ प्रजातियों के फूल खिलते हैं। इतना ही नहीं, किस्मत साथ दे तो यहाँ दुर्लभ वन्य जीवों की झलक भी देखने को मिल सकती है। इस सीजन अब तक 11,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं, यानी पिछले साल की तुलना में ये लगभग 2 गुनी है। पिछले साल इसी अवधि में करीब 5,172 पर्यटक आए थे, जबकि इस बार आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों का प्रकृति की ओर रुझान कैसे लगातार बढ़ रहा है।
8: पर्यटकों से जो आय प्राप्त हुई है वो है 20,16,250। इसके साथ ही हमारे पास जो विदेशी पर्यटक हैं वो 45 रहे हैं इस सीजन में। अभी तक अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो पिछले साल हमारे पास अभी तक 13 जुलाई 2025 तक आने वाले जो पर्यटकों की संख्या थी वो 5,490 थी, जो कि इस बार जो पर्यटकों की संख्या वो लगभग हमारी दोगुनी हो चुकी है।
6: माना जा रहा है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो इस साल फूलों की घाटी पर्यटकों के मामले में नया रिकॉर्ड बना सकती है। 1 जून से खुला ये पार्क 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। तो अगर आप भी प्रकृति के सबसे खूबसूरत रंगों को करीब से देखना चाहते हैं तो अभी सही वक्त है, क्योंकि कुछ नज़ारे सिर्फ तस्वीरों में अच्छे नहीं लगते बल्कि अपनी आँखों से महसूस किए जाते हैं। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
3: यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बड़े पर्दे पर महाप्रभु की महागाथा।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: हाँ। Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come true. Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
16: बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया. शुभमन गिल अक्षर पटेल रहे जीत के हीरो. 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे.
3: वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया। 16 साल बाद स्पेन के फाइनल में पहुंचे, फैंस ने मनाया जमकर जश्न।
16: आठ महीने के मिशन पर अंतरिक्ष पहुंचे अनिल मेनन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई एक्सपेरिमेंट में होंगे शामिल।
3: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी, दर्शन के लिए बड़ी तादाद में जुटने लगे श्रद्धालु। कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान।
16: रेल यात्रियों को मिलेगी आज IRCTC की नई वेबसाइट की सौगात, टिकट बुक करना होगा पहले से आसान।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
17: तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, बस तुम ही पर भरोसा है नाथ।

0: और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शुभ समाचार में। पुरी में रथ यात्रा की पावन शुरुआत के बीच भगवान जगन्नाथ की महिमा बड़े पर्दे पर भी जीवंत होने जा रही है। एक ओर कल से जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा तो दूसरी ओर इसी आस्था और आध्यात्मिक विरासत को समर्पित पौराणिक एनिमेशन फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ इस शुक्रवार 17 जुलाई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हिंदी के साथ तेलुगु और उड़िया भाषा में भी ये फिल्म भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीलाओं और संदेश को दुनिया के सामने रखेगी।
1: परंतु तुम्हारे एक भक्त के मृत्यु में तुम्हारी
2: पुरी में क्या हो रहा है जगन? कोई है यहाँ? तुलसी काका, पुरी काकी, सब कहाँ चले गए?
0: रथ के पहियों के साथ जब पूरी दुनिया जय जगन्नाथ का जय घोष करेगी, उसी आस्था का एक स्वरूप बड़े पर्दे पर भी देखने को मिलेगा। एनिमेशन फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ उस दिव्य स्वरूप को दिखाती है जो कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी लोक तक जाने से नहीं हिचकते और भक्तों की पुकार सुनकर भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और गरुड़ के साथ एक अद्भुत दिव्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एनिमेशन मूवी के युग में भी ये मूवी कमाल कर सकती है क्योंकि इससे पहले रिलीज हुई एनिमेटेड मूवी महाअवतार नरसिम्हा ने देश भर में 251 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था। अब उसी कड़ी में भगवान जगन्नाथ के जीवन पर और आध्यात्मिक संदेश पर आधारित ये नई एनिमेटेड फिल्म 17 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
2: तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, बस तुम ही पर भरोसा है नाथ। मैं केवल वही करूँगा जो तुम करवाना चाहते हो, ना कुछ सोचूंगा ना कुछ चिंता करूँगा।
1: परंतु तुम्हारे एक भक्त के मृत्यु में तुम्हारी।
0: और चलिए अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। पहले वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 11 साल बाद इंग्लैंड को एस्वेस्टन में हार का मुंह देखना पड़ा। जाहिर है रोहित विराट और बुमराह जैसे सीनियर्स के लौटने से ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों का जोश हाई है। आपको नेट प्रैक्टिस की कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं जो इस वक्त टीम इंडिया का मूड बयां कर रही हैं। जीत के साथ टीम इंडिया ने वनडे सीरीज का आगाज किया और अब सीरीज जीत की तैयारी है। कल कार्डिफ में दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा, उससे पहले टीम इंडिया के जोश जज्बे को बयां करती कुछ तस्वीरें देखिए।

तो जिस जीत का इंतजार लंबे वक्त से था वो आखिर आ गई है। भारत ने बर्मिंघम के अजबेस्टन में हुए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया है और इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीत के सबसे बड़े हीरो अक्षर पटेल रहे, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर दिखाया। रनचेज में शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार पारियां खेली।

0: शायद T20 सीरीज की वो चुभन ही थी जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में करारा जवाब बन गई। एडजस्टन में टीम इंडिया ने ऐसा पलटवार किया कि अंग्रेजों की हर रणनीति धराशायी हो गई। टीम इंडिया को 258 रन का लक्ष्य मिला और भारत ने सिर्फ 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत पर तिरंगा लहरा दिया और इस तरह मिशन रिवेंज का पहला पड़ाव फतेह के साथ पूरा हुआ।
1: एक साल के मैं भी दो साल के बाद कमबैक कर रहे हैं, सो अच्छी विक्ट्री है। सो आशा करते हैं ये कंटिन्यू रहेगा और यही वर्ल्ड कप तक जाएगा और वर्ल्ड कप भी हमारा होगा।
2: आज हम बहुत खुश हैं, इंडिया फाइनली जीत गया है। 4 T20 हम हार चुके थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन आज इतनी खुशी है, आई कांट एक्सप्लेन, आई एम सो हैप्पी। कम ऑन इंडिया, कम ऑन, जीतेगा।
3: बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जैसे कि T20 में 4 मैच हार गए थे, एक मैच का तो रिजल्ट नहीं आया था, उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। और शायद अगर अगले 2 मैच वो जीत जाए तो एटलीस्ट बदला ले पाएंगे व्हाइट वॉश का जो अपना हुआ है।
0: हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में धड़कने जरूर बढ़ी, रोहित शर्मा जल्दी लौटे, विराट कोहली भी सस्ता विकेट दे बैठे, लेकिन कहते हैं बड़े खिलाड़ी ऐसे ही बड़े मौकों पर खुद को साबित करते हैं और इस मैच के ऐसा सूरमा कप्तान गिल साबित हुए। उन्होंने हर गेंद का जवाब पूरे धैर्य, पूरे दम और पूरे विश्वास के साथ दिया। गिल ने 75 गेंद खेलकर 80 रन बनाए, जिसकी वजह से लड़खड़ाती दिख रही टीम इंडिया फिर से जीत के रास्ते पर लौट आई। श्रेयस अय्यर ने भी समझदारी भरे रनों पर जीत का स्कोर खड़ा किया। गिल और अय्यर के बीच 101 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने भारत की जीत का रोड मैप करीब करीब तैयार कर दिया, लेकिन क्रिकेट हर पल करवट लेता है। गिल क्रैम्प्स की वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए, श्रेयस रन आउट हो गए और केएल राहुल भी सिर्फ 1 रन पर चलते बने। इस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 160 रन था। मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा, लेकिन जब मैच मझधार में होता है तभी असली खिलाड़ी की पहचान होती है। इस बार ये पहचान बने अक्षर पटेल। पिछले कुछ महीनों से सवालों के घेरे में खड़े अक्षर आज जवाबों की किताब बन गए। पहले गेंद से अंग्रेजों की कमर तोड़ी, फिर बल्ले से जीत के मुहर लगा दी। 52 गेंद पर नाबाद 57 रन ठोके। दूसरी छोर पर वॉशिंगटन सुंदर भी सुंदर तरीके से रन जोड़ते रहे। उन्होंने 63 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाए। शूरवीरों की तरह एक ऐसा छक्का जड़ा जिसने न केवल उनकी हाफ सेंचुरी पूरी की, बल्कि ये छक्का टीम इंडिया की जीत का विजयी शॉट भी साबित हुआ। टीम इंडिया के लिए ये जीत केवल जीत भर नहीं है, ये वो लय है जिसके दरकार इस वक्त टीम को सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: विश्व कप 2026 का पहला फाइनलिस्ट मिल गया है और वो है स्पेन। फ्रांस जैसी मजबूत कंपनी को 2-0 से हराकर स्पेन ने सिर्फ फाइनल का टिकट ही नहीं कटाया, बल्कि पूरी दुनिया को यह भी बता दिया कि आखिर क्यों उसे इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक फुटबॉल टीम माना जा रहा है। 37 मैचों से अजय स्पेन अब इतिहास रचने से सिर्फ एक जीत दूर है। सेमीफाइनल में जीत के साथ ही मैड्रिड की सड़कों पर जश्न का समंदर उमड़ पड़ा।

0: जैसे ही रेफरी की आखिरी सीटी गूंजी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड जीत के जश्न में डूब गई। सड़कों पर लाल पीले झंडों का समंदर उमड़ पड़ा। ये स्पेन के केवल सेमीफाइनल जीतने की खुशी भर नहीं है, बल्कि 16 साल बाद विश्व कप फाइनल में लौटने का जश्न भी है। फ्रांस के खिलाफ मैदान पर स्पेन ने वही किया जो अक्सर चैंपियन टीमें करती हैं। पहली सीटी से लेकर आखिरी मिनट तक स्पेन के प्लेयर्स ने फ्रांस को सांस लेने की मोहलत नहीं दी। गेंद पर कब्जा रखा, सटीक पासिंग और हर मोर्चे पर ऐसा शिकंजा कसा कि फ्रांस के एम्बाप्पे जैसे सुपरस्टार भी बेबस नजर आए। फ्रांस की तेज तर्रार फौज स्पेन की दीवार से टकरा कर बिखर गई। सेमीफाइनल में इस महाविजय के साथ मैदान में तमाम स्पेन के प्लेयर्स ने रिकॉर्डों की झड़ी भी लगा दी। इस जीत के साथ स्पेन के डिफेंडर पेड्रो पोरो एक ही वर्ल्ड कप में स्पेन के लिए दो गोल करने वाले दूसरे डिफेंडर बन गए। उनसे पहले ये कमाल फर्नांडो हियरो ने किया था। उधर माइकल ओयारज़ाबाल ने पांचवा गोल दागकर एमिलियो बुट्रागुएनो और डेविड विला की बराबरी कर ली। यानी स्पेन सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि उसके खिलाड़ियों ने इस मौके को रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज करा लिया। स्पेन के लिए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जश्न की असली वजह सिर्फ ये जीत नहीं है, बल्कि वो सिलसिला भी है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। स्पेन लगातार 37 मुकाबलों से अजेय है। इस सफर में स्पेन के नाम 28 जीत है और 9 ड्रॉ हैं। यानी विरोधियों के लिए स्पेन अब ऐसी पहेली बन चुका है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी के साथ स्पेन ने इटली के सबसे लंबे अजेय अभियान की बराबरी भी कर ली है। हर जीत के साथ स्पेन का जश्न बड़ा हो रहा है, हर रिकॉर्ड के साथ उनका हौसला ऊंचा हो रहा है और हर मुकाबले के बाद स्पेन का रुतबा और बुलंद हो रहा है। फैंस को लगने लगा है कि अब मंजिल सिर्फ एक कदम और 90 मिनट की दूरी पर है। अब निगाहें इंग्लैंड और अर्जेंटीना के मुकाबले पर हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी जश्न में डूबने की बारी स्पेन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो अमेरिका के अटलांटा शहर में अर्जेंटीना के फुटबॉल फैंस का जबरदस्त जोश देखने को मिला है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से एक दिन पहले सैकड़ों समर्थक शहर के बीचों बीच इकट्ठा हुए और पारंपरिक बांदेराजो यानी कि झंडा प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया गया। इस दौरान पूरा इलाका नीले और सफेद रंग में रंगा नजर आया। हाथों में अर्जेंटीना के झंडे, ढोल नगाड़ों की गूंज, जोरदार नारे और टीम के समर्थन में गाए जा रहे गीत, फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई समर्थकों ने अर्जेंटीना की जर्सी और टीम से जुड़े खास सामान भी पहन रखे थे। इतना ही नहीं, एक विशाल अर्जेंटीना का झंडा भी लहराया गया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साथ ही फैंस ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के पोस्टर्स भी लहराए। कुछ फैंस ने तो खिलाड़ियों का मुखौटा भी पहना। फैंस का कहना है कि उनकी टीम शानदार फॉर्म में है और इस बार भी जीत अर्जेंटीना की होगी। अब सभी की नजरें बुधवार को होने वाले बड़े मुकाबले पर है।

0: और मंगलवार को मैड्रिड के एक फैन जोन में सैकड़ों स्पेनिश फैंस ने अपनी टीम की फ्रांस पर 2-0 से जीत और वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने का जश्न मनाया। समर्थकों ने खुशी के माहौल में नाचते चेयर करते और स्पेन के झंडे लहराते हुए वीवा स्पाना और यो सोए अस्पानोल के नारे लगाए। फैंस की इस भीड़ का जोश देखने लायक था क्योंकि फैंस रविवार को होने वाले फाइनल में स्पेन की जगह पक्की होने का जश्न मना रहे थे। स्पेन का मुकाबला रविवार को ईस्ट रदरफोर्ड के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना या इंग्लैंड से होगा।
1: पधारो मारे देश, ये केवल आमंत्रण नहीं है बल्कि राजस्थान की पहचान है। शायद यही वजह है कि गुलाबी रंग से सजा जयपुर अब सिर्फ पिंक सिटी नहीं बल्कि दुनिया की हैप्पी सिटी भी बन गया है। दरअसल टाइम आउट की हैप्पी सिटी इंडेक्स में जयपुर को दुनिया का 6वां सबसे खुशहाल शहर चुना गया है, जबकि इस सर्वे में इंग्लैंड का बाद शहर पहले नंबर पर है। तो आखिर क्या है जयपुर की मुस्कुराहट का राज, देखिए हमारे संवाददाता रिदम जैन की रिपोर्ट।

0: खुशहाली सिर्फ ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या चमचमाते मॉल से नहीं आती। खुशहाली वहाँ होती है जहाँ लोग दिल से मुस्कुराते हैं, जहाँ रिश्तों में अपनापन होता है और हर मिलने वाला आपसे कहता है पधारो हमारे देश। शायद यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए जयपुर टाइम आउट की हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में छठे नंबर पर पहुंच गया और इस सूची में जगह बनाने वाला भारत का इकलौता शहर भी बना है।
1: जयपुर को अपने कल्चर, अपने हेरिटेज के लिए तो जाना ही जाता है, पर हाल ही में एक नया टाइटल और इस शहर को मिला है जो कि हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड का है। टाइम आउट ने हाल ही में एक लिस्टिंग निकाली है जिसमें पूरे विश्व भर से 10 शहर अलग अलग जगह के हैं और उनको हैप्पीएस्ट सिटी का टाइटल दिया गया, जिसमें टॉप 6 नंबर पे भारत है और पूरे इस लिस्ट में भारत सिर्फ टॉप 6 में एक बार आया है। और भारत में भी जयपुर वो शहर है जिसको हैप्पीएस्ट सिटी बोला गया है।
0: खुशहाल शहरों के इस रैंकिंग में सिर्फ इमारतों की ऊंचाई नहीं बल्कि लोगों की मुस्कान की गहराई भी नापी गई है। दुनिया भर के 24,000 से ज्यादा लोगों से उनके शहर के बारे में सवाल पूछे हैं। मसलन, क्या आपका शहर आपको खुश रखता है? क्या यहाँ के लोग सकारात्मक हैं? क्या रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी चेहरों पर मुस्कान ले आती हैं? साथ ही संस्कृति, हरियाली, खान पान, कला, सार्वजनिक सुविधाएं, सामुदायिक जुड़ाव और जीवन की गुणवत्ता जैसे हर पहलू को भी परखा गया है और इन कसौटियों पर जयपुर ने दिल जीत लिया है।
1: यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा रिच है। हर कोई यहाँ आना पसंद करता है, चाहे वो छुट्टियां बिताने हो, चाहे वो एक बेसिक वीकेंड हो, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है उसको पर्यटकों का कहना है कि थोड़ी सी पीसफुल होती है। यहाँ आमेर फोर्ट की अभी मैं आपको कुछ झलक दिखा रही हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी हम देख सकते हैं कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो जो पीस जो जितने भी टूरिस्ट हैं वो कहते हैं वो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है।
0: जयपुर वाले भी कहते हैं यहाँ जिंदगी सिर्फ घड़ी की सुइयों के पीछे नहीं दौड़ती बल्कि यहाँ शामें अब भी परिवार के नाम होती हैं, दोस्तों के साथ चाय की महफिलें सजती हैं और यहाँ त्योहार पूरे शहर को एक परिवार बना देते हैं। यही संतुलन, यही सुकून और यही अपनापन जयपुर को सिर्फ रहने की बेहतरीन जगह नहीं बनाता बल्कि दिल में बस जाने वाला शहर बनाता है।
2: जयपुर में थोड़ा अच्छा सा लगता है, ये जो मैं ना थोड़ा ओल्ड फैशन सा, मतलब हर चीज बहुत प्यारी है इसलिए।
3: वैसे तो हम लोग बनारस का कल्चर देखे हुए हैं, बनारस में भी लोग जिंदा दिल रहते हैं, वही चीज यहाँ भी है, यहाँ भी लोग जिंदा दिल मतलब खुल के जिंदगी जीते हैं।
0: पर्यटक भी मानते हैं कि जयपुर की हवा में कुछ अलग ही बात है। आमेर का किला हो, हवा महल की खिड़कियां हो, रंग बिरंगे बाजार हो, यहाँ हर मोड़ पर इतिहास भी मिलता है और मुस्कुराते चेहरे भी। यहाँ की रफ्तार महानगरों जैसी भागती नहीं बल्कि जिंदगी को महसूस करने का मौका देती है। शायद इसीलिए जो एक बार जयपुर आता है उसके दिल में इस शहर के लिए एक खास जगह बन जाती है।
1: जो भी यहाँ आता है उसको बहुत ही खुशी से वेलकम किया जाता है और ऐसे ही चाहे वो घूमने आ रहे हो, चाहे यहाँ सेटल होने आ रहे हो, हर किसी का बहुत ही सम्मान के साथ वेलकम किया जाता है। इसीलिए इस जगह को, यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के कल्चर को हैप्पीएस्ट माना गया है, घूमने के लिए भी और रहने के लिए भी। कैमरामैन मनीष के साथ विदंग जैन, कुनी स्टडी, जयपुर।
4: भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट डॉक्टर अनिल मेनन अपने दो रूसी क्रूमेट्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं और इस मिशन का लॉन्च कल भारतीय समय अनुसार 8:17 पर हुआ। इस स्पेस मिशन के लॉन्च होते ही 8 महीने के एक लंबे मिशन की शुरुआत हो गई है। तो इस मिशन पर क्यों है दुनिया की निगाहें, चलिए आपको दिखाते हैं।
0: ये सफर स्पेस साइंस को लेकर हमारी समझ, हमारी सोच और हमारे नजरिए को बदल सकता है। ये पल केवल दुनिया के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 8 महीने के लंबे मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। उनका ये मिशन सिर्फ अंतरिक्ष की सैर भर नहीं है बल्कि इंसान को चांद और मंगल तक सुरक्षित पहुंचाने की तैयारी का अहम पड़ाव है। मेनन और दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला रोस्कोसमोस अंतरिक्ष यान मंगलवार को भारतीय समय के अनुसार रात 8:17 पर बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रवाना हुआ। स्टेशन तक 2 ऑर्बिट और 3 घंटे की यात्रा के बाद स्पेस क्राफ्ट रात 11:56 पर अपने आप प्रिचल मॉड्यूल से जुड़ गया। ये अनिल मेनन की पहली अंतरिक्ष यात्रा है। पेशे से वे डॉक्टर हैं और वो इमरजेंसी और एयरो स्पेस मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। यानी उन्हें अच्छी तरह पता है कि मुश्किल परिस्थितियों में इंसानी शरीर कैसे काम करता है। अब अंतरिक्ष में उनका सबसे बड़ा काम होगा ये समझना कि बिना गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी में इंसान का शरीर कैसे बदलता है। मसलन खून के बहाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों और हड्डियों पर क्या असर पड़ता है, नसों और शरीर के दूसरे अंगों में क्या बदलाव आते हैं। इतना ही नहीं, अनिल मेनन खुद भी इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेंगे। यानी वे सिर्फ प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक नहीं होंगे बल्कि उनके शरीर से भी वैज्ञानिक जानकारी जुटाई जाएगी। इस मिशन में अनिल मेनन ऐसी तकनीक की भी जांच करेंगे जिससे अंतरिक्ष स्टेशन के पीने के पानी का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर मरीज को चढ़ाई जाने वाली ड्रिप तैयार करने में किया जा सके। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अनिल मेनन के इस मिशन से मिली जानकारी भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशन को ज्यादा सुरक्षित बनाएगी, साथ ही इससे धरती पर भी इलाज और मेडिकल तकनीक को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और इंस्टा स्टोरी में वो आपको उन कलाकारों के इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए वरुण जैन की फनी इंस्टा स्टोरी।
6: लोगों ने कभी चुड़ैल देखी है? मेरी बीवी को देख लो, इसने भी नहीं देखी।
7: नहीं देखी।
8: तुझे लगता नहीं आजकल तेरी जुबान ज्यादा चलने लग गई?
9: हाँ तो गाड़ी चलाना सिखाया तुमने?
8: नहीं
9: तो फिर जो आता है वही चलाऊंगी ना।
4: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
5: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
12: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
11: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
13: Williams keeps it. First down. Touchdown.
11: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
5: कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी, दर्शन के लिए बड़ी तादाद में जुटने लगे श्रद्धालु, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान। आठ महीने के मिशन पर अंतरिक्ष पहुंचे अनिल मेनन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई एक्सपेरिमेंट में होंगे शामिल। रेल यात्रियों को आज मिलेगी IRCTC की नई वेबसाइट की सौगात, टिकट बुक करना होगा पहले से आसान। बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया, शुभमन गिल अक्षर पटेल रहे जीत के हीरो, 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया, 16 साल बाद स्पेन के फाइनल में पहुंचने पर फैंस ने जमकर मनाया जश्न।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे मंगल के लक्षणों की, मंगल की शुभता और अशुभता के प्रभाव क्या होते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 11:50 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 9:46 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 15 जुलाई बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के लक्षणों के बारे में। किन लक्षणों से जान सकते हैं कि हमारा मंगल शुभ है या अशुभ है? तो सबसे पहले कैसे जाने कि हमारा मंगल खराब है? देखिए, मंगल अगर अशुभ होगा, मंगल अगर खराब होगा तो व्यक्ति क्रूर और हिंसक स्वभाव का होगा, वायलेंट होगा, क्रोध तुरंत प्रकट होगा। मंगल अगर गड़बड़ है तो आत्मविश्वास और साहस का जो स्तर है, आत्मविश्वास और साहस का जो लेवल है वो कमजोर हो जाएगा। व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामले में, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अगर मंगल गड़बड़ होगा तो व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करेंगी। मंगल अगर गड़बड़ है तो अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी जीवन में लगी रहेगी। और ज्यादा अशुभ अगर मंगल हुआ तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा, जेल के दर्शन हो सकते हैं। अगर विवाह भाव से मंगल का संबंध हो और मंगल नकारात्मक हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है,
वैवाहिक जीवन में मुकदमेबाजी, मारपीट, तलाक, डिवोर्स, ये सब स्थितियां पैदा हो जाती हैं। मंगल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो मंगल जब अशुभ होगा तो क्या प्रभाव होगा वो आपने जाना। अगर आपका मंगल अनुकूल है, शुभ है, तो इसके क्या प्रभाव होंगे। अगर मंगल शुभ है, अनुकूल है, तो व्यक्ति साहसी और उदार होगा, दूसरों की सहायता करेगा, बड़ा कॉन्फिडेंट होगा, उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़िया गजब का होगा। मंगल अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति को साहस के क्षेत्र में, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। जब मंगल शुभ होता है तो व्यक्ति धनवान होता है और उसके पास प्रॉपर्टी काफी होती है, काफी जमीन जायदाद उसके पास रहती है। और मंगल के अच्छा होने पर व्यक्ति का पारिवारिक संबंध, फैमिली के साथ रिलेशन बेहतर बना रहता है। नॉर्मली जिनका मंगल शुभ होता है उनके जीवन पर एक सुरक्षा हमेशा रहती है और ऐसे लोगों को सामान्यतः कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सामान्यतः उम्र के

स्थान परिवर्तन हो सकता है। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ की स्थिति बन रही है। जीवन साथी को लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। रिश्तों की समस्या दूर होगी। करियर की रुकावट दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा। स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई मनोकामना पूरी होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आपने अगर लक्षणों से ये जान लिया, लक्षणों से ये समझ लिया कि मंगल आपका अशुभ है, मंगल आपका गड़बड़ है, तो क्या उपाय करेंगे? मंगलवार का उपवास रखना शुरू करिए। मंगलवार का व्रत रखिए और इस दिन नमक का सेवन मत करिए। इस दिन नमक मत खाइएगा। एक नियम बना लीजिए, रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। मंगल के मंत्र का जप मध्य दोपहर में करिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। जमीन पर या जमीन के निकट सोने का प्रयास करिए। लो फ्लोर की पलंग पर या जमीन पर दरी और बिस्तर डालकर सोइए। भूमि की ऊर्जा से आपका मंगल बेहतर होगा। और मंगल को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते आपको बेहतर बनाए रखने चाहिए। अगर आप मंगल को अच्छा रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़िए और परिवार में रिश्तों को ठीक बनाए रखिए। अगर मंगल बहुत ही ज्यादा खराब है, मंगल अगर मारक है, जीने मरने का प्रश्न पैदा कर रहा है, तब मंगल के लिए कुमार कार्तिकेय की पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय की पूजा करने से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ का तनाव मत पालिए। जल्दबाजी में काम करने से बचें। परिवार के बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। काम की अधिकता रहेगी। भगवान

भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, नया काम कर सकते हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, मंगल की अशुभता सबसे ज्यादा दो जगहों पर दिखाई देती है। अगर मंगल ज्यादा अशुभ हो, ज्यादा नकारात्मक हो, तो जीवन में सर्जरी होने की, दुर्घटना होने की और मुकदमेबाजी की संभावना जरूर बनती है। और दूसरे नंबर पर मंगल, अगर मंगल दोष पैदा कर रहा हो या विवाह के मामले में असर डाल रहा हो, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अगर मंगल इतना ज्यादा खराब है कि आप मुकदमे में उलझे हुए हैं या बार बार सर्जरी हो रही है, तब आप भगवान कार्तिकेय की पूजा करिए, जिनको सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं, उनकी पूजा करना बहुत उत्तम होगा। और अगर कुंडली में मंगल दोष की वजह से या मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तब आप मंगल के मंत्र का जप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करें। यानी मंगल को शांत करने के लिए, मंगल की खराब से खराब स्थिति से निपटने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा और मंगल का मंत्र जप करना अनुकूल होगा। तो आज हमने बात की मंगल के शुभता और अशुभता के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य के लिए एक लकी टिप। अपने घर के बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखिए और प्रयोग करने के बाद इसका दरवाजा बंद रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में लोगों का स्वास्थ्य हमेशा बेहतर बना रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करिए, कोई भी लड्डू, और घर से निकलते समय उस लड्डू को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: बोला था
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

ಶಂಕರ್ ಸುಮನ್ ಕೇಸರಿ ನಂದನ್ ತೈಜ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಹಾ ಶಂಕರ್ ಜೀ ಹಿ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ಹೇ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ಹಿ ಶಂಕರ್ ಜೀ ಹೇ ಪರ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಕಿಸಿ ನೆ ಭೂತ್ ಭಾವನ್ ಮಹಾದೇವ ಭೋಲೇನಾಥ್ ಸೇ ಪೂಛಾ ಬಾಬಾ ಆಪ್ ಬಾನರ್ ಕ್ಯೂ ಬನೆ ಭೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ಬನೆ ತೋ ಬಾನರ್ ರೂಪ ಆಪ್ನೆ ಕ್ಯೂ ಧಾರಣ ಕಿಯಾ ಇಸ್ಕೇ ಸಂತೋ ನೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣ ಬತಾಯ ಪರ ಶಂಕರ್ ಜೀ ನೆ ಏಕ್ ಕಾರಣ ಬತಾಯ ವೋ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೋ ಸುನಾನಾ ಚಾಹೇ ಭೋಲೇನಾಥ್ ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಜಬ್ ನಾರದ್ ಜೀ ಕೋ एक बार विवाह करने की खुजली हुई। हाँ हाँ रामायण में आप पढ़ोगे तो बालकांड में ऐसा वर्णन है। आज हम सुबह हमने इन लोगों को कहा भी जरा हमको दिखाओ बालकांड। तो सुबह एक बार नारद जी को यह खुजली हुई कि हमको शादी करनी है, और ये कोई खुजली किसी ने नहीं की, भगवान ने ही करवाई। एक बार क्या किया नारद जी ने, बहुत तप किया, तब करते करते करते करते करते कामदेव नारद जी को सताने आया, तो काम को नारद जी ने जीत लिया। जब काम को नारद जी ने जीत लिया तो बड़ा अभिमान भर गया कि जिस काम को शंकर जी नहीं जीत पाए हमने जीत लिया। तो जिसको थोड़ा मोड़ा कई बार कोई आदमी को कोई उपलब्धि मिल जाए तो वो पचा नहीं पाता, तो नारद जी को भी बताने की खुजली हुई। तो वो भागे भागे शंकर जी के पास गए, बोले भोले ना बहुत दिन बाद हम आए हैं, और कुछ दिन हम साधना में थे। तो भोले बाबा ने कहा कहां थे साधना? अरे बोले हिमालय की गुफा में बैठे थे और काम आया और हमने हरा दिया काम। हमारा बाल बांका नहीं कर पाया, तरह तरह के रूप बना के आया, स्त्रियां आई पर हमको डिगा नहीं पाई, और हमने काम को जीत लिया, आपको भस्म करना पड़ा, हमने जीत लिया। भोलेनाथ बोले वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर धीरे से कान में बोले सुनो ये बात हमें तो बता दी, विष्णु भगवान को मत बता। नारद जी को लगा ये हमसे जलते हैं, इनको हमसे जलन है दर्शन, इसीलिए ये बताना नहीं चाह रहे, हमारी प्रशंसा बढ़ेगी, हमारा नाम बढ़ेगा, शंकर जी से ज्यादा नाम फेमस होगा, ये हमसे जलते हैं इसलिए। तो शंकर जी ने दोबारा रोका, जब नहीं माने तो भोलेनाथ समझ गए कि अब तो सीताराम। और नारद जी शंकर जी के यहां से सीधा गए, ये कथा भगवान शंकर सुना रहे हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी ने जो श्राप दी उसकी कथा सुना। तो नारद जी गए भगवान श्री हरि विष्णु के पास, भगवान से बोले बहुत दिन व्यस्त रहे हम, तो भगवान ने भी पूछा कहां व्यस्त रहे, बोले कुछ साधना करने गए थे हिमालय में। अच्छा इसका भी बड़ा शौक होता है, साधना का भी बड़ा शौक होता है बताने का। कुछ लोग थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ा हवन हवन कर लेते हैं तो उन्हें खुजली होती है। खैर ये हमारे अंदर भी होती है, सबको होती है, वो सबके अंदर ये गुण होता है। नारद जी को थोड़ा ज्यादा लग गई खुजली, उन्होंने कहा कि जरा साधना करने हिमालय गए थे तो वहां कामदेव आया, हमने उसको हरा दिया, ऐसा वैसा वैसा। भगवान बोले अच्छा, बोले हाँ, भगवान समझ गए इनको अभिमान आ गया। तो भगवान ने एक माया की नगरी रची, पूरा संसार भगवान ने माया का बनाया। भगवान ने ऐसा माया का नगर बनाया कि पूछो मत। बोले कैसा नगर? नारद कहो सहते अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। जैसे ही नारद जी भगवान को

भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे कोई बच नहीं पाया। और नारद जी भला कैसे बच सकते? तो भगवान ने एक ऐसा संसार की रचना की, एक नगर बसाया, नगर सिटी, और सिटी में चारों दरवाजे, सुंदर महल, वहां का एक सुंदर राजा। बसही नगर सुंदर नर नारी, और जन बहु मन सज रति तन धारी। सब नगर के लोग बड़े बड़े सुंदर भगवान ने बनाए। लेकिन एक और कृपा की भगवान, बोले क्या? बोले जो वहां का राजा था उसका नाम शीलनिधि था। शीलनिधि राजा के यहां पर एक बेटी का जन्म हुआ, और नारद जी यहां भगवान के यहां से निकले तो उसी रास्ते से धोखे से गए जहां भगवान ने ये नाटक किया, माया का प्रपंच किया था, उसी रास्ते से निकले। जैसे ही निकले तो राजा का ये नगर देखकर नारद जी को लगा ये नगर तो बड़ा सुंदर है, राजा से मिलना चाहिए। तो राजा के महल में गए तो राजा ने स्वागत किया, बा बा बा पधारो पधारो पधारो, आप बहुत अच्छे आए, पधारो पधारो। तो नारद जी ने कहा कि आप कौन? बोले महाराज मेरा नाम शीलनिधि है, मैं यहां का राजा हूं, ये पूरा साम्राज्य भगवान की कृपा से, आप संतों की कृपा से मेरे अधीन है और मैं सेवा कर रहा हूं। महाराज आप सही समय पर आए। नारद जी बोले क्यों? बोले महाराज मेरी एक बेटी और उसका स्वयंवर होना, तो आप जरा हस्तरेखा देखते हो क्या? नारद जी बोले हाँ, आई एम स्पेशलिस्ट, हम तो इसमें बहुत माहिर हैं, दिखाओ। लड़की को, बेटी को बुलाओ। जो बेटी थी वो कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी थी, और इतनी सुंदर के भगवान ने उनको कहा, कहके ही भेजा था कि तुम विश्व मोहिनी बनो।

ऐसी रूपवती कन्या कि पूछो मत। जैसे ही कन्या को नारद जी ने देखा तो अभी अभी काम को जो जीत के आए थे ऊपर देखें नीचे देखें बाल को देखें चाल को देखें और नारद जी सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। कन्या ने प्रणाम किया, नाटक था, प्रणाम किया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया, बढ़िया बल मिले, लाओ हाथ। और जैसे ही हाथ देखा ओ हो, ऐसी रेखाएं हस्त रेखा किसी की नहीं, हाथ की जो रेखा है विश्व में किसी की नहीं जैसी इस कन्या की है। बोले कैसी है? बोले जो भी इस कन्या से विवाह करेगा उसे कोई जीत नहीं पाएगा, अजेय रहेगा और बैकुंठ का राजा बनेगा। जो इस बेटी से विवाह करेगा एक तो अजय रहेगा, बैकुंठ का राजा बनेगा और वो कभी मरेगा नहीं। नारद जी ने सोचा किसी और की जगह यदि मेरा ही विवाह हो जाए, आहा, एक तो सुंदर कन्या, ऊपर से इससे विवाह करेंगे तो हमें कोई जीत नहीं पाएगा और बाद में बैकुंठ भी मिलेगा, क्या गजब। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग शादी कर लेते हैं, बोले कन्या के भाई भी नहीं है और परिवार में फैमिली में कोई है नहीं, अकेली लड़की है और जो बाप है ना वो बहुत बड़ा रईस है, बहुत रईस है, उसके पास बहुत सोना चांदी पैसा है, तो कुछ लड़के लट्टू हो जाते हैं कि हमको ऐसी ही चाहिए और ऐसी ही के चक्कर में फिर वही नारद जी के साथ हुआ कि यही चाहिए। जो विवाह करेगा वो अजय रहेगा, एक तो सुंदर, अस सुंदरता कहीं नहीं देखी, ऐसी सुंदरता कहीं देखी नहीं और ऊपर से ऐसी रस्त रेखा। नारद जी ने सोचा कि क्या करें, पर अपने रूप को देखा, उसके रूप को देखा कि बरमाला डाल ली है ये हमारे गले में तो 100 जन्म नहीं डाली। तो नारद जी को एक उपाय सूझा कि एक काम करते हैं, भगवान से सुंदरता उधार मांगते हैं। जैसे आज के जमाने में ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, ब्यूटी पार्लर वाले काले को गोरा बना देते, हाँ लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले क्या गजब सुंदरता कर देते हैं। तो नारद जी ने सोचा भगवान सबसे ज्यादा सुंदर, उनकी सुंदरता उधार मांग लाते हैं, अब वो हमें सुंदरता दे देंगे, उस सुंदरता को पाकर हम इससे पहले विवाह कर लें और एक बार माला पड़ जाए फिर कह देंगे वापस ले लो, और गले में माला पड़ी नहीं कि घरवाली हमारी। ऐसा सोचकर भगवान के पास नारद जी गए तो रस्ते में सोचा जब तक जाए तब तक ये किसी और की ना हो जाए। तो नारद जी ने सोचा भगवान तो सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना, एक काम करते हैं यही बुलाते हैं, वही खड़े होकर के श्रीमन

प्रकट हो गए। बोलो नारद जी, तो हाथ जोड़ करके नारद जी खड़े हुए। बोले प्रभु, आप तो आदि हो, अनंत हो, अखंड हो, आपकी महिमा को, रूप को कोई नहीं जान सकता, आपकी माया बड़ी अद्भुत है। भगवान बोले, मलाई बाद में लगाओ, पहले ये बताओ इधर बुलाया क्यों। नारद जी ने नीचे देखा, बोले शंकर जी हैं और पार्वती। बोले हैं। बोले नारायण मतलब आप हो तो लक्ष्मी जी है। बोले हाँ है। बोले ब्रह्मा जी है तो ब्रह्माणी है। बोले हाँ। नारद जी बोले, यदि नारद जी के बगल में नारदी खड़ी हो जाए तो कैसा लगेगा। भगवान बोले, कहना क्या चाह रहे। नारद जी बोले, अब बहुत भटक लिया हमने, भजन करना है कुछ दिन बैठ के, तो बैठ के भजन करेंगे तो रोटी कौन बनाएगा, और रोटी यदि हम बनाने लगेंगे तो भजन में बाधा पड़ेगी, तो हम सोच रहे हमारा भी घर बस जाए और कोई मिल जाए। भगवान बोले, आपको मिली क्या। एक लड़की देखी। अच्छा, बहुत कहाँ की है। यही बगल में एक गांव है, नगर है, वहां का राजा सील निधि है, उसकी बेटी है, बड़ी सुंदर। तो भगवान बोले, हम क्या बारात की तैयारी करें। बारात बाद में, पहले सुनो तो सीधा बोलो ना। सीधी बात यह है कि आप अपनी कुछ घंटों के लिए सुंदरता दे दो, और कुछ बस इतना चाहिए। भगवान बोले, बस इतनी सी बात दी। नारद जी बोले, आपने सुंदरता दी नहीं कि हमारी शादी हुई। भगवान ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। देखते ही देखते नारद जी गले से नीचे एकदम भगवान की तरह हो, नील नील सरोवर नीलमणि नील नील धर श्याम, बढ़िया भुजाएं भर गई। ऐसे बढ़िया वो भुजाएं, समझ गए ना, बढ़िया भुजाएं भर गई, बढ़िया सीना भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया, गला भी ठीक ठाक हो गया। एकदम पहले पतले से थे महात्मा, हमारी तरह रहे हो, एकदम ठीक ठाक हो गया, बाजू बंद पीतांबर पहन लिया, आहा। लेकिन भगवान ने नाटक क्या किया, पूरा शरीर अपने जैसा कर दिया, चेहरा बंदर का बना दिया, चेहरा बानर का बना दिया, बाकी ठीक, बस फेस बंदर का कर। अब नारद जी गए, नारद जी तो फुल कॉन्फिडेंस में थे, सीता देखा नहीं, उधर स्वयंवर चलने वाला था। स्वयंवर में लोग बैठते हैं, लड़की चयन करती है, स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयंवर, बहुत से वर बैठते हैं, लड़की चयन करती है कि ये वाला लड़का ठीक है, उसके गले में माला डाल देते हो, वो वर उसका हो जाता और कन्या उसकी हो जाती। तो नारद जी ने सोचा कि अब फेस कौन देखें, पता लगी गया कि सुंदर है हम। तो नारद जी सीधे भागे भागे गए और राजा के महल में गए, तो पता किया स्वयंवर कहां है। बोले 6 नंबर हॉल में, ग्राह सिंधु वाले हॉल में। अच्छा, हाँ तो ठीक है। भागे भागे गए तो पूछा, लड़की किधर से निकलेगी ताकि डायरेक्ट हम पर नजर पड़े और कोई दूसरा देखे ही ना, और भी बैठे हैं लड़के, बड़े बड़े राजा आए, पर वो उतने सुंदर नहीं है जितने हम हैं, ऐसा नारद जी को कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने कुर्सी ली, बोले लड़की किधर से निकलेगी। बोले इधर से निकलेगी। तो नारद जी सामने में ही कुर्सी पर बैठ गए। अब लड़की आई विश्व मोहिनी, जैसे ही नारद जी पर नजर पड़ी तो बाकी शरीर तो ठीक है, फेस बंदर का। बिचारी हंस गई, नारद जी को लगा हंस गई, काम हो गया, हो गया, मतलब हम सच में सुंदर हैं, काम हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नारद जी थोड़ा वो होते ही थोड़ा और ठीक ठाक होके बैठे, तो वो जो विश्व मोहिनी थी वो वहां से निकल गई। नारद जी को लगा आई देखी हंसी, लगता है इसने ठीक से नहीं देखा, तो कुर्सी उठाई और दूसरी लाइन में डाली इस तरफ जहां वो जा रही थी, तो उसने वो लाइन ही चेंज कर दी इनके चक्कर में, वो गई नहीं दूसरी लाइन में। नारद जी बड़े परेशान। शंकर जी के गण तो आए थे, शंकर जी ने भेज रखा कि पता करो नारद जी कहां कहां जा रहे, क्या हाल है। भोलेनाथ ने भेजे ही जानबूझ के था कि हमें लाइव अपडेट बताना, क्योंकि हमें पता है कि इनको अभिमान आया है, भगवान निपटाएंगे इनको, और अभिमानी को भगवान निपटाते। इसलिए भक्त को एक बात याद रखनी चाहिए, जीवन में अभिमान से नहीं भरना चाहिए, भगवान से दिल को भरना चाहिए। तो भगवान शंकर के दो गण बीच में बैठे थे, एक तरफ बीच में नारद जी अपनी चेयर डाले लड़की को देखे, तो लड़की लाइन ही चेंज कर लो, हर बार नारद जी उठे हर बार जाए हर बार वो लड़की ने उनकी तरफ दोबारा देखा ही नहीं।
तो बोल भगवान शंकर के गण हंसने लगे। बोले हंस क्यों रहे हो? धीरे से बोले कि बुरा ना मानो बाबा जी, तो जरा पानी में अपना मुंह देखो। नारद जी को लगा हम ज्यादा सुंदर हैं इसलिए जल रहे हैं, तो कुछ नहीं बोले। इधर विश्वमोहिनी जो लड़की थी, एक सुंदर राजकुमार आता है, उसके गले में माला डालती है और वो लड़की किसी दूसरे की विश्वमोहिनी हो जाती है और चली जाती है। अब वो कोई और राजकुमार नहीं था, स्वयं नारायण हरि राजकुमार बनकर वो आए बैठे। चूंकि नाटक था तो गले में माला डाली और वो दोनों चले गए। इधर नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, एक तो मिली नहीं, ऊपर से सुंदरता उधार दी, और तीसरा ये दोनों हम पर हंस रहे हैं और जो देखे वो हम पे हंसे। तो पानी में जब मुंह देखा नारद जी ने, ओ आग बबूला हो गए भगवान के ऊपर। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भगवान हो तो कुछ भी करो, परम स्वतंत्र हो। जितनी गालियां मन में आती थी, जो जो मन में, गालियां तो नहीं, जो जो मन में आता था कहते गए, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, परम स्वतंत्र हो कोई सर पर नहीं, भगवान हो तो कुछ भी करो। आज तो हम बदला लेके, आज नारद से पाला पड़ा, आज बताएंगे। मारे गुस्सा के तमतमाते हुए वैकुंठ की तरफ जा रहे थे कि आज हम बताएंगे नारद जी से पाला पड़ा, अब तक हमारे जैसे महात्माओं से पाला नहीं पड़ा है, आज हम ठिकाने लगाएंगे, हो गए भगवान। ये सुनाते जा ही रहे थे कि रस्ते में वो कन्या और वो राजकुमार मिल गए। उन दोनों ने, राजकुमार ने और कन्या ने नारद जी को देखा तो राजकुमार कोई और नहीं, भगवान ही थे। भगवान अपने रूप में प्रकट होकर के बोले, कौन नारद जी, कहां जा रहे हैं? तो बोले आपके ही पास जा रहे थे, ठीक मिल गए। रुको, इधर आओ, सामने आओ, इधर आओ, आज आपने हमारी हंसी कर, पहली बात तो आपको मना कर देना था कि आप विवाह मत करो, दूसरी बात सुंदरता उधार नहीं दे, मांगी थी ना देते, आपने बंदर बना दिया, बानर बना दिया, जाओ हम भी श्राप दे रहे हैं, आपने नार हमार बानर बना करके हमारा उपहास कराया है, करी है कीस सहाय तुम्हारी। जब आप त्रेता युग में राम अवतार लेकर के आओगे तब यही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे, तब तुम शत्रु का हनन कर पाओगे। करी है कीस सहाय तुम्हारी, आपने हमारी आज उपहास उड़ाया, हम तुमको श्राप देते हैं। ये बानर ही और नारी के वियोग के कारण हमको रोना पड़ा, हम श्राप देते हैं तुम्हें भी अपनी नारी के वियोग में रोना, श्राप दे। जैसे ये श्राप दिया तो भगवान ने हाथ जोड़कर सिर पर रख ली श्राप को, और भगवान ने उस कन्या की तरफ देखा, वो विश्व मोहिनी कन्या तुरंत लक्ष्मी बनकर के प्रकट हो। नारद जी ने जब उस कन्या को विश्व मोहिनी देखा तो बोले, हम तो इसको उस राजा की लड़की समझ रहे थे, ये तो माता, अरे माता आप। तो भगवान हंस के बोले, नारद जी आपके अंदर ये जो गृहस्थ में जाने का भाव था ना, उसको हमें मिटाना था, जो काम के कारण अहंकार आ गया था उसको हमको मिटाना था, इसलिए हमने ये नाटक किया। ना वो कोई राजा है, ना ये कोई विश्व मोहिनी कन्या, ये हम श्री लक्ष्मी जी हैं, श्री हैं। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, आप तो हमारा भला चाहते थे और हमसे अपराध हो गया कि हमने आपको श्राप दे दिया, अब कैसे मिथ्या हो? भगवान बोले, अब मिथ्या तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आपने श्राप दिया तो त्रेता युग में हम ऐसी ही लीला करेंगे। नारद जी ने कहा, भगवान आपको अब हम क्या कहें, बड़े दयालु हो फिर भी हमारे मन में बड़ा क्षोभ है, कोई प्रायश्चित बताओ। तो भगवान ने कहा, जाओ जाकर के तप करो, जप करो, जप तप करने चले गए। तो भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि से पूछा कि आपने नारद जी को बानर क्यों बनाया? तब भगवान श्री हरि ने कहा भगवान शंकर से, हम जिससे प्रेम बहुत करते हैं और जिसका हित चाहते हैं उसको बानर बनाते। ये बात भगवान शंकर के मन में बैठ गई। तो जब राम अवतार हुआ, राम अवतार में राम जी नर बने, तो भोलेनाथ ने विचार किया कि भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसको बानर बनाते हैं, तो कोई और बने, इसके पहले मैं ही बानर बनकर के प्रकट हो जाऊं, मैं
ही बानर बनकर के प्रकट हो जाऊं। इसीलिए नर हरते भय हनुमान, इसलिए भगवान महादेव हनुमान जी बने, इसलिए बानर बने। वानरा राम भीषम, इसलिए हनुमान जी बानर बने, क्योंकि भगवान को ये रूप बड़ा प्रिय था नारद जी के कारण। ये रूप प्रिय होने के कारण भगवान शंकर ने सोचा, तत् सुख सुखित्वम रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम राम। राम जी के हृदय में भगवान शंकर का वास है, भगवान शंकर के हृदय में राम जी का वास है। दोनों एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते। भोलेनाथ ने सोचा कि हमको तो कुछ बनना ही है, तो क्या बने? ये स्वामी और हम सेवक, तो ये नारायण बनेंगे नर, और हम भी यदि नर बन गए, मनुष्य बन गए, तो समानता हो जाएगी। सेवक और स्वामी समान हो ऐसा मजा नहीं देता भाई। कथा कहने वाला और सुनने वाला एकदम, तुम भी व्यासपीठ लगा के सुनने बैठो तो मजा नहीं आएगा। खाली बोतल में पानी, भरी हुई बोतल का तब ही भर सकते जब खाली बोतल नीचे हो, भरी बोतल ऊपर, तभी डाल सकते। ऐसे देने वाला ऊपर होता, लेने वाला नीचे होता है, स्वभाव है ये। तो सोचा कि हम सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं, तो क्या किया जाए? तो भगवान शंकर ने विचार किया कि यदि नारायण नर बनेंगे तो हम बानर बनेंगे, हम बानर बनेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा।

शंकर जी ही हनुमान जी हैं, त्रिभुवन गुरु हैं महादेव। भोलेनाथ कौन है? बोलो बोलो। एक लोक के नहीं, तीनों लोकों के गुरु भगवान शंकर हैं। इससे सिद्ध होता है कि तीनों लोकों के गुरु यदि शंकर हैं, तो वही बस भगवान शंकर हनुमान जी बनकर प्रकट भए, तो तीनों लोकों के गुरु हनुमान जी।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
10: दो साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
0: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
0: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
20: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
21: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
24: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी, दर्शन के लिए बड़ी तादाद में जुटने लगे श्रद्धालु, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान। आठ महीने के मिशन पर अंतरिक्ष पहुंचे अनिल मेनन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई एक्सपेरिमेंट में होंगे शामिल। रेल यात्रियों को आज मिलेगी IRCTC की नई वेबसाइट की सौगात, टिकट बुक कराना होगा पहले से आसान। बर्मिंगम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया, शुभमन गिल अक्षर पटेल रहे जीत के हीरो, 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया, 16 साल बाद स्पेन के फाइनल में पहुंचने पर फैंस ने जमकर मनाया जश्न।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
24: कल से शुरू हो रही है भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा, ओडिशा के पुरी में मेगा तैयारी। आज रथ खला से श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने लाए जाएंगे 3 रथ। नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तैयार हुए भव्य रथ। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए मंदिर के आसपास उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़, भक्तों ने जमकर लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। पुरी में रथ यात्रा से पहले DGP ने जगन्नाथ मंदिर का किया दौरा, सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। अहमदाबाद में 149वीं रथ यात्रा की तैयारियां पूरी, जगन्नाथ मंदिर में रस्में शुरू। गुजरात के डिप्टी CM हर्ष सांघवी ने जगन्नाथ मंदिर में रस्मों को किया शुरू, मंदिर के गुंबज पर किया ध्वजारोहण। डिप्टी CM हर्ष सांघवी ने भगवान जगन्नाथ की उतारी आरती, विधि विधान से की पूजा अर्चना। अहमदाबाद में रथ यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम ने सड़कों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा में एआई से रखी जाएगी भीड़ पर नजर, सैकड़ों जवानों की हुई तैनाती। अमरनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। पूरी आस्था और भक्ति के साथ जारी है अमरनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। सुरक्षा और प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच पहलगाम और बालटाल के दोनों रास्तों से श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना जारी। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपने जन्मदिन अडालज त्रिमंदिर में की पूजा अर्चना, राज्य और देश में की शांति की कामना। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए इसमें लोग। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बाबा को शेषनाग का रजत मुकुट, मुंडमाला और फूलों की सुगंधित मालाएं पहनाई गई। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। हुगली में वाराणसी परंपरा के अनुरूप उतारी गई मां गंगा की आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए इसमें लोग। कोलकाता में दिव्य कला मेले का शुभारंभ, सीएम शुभेंदु अधिकारी हुए इसमें शामिल। रेल यात्रियों के लिए आज लॉन्च होगी आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट, टिकट बुक कराना होगा पहले से आसान। रेलवे के मुताबिक लोगों को मिलेगी फास्ट टिकट बुकिंग की सुविधा, मिलेंगे एआई फीचर्स। नई वेबसाइट में इंटरफेस को बनाया गया है सरल, बुकिंग के पूरे प्रोसेस में समय की होगी बचत। भारत यूके के बीच आज से लागू होगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, भारतीय एक्सपोर्ट को मिलेगा इससे बढ़ावा। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी समेत कई कारोबार को होगा फायदा, ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाले सामान मिलेंगे सस्ते। अयोध्या के श्रीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में हुआ सहस्त्र अर्चन, महंत राज उदास ने बाबा भोलेनाथ का किया अभिषेक। पौड़ी गढ़वाल के श्री धन्वंतरी धाम में सीएम धामी ने किया पौधारोपण, बाबा रामदेव भी रहे इस दौरान मौजूद। कठुआ के बानी में आधुनिक बागवानी से किसानों की बदली जिंदगी, पहाड़ियों में सेब की खेती से अच्छी हो रही है आमदनी। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं लोग। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट साल 2026 का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए इसमें शामिल। विरासत, आधुनिकता, पर्यटन और राष्ट्र सुरक्षा का बेजोड़ संगम बना जैसलमेर रेलवे स्टेशन, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ पुनर्विकास। 10 लिफ्ट और 10 स्वचालित सीढ़ियों से यात्रियों को मिलेगी सुविधा, करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को मिला नया विश्व स्तरीय स्वरूप। प्लेटफॉर्मों के बीच आसान आवाजाही के लिए बनाए गए हैं 6 मीटर चौड़ाई वाले 2 नए फुट ओवर ब्रिज, जल्द ही राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा यह आधुनिक रेलवे स्टेशन। अब हैप्पी सिटी के नाम से भी मशहूर हुआ पिंक सिटी जयपुर, दुनिया के टॉप 10 सबसे खुशहाल शहरों में शामिल। टाइम आउट 2026 की सूची में जयपुर बना दुनिया का 6ठा सबसे खुशहाल शहर, भारत का एकमात्र शहर है जिसने टॉप 10 में बनाई है जगह। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा, 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला, स्वास्थ्य, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा इससे बढ़ावा। बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजों में शुरू होगी पढ़ाई, सीएम सम्राट चौधरी 211 डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर कल भागलपुर में करेंगे इसका शुभारंभ। योगी सरकार मेरठ में बना स्पोर्ट्स हब, अब पारंपरिक लकड़ी के क्रिकेट बैट के साथ बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं आधुनिक तकनीक से प्लास्टिक और फाइबर के बैट। नई मशीनें लगाने पर मिल रही 50% तक सब्सिडी, ब्याज मुक्त ऋण मिलने से छोटे उद्योगों को भी विस्तार का मौका। सैलानियों के लिए सुरक्षा के लिए कुल्लू प्रशासन का बड़ा फैसला, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक, मानसून के चलते एहतियात। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने भरी अंतरिक्ष की उड़ान, नासा के विमान से आईएसएस का सफर। कजाकिस्तान के ऐतिहासिक बैकनूर कॉस्मोड्रोन से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों प्योत्र ड्रुब्रोव और अन्ना किनेना के साथ उड़ान भरी, करीब 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर करेंगे रिसर्च। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:17 पर अंतरिक्ष यान सुयोज MS-29 में भरी थी उड़ान, करीब 3 घंटे बाद ISS के संपर्क में अंतरिक्ष यान। यूक्रेनी और भारतीय

0: अमेरिकी स्पेस फोर्स में कर्नल और इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन है। भारत में एक साल रह चुके हैं मेनन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के दौरे के दौरान माइक्रोग्राविटी सेमीकंडक्टर समेत कई प्रयोग करेंगे अनिल मेनन। अनिल मेनन की पत्नी एना विलहम भी अंतरिक्ष यात्री हैं। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने से गर्मी से मिली राहत। आने वाले दिनों में तेज हवा के साथ बादल छाए रहने का अनुमान। गुरुग्राम में भी मौसम हुआ मेहरबान, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। ओडिशा में आज कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान, आने वाले दिनों में 20 जुलाई तक कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। कोंकण गोवा और तटीय कर्नाटक में बारिश का दौर, 17 जुलाई से बारिश तेज होने की संभावना। पुरी में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। अयोध्या में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, ई रिक्शा को धक्का देते नजर आए पुलिस का जवान। मुंबई में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में घुसा पानी, प्रशासन ने लोगों को किया सतर्क। असम के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, एक दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। बाढ़ से कई सड़कें पानी में डूबी, फसलों को भी पहुंच रहा है नुकसान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं।

0: हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं, औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज, जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी, दर्शन के लिए बड़ी तादाद में जुटने लगे श्रद्धालु, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान। आठ महीने के मिशन पर अंतरिक्ष पहुंचे अनिल मेनन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई एक्सपेरिमेंट में होंगे शामिल। बर्मिंगम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया, शुभमन गिल, अक्षर पटेल रहे जीत के हीरो, 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया, 16 साल बाद स्पेन के फाइनल में पहुंचने पर फैंस ने जमकर मनाया जश्न।

सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आखिरकार वो दिन आने ही वाला है जिसका सभी को इंतजार है, यानी कि कल पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। भक्तों में इसे लेकर काफी उत्साह है, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में काफी खास है, काफी अनोखा है। देखिए, श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ माना गया है। माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में जग के नाथ यानी कि जगन्नाथ के रूप में निवास करने लगे। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम यानी कि बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वो वस्त्र पहनते हैं, पुरी में वो भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में वो विश्राम करते हैं। पुरी में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो जगन्नाथ मंदिर को लाखों लाख मंदिरों में अलग बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना खास जगन्नाथ मंदिर है उतनी ही खास यहाँ की रसोई है। यहाँ रोज भगवान के लिए 56 तरह के प्रसाद विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। इसमें नारियल के लड्डू, मावे के लड्डू, दही चावल, अलग अलग तरह के पेठे, मालपुआ, दाल भात, कई प्रकार के सब्जियां, खीर, खिचड़ी जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। और प्रसाद बनाने के लिए कुएं का पानी का इस्तेमाल होता है, जिसे खास तौर पर सोने से बने घड़े से निकाला जाता है।

0: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का रोसा घर, दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई, जो न केवल अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए जानी जाती है बल्कि इस रसोई से जुड़े रहस्यों का जवाब आज भी लोगों के पास नहीं है। एक ऐसी रसोई जहां हर दिन महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए भोग तैयार होता है। इस रसोई में सैकड़ों पारंपरिक रसोइये और उनके सहयोगी पीढ़ियों से सेवा करते आ रहे हैं, जिसकी बदौलत यही प्रसाद हजारों श्रद्धालुओं तक महाप्रसाद बनकर पहुंचता है। जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ को 56 भोग लगाए जाते हैं, जिन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। सुखीला प्रसाद, ये सूखा प्रसाद होता है जिसे श्रद्धालु लंबे समय तक रख सकते हैं और अपने साथ घर ले जा सकते हैं। तो वही दूसरा है शकुंडी प्रसाद, ये पका हुआ भोजन होता है जिसे मंदिर के आनंद बाजार में मिट्टी के बर्तनों में परोसा जाता है। जितना खास रसोई में तैयार किया प्रसाद होता है, उसे बनाने की विधि उससे भी ज्यादा खास है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में आज भी भोजन गैस या बिजली पर नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ी की आग में पकाया जाता है। रसोई में परंपरागत तरीके से मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर खाना पकाया जाता है, जहां लकड़ी की आंच पर कई बर्तन एक साथ चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आस्था और परंपरा के अनुसार सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है और फिर इसके बाद नीचे का बर्तन। ये नजारा आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है, जिसमें एक के ऊपर एक साथ मिट्टी के सात घड़े रखे जाते हैं। इस विधि में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के बर्तनों को कुड़ुआ कहा जाता है। ये बर्तन कुम्हारों की ओर से विशेष रूप से मंदिर के लिए बनाए जाते हैं। प्रसाद पकाने के लिए केवल सूखी लकड़ियों का ही उपयोग होता है। आंच को बहुत तेज नहीं किया जाता बल्कि एक नियंत्रित तापमान पर भाप को ऊपर भेजा जाता है। श्रद्धालुओं के बीच मान्यता है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, जबकि सामान्य तौर पर नीचे वाला बर्तन पहले गर्म होता है। एक बार भोजन पकने के बाद इन बर्तनों को तोड़ दिया जाता है। शुद्धता को ध्यान में रखते हुए इन बर्तनों को दोबारा रसोई में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वही एक और खास मान्यता जगन्नाथ स्वामी के इस दरबार से जुड़ी है। कहते हैं यहाँ बनने वाला महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ हो जाता है। श्रद्धालुओं की संख्या चाहे जितनी हो, महाप्रभु की कृपा से सभी को प्रसाद मिल जाता है। यही विश्वास इस रसोई को दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनाता है। रथ यात्रा के दौरान जब लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं, तब इसी विशाल रसोई की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फिर भी सदियों पुरानी व्यवस्था, अनुशासन और सेवा भाव के साथ महाप्रभु का भोग और श्रद्धालुओं का महाप्रसाद बिना रुके चलता रहता है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ के लिए महाभोग का प्रसाद तैयार करने और पहला भोग लगाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पुरी में मान्यता है कि महाभोग का महाप्रसाद खुद देवी लक्ष्मी तैयार करती है। मान्यता है कि पहले ये प्रसाद सिर्फ भगवान विष्णु के लिए था। देव ऋषि नारद ने देवी लक्ष्मी से आग्रह कर महाभोग पाया, लेकिन शर्त थी कि इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। स्वाद चखते ही नारद आनंद में डूब गए और कैलाश पहुंच गए, जहां भगवान शिव ने भी प्रसाद पा लिया। लेकिन जब माँ पार्वती की बारी आई तो प्रसाद खत्म हो चुका था। तब उन्होंने कहा, ये दिव्य प्रसाद सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मान्यता है कि तभी भगवान जगन्नाथ ने वचन दिया कि अब से महाभोग पहले देवी लक्ष्मी को अर्पित होगा और फिर यही प्रसाद पूरी दुनिया के लिए महाप्रसाद बनेगा। जहाँ स्वाद से पहले सेवा है, जहाँ भोजन से पहले भक्ति है और जहाँ हर कोर पे आस्था का एहसास मिलता है। और रसोई की कहानी लोगों में जिज्ञासा के साथ साथ रोमांच भी बढ़ाती है। श्री जगन्नाथ मंदिर की ये रसोई सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई ही रही, बल्कि सनातन परंपरा, सेवा और समर्पण की जीवंत मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, कल से जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। भक्तों में काफी उत्साह है और मंदिर परिसर में किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का माहौल है, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं, आपको ले चलते हैं पुरी, जहां से हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जगन्नाथ रथ यात्रा का कल से शुभारंभ होने जा रहा है और बहुत लंबे समय से इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई थी, रथ बनकर के तैयार है, आप वहां पर मौजूद हैं। कितना उत्साह भक्तों में है और मंदिर परिसर में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? अजय,
2: देखिए, कल भव्य रथ यात्रा है और भगवान जगन्नाथ का ये रथ यात्रा के लिए हर तरह की व्यवस्था हो चुकी है, हर तरह की तैयारी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दो दिन से बारिश है, इतना बारिश हो रहा है कि लोग आने जाने में लोग भीग रहे हैं, लेकिन भक्तों का भीड़ कम नहीं हो रहा है। भक्तों का मन में जो भाव है वो कहीं ना कहीं वैसे ही है जैसे था पहले से, वैसे ही। और भक्त मंदिर को आ रहे हैं ये रथ देखने के लिए, रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। भक्तों का भीड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, भक्तों का मन में वो भाव है क्योंकि लगातार 15 दिन से भगवान अनासर में थे, भगवान असीम थे, और जो भक्त भगवान को देख नहीं पाते हैं वो भक्त देखने के लिए दूर दूर से पूरी आ रहे हैं और भगवान का ये रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, भगवान का सानिध्य लाभ करने के लिए, भगवान का ये भव्य यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। और ये रथ यात्रा में अक्षय तृतीया से रथ यात्रा का काम शुरू होता है और गुंडीचा यात्रा यानी जिसको बोला जाता है कि रथ यात्रा, इस दिन तक ये काम चलता है। हमारे साथ महाराणा सेवक है, महाराणा सेवक जो है, हम उनसे बात करेंगे कैसे रथ को बनाते हैं, रथ का ये जो पूरी प्रोसेस है वो मतलब अक्षय तृतीया से शुरू होता है और आज तक काम चलता है, अभी भी काम चालू है, लेकिन बाहर में भारी बारिश है, लोग जो भक्त हैं वो भक्त इस बारिश में भी भक्त भीग रहे हैं और भगवान को देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराणा स्वराज जो हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो रथ का काम करते हैं। हम बात करेंगे जी, पंडित जी क्या नाम है आपका? पंडित जी, ये सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान का ये जो भव्य रथ यात्रा होता है, ये रथ यात्रा में सबसे बोला जाता है कि सबसे बड़ी बात है कि रथ को बनाना और उसको सही तरह से मजबूत, और हर साल आप बनाते हैं, हर साल एक ही जैसा, एक ही स्टाइल, एक ही डिजाइन, एक ही वही मजबूती, कैसे आप बनाते हैं, कैसे मतलब इसका
3: पहले चरण में जो भी पारंपरिक कार्य उसी से करते, पारंपरिक से लोग चौपट किया जाता है, तो हाथ से किया जाता है, हाथ से किया जाता है, लकड़ी का मुदुर होता है, उससे काम चलता है। पहले चरण में काम है से लेकर जो यहाँ का काम है उसके काम जो पहला जो कीमत का 42 रुपये है, 16 बलोचे 14 12 रुपये पहले चरण में धन का ही है। तो कोई भी
1: अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा सा टेक्निकल लैग भी है, इसीलिए जो आवाज है वो रुक रुक कर हम तक पहुंच रही है। क्या जैसे आपने बताया कि मौसम की दुश्वारियां जो है, क्या वो आस्था पर भारी पड़ सकती है? जैसे आप बता रहे हैं कि बारिश भी हो रही है रुक रुक कर, क्या रथ यात्रा पर इसका असर पड़ सकता है? अजय,
2: आपको मैं दिखाना चाहूंगा का ये जो रथ यात्रा होता है, ये रथ यात्रा में इस बार बारिश इतना देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं पूरी जो जगन्नाथ मंदिर के पास हूँ और जगन्नाथ मंदिर के पास तीनों रथ अब तैयार हो चुका है और इसमें आप देख सकते हैं चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भक्तों का वही भीड़ आप देख सकते हैं, कहीं एक भी जगह आप नहीं देखेंगे जहाँ भक्त नहीं है। पूरा आप पूरी का ये जो नजारा आप देख रहे हैं, हर तरह की व्यवस्था किया गया है। भक्तों का मन में वो भाव वो भीड़ बता रहा है कि कहीं ना कहीं भक्तों का मन में वो भाव है, वो देखने के लिए भगवान को देखने के लिए इच्छा है, वो इच्छा कहीं ना कहीं कम नहीं हुआ है। और इस बार रथ यात्रा में बोला जा रहा है कि पिछले साल जितने लोग हुए थे इससे कहीं अधिक लोग होंगे, क्योंकि ये बारिश जो हो रहा है, बारिश में रथ खींचने में एक अलग मजा होता है, ये भी कुछ भक्त बोल रहे थे। अगर धूप होता तो थोड़ा मुश्किल होता, अगर धूप होता तो ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ता और ये मुश्किल होता, लेकिन अगर बारिश होगा तो बारिश में रथ खींचने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, बारिश में थोड़ा ठंडा लगेगा और ठंडे में रथ खींचने में बहुत मजा आएगा। और इसलिए बोला जाता है कि बारिश जितना भी हो भक्तों का भीड़ बढ़ेगा, भक्तों मतलब हर साल जैसे भक्त होते हैं इस साल इससे कई अधिक होंगे, क्योंकि भक्त जो है वो बाहर से आते हैं और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से भक्त यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाता है, गर्मी की वजह से कुछ भक्त अशुद्ध हो जाते हैं, वो भी ये भी नजारा हम पहले देख चुके हैं। बहुत सारे भक्त कल भी हम देख रहे थे, कुछ भक्त इतना गर्मी पड़ गया था, भक्त कल बेहोश भी हो रहे थे, लेकिन अगर ये बारिश जारी रहेगा, बारिश के चलते ये रथ यात्रा अगर होगा, रथ यात्रा में वही भीड़ देखने के लिए मिलेगा,
1: वही भीड़ देखने को मिलेगा। और अजय साफ तौर पर कहते हैं ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो जगन्नाथ भगवान है अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। और जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि खास तौर पर इन रथों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, सिर्फ पूरी ही नहीं और सिर्फ हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी खास तौर पर रथ यात्रा के साक्षी बनने के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है प्रशासन की ओर से?
2: पूरी प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था किया गया है, हर तरह की व्यवस्था किया गया है, लोगों को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्राउड कैसे मैनेज किया जाएगा, इसलिए चप्पे चप्पे में पुलिस बल की तैनाती किया गया है, 13,000 आर्म फोर्सेस तैनात किया गया है, 19 आईपीएस ऑफिसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो इसको पीरो देखेंगे, और 476 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हुआ है, और इसके साथ 1700 से ज्यादा बायो टॉयलेट यहाँ इंस्टॉल हुआ है, और इसके साथ भीड़ में मोबाइल नेटवर्क का यूज करने के लिए, मोबाइल नेटवर्क का बहुत बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए 1500 से ज्यादा मोबाइल नेटवर्क मोबाइल टावर यहाँ इंस्टॉल हुआ है, जो मोबाइल टावर होता है वो भी अलग अलग कंपनी इंस्टॉल किया गया है, और इसके साथ 30 से ज्यादा इवैक्यूएशन रूट बनाया गया है, जिस रूट में लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, क्योंकि अगर कहीं पे भीड़ बढ़ जाता है जो स्टैम्पेड का जो चांसेस रहता है इसको हटाने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए 30 से ज्यादा इवैक्यूएशन रूट बनाया गया है, उस रूट में लोगों को लिया जाएगा, अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होता है तो लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था भी किया गया है, और इसके साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, एम्बुलेंस का जो ग्रीन कॉरिडोर है, अगर कोई भक्त अस्वस्थ होते हैं तो तुरंत मेडिकल लेने के लिए मेडिकल तरफ ये पूरे मंदिर से मेडिकल लेने के ये जो रास्ता है वहाँ इसको भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, और एम्बुलेंस के लिए स्पेशल रास्ता रहेगा, और इसलिए हर तरह की व्यवस्था किया गया है, और इसके साथ हर तरह की पुलिस बल यहाँ तैनात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एनएसजी कमांडोज यहाँ मौजूद हैं, एनएसजी कमांडोज भी हर तरह की एंगल में वो नजर रख रहे हैं, और इनकी निगरानी में पूरी ये शहर रह रहा है, और इसके साथ ये AI एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, 476 से ज्यादा कैमराज इंस्टॉल हुआ है, और आप देख सकते हैं पूरी शहर को आने के लिए और जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता को अब बंद किया जा रहा है, क्योंकि भारी जान यहाँ जैसे कि बहुत सारा गाड़ियां आ रहा था, गाड़ियों को बहुत दूर से रोका जा रहा है, क्योंकि अगर गाड़ियां यहाँ आएगा तो रास्ता जाम हो जाएगा, इसलिए 1.5-2 किलोमीटर से पहले ही बहुत सारा गाड़ियां जो आ रहे थे वो गाड़ियों को आज से बंद किया जा रहा है, जो मतलब जैसे इमरजेंसी गाड़ियां हैं वो और एम्बुलेंस को छोड़ करके और दूसरे वो गाड़ी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भीड़ को देख करके आज से ही ये व्यवस्था पूरा हो चुका है, और इसके साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रथ भी अब पूरा बन चुका है, रथ का आप देख सकते हैं यह है देवी सुभद्रा का रथ, आप देख सकते हैं ब्लैक और रेड का, और इसको मैं यहाँ भी आपको दिखाना चाहूंगा, ये बलभद्र जी का रथ आपको दिखाना चाहूंगा, ये रथ भी अब पूरा बन चुका है, इसके ऊपर खाली कलश
1: यानी कुल मिला के सुरक्षा के चाक चौबंद कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा इसका शुरुआत कल से होने जा रही है, शुभारंभ कल से होने जा रहा है। और देखिए 56 भोग की परंपरा हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है और इसे भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान कृष्ण अपने बचपन के दिनों में 8 भार भोजन किया करते थे और मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत पर उसे उठाने और वृंदावन के निवासियों को 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश से बचाने के बाद उन्होंने 56 बार भोजन नहीं किया था। ऐसे में इस छूटे हुए भोजन की भरपाई के लिए भक्त हर दिन भगवान जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित करते हैं।
4: पुरी के मंदिर में जो प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद प्राप्त होता है, वह दुनिया में अनोखा है। यह प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का भोजन सबसे पहले पक जाता है। 7 बर्तन नीचे ऊपर रखा जाता है मिट्टी के, और उसमें नीचे से जब आग लगाई जाती है तो सबसे ऊपर वाला जो प्रसाद है वह पहले पक जाता है। यह अपने आप में अनोखा है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होता। यह राजा से लेकर रंक तक, अमीर से लेकर गरीब तक, सभी एक पंक्ति में बैठ करके महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, प्रभु का दर्शन पाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद का बड़ा महत्व बताया गया है, बड़ी महिमा बताई गई है। यह साधारण भोग नहीं है, यह साधारण भोजन नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा शुभ आशीर्वाद है। पुरी के श्री मंदिर में बनने वाला यह महाप्रसाद की महिमा अनंत है।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
1: है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ, भक्तों में भारी उत्साह।

0: भुवनेश्वर में एक भक्त ने तैयार किया भगवान जगन्नाथ का इको फ्रेंडली रथ। ताड़ के पत्ते और नीम की लकड़ी से मिनिएचर रथ किए तैयार।
1: हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारी जारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी नजर। कांवड़ियों की सुरक्षा का और सुविधा का किया जा रहा इंतजाम।
0: तो बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। शुभमन गिल अक्षर पटेल रहे जीत के हीरो। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे।
1: वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन। सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया। 16 साल बाद स्पेन के फाइनल में पहुंचने पर फैंस ने जमकर मनाया जश्न।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
1: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पाराश। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: कल से शुरू हो रही भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा। ओडिशा की पुरी में मेगा तैयारी। आज रथ खला से श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने लाए जाएंगे 3 रथ। नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तैयार हुए भव्य रथ। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए मंदिर के आसपास उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़। भक्तों ने जमकर लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। पुरी में रथ यात्रा से पहले डीजीपी ने जगन्नाथ मंदिर का किया दौरा। सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए।
0: अहमदाबाद में 149वीं रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जगन्नाथ मंदिर में रस्में शुरू। वहीं गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने जगन्नाथ मंदिर में रस्मों को किया शुरू। मंदिर के गुंबद पर किया ध्वजारोहण। अमरनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपने जन्मदिन अडालज त्री मंदिर में की पूजा अर्चना। राज्य और देश में की शांति की कामना। अब हैप्पी सिटी के नाम से भी मशहूर हुआ पिंक सिटी जयपुर। दुनिया के टॉप 10 सबसे खुशहाल शहरों में शामिल।
1: उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। हुगली में वाराणसी परंपरा के अनुरूप उतारी गई मां गंगा की आरती। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कोलकाता में दिव्य कला मेले का शुभारंभ हुआ। सीएम शुभेंदु अधिकारी इसमें शामिल हुए। रेल यात्रियों के लिए आज लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट। टिकट बुक करना होगा पहले से ज्यादा आसान। भारत यूके के बीच में आज से लागू होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत एक्सपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा।
0: अयोध्या के श्रीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में हुआ सहस्त्र अर्चना। महंत राजूदास ने बाबा भोलेनाथ का किया अभिषेक। पौड़ी गढ़वाल के श्री धन्वंतरी धाम में सीएम धामी ने किया पौधारोपण। बाबा रामदेव भी रहे मौजूद।
3: तो साफ करना है और फिर इस
0: कठुआ की बानी में आधुनिक बागवानी से किसानों की बदली जिंदगी। पहाड़ियों में सेब की खेती से अच्छी हो रही है आमदनी। तो वहीं सैलानी से गुलजार हुआ श्रीनगर। बड़ी संख्या में शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं लोग। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट 2026 का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हुए शामिल।
1: पंजाबी फिल्म इश्कनामा का ट्रेलर रिलीज हो गया है, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
4: रांझे दित्ते 12,000 किस्मत लेके गई, पर उस तो बाद तेती बार मैं सिर्फ।
1: फिल्म हनुमान अंश का नया गाना रिलीज हो गया है, 31 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होगी।

0: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान आज उसका टीजर रिलीज हो गया है। 11 सितंबर को सिनेमा घरों में फिल्म दर्शक देगी। सुपरहिट कॉमेडी फिल्म भागम भाग का बनेगा सीक्वल। फिल्म निर्माता ने किया ऐलान, अक्षय कुमार और परेश रावल का अहम रोल इसमें। क्रिस्टोफर नॉलन की द ओडिसी की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। 17 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में दर्शक देगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए, खबरों की प्लेट तैयार है।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: पूरी में उमड़ रहा भगवान जगन्नाथ।

एक दिन बाद शुरू हो रही है पुरी की पवित्र रथ यात्रा, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। और रथ यात्रा की शुरुआत के ठीक एक दिन बाद भगवान जगन्नाथ की उसी दिव्यता से बड़ा पर्दा गुलजार होने वाला है। प्रभु जगन्नाथ पर भक्तों की वही आस्था और श्रद्धा को बड़े पर्दे पर दिखाने की तैयारी है एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ।

0: हर साल रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अब यही भावना एक नई कहानी और रंग बिरंगे एनिमेशन के जरिए सिनेमाघरों तक पहुंच रही है, ताकि बच्चे भी भगवान जगन्नाथ की कहानी को आसानी से समझ सके।
1: पुरी में क्या हो रहा है जगन? कोई है यहाँ? तुलसी काका, पुरी काकी, सब कहाँ चले गए?
0: फिल्म का ट्रेलर भी बेहद खास अंदाज में लॉन्च किया गया है। ओडिशा के कटक में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान आध्यात्मिक वक्ता इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने ट्रेलर जारी किया। इस मौके पर 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा पंडाल जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। फिल्म में भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीलाएं दिखाई गई है। कहानी बताती है कि जब भक्त संकट में पड़ते हैं तो भगवान उनकी पुकार सुनते हैं, फिर अपने बड़े भाई बलराम और गरुड़ के साथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक अद्भुत दिव्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यानी भक्ति, रोमांच और सीख, तीनों का सुंदर संगम। इस फिल्म को खास तौर पर बच्चों और परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मेकर्स का कहना है कि आज के बच्चे मोबाइल और सुपर हीरो की दुनिया से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर अपनी संस्कृति और भगवान की कहानियाँ उन्हें एनिमेशन के जरिए दिखाई जाए तो वो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उनसे जुड़ पाएंगे। महाप्रभु जगन्नाथ पहले एक लोकप्रिय एनिमेटेड टीवी शो के रूप में दर्शकों का प्यार जीत चुका है। अब यही कहानी बड़े पर्दे पर और भी भव्य रूप में आ रही है। फिल्म हिंदी, ओडिया और तेलुगु भाषा में देश भर के 300 से ज्यादा सिनेमाघर में रिलीज होगी। हाल के दिनों में पौराणिक एनिमेशन फिल्मों को दर्शकों का अच्छा साथ मिला है। ऐसे में महाप्रभु जगन्नाथ से भी काफी उम्मीदें हैं। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसका एनिमेशन नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की संस्कृति, परंपरा और भक्ति का संदेश है, जो नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। जब पुरी की सड़कों पर गूंजेगा जय जगन्नाथ, तो उसी समय सिनेमा घरों में भी भगवान जगन्नाथ की कहानी बच्चों और बड़ों को भक्ति, संस्कृति और अपनेपन का संदेश देती नजर आएगी। रथ यात्रा की आस्था अब बड़े पर्दे की कहानी भी बन चुकी है।
1: ना कुछ सोचूंगा, ना कोई चिंता करूंगा,
2: परंतु तुम्हारे एक भक्त के मृत्यु में तुम्हारी हार है।
1: कोई बात नहीं जगन, मैंने अपने आप को तुझे समर्पित कर दिया है।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: और चलिए अब बात 2006 में रिलीज हुई कॉमेडी थ्रिलर फिल्म भागम भाग के सीक्वल की, जिसका

0: फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। अक्षय कुमार, गोविंदा, परेश रावल की फिल्म भागम भाग जबरदस्त हिट थी। 20 साल बाद अब लगता है कि फैंस का इंतजार खत्म होने को आ गया है।
1: दरअसल भागम भाग 2 की टीम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसके बाद भागम भाग 2 की चर्चा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट।

0: 20 साल पहले बंटी, बबली और चंपक चतुर्वेदी ने बड़े पर्दे पर कॉमेडी की जो बरसात की थी, उसकी फुहार सिने प्रेमियों को अब एक बार फिर भिगोने के लिए तैयार है, लेकिन एक नई ट्विस्ट के साथ। मतलब ये कि बंटी और चंपक तो वही रहेंगे, लेकिन बबला बदल जाएगा। 2006 में रिलीज हुई भागम भाग में बंटी का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया था और चंपक का किरदार परेश रावल ने। इसके सीक्वल भागम भाग 2 में इन दोनों ही किरदारों और उसे पर्दे पर निभाने वाले कलाकारों की वापसी हो रही है, लेकिन बाबला का किरदार निभाने वाले गोविंदा भागम भाग 2 में नजर नहीं आएंगे। इस किरदार को अब मनोज वाजपेयी निभा सकते हैं। सीक्वल में एक और बदलाव है। भागम भाग का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था, लेकिन भागम भाग 2 की कमान राज शांडिल्य को मिली है, जिन्होंने ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल 2, विकी विद्या का वो वाला वीडियो जैसी हिट फिल्में डायरेक्ट की है। भागम भाग एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसने दर्शकों को खूब हंसाया और गुदगुदाया था। इस फिल्म को अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, कंफ्यूजन से भरे मजेदार प्लॉट और मीम्स के लिए आज भी बेहद पसंद किया जाता है, लिहाजा कॉमिक के उसी सदाबहार अंदाज को देखने के लिए भागम भाग 2 का सिने प्रेमी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। अब जाकर ऐसा लग रहा है कि भागम भाग 2 का जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है। एक दिन पहले डायरेक्टर राज शांडिल्य और परेश रावल ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म के फर्स्ट लुक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लेकर बड़ा हिंट दिया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म को फ्लोर पर आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज शांडिल्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, बस थोड़ा और इंतजार, इसके बाद सारे सिग्नल खुलने वाले है। इसके बाद परेश रावल ने इसे रीपोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, आमीन। आपको बता दें कि सिग्नल भागम भाग का हिट गाना है, जिसे प्रीतम चक्रवर्ती ने कंपोज किया और रेमो फर्नांडिस सुजैन डी मेलो ने गाया था, लिहाजा कयास लगाए जाने लगे कि भागम भाग 2 की राह में लगे अड़चन अब दूर हो गए हैं और फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू की जा सकती है। भागम भाग 2 की शूटिंग पहले इसी साल मार्च में शुरू होने वाली थी, लेकिन प्रोड्यूसर एकता कपूर और डायरेक्टर राज शांडिल्य के बीच कॉन्ट्रैक्ट विवाद की वजह से इसे टाल दिया गया था। अब दोनों के बीच सुलह हो चुकी है। माना जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वहीं अजय देवगन की मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्म गोलमाल फ्रेंचाइजी की अब तक 5 फिल्में आ चुकी हैं और इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी 2006 में। आपको याद होगा फिल्म का नाम था गोलमाल फन अनलिमिटेड और तब शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी कि फिल्म को लोग इतना पसंद करेंगे कि एक के बाद एक इस फ्रेंचाइजी की 5 फिल्में बन जाएंगी।
2: अब देखिए, सबकी फेवरेट फिल्मों में से एक है ये फिल्म। अब जबकि रोहित शेट्टी की डायरेक्टेड फिल्म गोलमाल के 20 साल पूरे हो गए हैं, तो अजय देवगन ने इसकी खुशी मनाते हुए सोशल मीडिया पर फिल्म की पुरानी तस्वीरें शेयर की, जिसमें हर एक किरदार एक साथ पेटेंट डायलॉग भी उसका दिखाई दे रहा है। साथ ही कैप्शन में लिखा हुआ है कि गोलमाल शुरू किए हुए 20 साल हो गए हैं और इसका मजा आज भी वैसा ही है।
3: तू समीर ही है ना?
4: नहीं, मैं अजय देवगन हूं। क्यों?
5: कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे
6: हैं। चिकने डब्बे में 100 की हरी पत्ती डाल।
7: मंदिर जाती हूँ, 16 सोमवार का व्रत रखा है। मेरी माता कहती है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से एक अच्छा वर मिलेगा।
8: जब तुम्हें सोमनाथ ही मिल गया है तो बाकी 15 सोमवार करने की क्या जरूरत है?
9: मुझे पता है कि ये बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा ही पति चाहिए था जो सिर्फ मेरी सुने और खुद चुप रहे।
10: गणपति के चंदे की रसीद।
11: ओए डिक्की, ओए चूना लगा दी।

0: अब देखिए, बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक विक्रांत मैसी ने अपनी अदाकारी से एक अलग पहचान बनाई है और अब विक्रांत मैसी की सीरीज मुसाफिर कैफे ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है। एक दिन पहले इसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ
1: जिनमें तीन मुसाफिरों की अधूरी प्रेम कहानी की झलक देखने को मिली। और साथ ही आपको ये बता दें कि मुसाफिर कैफे एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है जिसमें विक्रांत मैसी के साथ वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना अहम किरदारों में है। सीरीज 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
2: कोई थोड़ी देर के लिए, कोई जिंदगी भर के लिए।
3: जी
4: ऑब्जेक्शन मिलोर्ड?
3: मिलोर्ड नहीं होता,
4: सस्टेन्ड।
3: कल प्ले देखने चलोगे?
4: कल तो मंडे है।
3: मंडे को कम जीते हो क्या?
5: थोड़ा पास आइए ना मैडम।
3: तुम जैसे लोग थोड़ी देर से मिलते हैं
4: और तुम जैसे ज्यादा देर रुकते नहीं।
6: मोहब्बत का अजीब ही तरीका होता है, वो फिर से लौट आती है किसी नए रूप में, किसी नई मुस्कुराहट के साथ।
7: कहाँ लिखा है ऐसा रूल कि हम दो लोगों को अलग अलग लाइफ स्टेजेस में प्यार नहीं कर सकते? चंदर की लाइफ में अगर सुधा नहीं होती तो आज ये मुसाफिर कैफे नहीं होता।
4: ये सभी जानते हैं कि यही वो लड़की है जो इस कैफे को इतना स्पेशल बनाती है।
8: हम पर किसी के होने का असर उतना ही होता है जितना उनके ना होने का।
0: और चलिए अब बात उस जीत की जिसका इंतजार लंबे वक्त से था। भारत ने बर्मिंघम के एजवेस्टन में हुए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से ही कमाल करके दिखाया।
1: रन चेज में शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने भी शानदार पारियां खेली है। देखिए,

0: शायद T20 सीरीज की वो चुभन ही थी जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में करारा जवाब बन गई। एडजस्टन में टीम इंडिया ने ऐसा पलटवार किया कि अंग्रेजों की हर रणनीति धराशायी हो गई। टीम इंडिया को 258 रन का लक्ष्य मिला और भारत ने सिर्फ 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत पर तिरंगा लहरा दिया और इस तरह मिशन रिवेंज का पहला पड़ाव फतेह के साथ पूरा हुआ।
1: एक साल के मैं भी शायद 2 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं, सो अच्छी विक्ट्री है। सो आशा करते हैं ये कंटिन्यू रहेगा और यही वर्ल्ड कप तक जाएगा और वर्ल्ड कप भी हमारा होगा।
2: आज हम बहुत खुश हैं, इंडिया फाइनली जीत गया है। 4 T20 हम हार चुके थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन आज इतनी खुशी है, आई कांट एक्सप्लेन, आई एम सो हैप्पी। कम ऑन इंडिया, कम ऑन, जीतेगा।
3: बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जैसे कि T20 में 4 मैच हार गए थे, 1 मैच का तो रिजल्ट नहीं आया था, उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। और शायद अगर अगले 2 मैच वो जीत जाए तो एटलीस्ट बदला ले पाएंगे व्हाइट वॉश का जो अपना हुआ है।
0: हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में धड़कने जरूर बढ़ी, रोहित शर्मा जल्दी लौटे, विराट कोहली भी सस्ता विकेट दे बैठे, लेकिन कहते हैं बड़े खिलाड़ी ऐसे ही बड़े मौकों पर खुद को साबित करते हैं और इस मैच के ऐसा सूरमा कप्तान गिल साबित हुए। उन्होंने हर गेंद का जवाब पूरे धैर्य, पूरे दम और पूरे विश्वास के साथ दिया। गिल ने 75 गेंद खेलकर 80 रन बनाए, जिसकी वजह से लड़खड़ाती दिख रही टीम इंडिया फिर से जीत के रास्ते पर लौट आई। श्रेयस अय्यर ने भी समझदारी भरे रनों पर जीत का स्कोर खड़ा किया। गिल और अय्यर के बीच 101 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने भारत की जीत का रोड मैप करीब करीब तैयार कर दिया, लेकिन क्रिकेट हर पल करवट लेता है। गिल क्रैम्प्स की वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए, श्रेयस रन आउट हो गए और केएल राहुल भी सिर्फ 1 रन पर चलते बने। इस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 160 रन था। मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा, लेकिन जब मैच मझधार में होता है तभी असली खिलाड़ी की पहचान होती है। इस बार ये पहचान बने अक्षर पटेल। पिछले कुछ महीनों से सवालों के घेरे में खड़े अक्षर आज जवाबों की किताब बन गए। पहले गेंद से अंग्रेजों की कमर तोड़ी, फिर बल्ले से जीत की मुहर लगा दी। 52 गेंद पर नाबाद 57 रन ठोके। दूसरी छोर पर वॉशिंगटन सुंदर भी सुंदर तरीके से रन जोड़ते रहे। उन्होंने 63 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाए। शूरवीरों की तरह एक ऐसा छक्का जड़ा जिसने न केवल उनकी हाफ सेंचुरी पूरी की, बल्कि ये छक्का टीम इंडिया की जीत का विजयी शॉट भी साबित हुआ। टीम इंडिया के लिए ये जीत केवल जीत भर नहीं है, ये वो लय है जिसके दरकार इस वक्त टीम को सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। विश्व कप 2026 का पहला फाइनलिस्ट मिल गया है और वो है स्पेन। फ्रांस जैसी मजबूत टीम को 2-0 से हराकर स्पेन ने सिर्फ फाइनल का टिकट ही नहीं कटाया, बल्कि पूरी दुनिया को ये भी बता दिया है कि आखिर क्यों उसे इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक फुटबॉल टीम माना जा रहा है।
5: और देखिए 37 मैचों से अजय स्पेन अब इतिहास रचने से सिर्फ एक जीत की दूरी पर है। सेमीफाइनल में जीत के साथ ही मैड्रिड की सड़कों पर जश्न का समंदर भी उमड़ पड़ा।

0: जैसे ही रेफरी की आखिरी सीटी गूंजी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड जीत के जश्न में डूब गई। सड़कों पर लाल पीले झंडों का समंदर उमड़ पड़ा। यह स्पेन के केवल सेमीफाइनल जीतने की खुशी भर नहीं है, बल्कि 16 साल बाद विश्व कप फाइनल में लौटने का जश्न भी है। फ्रांस के खिलाफ मैदान पर स्पेन ने वही किया जो अक्सर चैंपियन टीमें करती हैं। पहली सीटी से लेकर आखिरी मिनट तक स्पेन के प्लेयर्स ने फ्रांस को सांस लेने की मोहलत नहीं दी। गेंद पर कब्जा रखा, सटीक पासिंग और हर मोर्चे पर ऐसा शिकंजा कसा कि फ्रांस के एम्बाप्पे जैसे सुपरस्टार भी बेबस नजर आए। फ्रांस की तेज तर्रार फौज स्पेन की दीवार से टकरा कर बिखर गई। सेमीफाइनल में इस महाविजय के साथ मैदान में तमाम स्पेन के प्लेयर्स ने रिकॉर्डों की झड़ी भी लगा दी। इस जीत के साथ स्पेन के डिफेंडर पेड्रो पोरो एक ही वर्ल्ड कप में स्पेन के लिए दो गोल करने वाले दूसरे डिफेंडर बन गए। उनसे पहले ये कमाल फर्नांडो हियरो ने किया था। उधर माइकल ओयार जाबाल ने पांचवा गोल दागकर एमिलियो बुट्रागुएनो और डेविड विला की बराबरी कर ली। यानी स्पेन सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि उसकी खिलाड़ियों ने इस मौके को रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज करा लिया। स्पेन के लिए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जश्न की असली वजह सिर्फ ये जीत नहीं है बल्कि वो सिलसिला भी है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। स्पेन लगातार 37 मुकाबलों से अजेय है। इस सफर में स्पेन के नाम 28 जीत है और 9 ड्रॉ हैं। यानी विरोधियों के लिए स्पेन अब ऐसी पहेली बन चुका है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी के साथ स्पेन ने इटली के सबसे लंबे अजेय अभियान की बराबरी भी कर ली है। हर जीत के साथ स्पेन का जश्न बड़ा हो रहा है, हर रिकॉर्ड के साथ उनका हौसला ऊंचा हो रहा है और हर मुकाबले के बाद स्पेन का रुतबा और बुलंद हो रहा है। फैंस को लगने लगा है कि अब मंजिल सिर्फ एक कदम और 90 मिनट की दूरी पर है। अब निगाहें इंग्लैंड और अर्जेंटीना के मुकाबले पर हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी जश्न में डूबने की बारी स्पेन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अमेरिका के अटलांटा शहर में अर्जेंटीना के फुटबॉल फैंस का जबरदस्त जोश देखने को मिला। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से एक दिन पहले सैकड़ों समर्थक शहर के बीचों बीच इकट्ठा हुए पारंपरिक बांदेराजो यानी झंडा प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान पूरा इलाका नीले और सफेद रंग में रंग गया। हाथों में अर्जेंटीना के झंडे, ढोल नगाड़ों की गूंज, जोरदार नारे और टीम के समर्थन में गाए जा रहे गीत, फैंस का उत्साह लगातार दिखते ही बन रहा था। कई समर्थकों ने अर्जेंटीना की जर्सी और टीम से जुड़े खास सामान भी पहन रखे थे। इतना ही नहीं, एक विशाल अर्जेंटीना का झंडा भी लहराया गया जिसमें सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। देखिए, साथ ही फैंस ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के पोस्टर्स भी लहराए। कुछ फैंस ने खिलाड़ियों का मुखौटा भी पहना। फैंस का ये कहना है कि उनकी टीम शानदार फॉर्म में है और इस बार भी जीत अर्जेंटीना की ही होगी। अब सबकी नजरें हैं आज होने वाले मुकाबले पर, जहां अटलांटा स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड के साथ होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि फैंस का ये जोश क्या मैदान पर टीम की जीत में बदल पाता है या

0: मंगलवार को मैड्रिड के एक फैन जोन में सैकड़ों स्पेनिश फैंस ने अपनी टीम की फ्रांस पर 2-0 से जीत और वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने का जश्न मनाया। समर्थकों ने खुशी के माहौल में नाचते, चीयर करते और स्पेन के झंडे लहराते हुए विवा एस्पाना और यो सोए एस्पानोल के नारे भी लगाए। फैंस की इस भीड़ का जोश देखने लायक था, क्योंकि फैंस रविवार को होने वाले फाइनल में स्पेन की जगह पक्की होने का जश्न मना रहे थे। स्पेन का मुकाबला रविवार को ईस्ट रदरफोर्ड के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना या इंग्लैंड के साथ होगा।
1: भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट डॉक्टर अनिल मेनन अपने दो रूसी क्रू मेट्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। इस मिशन का लॉन्च कल भारतीय समय अनुसार 8:17 पर हुआ। स्पेस मिशन के लॉन्च होते ही 8 महीने के लंबे मिशन की शुरुआत हो गई। तो इस मिशन पर क्यों दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, चलिए आपको बताते हैं। ये सफर स्पेस साइंस को लेकर हमारी समझ, हमारी सोच और हमारे नजरिए को बदल सकता है। ये पल केवल दुनिया के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 8 महीने के लंबे मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। उनका ये मिशन सिर्फ अंतरिक्ष की सैर भर नहीं है, बल्कि इंसान को चांद और मंगल तक सुरक्षित पहुँचाने की तैयारी का अहम पड़ाव है। मेनन और दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला रोसकोसमोस अंतरिक्ष यान मंगलवार को भारतीय समय के अनुसार 8:17 पर बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रवाना हुआ। स्टेशन तक 2 ऑर्बिट और 3 घंटे की यात्रा के बाद स्पेस क्राफ्ट 11:56 पर अपने आप क्रिचल मॉड्यूल से जुड़ गया। यह अनिल मेनन की पहली अंतरिक्ष यात्रा है। पेशे से वे डॉक्टर हैं और वो इमरजेंसी और एयरो स्पेस मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। यानी उन्हें अच्छी तरह पता है कि मुश्किल परिस्थितियों में इंसानी शरीर कैसे काम करता है। अब अंतरिक्ष में उनका सबसे बड़ा काम होगा ये समझना कि बिना गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी में इंसान का शरीर कैसे बदलता है। मसलन खून के बहाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों और हड्डियों पर क्या असर पड़ता है, नसों और शरीर के दूसरे अंगों में क्या बदलाव आते हैं। इतना ही नहीं, अनिल मेनन खुद भी इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेंगे। यानी वे सिर्फ प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक नहीं होंगे, बल्कि उनके शरीर से भी वैज्ञानिक जानकारी जुटाई जाएगी। इस मिशन में अनिल मेनन ऐसी तकनीक की भी जांच करेंगे जिससे अंतरिक्ष स्टेशन के पीने के पानी का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर मरीज को चढ़ाई जाने वाली ड्रिप तैयार करने में किया जा सके। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अनिल मेनन के इस मिशन से मिली जानकारी भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशन को ज्यादा सुरक्षित बनाएगी, साथ ही इससे धरती पर भी इलाज और मेडिकल तकनीक को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पूरी की तैयारी, आस्था की रथ यात्रा का इंतजार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
5: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ, भक्तों में भारी उत्साह। भुवनेश्वर में एक भक्त ने तैयार किया भगवान जगन्नाथ का इको फ्रेंडली रथ, ताड़ के पत्ते और नीम की लकड़ी से मिनिएचर रथ किए तैयार। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारी जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन कैमरा से रखी जाएगी नजर, कांवड़ियों की सुविधा का किया जा रहा विशेष इंतजाम। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू, अब बिना ड्यूटी बिकेगा 99% भारतीय सामान, व्यापार को मिलेगी नई उड़ान। वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए के मेगा रोड प्रोजेक्ट को आज मिल सकती है मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर।
2: गुंडनी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: पवित्र और पावन जगन्नाथ रथ यात्रा में अब बस कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। कल की सुबह भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे और पुरी नगरी में आस्था और भक्ति का आनंद सैलाब उमड़ेगा। पुरी की सड़कों पर चारों तरफ भक्तों की भीड़ होगी और होगा उत्सव का माहौल,
1: जिसमें क्या आम और क्या खास हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को बेताब दिखेगा ताकि महाप्रभु के मनोहारी दर्शन का लाभ उठा सके। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कल यानी 16 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 24 जुलाई तक विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होगी। वहीं इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, ऐसे में प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और पूरे रथ मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर भी रखी जाएगी।
0: अब देखिए, तमाम तरह की सुविधाएं श्रद्धालुओं को मुहैया करवाने का इंतजाम यहां पर कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस, पेयजल, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

0: बस कुछ घंटों का इंतजार, वो घड़ी आने ही वाली है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। रथ तैयार है। ये पीले और लाल रंग का विशाल रथ नंदी घोष है। करीब 45 फीट ऊंचे इस रथ में 16 पहिए लगे हैं। भगवान जगन्नाथ इसी रथ में विराजेंगे और लाल और हरे रंग के कपड़ों से सजा ये है ताल ध्वज रथ। 44 फीट ऊंचे इस रथ में 14 पहिए लगे हैं। इस रथ में भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र सवार होंगे और ये है बहन सुभद्रा का रथ दर्प दलन। 43 फीट ऊंचा 12 पहियों वाला इसे लाल और काले कपड़ों से सजाया गया है।
1: ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रथ है ये नंदीघोष रथ है और ये नंदीघोष रथ का जो आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये जो कलर है रेड और येलो ये कलर भगवान को बहुत पसंद है और इसलिए भगवान को ये कपड़ा वाला रथ में लिया जाता है। नंदीघोष रथ में आप अगर देखेंगे तो 16 चक्का और 4 घोड़े रहते हैं और आप देख सकते हैं नंदीघोष के साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के भी अलग अलग रथ रहता है और अलग अलग रथ में अलग अलग पहिया अलग अलग चक्का और इसके साथ अलग अलग की घोड़े भी रहते हैं। अगर हम ये बात करेंगे तालध्वज रथ का बात करेंगे तो तालध्वज रथ में 14 चक्का और 4 घोड़े। दर्प दलन रथ का अगर बात करेंगे तो दर्प दलन रथ में इस हिसाब से 12 चक्का 4 घोड़े और नंदीघोष रथ में 16 चक्का 4 घोड़े रहते हैं।
0: पूरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है बल्कि सदियों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसमें भक्तिभाव की पराकाष्ठा के साथ साथ सामाजिक समरसता जन भागीदारी की सुंदर झलक भी मिलते है और प्रकृति का सम्मान भी। तभी तो अक्षय तृतीया से शुरू हुआ ये उत्सव रथ यात्रा के समापन तक पूरी के वातावरण में उल्लास और उमंग का एक ऐसा वातावरण तैयार कर देता है मानो हर घर में उत्सव हो और रथ यात्रा के एक एक अनुष्ठान में दिखता है भगवान जगन्नाथ के लिए अगाध भक्ति और अटूट प्रेम। नौ दिनों तक चलने वाले इस रथ यात्रा उत्सव को देखने और उसका हिस्सा बनने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के भीतर बाहर रथ यात्रा मार्ग समंदर सड़क हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और आपात स्थिति में उन्हें तत्काल मदद मिल सके।
2: 220 प्लाटून का पका पकी फोर्सेस है, 13,000 के आसपास फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। जोन वाइज क्राउड का जोन मैनेजमेंट किया हुआ है, वीआईपी मैनेजमेंट का किया हुआ है, पार्किंग मैनेजमेंट के लिए किया हुआ है, देन कोस्टल सिक्योरिटी के लिए भी कोस्ट गार्ड और नेवी से हमारा टाई अप उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, एंड फायर और मेडिकल एम्बुलेंस के साथ भी कैसे ग्रीन कॉरिडोर बन पाएगा, कुछ डिवोटीज अनइजी फील हो गया तो उनका कैसे ट्रीटमेंट हो पाएगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है सीनियर सिटीजन्स वीमेन एंड चिल्ड्रेन उनके लिए स्पेशली थोड़ा सा अरेंजमेंट में थोड़ा सा किया हुआ है बेटर अरेंजमेंट सो दैट हमारा वीमेन एड पोस्ट है, पेट्रोलिंग टीम है एंड आंटी स्नैचिंग आंटी इफ्टिजिंग टीम है वो सब हमने एक्टिवेट किया हुआ है।
0: रथों की सजावट हो या मंदिर की रंगोली या फिर सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों की गहमा गहमी, पूरी में इन दिनों उत्सव सा माहौल है। दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए ये एक अनूठा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भक्ति का एक ऐसा वातावरण जहां पहुंचकर सब खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं, भाव ऐसे कि व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे।
3: जगन्नाथ जी की कृपा है, बात कृपा है, जगन्नाथ जी ने हमें को बार बार बुला रहा है, हम भक्त लोगों को इसलिए हम आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है जी, आज यह आप में आके इतना आनंद लग रहा है क्या बताए हमको, इतना खुशी हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है जो बता के हम बोल नहीं सकते,
4: कुछ भी बोल नहीं सकते, मन में इतना खुशी है कि हम लोगों को स्वामी ने बुलाया हुआ है।
5: हम बहुत बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भगवान के लिए, हम किंचित पुण्य काम करके हैं उसके लिए भगवान दर्शन के लिए हमको मिल गया।
6: भगवान का रथ देख रहे हैं कैसा लग रहा है?
5: बहुत बहुत मन बहुत बहुत संतोष लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, इट्स वेरी ग्रेटफुल टू अस। एक्चुअली हम कर्नाटक से हैं, सो जगन्नाथ रथ यात्रा द फर्स्ट टाइम हम आ रहे हैं,
7: मैं पहली बार हूँ, इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मैं पुण्य है इधर आने का, मैं कभी नहीं आई हूँ इधर, भगवान ही मुझे बुला रहे हैं।
0: रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। इस भव्य और दिव्य रथ यात्रा का साक्षी बनने देश दुनिया से हजारों श्रद्धालु पूरी पहुंच चुके हैं। अब बस इंतजार उस घड़ी का है जब भगवान सज सवर कर रथ में सवार होंगे और पूरा मंदिर परिसर जय जगन्नाथ के जयकारे से गूंज उठेगा। पुरी से जयनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, जिसमें श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। अब तक करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।
0: हर बीते दिन के साथ अमरनाथ यात्रा की रौनक बढ़ती जा रही है। यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की चहल पहल है, हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष है। भक्तों की लंबी कतारें हैं, सब चले जा रहे हैं उलझनों को कहीं दूर रखकर, बस एक ही धुन बाबा बर्फानी के दर पर हाजिरी लगाने है। सुरक्षा और प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच पहलगाम और बालटाल के दोनों रास्तों से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, जिसे जैसे बन पड़ रहा है बाबा अमरनाथ के दरबार पहुंच रहा है। कोई घोड़े से तो कोई खच्चर पर, तो कोई पैदल ही बम बम भोले की रट लगाए बढ़े जा रहे हैं। जयपुर से आए 13 श्रद्धालुओं का ये जत्था भी इसी आस के साथ बाबा बर्फानी के दर पर हाजिरी लगाने निकला है। खास बात यह है कि ये लोग पिछले 33 दिनों से पैदल यात्रा पर हैं और अब काजीगुंड पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वो देश की खुशहाली, विकास और शांति के लिए महादेव से प्रार्थना करेंगे।
9: हम जिला गुना MP के रहने वाले हैं। MP से चलते हुए राजस्थान आते हैं और राजस्थान से चलते हुए अमरनाथ तक हम पहुँचते हैं। हम निकले यहाँ से, हमारे घर से ये समझ लो 14 मई को निकले हैं।
10: हम 12 जून को यहाँ से पैदल यात्रा चल रहे हैं, तो वैष्णो देवी होते हुए आज हमारे को 33 दिन हो गए। कठिन कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ आदमी की सोच है, कठिन कुछ भी नहीं है।
0: खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता और पल पल बदलता मौसम, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश कम नहीं है। बस एक भाव है जो आंखों में नमी बनकर तैर जाता है, उत्साह है जो जयकारे में बदल जाता है। बाबा बर्फानी में आस्था का आलम ये कि अब तक 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए जी।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
12: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: अगर आप प्रकृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर आपका इंतजार कर रही है। दरअसल पहाड़ों के बीच जहां तक नजर जाए रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछी है। उत्तराखंड के चमोली जिले की मशहूर फूलों की घाटी की हम बात कर रहे हैं।
2: और देखिए इन दिनों अपने सबसे खूबसूरत रूप में ये नजर आ रही है। चलिए आपको उस घाटी में लिए चलते हैं जहां हर कदम पर प्रकृति का करिश्मा देखने को मिल रहा है।
3: जरा इन नजारों को देखिए, हरे भरे पहाड़, बादलों की छांव और रंग बिरंगे फूलों से सजी पूरी की पूरी घाटी। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बनाकर छोड़ दी है। कहीं गुलाबी रंग बिखरा है तो कहीं नीले, पीले और बैंगनी फूलों ने धरती को इंद्रधनुष जैसा बना दिया है। उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है और इसकी खूबसूरती लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच रही है।
4: विश्व धरोहर, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार दिखाई दे रही है। फूलों की घाटी का मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है और इस दौरान मानसून होने के साथ ही जो घाटी का दायरा है वो हर तरफ अलग अलग रंग के, अलग अलग किस्म की जो प्रजातियां हैं यहाँ पे खिली हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी अब फूलों की घाटी पूरी तरह से यहाँ पे खिल चुकी है। हर तरफ पर जो प्रकृति का यौवन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
3: जुलाई के मध्य से अगस्त के बीच तक का समय इस घाटी का सबसे खास मौसम माना जाता है। यही वो दौर होता है जब दुर्लभ हिमालयी फूल एक साथ खिल उठते हैं और पूरी घाटी रंगों की ऐसी चादर ओढ़ लेती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। यही वजह है कि ट्रैकिंग के शौकीन हों, फोटोग्राफर हों या फिर प्रकृति प्रेमी, हर कोई इन दिनों फूलों की घाटी का रुख कर रहा है। वैसे इस घाटी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। साल 1932 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ की वजह से ये घाटी दुनिया की नजरों में आई। आज ये घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जहां मध्य जुलाई से सितंबर तक करीब 500 दुर्लभ प्रजातियों के फूल खिलते हैं। इतना ही नहीं, किस्मत साथ दे तो यहाँ दुर्लभ वन्य जीवों की झलक भी देखने को मिल सकती है। इस सीजन अब तक 11,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं, यानी पिछले साल की तुलना में ये लगभग दोगुनी है। पिछले साल इसी अवधि में करीब 5,172 पर्यटक आए थे, जबकि इस बार आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों का प्रकृति की ओर रुझान कैसे लगातार बढ़ रहा है।
5: इन पर्यटकों से जो आय प्राप्त हुई है वो है 20,16,250। इसके साथ ही हमारे पास जो विदेशी पर्यटक हैं वो 45 रहे हैं इस सीजन में अभी तक। अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो पिछले साल हमारे पास अभी तक 13 जुलाई 2025 तक आने वाले जो पर्यटकों की संख्या थी वो 5,490 थी, जो कि इस बार जो पर्यटकों की संख्या वो लगभग हमारी दोगुनी हो चुकी है।
3: माना जा रहा है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो इस साल फूलों की घाटी पर्यटकों के मामले में नया रिकॉर्ड बना सकती है। 1 जून से खुला ये पार्क 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। तो अगर आप भी प्रकृति के सबसे खूबसूरत रंगों को करीब से देखना चाहते हैं तो अभी सही वक्त है, क्योंकि कुछ नज़ारे सिर्फ तस्वीरों में अच्छे नहीं लगते बल्कि अपनी आँखों से महसूस किए जाते हैं। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
2: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए जी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
3: Lee looks for someone, finds the right someone. And Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
2: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
4: Because people who all watch games, they hear the voice.
2: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
5: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
12: पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ, भक्तों में भारी उत्साह। भुवनेश्वर में एक भक्त ने तैयार किया भगवान जगन्नाथ का इको फ्रेंडली रथ, ताड़ के पत्ते और नीम की लकड़ी से मिनिएचर रथ किया तैयार। हरिद्वार में कावड़ यात्रा की तैयारी जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर, कावड़ियों की सुविधा का किया जा रहा इंतजाम। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू, अब बिना ड्यूटी बिकेगा 99% भारतीय सामान, व्यापार को मिलेगी नई उड़ान। वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए के मेगा रोड प्रोजेक्ट को आज मिल सकती है मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
12: कल से शुरू हो रही भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा, ओडिशा की पुरी में मेगा तैयारी। आज रथ कला से श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने लाए जाएंगे तीनों रथ। नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तैयार हुए भव्य रथ। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए मंदिर के आसपास उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़, भक्तों ने जमकर लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। पुरी में रथ यात्रा से पहले DGP ने जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया, सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। भुवनेश्वर में एक भक्त ने तैयार किया भगवान जगन्नाथ का इको फ्रेंडली रथ, ताड़ के पत्ते और नीम की लकड़ी से मिनिएचर रथ किया तैयार। अहमदाबाद में 149वीं रथ यात्रा की तैयारियां पूरी, जगन्नाथ मंदिर में रस्में शुरू। गुजरात के Deputy CM हर्ष सांघवी ने जगन्नाथ मंदिर में रस्मों का दौरा किया, मंदिर के गुंबज पर ध्वजारोहण किया। डीएसपी सीएम हर्ष संघवी ने भगवान जगन्नाथ की उतारी आरती, विधि विधान से की पूजा पाठ। अहमदाबाद में रथ यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम ने सड़कों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। अमरनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पूरी आस्था और भक्ति के साथ जारी है अमरनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। सुरक्षा प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच पहलगाम और बालटाल के दोनों रास्तों से श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपने जन्मदिन अडालज त्रिमंदिर में पूजा पाठ की, जन्मदिन वाले दिन राज्य और देश में की शांति की कामना। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।

जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार। बाबा को शेषनाग का रजत मुकुट, मुंड माला और फूलों की सुगंधित मालाएं पहनाई गईं।

बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। हुगली में वाराणसी परंपरा के अनुरूप उतारी गई मां गंगा की आरती, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कोलकाता में दिव्य कला मेले का शुभारंभ, सीएम शुभेंदु अधिकारी हुए शामिल। बीड़ के गोहिनीनाथगढ़ से पंडरी की ओर चली आज गुरु संत गिहिनीनाथ की पालकी, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। पालकी की लोगों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। तिरुपति के अस्पताल में जवानों का मॉक ड्रिल, इमरजेंसी से निपटने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में ऑक्टोपस यूनिट, स्थानीय पुलिस, टीटीडी, विजिलेंस, फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल स्टाफ और अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। जवानों ने कर्मचारियों के साथ आपसी सहयोग को परखा, लोगों को भी जागरूक किया। रेल यात्रियों के लिए आज लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट, टिकट बुक करना होगा पहले से ज्यादा आसान। रेलवे के मुताबिक लोगों को मिलेगी फास्ट टिकट बुकिंग की सुविधा, मिलेंगे AI फीचर्स। नई वेबसाइट में इंटरफेस को बनाया गया सरल, बुकिंग के पूरे प्रोसेस में समय की होगी बचत। भारत यूके के बीच आज से लागू होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारतीय एक्सपोर्ट को मिलेगा इससे बढ़ावा। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी समेत कई कारोबारों को होगा फायदा, ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाले सामान मिलेंगे सस्ता। अयोध्या के क्षीरेधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में हुआ सहस्त्र अर्चन, महंत राजू दास ने बाबा भोलेनाथ का किया अभिषेक। पौड़ी गढ़वाल के श्री धन्वंतरी धाम में सीएम धामी ने किया पौधारोपण, बाबा रामदेव भी रहे मौजूद। कठुआ के बानी में आधुनिक बागवानी से किसानों की बदली जिंदगी, पहाड़ियों में सेब की खेती से अच्छी हो रही है आमदनी। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में शिकारा राइड का आनंद लेते दिखे लोग। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट 2024 का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। विरासत आधुनिकता पर्यटन और राष्ट्र सुरक्षा का बेजोड़ संगम बना जैसलमेर रेलवे स्टेशन, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ पुनर्विकास। 10 लिफ्ट और 10 स्वचालित सीढ़ियों से यात्रियों को मिलेगी सुविधा, करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को मिला नया विश्व स्तरीय स्वरूप। प्लेटफॉर्म्स के बीच आसान आवाजाही के लिए बनाए गए हैं 6 मीटर चौड़ाई वाले दो नए फुट ओवर ब्रिजेस, जल्द ही राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा यह आधुनिक रेलवे स्टेशन। अब हैप्पी सिटी के नाम से भी मशहूर हुआ पिंक सिटी जयपुर, दुनिया के टॉप 10 सबसे खुशहाल शहरों में शामिल। टाइम आउट 2024 की सूची में जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, भारत का एकमात्र शहर है जिसने टॉप 10 में बनाई है जगह। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा, 2500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला, स्वास्थ्य, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा इससे बढ़ावा। बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजेस में शुरू होगी पढ़ाई, सीएम सम्राट चौधरी 211 डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाई को लेकर कल भागलपुर में करेंगे शुभारंभ। योगी सरकार में मेरठ बना स्पोर्ट्स हब, अब पारंपरिक लकड़ी के क्रिकेट बैट के साथ बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं आधुनिक टेक्निक से प्लास्टिक और फाइबर के बैट्स। नई मशीनें लगाने पर मिल रही है 50% तक की सब्सिडी, ब्याज मुक्त ऋण मिलने से छोटे उद्योगों को भी विस्तार का मौका। सैलानियों की सुरक्षा के लिए कुल्लू प्रशासन का फैसला, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक, मॉनसून के चलते एहतियात।
भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने भरी अंतरिक्ष के लिए उड़ान, नासा के विमान से आईएसएस का सफर। कजाकिस्तान के ऐतिहासिक बैकनूर क्रॉसमोड्रोम से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों प्योत्र और अन्ना के साथ उड़ान भरी, करीब 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर करेंगे रिसर्च।

0: भारी बारिश का अनुमान आने वाले दिनों में 20 जुलाई तक कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। कोंकण गोवा और तटीय कर्नाटक में बारिश का दौर, 17 जुलाई को बारिश तेज होने की संभावना। पुरी में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। अयोध्या में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, ई रिक्शा को धक्का देते नजर आए पुलिस के जवान। मुंबई में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में घुसा पानी, प्रशासन ने लोगों को किया सतर्क। असम के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, एक दूसरे जगह जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। बाढ़ से कई सड़कें पानी में डूबी, फसलों को भी पहुंचा नुकसान। दिल्ली एनसीआर में सामने आई स्मार्ट फायर सेफ्टी सिस्टम की शानदार तस्वीर, गुरुग्राम द्वारका टनल में चलती कार में अचानक आग लगने के बाद तुरंत एक्टिव हुआ फायर सेफ्टी सिस्टम। गुरुग्राम द्वारका टनल में कार में लगी आग पर 12 मिनट में पाया गया काबू, हादसे में कार सवार पूरी तरह से सुरक्षित। गुजरात में साबरमती यार्ड में खाली कोच में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बिहार के बगहा में बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए पिता ने पार की नदी की तेज धारा, गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में तेजी से बढ़ा जलस्तर। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज

0: डे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: पधारो म्हारे देश, ये केवल आमंत्रण नहीं है बल्कि राजस्थान की पहचान है। शायद यही वजह है कि गुलाबी रंग से सजा जयपुर अब सिर्फ पिंक सिटी नहीं बल्कि दुनिया की हैप्पी सिटी भी बन गया है। टाइम आउट की हैप्पी सिटी इंडेक्स में जयपुर को दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर चुना गया है, जबकि इस सर्वे में इंग्लैंड का बाद शहर पहले नंबर पर है। तो आखिर क्या है जयपुर की मुस्कुराहट का राज, देखिए हमारी संवाददाता रिदम जैन की एक खास रिपोर्ट।

0: खुशहाली सिर्फ ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या चमचमाते मॉल से नहीं आती। खुशहाली वहाँ होती है जहाँ लोग दिल से मुस्कुराते हैं, जहाँ रिश्तों में अपनापन होता है और हर मिलने वाला आपसे कहता है पधारो हमारे देश। शायद यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए जयपुर टाइम आउट की हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में छठे नंबर पर पहुंच गया और इस सूची में जगह बनाने वाला भारत का इकलौता शहर भी बना है।
1: जयपुर को अपने कल्चर, अपने हेरिटेज के लिए तो जाना ही जाता है, पर हाल ही में एक नया टाइटल और इस शहर को मिला है जो कि हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड का है। टाइम आउट ने हाल ही में एक लिस्टिंग निकाली है जिसमें पूरे विश्व भर से 10 शहर अलग अलग जगह के हैं और उनको हैप्पीएस्ट सिटी का टाइटल दिया गया, जिसमें टॉप 6 नंबर पे भारत है और पूरे इस लिस्ट में भारत सिर्फ टॉप 6 में एक बार आया है। और भारत में भी जयपुर वो शहर है जिसको हैप्पीएस्ट सिटी बोला गया है।
0: खुशहाल शहरों के इस रैंकिंग में सिर्फ इमारतों की ऊंचाई नहीं बल्कि लोगों की मुस्कान की गहराई भी नापी गई है। दुनिया भर के 24,000 से ज्यादा लोगों से उनके शहर के बारे में सवाल पूछे हैं। मसलन, क्या आपका शहर आपको खुश रखता है? क्या यहाँ के लोग सकारात्मक हैं? क्या रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी चेहरों पर मुस्कान ले आती हैं? साथ ही संस्कृति, हरियाली, खान पान, कला, सार्वजनिक सुविधाएं, सामुदायिक जुड़ाव और जीवन की गुणवत्ता जैसे हर पहलू को भी परखा गया है और इन कसौटियों पर जयपुर ने दिल जीत लिया है।
1: यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा रिच है। हर कोई यहाँ आना पसंद करता है, चाहे वो छुट्टियां बिताने हो, चाहे वो एक बेसिक वीकेंड हो, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है उसको पर्यटकों का कहना है कि थोड़ी सी पीसफुल होती है। यहाँ आमेर फोर्ट की अभी मैं आपको कुछ झलक दिखा रही हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी हम देख सकते हैं कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो जो पीस जो जितने भी टूरिस्ट हैं वो कहते हैं वो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है।
0: जयपुर वाले भी कहते हैं यहाँ जिंदगी सिर्फ घड़ी की सुइयों के पीछे नहीं दौड़ती बल्कि यहाँ शामें अब भी परिवार के नाम होती हैं, दोस्तों के साथ चाय की महफिलें सजती हैं और यहाँ त्योहार पूरे शहर को एक परिवार बना देते हैं। यही संतुलन, यही सुकून और यही अपनापन जयपुर को सिर्फ रहने की बेहतरीन जगह नहीं बनाता बल्कि दिल में बस जाने वाला शहर बनाता है।
2: जयपुर में थोड़ा अच्छा सा लगता है, ये जो मैं ना थोड़ा ओल्ड फैशन सा, मतलब हर चीज बहुत प्यारी है इसलिए।
3: वैसे तो हम लोग बनारस का कल्चर देखे हुए हैं, बनारस में भी लोग जिंदा दिल रहते हैं, वही चीज यहाँ भी है, यहाँ भी लोग जिंदा दिल मतलब खुल के जिंदगी जीते हैं।
0: पर्यटक भी मानते हैं कि जयपुर की हवा में कुछ अलग ही बात है। आमेर का किला हो, हवा महल की खिड़कियां हो, रंग बिरंगे बाजार हो, यहाँ हर मोड़ पर इतिहास भी मिलता है और मुस्कुराते चेहरे भी। यहाँ की रफ्तार महानगरों जैसी भागती नहीं बल्कि जिंदगी को महसूस करने का मौका देती है। शायद इसीलिए जो एक बार जयपुर आता है उसके दिल में इस शहर के लिए एक खास जगह बन जाती है।
1: जो भी यहाँ आता है उसको बहुत ही खुशी से वेलकम किया जाता है और ऐसे ही चाहे वो घूमने आ रहे हो, चाहे यहाँ सेटल होने आ रहे हो, हर किसी का बहुत ही सम्मान के साथ वेलकम किया जाता है। इसीलिए इस जगह को, यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के कल्चर को हैप्पीएस्ट माना गया है, घूमने के लिए भी और रहने के लिए भी। कैमरामैन मनीष के साथ विदंग जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पूरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ, भक्तों में भारी उत्साह। भुवनेश्वर में एक भक्त ने तैयार किया भगवान जगन्नाथ का इको फ्रेंडली रथ, ताड़ के पत्ते और नीम की लकड़ी से मिनिएचर रथ किया तैयार। हरिद्वार में कावड़ यात्रा की तैयारी जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर, कावड़ियों की सुविधा का किया जा रहा है पूरा इंतजाम। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू, अब बिना ड्यूटी बिकेगा 99% भारतीय सामान, व्यापार को मिलेगी इससे नई उड़ान। वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए के मेगा रोड प्रोजेक्ट को आज मिल सकती है मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मुहर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: वो कहते हैं ना कि सब्जी खाओ और स्वस्थ रहो, तो आज हम बात करेंगे इन ताजा ताजा सब्जियों की जो लेकर आती हैं हमारे लिए हेल्थ वाली गुड न्यूज, और इसी तरह हम लेकर आते हैं ना आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज जो लेकर आती हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की ताजगी। और जिस तरह इन सब्जियों में है वैरायटी, उसी तरह है हमारे पास भी आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
4: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां में आज देखिए कमरे में कैद होगी आरंभी, करेगी सासुमा के फैसले पर बगावत। अपनी ही मेहंदी की रस्म में झूम कर नाचेगी शालिनी, भेष बदल कर शिव करेगा जासूसी। अभिमन्यु करेगा मन्नत की सर्विस कैंसिल, फूट फूट कर रोएगी मन्नत। गुरु बनेगा गौतम का जानी दुश्मन, होगा रूहानी के चक्कर में झगड़ा।
5: मुझसे मुकाबला करने चला है हा?

और साथ ही अपनी बहन और व्योम के संगीत में तन्वी निभाएगी रस्में और ऑफ कैमरा करेगी टीम संग लंच पार्टी सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: आज तो हम कर रहे हैं सुपरमार्केट में वेजिटेबल्स की शॉपिंग, और देखिए यहाँ पर है वेजिटेबल्स की कितनी सारी वैरायटी। वैसे इसी तरह है डॉक्टर आरंभी की इस कहानी में एंटरटेनमेंट की वैरायटी, क्योंकि कहानी का लेखक लेकर आता है इसमें भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और बहुत सारा ड्रामा। तो किस हाल में है हमारी डॉक्टर आरंभी और कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं यहाँ पर विश्वास और अवंतिका, चलिए पता कर आते हैं। लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
1: में कैद हुई आरंभी, दहेज को लेकर आरंभी की बगावत, विश्वास और आरंभी की तश्नेबाजी, कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में शुरू हो गई है राज और नायरा की शादी की तैयारियां। ऐसे में घर सज रहा है कि तभी डिंपल और नंदिता भी शॉपिंग कर घर लौटते हैं, लेकिन घर की सजावट पूरी तरह से नहीं हुई है। ये देखकर नंदिता बवाल करने शुरू कर देती है और डिंपल भी परेशान हो जाती है कि इसी बीच इनकी नजर पड़ती है विहान पर, जो वहीं पर लगे दीवान पर सो गया है। ऐसे में नंदिता उसे उठाती है और वहां से ले जाती है, और डिंपल उसका गुस्सा चढ़ जाता है और तभी वो चीख पुकार कर बुलाती है आरंभी को। उन्हें तो लगा था कि वो आरंभी को बुलाकर डांट फटकार लगाएंगी, लेकिन आरंभी वो खुद गुस्से से बौखलाई आई है अपनी सासू माँ से बात करने के लिए। ऐसे में डिंपल कुछ कहती कि तभी आरंभी ने अपनी सासू माँ के सामने सवाल कर दिया कि नायरा के परिवार वालों से 100 करोड़ रुपए क्यों लिए गए हैं। बस फिर क्या, ये सुनते ही डिंपल हकबका गई, और देखिए कैसे ये बात कोई और ना सुन ले, इसीलिए वो आरंभी का हाथ पकड़कर कमरे की ओर ले गई।
2: मेरा परिवार इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। क्यों करें मम्मी जी, क्यों बता।
3: मम्मी जी क्या कर रही हैं आप, दरवाजा खोलिए। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप, प्लीज दरवाजा खोलिए। कब तक बंद करके रहेंगी मुझे यहाँ पे मम्मी जी।
1: लेकिन आरंभी शांत बैठने वालों में से नहीं, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है कि उसका परिवार दूसरे परिवार से दहेज ले। ऐसे में वो बार बार अपनी सासू माँ से सवाल पर सवाल कर रही है।
4: वेल, हम सब तैयार हो चुके हैं क्योंकि आज राज की शादी है, उसके फेरे होने वाले हैं उसके लिए। तो ऑब्वियसली शादी है, तैयार वैयार होकर आई है डिम्पल सलोन से, सो यू कैन जस्ट इमेजिन। और डिम्पल जब तैयार होती है तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, कोई उसे कंपेयर नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं यू नो लेडीज़ को तो तैयार होना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो और यू नो अब जब हमको मौका मिल ही रहा है तो व्हाई नॉट डू द बेस्ट, बट वी हैव द बेस्ट ऑफ देम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है जब डॉक्टर आरंभी के यू नो क्लोथ्स कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग लोग कॉपी करते हैं, तो ऐसे ही कोई ट्रेंड सेटर नहीं बन जाता।
1: अब ये 100 करोड़ वाली बात घर से बाहर ना जाए, इसीलिए आरंभी तो कमरे में कैद हो गई है, लेकिन डिंपल बार बार अपने बेटे विश्वास को कॉल लगा रही है, और तो और उन्होंने कॉल कर अपने बेटे को बुला भी लिया। ऐसे में जैसे ही विश्वास आया और उसने अपनी माँ को परेशान देखा तो सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, और डिंपल ने कर दिया खुलासा कि आरंभी सब जानती है।
2: एक ऐसा बवाल जो हमें हैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
5: मतलब पर कैसे?
2: मुझे नहीं पता कैसे। हम लोग दहेज क्यों ले, हम लोग दहेज क्यों ले, प्लीज बस दोस्तों से हैंडल करो। अगर ये बात बाहर आई
4: बहुत फर्क सिर्फ इतना है कि डिम्पल समझ रही है कि ये डाउरी नहीं है, डोनेशन है, और आरंभ भी समझ रही है डोनेशन नहीं है, डाउरी है। यही तो हमारी सारी प्रॉब्लम है। और अगर सास और बहू में अनबन ना हो तो डॉक्टर आरंभ ही ना बने। तो डिम्पल उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, वो मान ही नहीं रही है। यहां तक कि अब डिम्पल ने उसको बंद कर दिया है, वो वेट कर रही है कि वो विश्वास आएगा और उसे समझाएगा कि भाई यू नो हम क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ एक डोनेशन ले रहे हैं ताकि हमारी जो बहू आने वाली है वो खुश रहे, उसके लिए ले रहे हैं। मैं ये जानती हूं एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री डाउरी लेना गलत है, गुनाह है, पाप है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को इन दिस मीडियम कुछ बातें बतानी पड़ती हैं ये समझाने के लिए कि ये मत करिएगा, ये गलत है।
1: डिम्पल को लगा था कि विश्वास आरंभी को समझाने में कामयाब रहेगा, लेकिन आरंभी वो तो दहेज वर्ड सुनते ही बगावत पर उतर आई है। और तो और वो अपनी तरफ से परिवार वालों की मदद करने की बात भी कहती है, लेकिन उसकी बातों से विश्वास को गुस्सा आ जाता है।
2: अगर फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो सब साथ मिलकर उसे दूर करेंगे, मेहनत से पैसे कमाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। मेहनत करने से पीछे नहीं हट रही हूं मैं, खुद भी मेहनत कर रही हूं। यू थिंक सो?
6: इसे लगता है इसके जितनी चार पैसे कमा लेने से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये लगाएंगे अपनी मुट्ठी भर सैलरी से हमारी नहीं आ पा। अरे तुम्हें शायद इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है। 100 करोड़ ये नंबर तुम्हें सुना है तुमने? शायद सिर्फ तुम्हें ये भी नहीं पता कि 100 करोड़ में जीरो कितने होते हैं।
1: आरंभी ने न सिर्फ डॉक्टर विश्वास को करारा जवाब दिया है बल्कि अपनी सासू माँ और अपने पति को ये तक बता दिया कि राज ये शादी मजबूरी में कर रहा है। इतना ही नहीं, आरंभी ने तो धमकी भी दे दी कि अगर वो सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो वो पुलिस स्टेशन तक जाएगी। ऐसे में वो धमकी देकर वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे के बाहर उसे मिल जाते हैं ससुर जी, जिनसे सवाल जवाब करने के लिए आरंभी उनके पास तो आती है, लेकिन यहाँ तो ससुर जी ने आरंभी का साथ नहीं दिया, उल्टा आरंभी को ही आदेश दे दिया चुप रहने का। अब देखना होगा कि क्या आरंभी वाकई शांत रहेगी या फिर दहेज के लिए अपने परिवार को ही सलाखों के पीछे पहुँचाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: तीखी तीखी हरी मिर्ची की तरह है हमारी तेजू, जो लेकर आ रही है इस कहानी में ऐसे सिट्रस कि हम भी हो जा रहे हैं हैरान। तो क्या कुछ हो रहा है गुरु रूहानी की इस कहानी में आज? क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई स्पाइसी ट्विस्ट, या फिर आया है कोई ऐसा ड्रामा जो लेकर आ रहा है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का मसाला? चलिए लेते हैं अपने सवालों के जवाब, लेकर चलते हैं आप सबको इस जुनूनी के सेट पर।
1: गए गुरु और गौतम, रूहानी के लिए शुरू हुई जंग, खतरे में रूहानी का सुहाग। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गौतम पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से रूहानी और गुरु अलग हो जाए और रूहानी गौतम की हो जाए। ऐसे में उसने अपना पासा फेंका भी है, जिसके चलते गुरु पहुंच गया है गौतम से मिलने। लेकिन जैसे ही गुरु की नजर पड़ जाती है दीवार पर, जहां पर रूहानी की तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों पर गौतम ने पहनाया है वो हीरो का हार जो उसने रूहानी के लिए लिया था और रूहानी ने लेने से मना कर दिया था। बस फिर क्या, ये देखकर गुरु के कदम आगे की ओर बढ़ चले वो हार हटाने के लिए, लेकिन गौतम को आ गया गुस्सा।
7: दो टके का गुंडा मुझसे मुकाबला करने चला है? तुम क्या जानो रूहानी जैसी लड़की की कदर? तुमने उसे अपने चंगुल में फंसा रखा है, अरे तो उसके लायक ही नहीं है।
1: भाई बात यहाँ रूहानी की है, भला गुरु अपने आप को कैसे रोकता। ऐसे में उसके गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने गौतम की धुनाई करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसे तो अल्टीमेटम भी दे दिया कि वो उसकी कंपाउंडर से दूर रहे। लेकिन गौतम ये मानने को तैयार नहीं, उल्टा उसने गुरु के सामने एक शर्त रख दी, जिसे सुनकर गुरु और भी भड़क उठा।
7: एक डील करते हैं, अपने बाप की राज्यसभा सीट है ना, वही चाहिए ना तुझे, दे दी तेरे को, लेकिन बदले में डॉक्टर रूहानी मुझे दे दे।
8: कहा बोला तेरे ये घिनौने इरादे ना कभी कामयाब नहीं होंगे गौतम सिंह।
9: सर
8: बस जोड़ो, जोड़ो
9: सर, ठीक है।
1: फिलहाल तो गौतम के आदमियों ने गुरु को रोक लिया, लेकिन अब गौतम का गुस्सा चढ़ा हुआ है। तभी तो वो अपनी पिस्तौल लेकर निकल गया है गुरु को अपने रास्ते से हटाने के लिए। अब देखना होगा ये बंदूक क्या नया खेल खेलेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: रोहित ओम से कह रही हैं कि जब हो जाते हैं उनके किचन में टमाटर खत्म, तो वो उसे रिप्लेस कर लेती हैं या तो नींबू से, अमचूर से, या फिर चाट मसाला से। देखिए रूही, वैसे हमारे देश की हर औरत ना जैसे ही पहुंचती है किचन में, तो वो हो जाती है सुपर स्मार्ट। उसकी लाइफ में कभी भी नहीं आता है ट्विस्ट, चाहे कोई भी सब्जी महंगी हो जाए या सस्ती। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको नाहर और रूही के पास उनके शो मन सुंदर के सेट पर।
1: शुरू हुई रूही की अग्नि परीक्षा। सामने आया गुड़िया का राज। क्या रूही बनेगी बेटी की रक्षक?

0: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूही पहुंच गई है उस दुकान में जहां से वो गुड़िया खरीदी गई है। ऐसे में देखिए कैसे रूही अपने मोबाइल पर गुड़िया की तस्वीर दिखाती है उस दुकानदार वाले को और जानने की कोशिश करती है कि ये गुड़िया यहाँ पर कैसे आई। ऐसे में दुकानदार साफ साफ मना कर देता है कि ये गुड़िया उसकी दुकान की नहीं है। इतना ही नहीं, रूही तो उसे उस दुकान का बिल भी दिखाती है, लेकिन दुकानदार बिल की बुक दिखाकर उसे साफ साफ बताता है कि इसमें गुड़िया का तो नामो निशान ही नहीं है। ऐसे में रूही बेहद परेशान है कि आखिर गुड़िया का नाम किसने ऐड किया। इतना ही नहीं, जानकारी न मिलने पर वो तस्वीर लेकर जा रही है जो रुचिता ने अपने हाथों से बनाई हुई है, एक जले हुए घर की, और बेचैन है सच जानने के लिए, लेकिन उसे सच पता नहीं चल पा रहा, जिसके चलते रूही की तबीयत भी बिगड़ रही है। लेकिन रूही इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और तो और घर पहुंचते ही रूही ने अपने खाटू श्याम के आगे हाथ जोड़ लिए और विनती करने लगी कि वो उसकी मदद करें।
1: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं रुचिता को इस मुसीबत से कैसे निकालूं। मुझे रुचिता के पास एक आत्मा का साया है, अब आप मेरी मदद कीजिए खाटू श्याम। मैं अपनी बच्ची को उस आत्मा से कैसे बचाऊं जब तक आप मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे। मैं ये जता दिया अपने हाथ में लेकर यही खड़ी रहूंगी आपके सामने।

0: मुंबई रूही को तो पता चल गया है कि उस गुड़िया में किसी बुरी आत्मा का वास है। ऐसे में देखिए कैसे वो हाथ में जोत लिए खाटू श्याम के आगे सिर्फ प्रण ले रही है और उनसे विनती कर रही है कि वो उन्हें रास्ता दिखाए। तभी आया कहानी में ट्विस्ट। तेज हवाएं चलने लगी जिसके चलते रूही के हाथों से जलता दिया नीचे गिर गया और ये देख रूही परेशान हो गई और देखिए कैसे मंदिर ना जल जाए इसलिए पानी डालकर उसे बुझाने लगी। कि तभी उसकी नजर पड़ जाती है एक न्यूज़पेपर पर जिस पर ब्रेकिंग न्यूज छपी हुई है उस जले हुए घर की, जिसे देखकर रूही हैरान हो जाती है क्योंकि हूबहू यही तस्वीर उसकी बेटी ने भी बनाई है।
1: जयपुर से 10 किलोमीटर दूर रहास उस घर का जो आग के लपटों में जलकर खाक हो गया। अब इसके लेखक की बता सकते हैं कि ये घटना, वो घर, उस गुड़िया, उनका क्या राज है। अनुज शर्मा, एक बार सोच करके देखती हूँ उनका।
0: अब जिसने ये न्यूज कवर की है उसकी जानकारी रूही को मिल गई है। एक तरफ से देखा जाए रूही को राहत दिख गई है। अब देखना होगा क्या रूही राजस्थान पहुंचकर सच का पता लगा कर रहेगी, क्या पता लगाएगी कि वो आखिर आत्मा किसकी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: ये ताजा ताजा सब्जियां तो लेकर आती हैं हमारे लिए गुड हेल्थ वाली गुड न्यूज, और इन्हीं की तरह है हमारे पास अब आपके लिए एंटरटेनमेंट की ताजगी। जी हाँ, हमारी ये अगली खबर जो है एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से भरपूर। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।
3: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ?
0: संगम की दुविधा।

0: छोड़ो।
1: अजब सिंह की गजब परेशानी।
0: ये क्या हुआ?
1: कलर्स के सीरियल बरेली के बच्चन में कृष्णा संगम को शादी कर अपने घर ले तो आया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रात के समय सोने के लिए कृष्णा अपने भाइयों के बीच चला गया और जगह के लिए बहस करने लगा। इसी बीच भाइयों को होने लगी हैरानी और कृष्णा घिर गया सवालों में कि शादी के बाद वो भला यहाँ क्यों सो रहा है। ऐसे में कृष्णा ने बड़ी ही समझदारी से सिचुएशन संभाली और बताया कि संगम को इस घर में एडजस्ट होने के लिए कुछ समय लगेगा। बस फिर क्या, कृष्णा की बात सभी भाइयों ने मान ली। और तो और, घर में बहू रानी आई है, ऐसे में सभी कोशिश कर रहे हैं कि संगम को थोड़ा कम्फर्टेबल किया जाए। ऐसे में अगले ही दिन जब संगम नहाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ देखकर वो हैरान हो गई।
2: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: और जैसे ही बाथरूम के पास पहुंची तो कृष्णा, गंगा और सतलुज ने उसे रोक लिया क्योंकि बाथरूम में माही है। ऐसे में तीनों मिलकर माही को जल्द से जल्द बाहर निकलने को कहते हैं।
1: ये माही,
2: माही
0: बस फिर क्या, माही भी टूटा दरवाजा हटाकर निकलने की कोशिश करता है और हड़बड़ा जाता है। खैर, इतनी परेशानी तो संगम को झेलनी पड़ेगी क्योंकि वो मर्दों के टूटे फूटे घर में जो आ गई है। और तो और, न सिर्फ घर बल्कि बाथरूम में अंदर जाकर नजारा देखकर वो हैरान है।

0: ऐसे में देखिए कैसे अजब सिंह को हमेशा टशन दिखाने वाली पड़ोसन भी आ गई और तो और वहाँ पर बच्चन परिवार को बैठा देख कसने लगी ताने। बस फिर क्या, अजब सिंह ने भी तानों का जवाब देना शुरू कर दिया।
1: तुम्हारे लिए एक बड़ा खूबसूरत मैया ढूंढा ढूंढा है, उसी के बारे में बतिया रहे।
2: अरे हमारे पास तो पति भी है और भरा पूरा परिवार भी है, हम अपना उठा हुआ लेते हो अजब सिंह।
1: अरे मुंह बंद रखो नहीं तो तोड़ देंगे, बता रहे हम।
3: अरे हाँ भाई, काहे नहीं तोड़ोगे? नहीं तो काम है तुम्हारे पास मुंह तोड़ने का, फिर तो मुंह तोड़ोगे? कैसे तोड़ोगे?
1: कैसे तोड़ोगे?
3: पगला गया है।
1: हेलो
0: फिलहाल तो अजब सिंह ने इन्हें डंडा दिखाकर वहां से भगा दिया, लेकिन मोहल्ले वालों के ताने उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे क्योंकि शादी तो पुलिस स्टेशन में हुई है। ऐसे में अजब सिंह ने गंगा और सतलुज के सामने फैसला ले लिया कृष्णा और संगम का पुनर्विवाह करवाने का।
1: अरे सही कह रहे हैं, अब करवा दो शादी, पहले नहीं करवा पाए तो इसमें इतना सोचने समझने वाला कौन सा बात। शादी हो चुकी है लेकिन कोतवाली में अकेले में, भला यहाँ करवाओ बरेली में सबके सामने धूम धड़क के। इनका गाना सुन सुन के मोहल्ले वाले का हमारा दिमाग गोबर हुआ। बता रहे एक बात सुन, अगली बार शादी करवाओ उसका पूरे बरेली के सामने, पूरे बरेली को पता चलना चाहिए कि बच्चनों के घर में सच में बहू आई।
0: भाई अजब सिंह ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन गंगा और सतलुज अब ये सोच रहे हैं कि आखिर शादी कब और कैसे करवाई जाए। अब इन्हें क्या पता कि कृष्णा और संगम की शादी झूठी है। अब देखना होगा क्या ये सच इनके सामने जल्द ही आ जाएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सुपरमार्केट में है एकदम फ्रेश लाल लाल टमाटर, इन्हें देखकर मेरा तो मन कर रहा है कि ढेर सारे खरीद लूं। और मैं क्या करूंगी, आधे को यूज कर लूंगी वेजिटेबल्स के लिए और आधे की टमेटो प्यूरे बनाकर उसे फ्रीजर में स्टोर कर दूंगी। देखिए ये तो है एक अमेजिंग उपाय टमाटर को सेव करने का। और इसी के साथ साथ अब लेकर हाजिर है हम आपके लिए आपकी फेवरेट कहानी का ये अगला अपडेट, मन अति सुंदर। तो ऐसा क्या हो रहा है राधे और प्रथम की कहानी में आज, क्या यहाँ पर भी है सब्जियों की तरह एंटरटेनमेंट की ताजगी? यस ऑफ कोर्स।
5: सितारे सितारे मिले सितारे।
0: प्रथम का रोमांटिक सरप्राइज।

0: जीत के बाद मोहब्बत का जश्न। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में जैसे ही राध्या अपने कमरे में पहुंची, उसे मिल गया बेहतरीन सरप्राइज, क्योंकि आज प्रथम उस पर अपना प्यार बरसा रहा है। तभी तो उसने पूरे घर को दिल और फूलों से सजा दिया है, जिसे देखकर राध्या हैरान है।
1: तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ।
0: इसी बीच प्रथम आकर उसे प्यार का तोहफा भी देता है, जिसे देखकर राध्या की आंखें भर आती हैं और वो इमोशनल हो जाती है। बस फिर क्या, उसे रोता देख प्रथम डर जाता है और उसे लगता है कि राध्या को ये सब पसंद नहीं आया, इसीलिए तो वो फूलों को हटाने चला जाता है, लेकिन राध्या रोक लेती है।
2: राध्या, क्या हुआ? तुम्हें ब्रेसलेट पसंद नहीं आया ना? अच्छा, मैं अपनी बात भी बाबू से, तो तुम मेरे स्कूल नहीं हो अब, खुश ओके तुम के
0: भाई। राध्या के इस तरह से गले लगने से प्रथम को यकीन हो गया है कि राध्या को ये सारी चीजें पसंद आई हैं और राध्या भी बहुत खुश है। आफ्टर ऑल उसने जीत जो हासिल की है, ऐसे में जीत का जश्न मोहब्बत से मनाया जा रहा है। जरा देखिए कैसे प्रथम और राध्या दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामे झूम रहे हैं, वो भी रोमांटिकली।

0: वैसे आज राध्या पर प्यार केवल प्रथम ही नहीं बल्कि पूरा परिवार बरसा रहा है। असल में राध्या किचन की खिलाड़ी का खिताब जीतकर घर आ गई है और हाथ में लेकर आई है ट्रॉफी भी, जिसे देखकर सभी घर वाले बेहद खुश हो रहे हैं। सासू माँ अपनी बहू रानी और बेटे की आरती उतार रही हैं, उनका घर में स्वागत कर रही हैं। प्रथम और राध्या अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं और सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं प्रथम के पापा, क्योंकि मित्तल परिवार जिस बदनामी से गुजर रहा था राध्या ने उस बदनामी को पोंछ दिया है।
1: राध्या की सच्चाई के जरिए पूरा को पता चल गया कि उसका परिवार इतना ही बांध रहा है। तुम्हारी सच्चाई की चमक मैं नहीं देख पाया, तुम रुकने की कोशिश की थी और सही मायनों में प्रथम राध्या वो सूरज है जो मुश्किलों के बादलों को चीर कर न सिर्फ तुम्हारा कर्जा लौटाया बल्कि पूरी दुनिया में मित्तल परिवार का सम्मान लौटाया। पूरी दुनिया में टंके की चोट पर तुमने मित्तल परिवार का नाम रोशन कर दिया।
0: यहाँ प्रथम और राध्या ने अपने परिवार को बचा तो लिया है और परिवार वाले भी खुश हैं, लेकिन दादी उन्हें तो राध्या फूटी आंख नहीं भा रही, और तो और वो तो खिसियानी बिल्ली की तरह दूर खड़ी चिढ़ रही हैं। तभी तो जैसे ही प्रथम और राध्या उनका आशीर्वाद लेने आगे बढ़े, दादी ने अपना हाथ दिखा दिया और टशन दिखा कर वहाँ से चली गयी।
2: समाज और परिवार चाहे कितनी भी तारीफें करें, लेकिन जो तकलीफ हमें दी है तुमने इसकी वजह से वो हम कभी नहीं भूल सकते।
0: भाई दादी का तो काम ही है मुंह फुलाना। अब चाहे राध्या कितना भी अच्छा और बड़ा काम कर ले, दादी तो हमेशा राध्या के खिलाफ ही रहेंगी। देखना होगा कि अब राध्या कैसे दादी का दिल जीतेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: वैसे कुछ कुछ सब्जियों के दाम सुनकर तो मुझे आ रहा है पसीना, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल है यहाँ पर। जी हाँ, हमारी तन्वी का, क्योंकि फिर से आया है इनकी कहानी में भी एक नया ट्विस्ट। तो किस हाल में है आज तन्वी और योग, क्या कुछ हो रहा है उनकी जिंदगी में, क्या आ रही है इस कहानी से कोई गुड न्यूज, या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा। चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको इस शो के सेट पर जिसका नाम है 30 के पार जब मिला प्यार।

सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है दंगल टीवी के सीरियल 30 के पार जब मिला प्यार के सेट पर, जहां पर जल्द ही व्योम और परी शादी के बंधन में बनने वाले हैं और शुरू हो चुकी है शादी की रस्में और आज हो रही है हल्दी की रस्म जिसमें सभी घर वाले सजे धजे हैं। भाई यहां तो हरियाली छाई है। जी हां, सभी ने चुना है हरा कलर क्योंकि मेहंदी की रस्म जो है ऐसे में तन्वी की बहन कटशन आज देखने लायक है। वही होने वाली दुल्हनिया

0: सारे रीति रिवाजों के साथ मेहंदी की रस्म होती है, लेकिन यहाँ पर एक रस्म ऐसी है जिसमें दूल्हा दुल्हन के हाथ और पैर भाभी को दोने हैं, और ऐसे में हो गया है घर में नया बवाल।
1: रस्म के अनुसार दूल्हे की बहिनी सबसे पहले होने वाले दूल्हा दुल्हन के पैर नीम के पानी से धुलवाती है, उसके बाद सबसे पहली शगुन की मेहंदी वही लगाती है। दीक्षा आओ।
2: असल में दीक्षा बहनी तो दादा की शेरवानी लेके गई है, उसकी कुछ फिटिंग में दिक्कत थी तो बस उसको ठीक करवाने गई है।
1: क्या उसे यही समय मिला था शेरवानी ठीक कराने का? उसे पता नहीं है कि उसे बहिनी का फर्ज निभाना है, यहाँ पर उसकी जरूरत है।
2: अगर अभी नहीं जाती तो दादा की शेरवानी टाइम पर नहीं आती।
0: ऐसे में सामने आती है तन्वी जो निभाती है ये रस्म।

0: आज व्योम की मेहंदी का फंक्शन है और सिर्फ घर वाले ही लोग हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, तो मैं बहुत खुश हूँ।
1: रहने दे ताई, मेरी खुशी के लिए तो अपनी छोटी बहन के पैर छूती हुई मुझे अच्छी नहीं।
2: परी बेटा, अपने मायके के रिश्तों का बोझ अपने कंधे पे उठा के ससुराल नहीं लाया जाता। हमारे घर में तुम जेठानी होगी और तन्वी तुम्हारी देवरानी, इसलिए इसको ताई बोलकर तुम अपना बड़प्पन का दर्जा क्यों खोना चाहती हो? कोई जरूरत नहीं है, विषय समझा।
3: भाई मजबूरी में ही सही, लेकिन तन्वी सारी रस्में निभा रही है। उसे पता है कि व्योम उसके पीछे है, तभी तो आज उसे मौका मिल गया तन्वी से बात करने का और उसे तोहफा देने का, लेकिन तन्वी उससे गन्नी काट रही है।

0: बहुत खुश, मेरी कोई तीसरी चौथी पांचवी छठी शादी होने वाली है, तो मैं शादी किंग हूँ। तो
1: कि लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, मार तो मैं खुद दूंगा।
2: नहीं, प्लानिंग के साथ
0: बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बस परी आ जाए घर में और आकर जो है फिर हम तन्वी को थोड़ा टॉर्चर करें और तन्वी को लगे कि यार इससे अच्छा तो व्योम था, तो वो मेरी तरफ आ जाए। आखिरी दम तक मैं तन्वी को पाने की कोशिश करूंगा, बार बार जूते खाऊंगा पर फिर खड़ा हो जाऊंगा, बट दिस इज व्हाट माई टैक्टिक्स आर।
3: जब से तन्वी को पता चला है कि परी की शादी व्योम के साथ होने वाली, वो तब से यही कोशिश कर रही है कि ये शादी ना हो, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि ये शादी रोके, तो फिर उसके लिए वो जो भी करना पड़े वो कर रही है। और तन्वी के लिए रोज़ एक कोई ना कोई मिशन होता ही है, तो आज अभी परी की मेहंदी है तो इसमें भी बहुत ड्रामा होने वाला है और बहुत कुछ होने वाला है। वो पहुँचती है, उसका जो एम है वहाँ तक पहुँचती है, लेकिन आगे क्या होगा वो आपको देखने में जरूर मजा आएगा।
4: भाई तन्वी तो चाहती है कि जैसे तैसे इन दोनों की शादी रुक जाए, लेकिन अब उसके लिए तन्वी क्या करेगी ये देखना होगा। खैर, बात करें इनके सजधज की, तो आज सभी लेडीज गैंग देखिए कैसे सजी धजी है। सबने हरा रंग चुना है, तो आइए इन्हीं सबसे एक एक कर जानते हैं कितना खास है आज इनका मेहंदी वाला ये लुक।

पूरी हरियाली है, मेल आर्टिस्ट फीमेल आर्टिस्ट हर कोई ग्रीन कॉस्ट्यूम में है क्योंकि मेहंदी है, और हर फंक्शन के हिसाब से वो कलर ड्रेस कलर है, कलर कोड है, तो हर फंक्शन के लिए जैसे जैसे कलर कोड है वैसे वैसे कॉस्ट्यूम्स है, और कुछ भी हो जाए कितना भी ड्रामा हो हम सज धज के ड्रामा करेंगे। साड़ी है नॉर्मल साड़ी ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर ग्रीन बैंगल्स क्योंकि तन्वी अभी शादीशुदा है तो ग्रीन बैंगल्स, और बहुत ही मिनिमम जैसे तन्वी है बहुत ही मिनिमम उसका लुक है, छोटे छोटे से नेक पीस है छोटा सा और छोटे से इयर रिंग्स है, बस इतना ही सिंपल, और ये बहुत ज़रूरी है मंगलसूत्र ये युग है तो ये सिंपल सा लुक है तन्वी का।

0: देखिए बहुत अच्छा है, मुझे तो ग्रीन के साथ साथ कंफर्ट है इसके अंदर, बड़ा मज़ेदार है, बहुत गर्म नहीं लग रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, मेरा कुछ इससे पहले कुछ और दूसरा ड्रेस था जो कि लिटरली इसके जैसा था और हम दोनों बहुत ही अच्छे पेयर लगते, पर वो ना थोड़ा फिट नहीं हो पाया, मेरे थोड़े बाइसेप्स ज़्यादा हैं, शोल्डर्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो आया नहीं मुझे वो। सो आई एम हैप्पी, बट शी इज़ लुकिंग फैबुलस, बड़ी प्रिटी लग रही थी। इसने अभी अभी एक शॉट दिया है, वो हाई स्पीड में उतर के आ रही थी, बाल इसके उड़ रहे थे, ऑसम लग रही थी।
1: अपने लुक से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा लहंगा वहंगा एवरीथिंग, जैसे इसने बोला आई एम लुकिंग फैबुलस। हूँ
2: ग्रीन कलर में,
1: ग्रीन में पिंक है, स्काई ब्लू है,
0: बबल गम कलर्स है,
1: हाँ पेस्टल, एंड आई लव पेस्टल कलर्स। हार तो अक्का साहिब से चुरा के पहने हैं शायद। इन तो सरपोदर खंदन की सारी ज्वेलरी परी ने पहनी।

0: ये मेरा नववारी का लुक है मेरा, और ये मेरी ग्रीन ब्रोकेड की साड़ी पहनी है मैंने, और ये मेरे कंगन है, और ये मेरी रिंग्स हैं, और ये मेरा रानी हार है, और ये मेरा गले का चोकर हार है, उसके साथ मैचिंग इयर रिंग्स है। तो हम लोगों ने, क्योंकि सिर्फ घर के लोग हैं अभी और सिर्फ मेहंदी हो रही है, इसलिए हम लोगों ने कलर थीम ग्रीन रखी है, और मैं ब्रोकेड पहनती हूँ इसलिए मैंने ब्रोकेड की पहनी है।
1: जी आज मेरे परी की मेहंदी है, इसके लिए आज सब हरे रंग में है, हरियाली छाई है सेट पे। बेसिकली आप अगर देखा जाए तो 30 के पार में जेंट्स कम है और लेडीज ज्यादा है, तो हरियाली रोज ही रहती है, मन से हम हरे है ही, तो इसके लिए आज हरियाली है सेट पे। ये देखिए खाना खा रही हरियाली।
2: अभी तो सिर्फ मेहंदी है, अभी मेहंदी चढ़ने वाली है, तो उसके बाद और चूड़ियाँ भी जाएगी, फिर ये अंगूठी, फिर ये गले का कुंदन हार तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये मोतियों और थोड़ा सा ट्रेडिशनल और वेस्टर्न ऐसा मिक्स है, और ये मेरा मंगलसूत्र।

हाय, मैं हूँ सिंदूरा। आज मेरे व्योम दादा की मेहंदी है, इसलिए मैं फुल टू रेडी होके आई हूँ। देखिए मेरा लुक है आज का ये, और आज का हमारा थीम है ग्रीन साड़ी विद ऑरेंज ब्लाउज। तो ग्रीन और ऑरेंज का हमारा आज का थीम है, तो उसी में हमें इतनी सुंदर सी साड़ी दी गई है, और ये बैंगल्स और ये मेरी ज्वेलरीज जो कि वेस्टर्न है और एथनिक पे बहुत अच्छे से जा रही है, और ओवरऑल ये मेरा लुक है, ये मेरे झुमके हैं, ये मेरी नोज रिंग है, मेरी बिंदी है, मेरी हेयर स्टाइल है। लग रही हूँ ना सुंदर?

तो मेहंदी के लिए आज हमारी थीम है ग्रीन की, जिसे मैंने आज पूरा कंप्लीट श्रृंगार किया हुआ है। आप देख सकते हैं सुहाग की ये हरी चूड़ियाँ जो हम हमेशा पहनते हैं, और सुहाग की निशानी में सिंदूर बिंदी एंड नोज बिंदी तो ऑफकोर्स है। और ये है मेरा आज का हैवी सेट, क्योंकि मैं हूँ सरपोतार परिवार की सबसे प्यारी बहू और सबसे रिचेस्ट बहू, तो मेरा इतना तैयार होना तो बनता है। और मेरा ये मंगलसूत्र है जिसके टेसल्स आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे हैं। और ये आज हमारी थीम है ग्रीन विथ ऑरेंज, तो यू कैन सी मी।

0: तो भाई शूटिंग तो होती रहेगी, अब बात करते हैं बिहाइंड द सीन की। सीन खत्म हो गया है और हो गया है लंच ब्रेक, तो आइए हम करते हैं ताका झाकी और देखते हैं आज टिफिन बॉक्स यानी इनके डब्बे में क्या कुछ है खास, क्योंकि ये सभी साथ साथ मिलकर लंच करते हैं, तभी तो लंच टाइम फन टाइम बनता है, ढेर सारी बातें होती हैं, हंसी ठिठोली होती है और मस्ती अनलिमिटेड होती है। साथ ही मिल बांट कर ये खाना खाते हैं, जो भी अपने घर से डिशेस लाया है वो शेयर कर कर ही खाता है, तभी तो प्यार भी बढ़ता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो आइए देखते हैं आज इनके डब्बे में क्या है खास।
1: हाय, मैं गिरिजा प्रभु, मतलब आप सबकी प्यारी तन्वी सरपोतदार। और आज अभी हमारा ब्रेक हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ सब टूट पड़े हैं खाना खाने पे, तो ये वी टाइम है और देखो अब सब लोग बहुत बिजी है, मतलब शूटिंग वूटिंग तो होता है, ये बहुत जरूरी है, तो यहाँ ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन करती हूँ ना, तो ऑफ स्क्रीन हमें टाइम मतलब चांस मिलता है थोड़ा परेशान करने।
2: देखो मैं कितनी सीधी सादी हूँ, इसलिए मुझे सब लोग परेशान कर दे।
1: ये क्या था बताइए,
3: सीधी सादी जिलेबी की तरह है, पूरी एकदम जिलेबी की तरह है, ऐसी सीधी सादी।
4: मुझे गाय में इंटरेस्ट रहता है और दही में इंटरेस्ट रहता है।
5: हाँ, आज तो हमारे यहाँ पे आया है क्या, ये
4: पालक
5: बटाटा। पालक पालक बटाटा आया
1: है। वैसे भी आज हम सब पालक ही बने, इसीलिए आज का मेन्यू पालक है।

0: जी आज शुद्ध शाकाहारी भोजन है, उसमें पालक और आलू है और दाल राइस।
1: मेरे डिब्बे में क्या है देखते हैं। ये है रोटी, ये रोटी है और ये है टमाटर की सब्जी, टमाटर की सब्जी, टमाटर की सब्जी।
2: और मैं आज गोभी लेके आई हूँ, तो प्लीज वो भी लीजिएगा।
1: यस yes, जरूर। तो ये हमारा रोज का है, जो भी लाए बांट के खाए।
2: मैं
1: टमाटर की सब्जी
3: मुझको दी दो,
1: खिचड़ी उपवास है आज। मैं तो चटनी बोलती हूँ,
3: बट
1: हाँ फिर कोई कोई ऐसे होता है कि चटनी, ये तो चटनी नहीं है,
4: ये प्याज और टमाटर की चटनी है। थैंक यू तन्वी।
1: यस हाँ, उनका उपवास है तो वो खिचड़ी खा रही है।
5: हाँ आज मेरा एकादशी का फास्ट है, मैं बेसिकली एकादशी रहती हूँ सारे, तो उसके लिए मैं साबूदाना की खिचड़ी खा रही हूँ यहाँ पे।
4: हाय, आज मेरे घर से मेरी मम्मी ने डोसा भर के दिया है, साउथ इंडियन डिश।

0: हमारे रूम में बैठ के खाना खा ही नहीं सकते, हम यहाँ पर ही आके बैठते और खाना खाते हैं।
1: इस रूम की वाइब है ऐसी या हम सब की वाइब अच्छी, आई डोंट नो, बट हाँ हम साथ बैठकर ही खाना खाते हैं।
2: गोभी की सब्जी, ठेचा और भाकरी आज मैं लाई हूँ।
0: क्या बात है, अभी बारिश का मौसम है ना, तो भूख भी बहुत लगती है। ब्रेक कब होगा इसका हम इंतजार करते हैं।
2: एक्चुअली बहुत भूख लगी है अभी, लेकिन सर हमारे बहुत जल्दी और टाइम पे ब्रेक करते हैं, तो इसके लिए हमें खाने को मिला है। अभी सब एक साथ खाना खा रहे, ये देखो हमारी वैष्णवी भी कितनी शांति से खाना खा रही है, चुपचाप एक कोने में बैठ के।
3: हाँ, मतलब मैं खाना खाने के बाद जो दही खाती हूँ वो बड़े दिल से खाती हूँ, मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरा दही के ऊपर रहता है।
0: और एक और बात है वैष्णवी जी की, जैसे ही उनका पूरा खाना खत्म होता है उनके मुंह से एक नाम निकलता है, दीक्षा अचार लाया क्या मेरे लिए, रखा है क्या मेरे लिए, तो पूरा खाना खत्म होने के बाद वो होता है।
3: हाँ, मतलब सब खाने के बाद एक चटपटा अचार मिल जाए, मस्त लगता है।
2: जो सब लोग वही बोलते हैं, दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है, खाना खाते वक्त कितनी चुप बैठती है तू।
0: हाँ, शुरू शुरू में हमें डर लगता था कि अचानक से ये चुप क्यों हो गई, अभी हमें हम सबको पता है कि ब्रेक के वक्त शांत होती है।

0: को, पर फिर भी मेरे साथ ऐसे नाइंसाफी करते रहते हैं ये लोग. सबको पता है यहाँ पे कि मुझे डोसा बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे फास्ट वाले दिन यहाँ पे डोसा लेके आ रहे हैं क्योंकि मैं खा नहीं सकती ना. और हमेशा ऐसा ही होता है, जितने मेरा फास्ट होता है यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा आएगा, लंच भी बहुत अच्छा आएगा, बस मुझे नहीं मिलेगा.
1: कीर्ति का ये कहना है कि ये लहंगा क्यों दिया है मुझे, ये फटाफट मेरे क्लोज उड़ा लो, मैं चेंज करके बैठूंगी. आराम से खाना खाने बैठती ना मैं अगर मेरे क्लोज हो जाते तो.
2: लास्ट वाली, लास्ट जो शादी थी तो जब तन्वी ताई की शादी में मैंने लहंगा पहना था, वो लहंगा बहुत भारी था, 15 से 20 किलो का होगा. तो मैं लहंगा उतार देती थी जीन्स में, जीन्स पहन के खाना खाती थी, ऊपर दुल्हन वाला ब्लाउज, पूरा दुल्हन वाला सेटअप और नीचे जीन्स.
3: हाँ, मेरा चम्मच चोरी हो गया था लेकिन तन्वी ने मुझे दे दिया लेल काकू करके, इसलिए मुझे मिल गया चम्मच दही खाने के लिए. एक ही प्रॉब्लम है, दही खाने के बाद बहुत नींद आती है और मुझे हर बार जब ब्रेक खत्म होता है उसके बाद जब सीन लगता है ना, तो ये पोल खोलने वाली हूँ कि सबकी आंखों में नींद होती है क्योंकि सब लोग दही खाने के खा के आते हैं वहाँ पे. हाँ, और वापस ऐसे ऐसे होने लगता है सीन के वक्त,
1: ऐसे ही होता है. लंच ब्रेक हो या स्नैक्स ब्रेक हो, ऐसे ही होता है.
0: मतलब हम ऐसा नहीं सोचते कि ये इसका रूम है तो मैं क्यों जाऊँ, उसका रूम है तो मैं क्यों जाऊँ. जब हमें सोना होता है, हमें प्राइवेसी चाहिए, तो हम जाते हैं तन्वी को
1: बताएगी
0: तन्वी के रूम में.
1: हमने ये मतलब डिसाइड भी नहीं किया, वो अपने आप ही
0: हो गया. वो
1: खाना खाना है तो इस रूम में, और अगर अच्छी अच्छी शांत से नींद चाहिए मेरे और परी वाले रूम में, मेरे और परी वाले रूम में लाइट्स ऑफ.
0: और इवन जिस दिन हमारा ऑफ होता है उस दिन भी हम बहुत बोर हो रहे हैं, तो सबकी याद आ रही होती, इतनी अच्छी यूनिटी, इतनी अच्छी मेंबर हम लोग सब बन चुके, एक फैमिली जैसी वाइब है यहाँ पे, तो घर पे भी मन नहीं लगता हमारा. हम फोन करते हैं लंच के टाइम पे, ए तो क्या कर रही है बताना.
4: एक दूसरे से
0: हमारा एफएम है, ये हमारा एफएम है,
4: प्यार हम

0: तैयार हम है, तैयार हम है, तैयार हम
1: बस है तैयार हम
2: तो तैयार। तो आपने देखा ऐसा होता है हमारा लंच ब्रेक, हम थैंक यू। तो ऐसा होता है हमारा लंच ब्रेक और जिसने जो भी लाया होता है वो बांट के खाते हैं और अच्छे से खाते हैं। क्या मंगवाना है इसके ऊपर हम सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं, मंगवा नहीं पाते कभी कभार, बट ऐसा होता है हमारा लंच ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक।
3: इश्क बुलावा जाने कब आवे।
4: तो देखा आपने, कुछ ऐसी है टीम 30 के पार की यारियां। उम्मीद है सीरियल में अपने अपने किरदारों से यूं ही वो दर्शकों का भी मनोरंजन करते रहे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

अब जैसे ही किन्हीं भी रीजंस की वजह से जब सब्जियां हो जाती हैं महंगी, तो हर हाउसवाइफ की जिंदगी में आ जाता है ट्विस्ट। लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट दीज हाउसवाइफ्स, ये होती हैं बहुत ही स्मार्ट और ढूंढ लेती हैं हर ट्विस्ट का उपाय। चलिए अब नजर डालते हैं उन तमाम ट्विस्ट पर जो आ पहुंचे हैं हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों में, क्योंकि यही ट्विस्ट लेकर आते हैं इनमें एंटरटेनमेंट का मसाला, बदल देते हैं कहानियों का मूड। लेट्स ट्विस्ट।

0: जीत गया ना।
1: भाई आज क्या अनुपमा का परिवार और क्या प्रेम का परिवार ऊपर वाले का आशीर्वाद ले रहा है, क्योंकि आज दोनों परिवार को जाना है कुकिंग कॉम्पिटिशन में। ऐसे में ऊपर वाले का आशीर्वाद लेना जरूरी है। इसी के साथ अनुपमा और प्रेम दोनों के ही परिवारों ने अपनी हिम्मत बांध ली है।
2: मैं जानती हूँ कि सबके दिल में इस वक्त दुख दुख दुख दुख दुख दुख दुख दुख हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस इनके समय भी होगा, लेकिन हम सबको यही याद रखना है कि डरना है पर करना है।
3: रिमेम्बर गाइस, आज हम लड़ेंगे नहीं, हम जीतेंगे।
1: yes.
3: जीत के झंडे गाड़ देंगे। लेट्स गो,
4: कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है।
1: भाई इस कुकिंग कंपटीशन में तो कई सारी टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन अनुपमा और प्रेम की टीम पूरे जोश में है।
4: टीम अनुज कैफे और टीम लव यू जिंदगी कैफे अलग है, क्योंकि आपकी टीम में तो परिवार वाले हैं ही, आप दोनों एक दूसरे के फैमिलीज हैं।
1: ऐसे में वहां पर न सिर्फ सभी टीमों का इंट्रोडक्शन हुआ बल्कि हुआ फोटोशूट भी।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
1: जिसमें सबसे खास रही अनुपमा की टीम और साथ ही खास रही है प्रेम की टीम भी। इसलिए देखिए कैसे फोटोशूट में भी अनुपमा और प्रेम की टीम का दर्शन ही नजर आ रहा है। भाई कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार कंपटीशन सास और दामाद के बीच होगा, लेकिन इसके सामने अनुपमा के आगे होगी उसकी बिटिया रानी राही। ऐसे में देखिए कैसे अनुपमा जब राही से मिली तो राही ने न सिर्फ अनुपमा का आशीर्वाद लिया बल्कि अनुपमा ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर उसे गले भी लगाया और साथ ही दिया जीत का हौसला भी। अब देखना होगा कि इस कुकिंग कॉम्पिटिशन में परिवारों में कौन सी नई जंग छिड़ेगी।
4: एक टीम की कैप्टन सास है और एक टीम के कैप्टन दामाद।
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: आपने आज तक रसोई घर में सास बहू के झगड़े देखे होंगे, but for the first time, India देखेगा सास और दामाद के झगड़ा, यानी कि सपनों का स्वाद, परिवारों में जंग।
6: Heavy is dead, heavy is dead, heavy is dead. It's a blessing and a curse.

कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में धीरे धीरे धीरज और रजी के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं। असल में आज धीरज की तबीयत खराब है, ऐसे में देखिए कैसे आज रजी अपना पत्नी धर्म निभा रही है, धीरज का ख्याल रख रही है और तो और उसकी परवाह भी जता रही है। इसी बीच जाने अनजाने धीरज अपनी रजी को अपने करीब खींच लेता है, ऐसे में रजी का दिल जोरों से धड़कने लगा है।

0: बुला रही हो तू? क्यों तमाशा कर रही हो?
1: क्यों नहीं सुन रहे? अगर तुम बाहर गए ना तो मैं और तेज बुखार हो जाएगा। अरे नहीं सुनो
2: भाई, रज्जी कभी प्यार जताती है तो कभी उसके साथ टशन दिखाती है। अगले ही दिन जब धीरज काम के लिए जबरदस्ती जाने लगा तो रज्जी उसे रोकने लगी, क्योंकि उसे पता है कि धीरज की तबीयत खराब है। ऐसे में वो रोकने की पूरी कोशिश करती है। उसकी सासू माँ और जिठानी भी आती है, रज्जी उनसे शिकायत भी करती है। ऐसे में विद्या भी मना कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर आते हैं महादेव, जो धीरज के फैसले की वाहवाही करते हैं और उसका काम पर जाने का हौसला बढ़ाते हैं।
3: तुम्हें ये छोटा बबुआ बना के घर पर बिठा देंगी। तुम बीमार हो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया छुट्टी लेकर घर पर बैठी है। देखो ना तो इस देश का जवान कभी छुट्टी लेता है और ना ही इस देश का किसान कभी छुट्टी लेता है। और हम मर्दों की मजबूती ही है जो पूरे देश को चला रही है और हर घर में चूल्हा जला रही है। बोलो हर हर महादेव और निकल जाओ काम पे। सोचना मत दो बार, चलो हम तो जा रहे हैं अपनी मिल। और शाबाश, बढ़िया कर रहे हो।
0: देखा माँ, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी आजकल लोगों के पास काम नहीं है, ऐसे में हम चांस नहीं लेना चाहते हैं कि हमारी जगह किसी और को नौकरी मिल जाए। बड़ी मुश्किल से हमें नौकरी मिली है। अब बात को समझने की कोशिश करो, हमारा जाना जरूरी है इसलिए हम जा रहे हैं।
1: पर तेज बुखार। अच्छा ठीक है, एक काम करो, रज्जी को अपने साथ ले जाओ। अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ी तो रज्जी संभाल लेगी तुम्हें।
4: हाँ बिल्कुल सटीक सुझाव।
0: अरे क्या सटीक सुझाव है माँ, ये कोई छोटा सा टिफिन है जिसे जेब में डालो और लेकर के चले गए। कैसी बातें कर रहे हो आप? बीवी है हमारी, साथ में ले जाना अच्छा थोड़े लगेगा।
4: हीरू देखो, तुम्हें अगर काम पर जाना है तो रज्जी साथ में जाएगी, वरना इस दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखोगे तो, समझे?
5: शालिनी और शिव, आप दोनों की फेवरेट वेजिटेबल क्या है? अरे मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपको कहाँ है फुर्सत सुपरमार्केट वगैरह जाने की, क्योंकि आपकी कहानी में तो लगातार चलता है कोई ना कोई नया ड्रामा। वैसे देखिए आज मैं ही ले आऊंगी आपके लिए यहाँ से खरीद के वेजिटेबल्स, और साथ के साथ आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या कुछ फ्रेश हो रहा है आपकी कहानी में। आज लेकर चलते हैं आप सबको मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के सेट पर।

शालिनी खुद तो नाची ही, साथ में अपने शीतल को भी उसने जम कर नचाया। लेकिन उसकी नजरें शीतल पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि उसे पता है कि शीतल क्या गेम प्लान कर रही है।

0: यहाँ शालिनी झूमकर नाच रही है तो वहाँ शिव बलराम संग बहरूपिया बनकर पहुँच गया है और रख रहा है कड़ी नजर, वो भी सभी पर। फिलहाल तो उसकी नजर शीतल पर है, वो शीतल जो विक्की के साथ साठ गांठ कर रही है और तैयारी कर रही है आगे ट्विस्ट लाने की। यही बात शिव ने जाकर बलराम को बताई है और उसे सतर्क रहने के लिए आगाह कर दिया है, लेकिन बलराम वो सतर्क तो है ही, लेकिन खुश भी बहुत हो रहा है क्योंकि उसकी पूरी टीम तैयार है असली मुजरिम को पकड़ने के लिए। इसी बीच शिव की नजर पड़ती है एक आदमी पर जिसने अपनी बंदूक तैयार रख ली है। ऐसे में शिव को डाउट हो गया है कि इस मेहंदी की रस्म में जरूर कोई ना कोई ट्विस्ट आएगा ही, इसीलिए वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है और बलराम वो तैयारी कर रहा है विक्की के पास जाकर सबूत इकट्ठा करने की, कि इसी बीच उसे आ जाता है अपनी ही टीम का कॉल भी। खैर शिव की पूरी टीम चारों तरफ फैली हुई है। अब देखना होगा क्या शिव उस आदमी का पता लगा पाएगा जिसने उस पर गोली चलाई थी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: जी हाँ मन्नत, हम जानते हैं आपको नहीं है फुर्सत वेजिटेबल्स वगैरह खरीदने की। हम तो आ पहुंचे हैं सुपरमार्केट, तो सोच रही हूँ एक बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स आपके लिए भी खरीद लूं। लेकर आऊंगी उसे आपके पास, फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में। वैसे आप मुझे क्या ही बताएंगी, हमें पता ही है फिर से चल रहा है इनकी जिंदगी में एक नया तूफान जो फिर से लेकर आ रहा है इनके सामने एक नया चैलेंज। तो चलिए फिर पता कर आते हैं इस कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास।

0: खबरें आ रही हैं कि फिल्म भूल भुलैया 4 जल्द ही शूटिंग के लिए तैयार है। इस फिल्म की शूटिंग 2027 में साल के बीचों बीच की जाएगी। वैसे इसके साथ एक और गुड न्यूज आ रही है और वो गुड न्यूज जुड़ी हुई है कार्तिक आर्यन से, क्योंकि कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 4 में रूह बाबा के किरदार में फिर से नजर आएंगे। बन गई है जोड़ी आंचल साहू और अंकित गुप्ता की। देख लीजिए इनके किरदार का ये नया लुक, जिसका हाल ही में फोटोशूट किया गया है। वैसे बता दें कि इनका ये नया सीरियल जल्द ही कलर्स टीवी पर नजर आएगा। सात साल बाद गोविंदा फिर से बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं। खबरों की माने तो जल्द ही वो एक नई फिल्म लेकर आएंगे, जिसका नाम होगा रूपा। और इस फिल्म में गोविंदा के साथ नजर आएंगी कंटेंट क्रिएटर कोमल रानी सोनकर, जो इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगी। वैसे इसी के साथ बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे खुद गोविंदा। नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप का ये प्रोमो देख लीजिए, जहां पर सभी प्रतियोगी एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही कर रहे हैं ढेर सारा एंटरटेनमेंट भी।
1: Miss Chamola, I love your accessories. I'm such a doll, a Russian doll, full of yourself. शिल्पा जी इज लाइक एन अनियन, घुल मिल जाए तो पसंद भी आ सकती हैं, बट अगर प्याज खराब हो गई तो दिल तन बदन सब मार देगी।
2: हमारी जो श्रेया है बड़ी बदतमीज है।
3: आई कांट एक्ट।
4: चमोली, मैंने तुमसे क्या बदतमीजी की है एक दो हफ्तों में?
3: यू आर बदतमीज।
4: आई फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड कि मैं उठ के जा रही हूँ, कोई ताली नहीं बजा रहा है, बाकी सबके लिए तुम चीयर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो।
5: दूसरों को क्या बोल रही हो यार, तुम अपना करो।
4: मैं अब अपना करूंगी, मुझे जो करना है राम जी।
0: इसी के साथ देख लीजिए कि कैसे धीरज धूपत की बीवी विनी अरोरा ने हाल ही में अपने पति के लिए शेयर किया है एक वीडियो, जहां पर उसकी सारी सहेलियां यानी कि श्रद्धा आर्या, ये शाहरुखानी, कनिका मान, अमनदीप सिंधु, सीरत कपूर और बाकी कई और दोस्त धीरज धूपर का हौसला बढ़ा रहे हैं।
6: Yet everybody will know that धीरज धूपर is in the house.
7: से स्वीट बंदा मैंने कहीं नहीं देखा है।
8: I've always seen him as a solid human being. Like very much grounded.
9: He's the naughtiest person in any room you will go.
10: We are really enjoying watching the show, watching him. I hope all of you all are really supporting him.
11: You're the most beautiful soul I've ever met, and I genuinely say that.
12: He's exactly like the same. Like showing up in the game just the way he is.
13: He's got a very, very, very happy-go-lucky energy.
14: He makes you feel like you are important, and he helps you, he motivates you.
15: He is a wonderful friend, very much sincere, and then very respectful.
16: You are being you, what you are not a troublemaker, you're not a mess maker, you're really goofy, you're cute, and you like to keep your head above water.
17: You're doing great, yaar. I'm proud of you. Trophy lekar aana, jeet ke aana ghar pe.
16: And I'm really happy that you're being yourself. It's a treat to watch you.
18: Bahut sare dilon ko jeetne ke baad, lockup bhi zarur jeetega.
19: I know he's going to win.
16: And you're looking beautiful, killing it.
4: So my bestest wishes to you, Dheeraj. Just play the same way.
0: इसी के साथ लॉकअप 2 से जुड़ी हुई है एक और खबर भी। खबरों की माने तो जल्द ही लॉकअप 2 में ऋषभ जायसवाल श्रेया कालरा से मिलने आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गौरव खन्ना आकांक्षा से मिलने आए थे। खबरों की माने तो जेनिफर विंगेट जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकती हैं अपने बॉयफ्रेंड विलियम इस्माइल के साथ। इसी के साथ खबरें आ रही हैं कि उनकी शादी यूके में होगी, वो भी जुलाई 16 को उनके करीबियों के बीच।

जल्द ही रवि किशन एक नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे। खबरों की माने कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म नागजिला में रवि किशन कार्तिक के किरदार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे।

थिएटर और बॉलीवुड के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही पंजाबी फिल्म में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। खबरों की माने तो जल्द ही इनकी एक फिल्म आएगी जिसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। इसी के साथ बता दें कि उस फिल्म में फीमेल लीड का किरदार निभाएंगी सोनम बाजवा।

0: रोमियो रोमियो कल के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे परबियो।
1: देख लीजिए सोनी टीवी के रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर का ये प्रोमो, जहां पर करिश्मा से मिलने पहुंच गई हैं सारे बच्चों की मम्मियां, और देखिए कैसे उन मम्मियों संग करिश्मा भी ताल से ताल मिला रही हैं।

0: टप्पू जल्दी से कल तक न्यूज़ लगा।
1: ब्रेकिंग न्यूज़।
2: सोनी सब की सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि गोकुलधाम वासियों को लग रहा है कि जेठालाल अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके कहीं भाग गए हैं। अब देखना होगा क्या वाकई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो गई है।
0: टप्पू जल्दी से कल तक न्यूज़ लगा।
1: ब्रेकिंग न्यूज़। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल गड़ा फरार है।
3: जेठा भाई फरार हो गए,
4: तुम्हारी दुकान सील हो गई। ये ब्रेकिंग न्यूज रीटा रिपोर्टर ने बना दी।
5: पहुंच गई भैंस पानी में।
2: सीरियल ये रिश्ता के सेट पर बन गया है सेलिब्रेशन का मौका। असल में सीरियल में माधव के किरदार में नजर आने वाले संदीप राजोरा का जन्मदिन है। ऐसे में पूरी टीम ने मिलकर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया और उन्हें दी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां।

0: मैं दो बार तेरे पास आया हूँ, इसके बाद भाई मैं तेरे पास नहीं आ पाऊंगा।
1: गलती तेरी है,
0: मेरी कोई गलती नहीं।
2: खत्म हो गई बात, लेट्स नॉट टॉक। गलती को रिकॉग्नाइज करो तभी सॉल्व होती है,
0: नहीं
2: अगर रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं हो तो सॉल्व नहीं होगी।
3: देख लीजिए अलायंस का ये प्रोमो, जहां पर अरसलान और कुशाल के बीच शुरू होगी बहसबाजी। इसी के साथ गौहर भी अपने पति जैद के साथ वीडियो चैट करती हुई नजर आएंगी, और साथ ही कई और ट्विस्ट भी देख लीजिए।
2: कुशाल का है कि हल्ला गुल्ला,
0: पहली बात तो तमीज से बात करी, हल्ला गुल्ला
2: तमीज से ही बात कर रहा
0: हूं। हल्ला गुल्ला क्या होता है?
2: अरे कह रहे थे मेरे पास टाइम नहीं वेस्ट करने का इसके साथ, बेसिक डिसेंसी नहीं है।
0: शो विद अरसलान गोदी दिखाता है ना,
4: जो लोग आपको लगता है कि अभी फाइन आपके अलायंस में है, थिंक यू विल नॉट बी देयर प्रायोरिटी।
3: जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में का पीटीएस वीडियो देख लीजिए, जहां पर प्रियांशी एक ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई हैं और सीन फिल्मा रही हैं, वो भी बिना डरे।

अनुष्का रंजन जल्द ही माँ बनने वाली हैं और ऐसे में उनके घर पर रखी गई है गोद भराई की सेरेमनी, जहाँ पर उनके नजदीकी दोस्त यार पहुँचे हैं और उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। श्रुति हसन ने चेन्नई में अपना नया घर लिया है और अपने घर में पूजा रखवाई है, साथ ही अपने फैंस के लिए शेयर की हैं पूजा की कुछ तस्वीरें भी।

0: दंगल टीवी के सीरियल रिमझिम का प्रोमो देख लीजिए, जहां पर समीर बन गए हैं रॉकस्टार और उसे देख रिमझिम हो रही है बेहद खुश।
1: समीर से बेहतर कोई और जीवन साथी हो ही नहीं सकता।
2: वक्त ही बताए।
0: आ गई है रानी मुखर्जी की गुड न्यूज। मेलबर्न के लाट्रोब यूनिवर्सिटी की ओर से रानी मुखर्जी को ऑनरी डॉक्टर ऑफ लेटर से नवाजा जाएगा, वो भी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 के समारोह में। उन्हें ये सम्मान भारतीय सिनेमा और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए दिया जाएगा। वैसे बता दें कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 13 से 23 अगस्त के बीच चलेगा।
3: हमारे चेहरे पे ना वो वाली एनर्जी है।
4: वो एनर्जी मतलब
3: जैसे कोई
0: देख लीजिए ट्रेलर विक्रांत मेसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना की आने वाली वेब सीरीज मुसाफिर कैफे का।
5: कभी कभी सबसे बड़ा सफर वो होता है जहां हम किसी नई जगह नहीं बल्कि उस मोहब्बत के पास जाते हैं जिसे हम खो चुके हैं।
0: इसी के साथ अपनी वेब सीरीज को प्रमोट करते हुए नजर आए हैं विक्रांत मेसी, महिमा मकवाना और वेदिका पिंटो, जहां पर तीनों मिलकर अपना फोटोशूट करवा रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म गोलमाल को हो गए हैं पूरे 20 साल। ऐसे में अजय देवगन ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं अपनी फिल्म से जुड़ी।

इसी के साथ फरहान अख्तर भी अपनी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म को 15 साल हो गए हैं और उन्होंने कुछ लम्हे शेयर किए हैं।

0: कर लेंगे।
1: खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में शगुन शर्मा और अविनाश मिश्रा कुछ मस्ती भरे पल बिताते हुए नजर आए और हाल ही में इन्होंने वो वीडियो भी शेयर किया है।
2: बहुत खतरनाक स्टंट है,
0: वो भी कर लेंगे।
3: क्या
4: तो देखा आपने, बिल्कुल इन ताजा ताजा सब्जियों की तरह हमने भी कर दिया ना आपको एंटरटेनमेंट की ताजगी से रिफ्रेश। लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा की वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: नोएडा एयरपोर्ट से 28 दिनों में 61,000 यात्रियों ने भरी उड़ान, अभी 15 शहरों के लिए मिल रही फ्लाइट कार्गो फ्लाइट की भी सुविधा। तेलंगाना में देवी भ्रमरांबा को अनूठी भेंट, हैंडलूम के मशहूर कारीगर विजय कुमार ने हाथ से बुनी रेशम की साड़ी की भेंट, माचिस की डिब्बी में समा सकती है ये साड़ी। गुजरात के डांग जिले के घने जंगलों में 13 पर्व की धूम, आदिवासी समाज के नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है ये पर्व, खेती और प्रकृति से गहरा संबंध। पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ, भक्तों में भारी उत्साह। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारी जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन कैमरा से रखी जाएगी नजर, कांवड़ियों की सुविधा का किया जा रहा इंतजाम। भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता लागू, अब बिना ड्यूटी बिकेगा 99% भारतीय सामान, व्यापार को मिलेगी नई उड़ान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: कल से शुरू हो रही भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा, ओडिशा की पुरी में मेगा तैयारी। आज रथ खला से श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने लाए जाएंगे तीनों रथ। नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तैयार हुए भव्य रथ। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए मंदिर के आसपास उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़, भक्तों ने जमकर लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। पुरी में रथ यात्रा से पहले DGP ने जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया, सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। भुवनेश्वर में एक भक्त ने तैयार किया भगवान जगन्नाथ का इको फ्रेंडली व्रत, ताड़ के पत्ते और नीम की लकड़ी से मिनिएचर व्रत तैयार। अहमदाबाद में 149वें रथ यात्रा की तैयारियां पूरी, जगन्नाथ मंदिर में रस्में शुरू। गुजरात के डिप्टी CM हर्ष संघवी ने जगन्नाथ मंदिर में रस्मों को किया शुरू, मंदिर के गुंबज पर किया ध्वजारोहण। डिप्टी CM हर्ष संघवी ने भगवान जगन्नाथ की उतारी आरती, विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। अहमदाबाद में रथ यात्रा को लेकर डिप्टी CM ने सड़कों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अमरनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, 12 दिनों में 3,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। पूरी आस्था और भक्ति के साथ जारी है अमरनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे बाबा बर्फानी के दर्शन। सुरक्षा प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच में पहलगाम और बालटाल के दोनों रास्तों से श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना जारी। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। गांधीनगर में CM भूपेंद्र पटेल ने अपने जन्मदिन पर त्रिमंदिर में की पूजा अर्चना, राज्य और देश में शांति की कामना की। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया, बाबा को शेषनाग का रजत मुकुट, मुंड माला, फूलों की मालाएं पहनाई गई। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। हुगली में वाराणसी परंपरा के अनुरूप उतारी गई मां गंगा की आरती, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कोलकाता में दिव्य कला मेले का शुभारंभ, CM शुभेंदु अधिकारी हुए शामिल। हरिद्वार में जोरों पर कांवड़ यात्रा की तैयारी, कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए प्रबंध किए गए। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 500 CCTV से होगी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा। कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए 24 घंटे हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित होगा। 8 ड्रोन कैमरों से होगी श्रद्धालुओं की निगरानी। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त है। भाले, त्रिशूल, तलवार, बेसबॉल के डंडे, जुगाड़ वाहन और साइलेंसर का प्रयोग किया जा रहा, इस पर बैन भी लगा। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं के लिए अपना वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। शराब या मादक पदार्थों पर कार्रवाई होगी। गुजरात के डांग में पारंपरिक 13 पर्व की धूम, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वागदेव की पूजा के साथ धान की रोपाई का शुभारंभ, लोगों ने की अच्छी फसल की कामना। आदिवासी समाज के नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है ये पर्व, खेती और प्रकृति से गहरा संबंध। तेलंगाना के मशहूर हैंडलूम कारीगर विजय कुमार ने देवी भ्रमरांबा को हाथ से बुनी रेशम की अनोखी साड़ी भेंट की। नोएडा एयरपोर्ट से एक महीने में 61,000 यात्रियों ने भरी उड़ान, अभी 15 शहरों के लिए मिल रही फ्लाइट्स। बीड के गहिनीनाथ गढ़ से पंढरी की ओर चली आजे गुर संत गहिनीनाथ की पालकी, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। पालकी की लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। तिरुपति के अस्पताल में जवानों की मॉक ड्रिल, इमरजेंसी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में ऑक्टोपस यूनिट, स्थानीय पुलिस, टीडीपी, विजिलेंस और फायर डिपार्टमेंट मेडिकल स्टाफ शामिल। जवानों ने कर्मचारियों के साथ आपसी सहयोग को परखा, लोगों को भी जागरूक किया। रेल यात्रियों के लिए आज लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट, टिकट बुक करना होगा पहले से आसान। रेलवे के मुताबिक लोगों को मिलेगी फास्ट टिकट बुकिंग की सुविधा, मिलेंगे AI फीचर्स। नई वेबसाइट में इंटरफेस को बनाया गया है सरल, बुकिंग के पूरे प्रोसेस में समय की बचत होगी। भारत यूके के बीच आज से लागू होगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, भारतीय एक्सपोर्टर को मिलेगा और बढ़ावा। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी समेत कई कारोबार को होगा इससे सीधा फायदा। अयोध्या के क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में हुआ सहस्त्र अर्चन, महंत राजूदास ने बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। पौड़ी गढ़वाल के श्री धन्वंतरी धाम में सीएम धामी ने पौधारोपण किया, बाबा रामदेव भी रहे साथ। कठुआ के बानी में आधुनिक बागवानी से किसानों की बदली जिंदगी, पहाड़ियों में सेब की खेती से अच्छी आमदनी हो रही। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में शिकारा राइड का आनंद ले रहे लोग। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट 2026 का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। दिल्ली NCR में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत मिली। गुरुग्राम में मानसून हुआ मेहरबान, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। ओडिशा में आज कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है, आने वाले दिनों में 20 जुलाई तक कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में बारिश का दौर है, 17 जुलाई से बारिश तेज होने की संभावना है। पुरी में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से सड़कों पर भर गया पानी, वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार। अयोध्या में भी भारी बारिश, सड़कों पर भर गया पानी। भारी बारिश से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी, ई रिक्शा को धक्का देते नजर आया पुलिस का जवान। मुंबई में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति। मथुरा में बढ़ने लगा है यमुना का जलस्तर, वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में घुसा पानी, प्रशासन ने लोगों को किया सतर्क। असम के लखीपुर में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, एक दूसरे जगह जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे लोग। बाढ़ से कई सड़कें पानी में डूब गई, फसलों को भी पहुंचा नुकसान। असम के चिरांग में नांगोल भांग नदी का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में कटाव जारी। कटाव के चलते कई लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए, आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे। अरुणाचल में बाढ़ से 1,00,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए, 85,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा। अरुणाचल में बाढ़ से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, कई इलाकों में भर गया बाढ़ का पानी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का बीआरओ ने किया निरीक्षण, गांव में पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। दिल्ली एनसीआर में सामने आई स्मार्ट फायर सेफ्टी सिस्टम की शानदार तस्वीर, गुरुग्राम द्वारका टनल में चलती कार में अचानक से आग लगने के बाद तुरंत एक्टिव हुआ फायर सेफ्टी सिस्टम। गुरुग्राम द्वारका टनल में कार में लगी आग पर 12 मिनट में पाया गया काबू, हादसे में कार सवार लोग पूरी तरह सुरक्षित। गुजरात में साबरमती यार्ड में खाली कोच में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बिहार के बगहा में बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए पिता ने पार की नदी की तेज धारा, गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में बढ़ा जलस्तर। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट। पंजाबी फिल्म इश्कनामा का ट्रेलर रिलीज, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म हनुमान अंश का नया गाना रिलीज हो गया है, 31 जुलाई को फिल्म रिलीज होगी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान, आज इसका टीजर रिलीज हो गया है, 11 सितंबर को सिनेमाघर में दस्तक देगी। सुपरहिट कॉमेडी फिल्म भागम भाग का बनेगा सीक्वल, फिल्म निर्माता ने इसका ऐलान किया। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी की एडवांस बुकिंग शुरू, 17 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। चीन के चोंगकिंग में गर्मी से बचने का अनोखा सा तरीका सामने आया, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान के बीच लोग स्विमिंग पूल में बैठकर चीन का टेबल गेम मैजोंग खेलते हुए नजर आए। वाटर पार्क में पूल के अंदर लगाई गई है मैजोंग की टेबल, लोग ठंडे पानी में खेल का मजा लेते दिखे। भीषण गर्मी के चलते इस अनोखे इंतजाम ने पर्यटकों का खींचा ध्यान, पूल में मैजोंग खेलने का वीडियो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। गर्मी से राहत और मनोरंजन का यह अनोखा मेल लोगों को खूब भा रहा है, वाटर पार्क में पूल के अंदर मैजोंग खेलना इन दिनों आकर्षण का केंद्र। मौसम विभाग ने इस साल पहली बार रेड अलर्ट जारी किया, बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी। कनाडा के टोरंटो में पड़ रही भीषण गर्मी, धूप से बचने के लिए लोगों ने लिया पेड़ों की छांव का सहारा। गर्मी से राहत पाने की हर कोशिश जारी है, 40 डिग्री के पार पारा, इसलिए धूप से बचाव पर सबसे ज्यादा जोर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं

0: इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर, ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर, ये गंधपुरा पत्थर में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। ये है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भसम, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा, ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match from today's hits.
3: Somebody save me.
2: to timeless favorites.
3: And life is like a song.
2: And new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: नोएडा एयरपोर्ट से 28 दिनों में 61,000 यात्रियों ने भरी उड़ान, अभी 15 शहरों के लिए मिल रही फ्लाइट कार्गो फ्लाइट की भी सुविधा। तेलंगाना में देवी भ्रमरांबा को अनूठी भेंट, हैंडलूम के मशहूर कारीगर विजय कुमार ने हाथ से बुनी रेशम की साड़ी की भेंट, माचिस की डिब्बी में समा सकती है ये साड़ी। गुजरात के डांग जिले के घने जंगलों में 13 पर्व की धूम, आदिवासी समाज के नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है ये पर्व, खेती और प्रकृति से गहरा संबंध। पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ, भक्तों में भारी उत्साह। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारी जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन कैमरा से रखी जाएगी नजर, कांवड़ियों की सुविधा का किया जा रहा विशेष इंतजाम। भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता लागू, अब बिना ड्यूटी बिकेगा 99% भारतीय सामान, व्यापार को मिलेगी नई उड़ान।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
8: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना स्वीकार, आपके साथ मैं हूं पूजा। आज के भक्तिमय सफर में हम आपको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान जगन्नाथ के दरबार की यात्रा है, और आप सही समझे हैं, क्योंकि हम आपको पूरी के जगन्नाथ धाम ही लेकर चल रहे। दरअसल भगवान जगन्नाथ एकांतवास पर जा चुके हैं, और अब 14 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर निकलेंगे।

0: जगन्नाथ पुरी, जहाँ विराजते हैं नारायण। अरे जगन्नाथ, जिनके रथ यात्रा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है आस्था। अरे जहाँ भगवान अपने भाई बहन के साथ दिखाते हैं लीला। जिस रथ यात्रा के दर्शन मात्र से मोक्ष की मान्यता जुड़ी है। माना जाता है कि पूरी धरती पर ईश्वर की ऐसी अद्भुत रथ यात्रा देखने को नहीं मिलती है। आस्था कहती है कि जिसने भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्पर्श मात्र कर लिया, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है।
1: रथ यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का विशेष मार्ग माना जाता है। मान्यता है कि जो भी इन रथों की रस्सियों को खींचता है या रथ का दर्शन करता है या उस यात्रा में भाग लेता है, उसके सारे कष्ट भगवान जगन्नाथ की कृपा से समाप्त हो जाते हैं।
0: साल भर भक्त लालायित रहते हैं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए। जिनके दर्शन की अखियां प्यासी थी, उनकी मोहनी छवि नैनों में बसावन की पावन घड़ी आ चुकी है। धन्य है पूरी की भूमि और धन्य है वो लोग जिन्हें प्रभु की इस अद्भुत रथ यात्रा रूपी आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। आप भी दीदार कीजिए श्री जगन्नाथ जी के अद्भुत रथ यात्रा का, जहां आंखों के सामने मन को मोह लेने वाला विहंगम दृश्य दिखाई देता है। भव्य ढंग से सजे धजे इन रथों को देखकर लगता है कि पुरी की धरती पर स्वयं उतर आए हैं नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुरी की धरा ने वैकुंठ का रूप धारण कर लिया है, भक्त अपने भगवान में एकाकार हो रहे हों।
1: भगवान जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं। इस दौरान वे अपने मंदिर से निकलकर अपने मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। यह जाति पात के भेदभाव को मिटाकर सभी को भगवान के प्रति प्रेम के एक सूत्र में बांधने का, पिरोने का एक संदेश है।
0: आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की महिमा, साथ ही जानेंगे भगवान जगन्नाथ से जुड़ी मान्यताएं। चलिए आपको रथ यात्रा की मुख्य बातें बताते हैं। भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा की पुरी है, जिसे पुरुषोत्तम पुरी भी कहते हैं। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं, श्री कृष्ण भी उनके अंश हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की अर्ध निर्मित मूर्तियां स्थापित हैं। कहते हैं इन मूर्तियों का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। मान्यता तो ये भी है कि इन मूर्तियों का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार जन सामान्य के बीच जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम जी के पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं। अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं।
1: रथ यात्रा का सबसे विशेष आकर्षण छेरा पहरा होता है, जिसमें पुरी के गजपति महाराज सोने के झाड़ू से रथ के सामने का रास्ता साफ करते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान की नजर में राजा और प्रजा सब समान है।
0: श्री कृष्ण के स्वरूप प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के हर सुख दुख की सुध लेते हैं। तो आखिर क्यों इतना भव्य होता है इस रथ यात्रा का आयोजन और ये रथ यात्रा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। आस्था कहती है कि जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
1: जो रस्सी खींची जाती है उसका स्पर्श कर लें या खींचने का प्रयास करें, इससे दुख दरिद्रता कम होती है। न्याय के देवता माने जाते हैं भगवान जगन्नाथ, ऐसे में तुलसी की माला, नीले पुष्प की माला भगवान जगन्नाथ को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ भोग में खिचड़ी, जिसमें दाल चावल है हो, उसे अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शनि से संबंधित नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है, चाहे वो साढ़े साती हो, चाहे वो ढैया का प्रभाव हो, चाहे महादशा का प्रभाव हो, चाहे अंतरदशा का प्रभाव हो।
0: ये भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्तों का अनुराग ही है। वो मानते हैं कि वो लोग परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें भगवान जगन्नाथ की सेवा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग पूरी की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो कतई निराश न हो। हम आपको बताते हैं कि वे किस तरह से भगवान जगन्नाथ जी का पूजन और दर्शन कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इसी समय में उनकी पूजा करना और प्रार्थना करना विशेष फलदायी होता है। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते तो किसी भी रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। यह भी संभव न हो तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें, भगवान जगन्नाथ को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। जगत के नाथ हैं भगवान जगन्नाथ। मान्यता है कि भगवान श्री जगन्नाथ के शरण में जाकर आप अपनी सभी परेशानियां उनसे कह सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे जगन्नाथ जी की पूजा घर में कैसे कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: क्या कभी भगवान बीमार हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, लेकिन पुरी के भगवान जगन्नाथ धाम से परमेश्वर की एक ऐसी ही कथा जुड़ती है जिसका उपचार सहस्त्र धारा स्नान से हुआ था। कहते हैं कि इस परंपरा में 108 घड़ों के जल से भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक किया जाता है। कथा है कि जगन्नाथ जी ने पहली बार जब पूर्णिमा पर स्नान किया तो वो बीमार हो गए थे। तब वो 14 दिनों तक एकांतवास में रहे और जड़ी बूटियों से उनका उपचार हुआ। 15वें दिन उन्होंने सबको दर्शन दिया। तब से हर साल रथ यात्रा से पहले ये घटना दोहराई जाती है।
3: जया जया जगन्नाथ निरागिरी पति।
0: लीलाधारी श्री कृष्ण का जगन्नाथ अवतार। भगवान के दरबार में लगा भक्तों का अंबार। भगवान जगन्नाथ के प्रति आगाध आस्था से भक्तों का हृदय भाव विभोर हो चुका है। माना जाता है कि आज ये महोत्सव इतना लोकप्रिय हो चुका है कि देश विदेश में भी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। वैसे तो हर कोई पुरी की इस पावन यात्रा में शामिल होना चाहता है, लेकिन सबको ये सौभाग्य नहीं मिल पाता। माना जाता है कि उड़िया मूल के लोग जहाँ जहाँ गए वो अपने साथ भगवान जगन्नाथ से जुड़ी मान्यताओं को भी साथ लेकर गए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस रथ यात्रा का आरंभ कैसे हुआ, इसकी भी रोचक कथा सामने आती है। कहते हैं कि जब बहन सुभद्रा ने अपने भाई से नगर भ्रमण का आग्रह किया तो भाई जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन की इच्छा जानकर निकल पड़े शहर के भ्रमण के लिए। कहते हैं इसी दौरान वे अपनी मौसी रोहिणी के घर यानी गुंडीचा मंदिर गए और तब से ही हर साल ये परंपरा सनातन धर्म का अंग बन गई।
1: जिन्हें दारू ब्रह्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लकड़ी के रूप में साक्षात ब्रह्म। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ और पैर नहीं है। इसके पीछे की मान्यता है कि मूर्तिकार स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने मूर्ति को अधूरा छोड़ दिया था। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर भगवान श्री कृष्ण का पवित्र ब्रह्म पदार्थ हृदय आज भी विराजमान है, जिसे हर साल 12 से 19 साल के 9 कलेवर के रूप में बदला जाता है।
0: लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा में भगवान भी कुछ समय के लिए बीमार हो जाते हैं? तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे वो कौन सी मान्यताएं हैं। रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक प्रभु बीमार रहते हैं। इस समय एक पखवाड़े तक भक्तों के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि को मंदिर में आनासार कहते हैं। इस समय भगवान को जड़ी बूटी और काढ़े का भोग लगाया जाता है। ये परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान स्वस्थ हो जाते हैं, तब उन्हें मंदिर के गर्भगृह में वापस लाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी से भेंट करने जाते हैं। वहां उन्हें तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान अपने घर पूरी वापस लौट आते हैं।
1: भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद का बड़ा महत्व बताया गया है, बड़ी महिमा बताई गई है। यह साधारण भोग नहीं है, यह साधारण भोजन नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा शुभ आशीर्वाद है। पुरी के श्री मंदिर में बनने वाला यह महाप्रसाद की महिमा अनंत है।
0: भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे भक्त कीर्तन करते हुए पुरी से निकलते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। कहा जाता है कि ये रथ यात्रा देश धर्म और तमाम धार्मिक मान्यताओं से परे है, जो वाकई अद्भुत और खास है। बसंत पंचमी से होती है यात्रा की शुरुआत। बसंत पंचमी पर ही रथ बनाने के लिए लकड़ी का चयन होता है। रथ यात्रा के तीनों रथ नीम की लकड़ी के बने होते हैं। नीम की अखंडित पवित्र लकड़ी को दारू कहते हैं। रथों को बनाने का काम अक्षय तृतीया से शुरू होता है। प्रभु की इस महाकल्याणकारी रथ यात्रा को भले ही जगन्नाथ यात्रा कहते हैं, लेकिन इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा भी निकलती है। तीनों ही रथों को बनाने में किसी भी तरह के कांटे कील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। कई मंजिला ऊंचे इन रथों को आज भी हाथ से ही बनाया जाता है। तीनों देवों के रथ सजे संवरे और अलग अलग होते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का ध्वज होता है, बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। साल में एक बार ही भ्रमण पर निकलते हैं जगन्नाथ भगवान। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, जो लाल और पीले रंग का होता है। भगवान बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है, जिसका रंग हरा और लाल होता है। देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन या पद्म रथ है, जो काले और लाल रंग का होता है। ये तीनों गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करते हैं। 7 दिन बाद फिर इसी तरह से देवों को वापस उनके मुख्य मंदिर में लाया जाता है।
1: क्योंकि इनके चमत्कार जो हैं, वो अद्भुत हैं। जैसे मंदिर के शिखर पर लगा जो ध्वज है, वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर एक समान ही दिखता है। मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरें सुनाई देती है। ये 3 अकल्पनीय चमत्कार दिखाई देता है भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेकर।
0: भगवान जगन्नाथ आषाढ़ माह के 10वें दिन पुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यात्रा समाप्त होने के बाद भी तीनों देवी देवता रथ में ही रहते हैं। फिर दूसरे दिन एकादशी को इन्हें मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है, जो भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद करना अद्भुत है।
2: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जितनी पारंपरिक है, उससे भी ज्यादा भगवान का धाम चमत्कारी माना जाता है। आज भी ऐसे तमाम रहस्य और चमत्कार इस धाम में देखने को मिलते हैं, जिसके आगे विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है।

0: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हिंदुओं के सबसे पवित्र उत्सवों में से एक मानी जाती है। माना जाता है कि इस अद्भुत यात्रा का साक्षी बनने और रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए लाखों लोग पुरी पधारते हैं। पुरी भगवान जगन्नाथ का पवित्र धाम है, जिसे पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। आस्था कहती है कि ये पर्व भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। चलिए अब आपको इस रथ यात्रा से जुड़ी हर दिन की मान्यताएं बताते हैं। 16 जुलाई से आरंभ हो रही है पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। 20 जुलाई को हेरा पंचमी है। 23 जुलाई को सुना वेश यानी स्वर्ण आभूषण रस्म निभाई जाएगी। 24 जुलाई को बहुड़ा यानी रथों की वापसी होगी। 27 जुलाई को नीलाद्री विजय की मान्यता है। इसी दिन भगवान का गर्भगृह में फिर से प्रवेश माना जाता है। हेरा पंचमी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाने वाला एक अनूठा और बहुत ही भावुक उत्सव है। हेरा का अर्थ ओडिया भाषा में देखना या निहारना है। ये रथ यात्रा के पांचवें दिन पड़ता है। मान्यता कहती है कि रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं, तो पीछे छूट जाने के कारण देवी लक्ष्मी खुद को उपेक्षित महसूस करती हैं। माना जाता है कि पांचवें दिन देवी लक्ष्मी एक भव्य जुलूस में गुंडीचा मंदिर जाती हैं और वहां भगवान जगन्नाथ को ढूंढती हैं। मान्यता है कि अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ देती हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ उन्हें वापस लौटने का आश्वासन देते हैं और देवी को सम्मान पूर्वक मुख्य मंदिर यानी शिव मंदिर भेजते हैं। ये त्योहार भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी के बीच प्रेम रूठने मनाने और मधुर संबंधों को दर्शाता है। हेरा पंचमी को भक्तगण लक्ष्मी विजय के नाम से भी जानते हैं। 23 जुलाई को सुनावेश की परंपरा निभाई जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि ये कैसी मान्यताएं हैं। सुनावेश एक प्रसिद्ध धार्मिक अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर होता है। यहाँ सुना का अर्थ सोना और वेश का अर्थ है पोशाक या श्रृंगार। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा को सोने के भव्य आभूषणों से सजाया जाता है। ये सजावट भगवान के रथों पर होती है। 24 जुलाई को बहुड़ा यानी रथों की वापसी होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसी है भगवान जगन्नाथ से जुड़ी बहुड़ा की मान्यताएं। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन पर्व है, जिसमें भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर में 9 दिन विश्राम करने के बाद मुख्य मंदिर लौटते हैं। ये वापसी हर साल आषाढ़ शुक्ल दशमी को आयोजित की जाती है। तीनों देव अपने अपने विशाल रथों पर सवार होकर लौटते हैं। इसके बाद 28 जुलाई को नीलाद्री विजय की परंपरा निभाई जाती है। ये रथ यात्रा उत्सव का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों के प्रवास में रहने के बाद मंदिर के गर्भगृह में पुनः प्रवेश करते हैं। इसे नीलांचल यानी पूरी या नीला पर्वत में विजयी प्रवेश माना जाता है। श्री कृष्ण के स्वरूप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की भव्यता देखकर अति प्रसन्न हो जाता है भक्तों का मन। जो भक्त रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए तो ये सौभाग्य की बात है, लेकिन जो भक्त पुरी नहीं जा सकते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कुछ दिव्य प्रयोग।
1: ये दारु ब्रह्म है, लकड़ी के रूप में साक्षात परमात्मा है। पुरी के मंदिर में पूजा का विधान बहुत विस्तृत है, परंतु घर पर आप एक सामान्य रूप से आप पूजा कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति या फोटो की आवश्यकता होगी, जिसे आप पूजा स्थल पर सजा करके अपने सम्मुख रख लेंगे। तत्पश्चात मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। यदि चित्र है तो उस पर गंगा जल की छींटे रहते हैं। श्रृंगार में भगवान को तिलक का चंदन का तिलक लगाना चाहिए। जो भोग आप बनाए हैं, जो पकवान बनाए हैं, जो फल लाए हैं उसका भोग लगाएं और सभी भोगों में तुलसी दल जरूर डालें। उसके बाद भगवान जगन्नाथ की आरती करें।
0: घर के पूजा स्थान पर श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिकृति स्थापित करें, उन्हें सात्विक भोग लगाएं, भोग में तुलसी दल जरूर डालें। इसके बाद श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करें या हरि नाम या महामंत्र का संकीर्तन करें। इस दिन घर में पूरी तरह सात्विकता बनाए रखें। श्री जगन्नाथ जब अपने भक्तों के बीच होते हैं तो भक्ति अपने चरम पर होती है। उनके दर्शनों के लिए लाखों लोग जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, तो इस शुभ घड़ी का लाभ उठाइए जिससे आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा।
2: इसके साथ प्रार्थनाओं स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। सच्ची और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: पधारो हमारे देश, ये केवल आमंत्रण नहीं है बल्कि राजस्थान की पहचान है। शायद यही वजह है कि गुलाबी रंग से सजा जयपुर अब सिर्फ पिंक सिटी नहीं बल्कि दुनिया की हैप्पी सिटी भी बन गया है। टाइम आउट की हैप्पी सिटी इंडेक्स में जयपुर को दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर चुना गया है, जबकि इस सर्वे में इंग्लैंड का बाथ शहर पहले नंबर पर है। तो आखिर क्या है जयपुर की मुस्कुराहट का ये राज, देखिए हमारे सहयोगी विदम जैन की ये खास रिपोर्ट।

0: खुशहाली सिर्फ ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या चमचमाते मॉल से नहीं आती। खुशहाली वहाँ होती है जहाँ लोग दिल से मुस्कुराते हैं, जहाँ रिश्तों में अपनापन होता है और हर मिलने वाला आपसे कहता है पधारो म्हारे देश। शायद यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए जयपुर टाइम आउट की हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में छठे नंबर पर पहुंच गया और इस सूची में जगह बनाने वाला भारत का इकलौता शहर भी बना है।
1: जयपुर को अपने कल्चर, अपने हेरिटेज के लिए तो जाना ही जाता है, पर हाल ही में एक नया टाइटल और इस शहर को मिला है जो कि हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड का है। टाइम आउट ने हाल ही में एक लिस्टिंग निकाली है जिसमें पूरे विश्व भर से 10 शहर अलग अलग जगह के हैं और उनको हैप्पीएस्ट सिटी का टाइटल दिया गया, जिसमें टॉप 6 नंबर पे भारत है और पूरे इस लिस्ट में भारत सिर्फ टॉप 6 में एक बार आया है। और भारत में भी जयपुर वो शहर है जिसको हैप्पीएस्ट सिटी बोला गया है।
0: खुशहाल शहरों के इस रैंकिंग में सिर्फ इमारतों की ऊंचाई नहीं बल्कि लोगों की मुस्कान की गहराई भी नापी गई है। दुनिया भर के 24,000 से ज्यादा लोगों से उनके शहर के बारे में सवाल पूछे हैं। मसलन, क्या आपका शहर आपको खुश रखता है? क्या यहाँ के लोग सकारात्मक हैं? क्या रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी चेहरों पर मुस्कान ले आती हैं? साथ ही संस्कृति, हरियाली, खान पान, कला, सार्वजनिक सुविधाएं, सामुदायिक जुड़ाव और जीवन की गुणवत्ता जैसे हर पहलू को भी परखा गया है और इन कसौटियों पर जयपुर ने दिल जीत लिया है।
1: यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा रिच है। हर कोई यहाँ आना पसंद करता है, चाहे वो छुट्टियां बिताने हो, चाहे वो एक बेसिक वीकेंड हो, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है उसको पर्यटकों का कहना है कि थोड़ी सी पीसफुल होती है। यहाँ आमेर फोर्ट की अभी मैं आपको कुछ झलक दिखा रही हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी हम देख सकते हैं कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो जो पीस जो जितने भी टूरिस्ट हैं वो कहते हैं वो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है।
0: जयपुर वाले भी कहते हैं यहाँ जिंदगी सिर्फ घड़ी की सुइयों के पीछे नहीं दौड़ती बल्कि यहाँ शामें अब भी परिवार के नाम होती हैं, दोस्तों के साथ चाय की महफिलें सजती हैं और यहाँ त्योहार पूरे शहर को एक परिवार बना देते हैं। यही संतुलन, यही सुकून और यही अपनापन जयपुर को सिर्फ रहने की बेहतरीन जगह नहीं बनाता बल्कि दिल में बस जाने वाला शहर बनाता है।
1: जयपुर में थोड़ा अच्छा ऐसा लगता है, ये जो मैन है ना, थोड़ा ओल्ड फैशन सा, मतलब हर चीज बहुत प्यारी है। इसलिए
2: वैसे तो हम लोग बनारस का कल्चर देखे हुए हैं, बनारस में भी लोग जिंदा दिल रहते हैं, वही चीज यहाँ भी है। यहाँ भी लोग जिंदा दिल मतलब खुल के जिंदगी जीते हैं।
0: पर्यटक भी मानते हैं कि जयपुर की हवा में कुछ अलग ही बात है। आमेर का किला हो, हवा महल की खिड़कियां हो, रंग बिरंगे बाजार हो, यहाँ हर मोड़ पर इतिहास भी मिलता है और मुस्कुराते चेहरे भी। यहाँ की रफ्तार महानगरों जैसी भागती नहीं बल्कि जिंदगी को महसूस करने का मौका देती है। शायद इसीलिए जो एक बार जयपुर आता है उसके दिल में इस शहर के लिए एक खास जगह बन जाती है।
1: जो भी यहाँ आता है उसको बहुत ही खुशी से वेलकम किया जाता है और ऐसे ही चाहे वो घूमने आ रहे हो, चाहे यहाँ सेटल होने आ रहे हो, हर किसी का बहुत ही सम्मान के साथ वेलकम किया जाता है। इसीलिए इस जगह को, यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के कल्चर को हैप्पीएस्ट माना गया है, घूमने के लिए भी और रहने के लिए भी। कैमरामैन मनीष के साथ विदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ, भक्तों में भारी उत्साह।

तेलंगाना में देवी भ्रमरांबा को अनूठी भेंट, हैंडलूम कारीगर विजय कुमार ने अर्पित की हाथ से बुनी हुई रेशम की साड़ी, माचिस की डिब्बी में समा सकती है साड़ी। गुजरात के डांग जिले के घने जंगलों में तेरा पर्व की धूम, आदिवासी समाज के नए वर्ष की शुरुआत का उत्सव, खेती और प्रकृति से गहरा संबंध। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारी, सुरक्षा से लेकर सुविधा के खास इंतजाम, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। नोएडा एयरपोर्ट से 28 दिनों में 61,000 यात्रियों ने भरी उड़ान, अभी 15 शहरों के लिए मिल रही है फ्लाइट्स, कार्गो फ्लाइट्स की भी सुविधा।

0: नौसन देश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे, बात जगन्नाथ रथ यात्रा की। तो अब बस कुछ ही घंटों का और इंतजार है और कल सुबह भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे और इस दौरान ओडिशा की पुरी में आस्था और भक्ति का अनंत सैलाब उमड़ेगा। पुरी की सड़कों पर चारों तरफ भक्तों की भीड़ होगी और होगा उत्सव का माहौल। पुरी के साथ साथ देश भर में एक अलग उमंग भी नजर आएगी। बाकी जगहों पर भी प्रभु की रथ यात्रा निकलेगी, तो भक्तों को दर्शन देने आ रहे महाप्रभु। जगत के नाथ की सज गई सवारी, दिव्य दर्शन से होगी हर कामना पूरी। तो क्या है तैयारी, कैसी है तैयारी, रहस्य क्या है, ये सब बातें आज हमारे इस बुलेटिन में हम करने वाले हैं। हमारे साथ देश के बड़े कथावाचक धर्मगुरु भी मौजूद रहेंगे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर देश भर में तैयारियां हो रही हैं। पुरी की सड़कों पर भी कल चारों तरफ भक्तों की भीड़ होगी और होगा उत्सव का माहौल, जिसमें क्या आम और क्या खास हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को बेताब है, ताकि महाप्रभु के मनोहारी दर्शन का लाभ उठाया जा सके। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कल सुबह शुरू होगी, जो कि 24 जुलाई तक विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ ही संपन्न होगी। इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, ऐसे में प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की हैं। यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे रथ मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं, एम्बुलेंस, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो पाए।
1: रथ पथ और जगन्नाथ, यहाँ सब तैयार हैं। पुरी में तीनों रथ पूरी तरह बन चुका है और कल रथ यात्रा के लिए हर तरह की व्यवस्था हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नंदीघोष, तालाध्वज और दर्पदलन रथ पूरा तैयार है। आप देख सकते हैं कपड़ा हो गया, कल तक कपड़ा नहीं लगा था लेकिन आज कपड़ा लग गया है और ऊपर का काम जो बाकी था वो भी हो गया है और खाली कलश लगना बाकी है। आप देख सकते हैं भगवान का तीनों रथ, देवी सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ का तीनों रथ जो होता है, वो तीनों रथ का जो नीति होता है वो नीति अब शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं
2: अभी तो ये हमारा रथ का चलने का तैयारी हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं रथ में सारी रस्सियों को हम तैयार करके रख रहे हैं। ये जो रस्सी है ये रथ का गार्डन का रस्सी है, इनर गार्डन, आउटडोर गार्डन, ये सब गार्डन का रस्सी है। अभी तो सिर्फ भगवान का आज्ञामाल का अपेक्षा है। जब आज्ञामाल आएगा तब हम रथ को खींच के सिंह द्वार में लेके जाएंगे और वहाँ पर हमारा जो रथ का सीढ़ी, हमारा भाषा में जो हम बोलते हैं चारमाल, वो बांधेंगे।
3: पब्लिक के लिए अभी दर्शन बंद है, कहना बहुत गुरे नित्यकांति चल रहा है भीतर में। तेलुगु अभी भगवान का सकल दीपो खिचड़ी भोग होता है। खिचड़ी भोग खत्म होने के बाद भगवान महाप्रभु का आज्ञामाल वो तीन रथ में आएंगे। वो आज्ञामाल लगने के बाद तीन रथ, हाँ, रथ खला में जाएंगे हमारा सिंहद्वार में। और सिंहद्वार में कल सुबह रात 4 बजे मंगला आरती होगा, इसका अवकाश होगा। इसके बाद महाप्रभु का खिचड़ी भोग होगा, मंगला अर्पण होगा। 8:30 बजे भगवान मैया निकलेंगे तीन रथों में।
0: यानी कि महाप्रभु बस अब कुछ ही घंटों में दर्शन देने आ रहे हैं। दरअसल सनातन धर्म में इस रथ यात्रा का बहुत खास महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। इसमें भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजते हैं, फिर तो उड़ीसा के पुरी में गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इस दौरान उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा साथ साथ चलते हैं। रथ यात्रा पूरे भारत में पर्व की तरह निकाली जाती है। भगवान मंदिर से निकलकर आम लोगों के बीच पहुंचते हैं। पुराणों में इस रथ यात्रा की काफी महिमा बताई गई है। रथ यात्रा में सबसे आगे तालध्वज रथ होता है। तालध्वज रथ पर बलराम विराजते हैं। तालध्वज रथ के पीछे पद्मध्वज रथ होता है। पद्मध्वज रथ पर प्रभु जगन्नाथ की बहन सुभद्रा विराजती हैं और सबसे अंत में गरुड़ध्वज रथ होता है। गरुड़ध्वज रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। ये तीनों रथ मंदिर से गुंडीचा माता मंदिर पहुंचते हैं। गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर भगवान अपने मंदिर में वापस लौट आते हैं। चलिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 16 जुलाई यानी कि कल से रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, शुभारंभ होगा। 20 जुलाई सोमवार का दिन है जब हीरा पंचमी है, उसके बाद 23 जुलाई संध्या दर्शन प्रभु के किए जा सकेंगे, 24 जुलाई यानी शुक्रवार का दिन जब बहुधा यात्रा होगी। तो क्या क्या कार्यक्रम इस दौरान रहने वाले हैं, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूं। फिलहाल तो सीधी तस्वीरें वहां से अजयनाथ मेरे सहयोगी दिखाएंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पंडित डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा जी मौजूद हैं। ये ऑथर हैं और उड़िया स्कॉलर भी हैं और इन्होंने भविष्य मलिका पुराण को 40 साल तक उस पर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पंडित श्रीपति आचार्य एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं भुवनेश्वर से सीधा, आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हैं कथावाचक, और साथ ही साथ डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शुरुआत पंडित डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा जी आप ही से करेंगे, कितनी महिमा कितना महत्व है इस रथ यात्रा का, कल से इसकी शुरुआत होने वाली है क्योंकि देश नहीं विदेशों से लोग पहुंचते हैं, लाखों में इसकी संख्या भक्तों की यहां पर होती है जो कि पहुंचते हैं, मौसम की दुश्वारियां चाहे जैसी भी हो लेकिन बावजूद इसके आस्था कभी कम नहीं होती, दिन ब दिन साल दर साल ये बढ़ती जा रही है।
4: जय जगन्नाथ। स्कंद पुराण के अनुसार जगन्नाथ महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन अपने कर्म वेदी से जन्म वेदी की ओर यात्रा करते हैं और जिस समय भगवान महाविष्णु जगन्नाथ स्थूल रूप धारण करके जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सभी जातियों का भगवान जगन्नाथ है, सभी धर्मों का भगवान जगन्नाथ है, इसी कारण जगन्नाथ महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन सारा ब्रह्मांड में भुवन विदित यानी ब्रह्मांड में सर्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को भक्तों के लिए खुद भगवान करते हैं। जब जगन्नाथ जी पहले ब्रह्मदेव ने प्रतिष्ठा किया तब जगन्नाथ महाप्रभु उसी समय ब्रह्मदेव को बताए थे, मंच स्नानम रथ वर गति चायनं सायनं द्वयः पार्श्वभृति शयनं निवृति पार्वणं पुष्य पूजा दोळ केळी दमनं चाबी अंपपूर्ण तृतीयः एषां यात्रा भुवन वंदित द्वादशेयो नरेंद्र। ब्रह्मदेव को जगन्नाथ जी ने बताया, बोले 12 महीने में मेरा 12 यात्रा होगा, उसमें 3 मुख्य यात्रा होगा, दोळश्च दोळ गोविंद मंचस्त्वं मधुसूदनम रथत्वं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सारा ब्रह्मांड के भक्तों का उद्धार के लिए मेरे मुख्य 3 यात्रा होगा, एक दोळ वेदी पर मैं दोळ गोविंद के रूप में पूजित होऊंगा, स्नान मंडप पर मैं गजानन रूप में पूजित होऊंगा
0: जी,
4: और रथ पर जब मैं रथारूढ़ होऊंगा तब मेरे को वामन के रूप में भक्त लोग दर्शन करके भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होगा और सीधा मनुष्य का मुक्ति होगा, भक्तों का मुक्ति होगा, ये यात्रा निर्वाण यात्रा, ये यात्रा मुख्य यात्रा, ये यात्रा भक्तों का यात्रा, ये यात्रा पतित पावन यात्रा, ये यात्रा ब्रह्मांड के सारे भक्तों को उद्धार करने के लिए, स्वयं आदि विष्णु सनातन जगन्नाथ निराकार स्वरूप निर्विकल्प सर्वतंत्र स्वतंत्र जगन्नाथ महाप्रभु आचार्य

0: स्थूल रूप में भगवान दर्शन देंगे। उनका मानवीय जिसको बोलते कि जैसे हम लोग का लाइफस्टाइल होता है वैसा ही लाइफस्टाइल में उनका दर्शन कल होगा। भगवान जी का कल जो शुरू होगा जैसे पहले ही कि मंदिर में कल से बिफोर डे उनका शुरू हो चुका है, जो कि देवस्नान पूर्णिमा से शुरू हुआ था। उनका ये रिचुअल स्टार्ट हो चुका है डे बाय डे, उनका रोज रोज एक एक पर्व जो कि रिचुअल्स वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कल जो होगा जैसे कि हम लोग का ये जो अमावस्या था, नवजवन दर्शन जो हुआ था उसके बाद, वो जो अनशन में थे मीन्स आइसोलेशन में थे, जब उनका स्नान हुआ था उसके बाद उनको बुखार हो गया था, वो जो रिचुअल्स खत्म हुआ नवजवन दर्शन के बाद, वो भी सारे विश्व के दर्शकों को पूरा रिचुअल के साथ, वो यात्रा के साथ, वो मानवीय लीला के साथ भगवान जी ने दर्शन देंगे। तो ये जो रथ यात्रा शुरू होगा कल, कल पहले कि ये रिचुअल्स में पहले जो हम लोग का बोला जाता है उड़िया में कि भगवान का जो पूजक होते हैं पंडा लोग, उन लोग का दायित्व तो नहीं है, यहाँ पे रहेंगे वो पुराण में जो वर्णन वर्णन है कि दैता सवाय, वो लोग सब आएंगे जो कि उनका बिफोर जेनरेशन जो कि उनके साथ जुड़े हैं, जो साबर जाति बोले जाते हैं यहाँ पे उड़िया में हम लोग का, कि ये चारा साबर जो थे भगवान श्री कृष्ण के साथ, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उसी दिन से वो उनके साथ है, अभी ये रथ के ऊपर उन लोग का दायित्व आ जाएगा। तो दैत्य सवायत ने वो लोग कल रिचुअल स्टार्ट करेंगे। पहले रिचुअल्स में कि भगवान जी का रथ के ऊपर जब आएंगे, जो कि आज्ञामार आ चुका है कि भगवान आएंगे, तो आज जो कि रथ सिंह द्वार के सामने पहुंच चुका है, तो कल से भगवान रथ के ऊपर आएंगे। बट यहाँ पे रोल आएगा शंकराचार्य भगवान जी का। जो पहले भगवान जी का जो रथ यात्रा शुरू हुआ था, तो शंकराचार्य भगवान ने वहां पे जो कि भगवान जी को पूजा करने के बाद वो यहाँ पे आएंगे, तो उसके बाद कि रथ के ऊपर आने के बाद उनका रिचुअल स्टार्ट होगा। तो टाइम टू टाइम कि हम लोग का एक पहले से इतिहास जुड़ा हुआ है, उड़ीसा के एक राजा थे पुरुषोत्तम देव
1: जी,
0: वहां पे जब रथ यात्रा हुआ था जो एक था रिचुअल्स छेरा पहारा, मीन्स यहाँ पे कि रथ के ऊपर महाराज आएंगे जो कि हम लोग का गजपति बोला जाता है, पूरी उड़ीसा के गजपति बोला जाता है, तो भगवान आपका राजा आएंगे तो वहां पे छेरा पहरा करेंगे, जो रिचुअल शुरू होगा, उसके बाद रथ यात्रा का टाइम टू टाइम भगवान जी का शुरू हो जाएगा रिचुअल्स।
1: बिल्कुल, चलिए रिचुअल्स क्या हैं, इसके पीछे की क्या क्या मान्यताएं हैं, ये सब आगे आपसे जानेंगे। आचार्य राजमिश्रा जी, अब क्योंकि शुरुआत हो रही है कल से रथ यात्रा की, मैं चाहूंगी जरा अलग अलग रथों के बारे में भी बताइए, किन मायनों में अलग अलग रथ खास होते हैं, अलग अलग रथों की विशेषताएं क्या है?
2: देखिए रथ की अलग अलग रथों की अलग अलग विशेषताएं, लेकिन एक विशेष जो हर रथ की एक विशेषता के बारे में भगवान राम ने कहा था, मैं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय अगर मौजूद जी मैं थोड़ा और वर्णन करने का प्रयास करूं, इस बार की रथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भगवान जगन्नाथ का जो हृदय, जिसके बारे में कि वर्णन आता है और प्रति 12 वर्ष पर जिसको परिवर्तित किया जाता है, जो दूसरे एक जो दूसरी एक मूर्ति बनाई जाती है उसके अंदर जो रखा जाता है, जो भगवान कृष्ण का वास्तविकता में हृदय माना जाता है। इस समय मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल वे लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे नाम के आगे ज्योतिषाचार्य लिखा भी है। तो कल जब रथ यात्रा का प्रारंभ होगा तो काल पुरुष का जिसको हृदय कहा जाता है, वहां पर धर्म के सबसे प्रबल प्लैनेट बृहस्पति गजकेसरी योग को बनाते हुए चंद्रमा के साथ विराजमान होंगे। तो कल का जो समय होगा वो बहुत सुंदर होगा, जो रथ यात्रा का प्रारंभ होगा वो वास्तविकता में हृदय की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। अब भगवान राम ने श्रीरामचरित मानस के अंतर्गत रथ के विषय में विभीषण जी से भगवान राम ने प्रश्न किया था, जब आप लोग अगर रावण रथी विरथ रघुवीरा और देखी विभीषण भयो अधीरा, रावण को रथ पर विराजमान देखा, उसका रथ बहुत डिफरेंट तरीके का था और भगवान राम के पास कोई रथ नहीं था, और उसको देख करके भगवान राम के पास विभीषण जी आते हैं और विभीषण जी से भगवान राम रथ की महिमा का वर्णन करते हैं कि जो रथ है उसकी महिमा क्या है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के ही स्वरूप भगवान राम भी हैं, इसलिए उन्होंने बड़ा सुंदर अपने मुख से वर्णन किया है। तो

0: कहते हैं कि सखा धर्म में असरथ जाके, जो जो रथ है उसको धर्म का एक स्वरूप माना जाता है। सखा धर्म में असरथ जाके और जीतन कह न कतहु रिपुता के, जो वास्तविकता में रथ को खींचता है, जो इस रथ यात्रा के दर्शन करता है, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में कोई शत्रु परास्त नहीं कर सकता है। लेकिन रथ होने का, रथ किस चीज का स्वरूप है और रथ हमारे हृदय में किस चीज का स्वरूप है, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा कि सौरज धीरज तह रथ चाका, जो रथ के दोनों चक्के हैं, जिसको चाका कहा जाता है, जो पहिया कहा जाता है, वो हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमारे धैर्य का प्रतीक है, जो हमारे जीवन के अंदर हमारा धैर्य है, जो हमारा शौर्य है, वो वास्तविकता में दोनों रथ का पहिया है। सौरज धीरज तहीं रथ चाका और सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, जो जगन्नाथ भगवान के ध्वजा जो ऊपर लहराई जाती है वो सत्य और शील का प्रतीक कहा जाता है। किसी भी रथ के ऊपर जो एक्चुअल में ध्वजा होता है, जो पताका जिसको कहा जाता है, वो सत्य और शील का प्रतीक कहा जाता है। उन्होंने कहा बल विवेक दम परहित घोड़े, जो रथ को चलाने वाले, जो उसको खींचने वाले घोड़े होते हैं, या जिस प्रकार यहाँ जो रथ खींचा जाता है, यहाँ पर जो मनुष्य है, जो हम लोग श्रद्धा पूर्वक जाकर के उस रथ को खींचते हैं, उन्होंने कहा बल विवेक, बल और विवेक, वो भी बल हो, बुद्धि हो, विवेक हो, लेकिन वो दम रहित हो, अहंकार रहित हो, उसको घोड़ों का स्वरूप रथ के पहिए के अंतर्गत कहा गया है। और क्षमा कृपा समता रज जोरे, जो रथ की रस्सी स्पेशली कहा गई है, रथ की रस्सी को, जिस प्रकार रथ की रस्सी सबको कनेक्ट करके रखती है, उसी प्रकार आपके अंदर हृदय में रथ इस चीज को सूचित करता है, जगन्नाथ भगवान की वो रस्सी सूचित करती है कि किसी के अंतर्गत आपस में अहंकार नहीं होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए, क्षमा और कृपा से जो परिपूर्ण व्यक्ति है, और जब आप रथ की रस्सी खींच भी रहे हैं तो आपके अंदर वो क्षमा और कृपा विद्यमान होना चाहिए। तो रथ की अगर महिमा का वर्णन नवजोत जी करना शुरू करेंगे उससे भगवान राम की शब्दों में शायद घंटा भर लगेगा, लेकिन सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो आज इस पर चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, और दर्शन भी साथ साथ भगवान जगन्नाथ के कर रहे हैं।
1: हम सीधे दर्शन भी कराएंगे क्योंकि मेरे सहयोगी वहां से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अभी की जो तस्वीरें हैं वहां पर किस तरह का माहौल है, देश ने विदेशों से भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, और कहा तो ये भी जाता है कि बुकिंग्स बहुत महीनों पहले से ही वहां पर हो जाती है, अगर अभी आप प्लान करेंगे वहां जाने का तो शायद आपको उतनी बुकिंग्स मिल पाए। तस्वीरें सीधी वहां से दिखाएंगे सुमित्रा जी आपके पास आते हुए। बहुत सारी मान्यताएं इसके साथ भी जुड़ी हुई हैं। कहा यह भी जाता है कि ध्वज जो है वो हवा के विपरीत लहराता है। यहां की जो किचन है उसमें खाना कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितने भी श्रद्धालु यहां पर आ जाए। इस तरह की बहुत सारी महिमाएं हैं जो कि कहा जाता है कि प्रभु की कृपा से ये सब होता है।
2: सबको पहले जयंती के माध्यम से शुभकामनाएं इस यात्रा की। देखिए शब्द ही शुरू होता है रथ यात्रा, मतलब एक यात्रा है ये, जिसमें जीवन की पूर्णता बताना चाहते हैं कि घर की वापसी में ही पूर्णता होती है। अगर इस यात्रा को शुरू से समझें तो आप देखिए, हम यहाँ बता रहे हैं कि यात्रा में भगवान सुभद्रा को ले जाते हैं द्वारका घुमाने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जब वो द्वारका में घुमाने के लिए रथ पे ले जा रहे थे तो ये यात्रा पूरी में क्यों की जा रही है, एक सवाल आ सकता है हमारे मन में। ये यात्रा पूरी में किस लिए होती है, क्योंकि अगर इसको देखें स्कंद पुराण के अनुसार अगर बात करें तो जब भगवान ने अपने देह को त्यागा था तो अर्जुन ने लास्ट में उनका देह संस्कार किया था। जब ये संस्कार किए तो भगवान का हृदय रह गया था, वो नहीं जला। अब वो हमें इसे जल, हम देखते हैं हमारे धर्म में क्या होता है, जो भी बच जाता है हम उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो उन्होंने एक दिव्य बॉक्स में, लकड़ी के डब्बे में इसे प्रवाहित कर दिया। अब ये जो डब्बा है ये पानी में बहते बहते कहाँ पहुंचता है, ये नीलाचल पुरी में पहुंचता है, समुद्र के तट पे। राजा इसे वहां से उठा लेते हैं, वो विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और बोलते हैं आप इससे तीन मूर्ति बना दीजिए, जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की। और जब ये तीनों मूर्ति जब बना रहे होते हैं तो भगवान का जो हृदय है ना, इसमें इसको बोलते हैं ब्रह्म पदार्थ। ठीक है, ये जो अभी पंडित जी ने बताया कि इसे हम बहुत सारे रिचुअल्स इससे भी जुड़े हुए। जब ये बना रहे थे मूर्ति तो बोला गया था कि कोई अंदर मत आओ, लेकिन रानी ने रिक्वेस्ट किया, राजा अंदर गए तो भगवान गायब हो गए। तो मूर्ति पूरी बनी हुई नहीं है, और जब आपने जैसे बताया कि इसमें जितने भी, अगर इसमें एक और दूसरा रहस्य भी ये है कि इसमें आध्यात्मिक पक्ष भी है कि ये यहाँ पे यात्रा क्यों शुरू की गई। हम लोग बोलते जो मुख्य जो मंदिर है ना, इस मुख्य मंदिर को एक्चुअली हम मान रहे हैं कि ये द्वारका है, और जो ये अपनी मौसी के घर जा रहे हैं ये है वृंदावन। भगवान, क्योंकि जब द्वारका में रहते हैं कृष्ण भगवान, तो वहां वो ऐश्वर्य के साथ रहते हैं और राजा के रूप में रहते हैं, पर उनका मन हमेशा वृंदावन में जाने का इच्छा रखता है कि मैं मेरे माता के पास जाऊं, पिताजी के पास जाऊं, गोपियों के प्रेम में जाऊं। तो ये जो यात्रा है ना, ये पुरी के मुख्य मंदिर से द्वारका जाने की यात्रा आप समझ सकते हैं कि वहां जाकर 9 दिन वो रहते हैं, अपनी मौसी के घर में रहते हैं, और जो गुंडीचा मंदिर है उसको एक्चुअली वृंदावन का प्रतीक ही माना जाता है।
1: बिल्कुल
2: तो जब यहाँ पे एक एक जो सच्चे प्रेम की जो ताकत होती है इस पूरे यात्रा में भी दिखाई जाएगी। जैसे रथ देखिए बीच में एक जगह जाके अपने आप रुक जाता है, वो एक ऐसा जगह जहाँ पे एक मजार है, वो वहां इसलिए रुकते हैं क्योंकि वो सच्चे प्रेम की ताकत
1: काशीनाथ
2: को
1: जी
2: वहां
1: आपके
2: पर
1: पास आती
2: दर्शा
1: है,
2: रहे
1: एक
2: हैं।
1: बार सुमित्रा जी बात रख ले पूरी। जी सुमित्रा जी,
2: और अगर रथ यात्रा भी जो हो रही है आप देखिए, इसमें देखिए मौसम चेंज होता है, मैं बचपन से ही देखती हूँ रथ यात्रा को टीवी पर, तो अचानक से मौसम चेंज होता है, थोड़ी थोड़ी बारिशें होती है,
1: जी जी
2: तो उससे एक हमें ये समझना चाहिए कि जितनी भी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दैवीय राहत जरूर मिलती है। परेशानी चाहे कितनी भी चरम सीमा पर हो, कुछ सुकून की बारिश जरूर होती है।
1: बिल्कुल
2: तो यह पूरी यात्रा अगर आप देखें, अगर आप ध्वजा भी बोलते हैं कि विपरीत दिशा में अगर वो चल रही है, मतलब हमारे जीवन में अगर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमें ये समझना है कि हमें चलना तो है, और
1: बिल्कुल
2: अगर हम एकदम आस्था के साथ अगर भगवान के हाथ पकड़ ले, तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं और हमारे साथ खुद चलते हैं। इस
1: बिल्कुल,
2: पूरी
1: और हमें
2: यात्रा में वो
1: रास्ता
2: खुद चल
1: दिखाते
2: के जा
1: हैं,
2: रहे हैं।
1: सही रास्ता दिखाते हैं। जी जी काशीनाथ मिश्रा जी।
0: जय जगन्नाथ, मैं कहना चाहता हूं, देखिए स्कंद पुराण में ये लिखा है, इंद्रदिम्न नामे राजा सत्य युगे भविष्यति। जब जगन्नाथ महाप्रभु माता महालक्ष्मी के साथ वराह कल्प के समय में जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिस समय कोई युग चक्र का प्रवर्तन नहीं हुआ था, ना सत्ययुग आया था, ना त्रेता आया था, ना द्वापर आया था, ना कलयुग आया था। तो इसीलिए कई लोग विचार करते हैं कृष्ण भगवान के शरीर का अंश अवशेष हृदय आके जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र बना। इसके ऊपर मैं किसी को बोलना नहीं चाहता हूं, पर स्कंद पुराण में लिखा है, राजा इंद्रद्युम्न 1,000 अश्वमेधी यज्ञ किया। 1,000 अश्वमेधी यज्ञ करने के बाद पहले नरसिंह भगवान का उत्पत्ति हुआ, फिर उसका बाद यज्ञ कंटिन्यू हुआ, और कुछ ही समय तक भगवान का कोई निर्देश नहीं मिला। इंद्रदिम्न राजा दुखित हो गए, और उसी समय भगवान उनको सपना में आके बताएं, जगन्नाथ महाप्रभु महोदधि समुन्दर में आके लकड़ी के एक बड़ा विराट लकड़ी आके वहीं पर आके विद्यमान है, उनको लाके विश्वकर्मा जी के द्वारा जगन्नाथ महाप्रभु के विग्रह का स्थापन होगा। ब्रह्म मूर्ति और ब्रह्म का बात जो आता है, ये एक बात मैं कहूं, एते चांस कड़ा स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण भगवान थे, राम भगवान थे, बुद्ध देव भगवान थे, चैतन्य भगवान थे। अब देखिए जब कृष्ण भगवान अपना परम धाम को गमन करे,
1: जी
0: मेरे विचार से कृष्ण भगवान का दाह संस्कार ये कोई भगवान का जरूरत नहीं होता है मेरे विचार से। और कृष्ण भगवान का जो जो शरीर का जो ब्रह्म शक्ति, वो अपनी इच्छा से, क्योंकि उनके नाम इच्छामय है, तो इच्छा से वो जगन्नाथ शरीर से आके समा गए। ऐसे विचारधारा शास्त्रियों में ही मिलता है,
1: ठीक
0: और
1: है।
0: स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है, सत्ययुग में पहले जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिस समय आके जम देवता आके प्रार्थना किया
1: जी
0: भगवान को, प्रभु सारे क्षेत्र तो आपने बना दिया, जहां सबको मुक्ति मिलेगा, पापी को मुक्ति मिलेगा, जितने बड़ा गलत कर्म करने वाले लोग यहाँ साजुजे मुक्ति मिलेगा। तब महालक्ष्मी और जगन्नाथ दोनों बताए, बोले ये क्षेत्र पाप विमोचन क्षेत्र है, और सत्ययुग जब होगा तब राजा इंद्रदिव्य आएंगे,
3: इसका मंदिर प्रतिष्ठा करेगा, और उससे पहले जगन्नाथ और माता महालक्ष्मी वहीं पर थे, आज भी है, कई अनंत समय से जगन्नाथ क्षेत्र विद्यमान है जिसका कोई इतिहास हम नहीं बता पाएंगे। और रथ पर आरूढ़ होके प्रभु प्रमाण करते हैं, मैं कोई मेरे को माने ना माने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, मैं सबका देवता हूँ, मैं सबका सृष्टा हूँ, मैं सबको पालन करता हूँ। रथारूढ़ो गच्छन् अति मिलित भूदेव पटलैः श्रुतिर् प्रादुर्भावम् प्रतिपदं मुपाकर्ण सदया दया सिंधुर बंधु सकल जगदां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगा आमी भव तुमे। जगन्नाथ सबका स्वामी है और जगन्नाथ महाप्रभु अपने नील कंदर से और
1: जी
3: अपने रत्न सिंहासन से स्थूल शरीर धारण करके सारा विश्व की पतितों को उद्धार के लिए ये पतित पावन यात्रा, इस यात्रा का नाम पतित पावन यात्रा, यानी जो पतित है, जो दुखी है, जो पापी है, जो सदा सदा निस्तारण मांगते हैं कृतार्थ के लिए, उसी के लिए जगन्नाथ जी भुवन विदित यानी ब्रह्मांड विदित ये यात्रा करते हैं। ये यात्रा को देवता लोग सब आते हैं, इंद्रदेव आते हैं, ब्रह्मदेव आते हैं, शंकर भगवान आते हैं, सारे
1: डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा जी बिल्कुल यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपसे और मान्यताएं भी समझेंगे, साथ ही साथ क्योंकि रथों का भी बहुत खास महत्व होता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।

0: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

हज यात्रा के 9 दिन 9 संदेश शुरुआत कल से होने वाली, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलेंगे पुरी और दिखाते हैं वहां का माहौल कैसा है। इस वक्त अजयनाथ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, तस्वीरें हमें जरा वहां से दिखाइए, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही घंटों का, कुछ ही पलों का और इंतजार है, जिसके बाद यात्रा की शुरुआत हो जानी है। अभी वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, तैयारियां कैसी हैं वहां पर अजयनाथ?

0: चले लगता है अजय तक आवाज नहीं पहुंच
1: सर
0: पा
1: सर
0: रही।
1: आवाज आ रहा है?
0: जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं अजय।
1: सर आवाज आ रहा प्लीज।
0: चलिए अजय लौटेंगे आपके पास लौटेंगे, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। पंडित श्रीपति आचार्य आपके पास आना चाहूंगे। मैं चाहूंगी कि तीनों रथों के बारे में भी आप हमें बताएं, इनकी खासियत क्या होती है, चाहे वो पहला जिसको हम नंदी घोष कहते हैं, ताल ध्वज या फिर दर्प दलन, तीनों रथों की क्या क्या विशेषताएं हैं।
1: जय जगन्नाथ सारे दर्शकों को मैं बताऊंगा कि ये जो हम लोग का रथ है, जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का, पहले हम जाएंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी के पास जो कि नंदीघोष होता है, तो उसमें हम देखेंगे तो ये रथ जो है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का वो पुराण से वर्णन है कि दैट इज स्पेशल कि भगवान जो है भगवान श्री जगन्नाथ वो भी मिरेकल भगवान है जिनका ये मंदिर का 500 मीटर दूर में दूर से मीन्स 500 रेडियस में भी हर चीज मिरेकल है। तो ये रथ भी मिरेकल है जिसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें 832 पीसेस ऑफ हम लोग का वुडन लकड़ी से वो बना हुआ है। तो उसमें जैसे कि हम लोग का 16 उसमें पहिया जो चक्का है जो कि व्हील है और साथ में उसका हाइट 44 फीट 2 इंच है। और उसका जैसे कि ये जो रस्सी लगा हुआ है इसको भी हम बोल देखेंगे तो 32 इंच का है। और साथ में इसमें हम लोग का जो रक्षक है वो रथ का जो हम लोग बोलते हैं कि जो चलाते हैं उसको ये है भगवान गरुड़। और साथ में इनका सारथी भी है जिसका नाम भी है दारुक दास। साथ में उसका जो ध्वजा है ये ध्वजा में त्रैलोक्य की मोहिनी ध्वजा है। भगवान श्री जगन्नाथ जी इसमें बैठते हैं और साथ में इसमें सारे देवता है वहां पे है। क्यों कि हम लोग का मान्यता है कि भगवान जी ये सारा विश्व का भगवान है, जगत का नाथ है, जो कि ये जो मानवीय लीला है जो रथ यात्रा है इसमें क्या होता है कि हम इतिहास को जाएंगे तो जो भी है धर्म जाजक वो पूरी आया है। कहा
0: जी
1: क्या था कम्युनिकेशन उसी टाइम सब आए थे। उसी हिसाब से देखा जाए तो ये रथ यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ जी भगवान श्री बलभद्र भगवान माँ सुभद्रा ये जो जाएंगे उसके बाद सेकेंड जैसे कि बलभद्र भगवान जी का जो रथ है इनका नाम है तालध्वज
0: जी
1: जिसका कि इसमें हाइट आपका आ जाएगा 43 फीट।
0: बिल्कुल
1: साथ में जो कि देवी सुभद्रा माँ का आएगा वो है दर्प दलन जिसमें 42 फीट 3 इंच का है। ये तीनों में क्यों एक एक फीट का गैप है कि
0: बिल्कुल
1: भगवान श्री जगन्नाथ कभी अकेले नहीं जाते हैं,
0: हाँ
1: सारे विश्व के भक्तों को लेके जाते हैं क्योंकि वो भक्ताधीन भगवान होते हैं, वो भक्त के अधीन है। वो सारे भक्तों को वही बोले हैं कि इस साल में एक बार आऊंगा वो 9 दिन का मैं लीला करूंगा तो उसी में आप सब आ जाइए आपका जो पाप है मैं सबको
0: बिल्कुल,
1: आहरण
0: और
1: कर
0: यही
1: दूंगा।
0: एक बड़ी वजह है, बिल्कुल यही एक बड़ी वजह है कि देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। हम एक बार फिर से अजय नाथ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सीधा सा सवाल है, तस्वीरें हमें वहां के आसपास की दिखाइए, कैसी रौनक है वहां पर इस वक्त।
1: बिल्कुल मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा, पूरी से दिखाऊंगा ये तस्वीर। अब तीनों रथ पूरी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं ये भगवान जगन्नाथ के मंदिर के एकदम सामने तीनों रथ अब खड़े हो चुके हैं और कल रथ यात्रा के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखेंगे ये मैं रथ का पहले पिछले वाला हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो अरुण स्तंभ है, अरुण स्तंभ के एकदम नजदीक में लगा हुआ है नंदी घोष, दर्प दलन और ताल ध्वज, ये तीनों रथ मौजूद है और कल रथ यात्रा के लिए हर तरह की व्यवस्था हो चुकी है। आपको ये भी मैं दिखाऊंगा, अब से लोगों का ये भीड़ आप देख सकते हैं, लोगों का भीड़ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। अब से हजारों तादाद में लोग भक्त जुड़ रहे हैं, कल रथ यात्रा देखेंगे। यहीं से आप देख सकते हैं लोग यहाँ नीचे बैठ भी गए हैं, कुछ लोग सो भी जा रहे हैं, तो ये जागा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आज एक ही रात का दिन, मतलब एक ही रात है बाकी, बस कल सुबह ये लीला शुरू होगा, भगवान का ये अपूर्व लीला शुरू होगा। इसलिए देखिए लोग सो रहे हैं, यहीं सोएंगे, यहीं पे बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कल तक इंतजार करेंगे, भगवान को देखेंगे। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा, यहाँ फायर टीम भी मौजूद है, फायर का गाड़ी भी यहाँ रखा हुआ है, इसके साथ साथ फास्ट एड सेंटर भी खुल गया है, और फास्ट एड सेंटर जहां पे लोगों को कुछ भी दिक्कत होता है तो लोगों को लेने के लिए एम्बुलेंस भी मौजूद है, और इसके साथ साथ पुलिस बल तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, और ये आप देख सकते हैं भाई बहन भगवान जगन्नाथ, भाई बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, जैसे ही रिचुअल हुआ है, जैसे ही सिस्टम बना गया है, जैसे ही नीति बना,
0: बिल्कुल चलिए अजय नाथ मैं लौटूंगी आपके पास, हमें तस्वीरें अजय लगातार वहां से दिखा भी दे रहे हैं, लेकिन जल्दी से आचार्य राजमिश्रा जी आपके पास आते हुए, हर दिन की अलग अलग मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, क्या क्या रहने वाली हैं?
2: देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले दिन रथ यात्रा का प्रारंभ होता है, और उसके साथ तीनों जो भगवान भगवान जगन्नाथ हैं, बलभद्र हैं और सुभद्रा हैं, तीनों को रथ के अंतर्गत बिठाया जाता है और रथ की तैयारी होती है। सो पहला दिन जो कहा जाता है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति प्रारंभ होती है श्रद्धा से। तो पहले दिन का तात्पर्य है कि यदि आपको जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले दिन उस श्रद्धा को रिप्रेजेंट करता है, और जैसा कि श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आएगा, श्रद्धा विश्वास रूपेण, परमात्मा श्रद्धा से प्राप्त करने का विषय है श्रद्धा, और तो पहला दिन रिप्रेजेंट करता है श्रद्धा को। यहां पर श्रद्धा पूर्वक ला करके तीनों देवताओं को, देवी को और दोनों देवताओं को ला करके रथ के अंदर अलग अलग बिठाया जाता है। दूसरा दिन जब भगवान गुडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं, गुडीचा मंदिर में वो विराजमान होते हैं और उनका वहां विशेष पूजन इत्यादि होता है, तो उसको कहा जाता है सेवा संदेश। श्री रामचरित मानस के अंतर्गत भगवान हनुमान जी ने विभीषण से कहा था कि सुनो विभीषण प्रभु की रीति और करण सदा सेवक पर प्रीति, परमात्मा सेवा से प्रसन्न होते हैं, और जो दूसरा दिन भगवान की रथ यात्रा का रिप्रेजेंट करता है वो सेवा को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब मेरे धर्म की एक और शाखा जिसको हम सिख धर्म कहते हैं, तो वहां पर जो सबसे बड़ा महत्व दिया गया है वो सेवा को महत्व दिया गया है। तो जो भगवान की रथ यात्रा है वो दूसरा दिन जो रिप्रेजेंट करता है वो सेवा को, फिर तीसरे दिन भगवान भक्तों और श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं, विशेष भोग और आरती होती है, जहां पर भगवान राम का वो शब्द की सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब लोग मुझे प्रिय हैं और सब लोग मेरे हैं, तो भगवान भक्त को एक समान दृष्टि से दर्शन देते हैं, उसमें कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ईच कोई ऊंच कोई नीच वाली परंपरा जो तीसरे दिन है वो विशेष रूप से खत्म हो जाती है। फिर चौथे दिन की अगर बात की जाए तो सेवा और भोग विनम्रता का संदेश, जब आप सेवा और भोग जो है वो विनम्रता का संदेश देता है, जब भी आप किसी की सेवा करते हैं तो आप अपने अहंकार को और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अहंकार को नष्ट कर दें, ठीक है, तो वो परिस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। और चौथा दिन नवजोत जी उसी को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा दिन जो है जहां पर हेरा पंचमी कहा जाता है, जहां पर माता लक्ष्मी और श्री मंदिर से गुडीचा मंदिर आती हैं और भगवान जगन्नाथ को बिना बताए जाने का प्रतीकात्मक जो एक नाराजगी वाला विषय है, पांचवें दिन स्पेशली उसका किया जाता है, और उसको प्रेम संदेश कहा जाता है। किसी रिश्ते के अंतर्गत आपस में प्रेम होना बहुत महत्वपूर्ण है, रिश्ते में एक दूसरे से नाराजगी हो सकती है लेकिन दूसरे को मनाना आना चाहिए, भगवान ने समाज को एक सुंदर संदेश देने का प्रयास किया है नवजोत जी। उसी प्रकार से छठा दिन जहां पर गुडीचा में विश्राम और दर्शन होता है, भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं और विशेष धार्मिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजन किया जाता है, जहां पर धर्म संदेश है, जहां कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षता, श्री रामचरित मानस के अंतर्गत एक चौपाई कहा गया कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल पर गीतारु, दोनों दिन का नवजोत जी विशेष विशेष अलग अलग प्रकार का विधान है और उसको श्रद्धा से पालन करने से भगवान कृपा प्राप्त होती। जी
0: सुमित्रा जी, डॉक्टर सुमित्रा मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मान्यताएं ऐसी जुड़ी हुई हैं कि साल दर साल संख्या भक्तों की लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भक्त जो वहां पर पहुंचते हैं उनको लगता है कि वो साक्षात प्रभु के दर्शन करने, बहुत बिल्कुल वैसा होता है, और अगर देखा जाए तो पवित्रता का, साफ सफाई का, स्वच्छता का बहुत ज्यादा ख्याल इस यात्रा में रखा जाता है।
3: मैं स्वच्छता अभियान से हमेशा ही जुड़ी हुई हूँ, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी जाते हैं, कोई भी यात्रा में हम जाते हैं, कोई भी भगवान के दर्शन भी करने जाते हैं, ये पूरा जो क्रम है ना, अगर आप इस पूरे क्रम को देखिए, तो सबसे पहले भगवान अपने जब निकलते हैं बाहर, तो वो खुद चलकर आते हैं, तो बताते हैं कहीं ना कहीं हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। जो राजा जी जो झाड़ू कर रहे हैं, वो भी बताना चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं अपने अहंकार, अपने पैसे और अपने पद को छोड़कर सेवा भाव से आगे बढ़ना चाहिए। तो हम भी कोई कचरा नहीं फेंके, और हम भी अगर कभी कचरा फेंके तो खुद या कोई भी फेंका है तो उसे उठाने का सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। अगर राजा उठा सकता है तो हम भी जरूर उठा सकते हैं। अब जब रथ हम खींच रहे होते हैं, तो कठोपनिषद में एक बात बोली गई है कि शरीर एक रथ है और आत्मा जो है वो एक सारथी है। तो जीवन का जो भी हमारे अंदर जो भी भारीपन है, वो अकेले नहीं संभव हो सकता। अगर हम जब संगठित होकर, जब सारे लोग एक साथ एकजुट होकर जीवन के सारे क्रमों को करते हैं, ये पूरे देखिए रिचुअल में आप देखेंगे कि सब लोग संगठित रूप से एक साथ काम करते हैं, तो ये जो संगठित हमें जो काम करना चाहिए, गंदा नहीं फैलाना चाहिए, तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। इसके बाद देखिए हेरा पंचमी में एक खास बात बोलना चाहूंगी, यहाँ पे लक्ष्मी जी का क्रोध करना भी अपने सब मैरिड वुमेन के लिए भी एक लेसन है और पुरुषों के लिए भी है, कि बिना बताए हस्बैंड चले जाते हैं, 4 दिन तक वो परेशान होती है, 5वें दिन वो उनको खोजती है, वहां जब पहुंचती है तो भगवान डर के ताला लगवा देते हैं कि अंदर आएगी तो लड़ाई करेगी। ये देखकर उन्हें और गुस्सा आता है, वो रथ को तोड़कर आ जाती है वापस। अब देखिए उनके अंदर भी ग्लानि का भाव आता है कि मैंने रथ को तोड़ दिया, तो पीछे की रास्ते से जाती है, मेन गेट से नहीं आती है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अगर हम एक अपराध करते हैं, तो अगर भगवान अपने अपराध के बोध को लाते हैं, तो हमारे अंदर भी अपराध बोध होना चाहिए। अब जगन्नाथ जी की देखिए खास बात क्या होती है, कि रिश्ते में कभी भी एक अगर करवाहट हो, तो उसके बाद वापसी हमेशा ही संभव होती है। भगवान देखिए एक माला भेजते हैं क्षमा मांगने के लिए, फिर जब वो वापस आते हैं तो मिठाई लाते हैं और देवी उनको वापस एक्सेप्ट करती है। तो जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं बताया जाता है कि समर्पण, सामूहिक काम करना, सामूहिक साफ सफाई मेंटेन करना, और जीवन को चलाने के लिए क्रोध को, और कम से कम किसी भी रिलेशनशिप को छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और रथ की डोर इस तरह होती है कि जीवन में अगर हम जिम्मेदारियों को लेते हैं और भगवान का अनुसरण करते हैं, तो हम अपने जीवन की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो
0: बिल्कुल
3: कभी भी किसी को बीच में छोड़कर हम कोई भी चीज की उपलब्धि नहीं कर सकते। घर को, परिवार को, सबको लेके चलना पड़ता है, और कम से कम सब साफ सफाई मेंटेन करें, क्योंकि हमको अपने प्रकृति को, पर्यावरण को आगे के जनरेशन के लिए भी छोड़ना है। अगर हम इतना
0: बिल्कुल
3: उसके साथ गलत करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अच्छा नहीं कर रहे हैं
0: बिल्कुल
3: अपने आने
0: बिल्कुल
3: वाली पीढ़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल और हमारे शास्त्र भी यही संदेश देते हैं। डॉक्टर काशीनाथ, अब आपके पास आना चाहूंगी। महाप्रसाद की भी महिमा है, जरा उसके बारे में भी हमें बताइए, किस तरह का भोग प्रभु को लगता है, कब कब कैसा कैसा भोग लगता है, बनाने की परंपरा तरीके क्या हैं, और क्या उसमें कुछ बदलाव आया है?
4: देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र में जगन्नाथ महाप्रभु राजा इंद्रदिम्न ने वर मांगे थे, ये प्रभु आप चारों युग में कभी आपको रेस्ट नहीं मिला, आप हमेशा कर्म में व्यस्त रहे, और इसी समय से जब आप यहां से विद्यमान हुए हैं, मैं आपसे ये वर मांगता हूं प्रभु, आप हर दिन भोजन करें, हर समय भोजन करें, आपकी हाथ से पानी ना सूखे। इसके बारे में उड़िया में एक पंक्ति है, रात्रर्धमान तो बाट पड़ु थी आउ भुंजो जगन्नाथ हाथ।

0: এহু আজ্ঞা হেউ মতে হে নীল মাধব। यहाँ राजा इंद्रदीन ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते, जिस दिन जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ उसी दिन का बात है, क्योंकि मंदिर प्रतिष्ठा के बाद राजा इंद्रदीन को वर मांगने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु बोले, और इंद्रदीन राजा ने उनको वर मांगे, प्रभु आप यहाँ भोजन करते रहे, आपका हाथ से कभी पानी ना सूखे। इसी परंपरा आधारित आज भी कई आदि सत्ययुग से यह परंपरा, जगन्नाथ महाप्रभु सत्ययुग से इंद्रदम्न राजा के द्वारा जब पहला सत्ययुग आया था उसी समय से मंदिर का प्रतिष्ठा।
1: बिल्कुल
0: तो इसी परंपरा में जगन्नाथ महाप्रभु 56 प्रकार के भोग खाते और 60 पौठी भोग लगता है। 56 प्रकार का भोग, 56 प्रकार के भोग में उनका खिचड़ी लगता है, कानिका लगता है, साग सब्जी लगता है, डालमा लगता है, मोहर लगता है, और कई प्रकार का व्यंजन और घी अन्न जैसे प्रसाद और अबड़ा जैसे अन्न भी प्रसाद लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और सूखा भोग जो लगता है 56 प्रकार का, उसमें भगवान के मालपुआ लगता है, रसगुल्ला लगता है, जैसे लड्डू लगता है, पेड़ा लगता है, जो कृष्ण भगवान बचपन में खा रहे थे
1: जी
0: वो
1: जी
0: भी
1: जी
0: सब लगता है। ऐसे 56 प्रकार के भोग, 60 पौटी। 60 पौटी का अर्थ है 60, हमारी जो पहले से परंपरा था जो जिसमें मेजरमेंट हो रहा था, जिसको मांड कहते थे मेजरमेंट का, उसको गौणी कहते थे उड़ीसा में, उसी हिसाब से 60 गौणी का
1: जी
0: शस्य,
1: बिल्कुल
0: जिसमें उड़द लगता है, मूंग लगता है, चावल लगता है,
1: बिल्कुल,
0: कई प्रकार का
1: यानी
0: शस्य उसमें लगता है।
1: कई तरह के भोग यहाँ पर प्रभु को लगाए जाते हैं। देखिए 9 दिन का ये पूरा पर्व है, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं और साथ ही साथ बहुत सारी परंपराएं भी हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जिसको लेकर लगातार गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि इस यात्रा से जुड़ी बड़ी और महा कवरेज गुड न्यूज टुडे लगातार आपको दिखाई रहा है, हम आपको बताते रहेंगे आगे। फिलहाल तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: और अब बात क्रिकेट की, जिस जीत का इंतजार लंबे वक्त से था वो आखिरकार आ गई। भारत ने बर्मिंघम के एस्बेस्टन में हुए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया, और इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीत के सबसे बड़े हीरो अक्षर पटेल रहे हैं, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर दिया।

0: शायद T20 सीरीज की वो चुभन ही थी जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में करारा जवाब बन गई। एडजस्टन में टीम इंडिया ने ऐसा पलटवार किया कि अंग्रेजों की हर रणनीति धराशायी हो गई। टीम इंडिया को 258 रन का लक्ष्य मिला और भारत ने सिर्फ 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत पर तिरंगा लहरा दिया और इस तरह मिशन रिवेंज का पहला पड़ाव फतेह के साथ पूरा हुआ।
1: एक साल के मैं भी दो साल के बाद कमबैक कर रहे हैं, सो अच्छी विक्ट्री है। सो आशा करते हैं ये कंटिन्यू रहेगा और यही वर्ल्ड कप तक जाएगा और वर्ल्ड कप भी हमारा होगा।
2: आज हम बहुत खुश हैं, इंडिया फाइनली जीत गया है। 4 T20 हम हार चुके थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन आज इतनी खुशी है, आई कांट एक्सप्लेन, आई एम सो हैप्पी। कम ऑन इंडिया, कम ऑन, जीतेगा।
3: बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जैसे कि T20 में 4 मैच हार गए थे, एक मैच का तो रिजल्ट नहीं आया था, उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। और शायद अगर अगले 2 मैच वो जीत जाए तो एटलीस्ट बदला ले पाएंगे व्हाइट वॉश का जो अपना हुआ है।
0: हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में धड़कनें जरूर बढ़ी, रोहित शर्मा जल्दी लौटे, विराट कोहली भी सस्ता विकेट दे बैठे, लेकिन कहते हैं बड़े खिलाड़ी ऐसे ही बड़े मौकों पर खुद को साबित करते हैं और इस मैच के ऐसा सूरमा कप्तान गिल साबित हुए। उन्होंने हर गेंद का जवाब पूरे धैर्य, पूरे दम और पूरे विश्वास के साथ दिया। गिल ने 75 गेंद खेलकर 80 रन बनाए, जिसकी वजह से लड़खड़ाती दिख रही टीम इंडिया फिर से जीत के रास्ते पर लौट आई। श्रेयस अय्यर ने भी समझदारी भरे रनों पर जीत का स्कोर खड़ा किया। गिल और अय्यर के बीच 101 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने भारत की जीत का रोड मैप करीब करीब तैयार कर दिया, लेकिन क्रिकेट हर पल करवट लेता है। गिल क्रैम्प्स की वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए, श्रेयस रन आउट हो गए और केएल राहुल भी सिर्फ 1 रन पर चलते बने। इस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 160 रन था। मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा, लेकिन जब मैच मझधार में होता है तभी असली खिलाड़ी की पहचान होती है। इस बार ये पहचान बने अक्षर पटेल। पिछले कुछ महीनों से सवालों के घेरे में खड़े अक्षर आज जवाबों की किताब बन गए। पहले गेंद से अंग्रेजों की कमर तोड़ी, फिर बल्ले से जीत के मुहर लगा दी। 52 गेंद पर नाबाद 57 रन ठोके। दूसरी छोर पर वॉशिंगटन सुंदर भी सुंदर तरीके से रन जोड़ते रहे। उन्होंने 63 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाए। शूरवीरों की तरह एक ऐसा छक्का जड़ा जिसने न केवल उनकी हाफ सेंचुरी पूरी की, बल्कि ये छक्का टीम इंडिया की जीत का विजयी शॉट भी साबित हुआ। टीम इंडिया के लिए ये जीत केवल जीत भर नहीं है, ये वो लय है जिसके दरकार इस वक्त टीम को सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट डॉक्टर अनिल मेनन अपने 2 रूसी क्रू मेट्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं और इस मिशन का लॉन्च कल भारतीय समय के मुताबिक 8:17 पर होगा। इस स्पेस मिशन के लॉन्च होते ही 8 महीनों के एक लंबे मिशन की शुरुआत हो जाएगी। तो इस मिशन पर क्यों है दुनिया की निगाहें, आपको बताते हैं।
0: ये सफर स्पेस साइंस को लेकर हमारी समझ, हमारी सोच और हमारे नजरिए को बदल सकता है। ये पल केवल दुनिया के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 8 महीने के लंबे मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। उनका ये मिशन सिर्फ अंतरिक्ष की सैर भर नहीं है बल्कि इंसान को चांद और मंगल तक सुरक्षित पहुंचाने की तैयारी का अहम पड़ाव है। मेनन और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला रोस्कोस्मोस अंतरिक्ष यान मंगलवार को भारतीय समय के अनुसार रात 8:17 पर बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रवाना हुआ। स्टेशन तक 2 ऑर्बिट और 3 घंटे की यात्रा के बाद स्पेसक्राफ्ट रात 11:56 पर अपने आप प्रिचल मॉड्यूल से जुड़ गया। यह अनिल मेनन की पहली अंतरिक्ष यात्रा है। पेशे से वे डॉक्टर हैं और वो इमरजेंसी और एयरोस्पेस मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। यानी उन्हें अच्छी तरह पता है कि मुश्किल परिस्थितियों में इंसानी शरीर कैसे काम करता है। अब अंतरिक्ष में उनका सबसे बड़ा काम होगा ये समझना कि बिना गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी में इंसान का शरीर कैसे बदलता है, मसलन खून के बहाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों और हड्डियों पर क्या असर पड़ता है, नसों और शरीर के दूसरे अंगों में क्या बदलाव आते हैं। इतना ही नहीं, अनिल मेनन खुद भी इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेंगे, यानी वे सिर्फ प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक नहीं होंगे बल्कि उनके शरीर से भी वैज्ञानिक जानकारी जुटाई जाएगी। इस मिशन में अनिल मेनन ऐसी तकनीक की भी जांच करेंगे जिससे अंतरिक्ष स्टेशन के पीने के पानी का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर मरीज को चढ़ाई जाने वाले ड्रिप तैयार करने में किया जा सके। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अनिल मेनन के इस मिशन से मिली जानकारी भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशन को ज्यादा सुरक्षित बनाएगी, साथ ही इससे धरती पर भी इलाज और मेडिकल तकनीक को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
2: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
1: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
3: राह सच्चाई की
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा।
5: चर्चा में नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ नवजोत रंधावा। ढूंढते एक और दिन निकल गया। अब पूछे किसको ढूंढ रही थी मैं?
6: बारिश को,
5: बादलों को।
6: देखा,
5: पता नहीं कहाँ छिपे हैं।
6: मैं बता रही हूँ, आज लगा था ऐसा इल्यूजन सा हुआ था कि बारिश हो सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं।
7: क्या बूंदाबांदी हुई भी थी ना मेरे ख्याल से सुबह में?
6: कल बोला था किसी ने कि बूंदाबांदी हुई।
5: कल मौसम ठीक ठाक था, अच्छी
6: आसार थे, मतलब है ना, बट आज नहीं है फिलहाल। अभी इस वक्त तो बहुत तेज धूप निकली हुई है,
5: पता नहीं ये इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी। लेकिन एक और इंतजार की घड़ियां जो खत्म हो रही है, जी हाँ, महाप्रभु के आने के इंतजार की। तो कल से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तैयारियां कैसी हैं, रौनक कैसी है, देश विदेश से कितनी संख्या में भक्त पहुंचे हैं, रथ किस तरीके से सजा दिए गए हैं बाहर, और साथ ही साथ सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, इन सब पर आज बात होगी।
6: नमस्कार, मैं हूं गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। साल 2006 में आई फिल्म भागम भाग के सीक्वल को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। तो रोहित शेट्टी की डायरेक्टेड फिल्म गोलमाल के 20 साल पूरा होने पर अजय देवगन क्यों कर रहे हैं इसको वायरल, इसके पीछे की वजह आपको बताएंगे। साथ ही ओटीटी पर आ रही विक्रांत मैसी की लव ट्राइंगल सीरीज मुसाफिर कैफे की कहानी क्या है, ये भी आपको बताएंगे।
7: तो देखिए, कल से जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने होंगी और साथ ही में एंटरटेनमेंट की भी बात होगी और बात होगी फीफा वर्ल्ड कप की। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन तो फाइनल में पहुंच गया है, लेकिन आज है दूसरे फाइनलिस्ट के लिए रोचक लड़ाई और मुकाबला जो होगी अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच। तो फीफा विश्व कप का रोमांच, फैंस का उत्साह और भारत में फीफा का क्रेज किस तरीके से देखने को मिल रहा है, उसकी तमाम तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University, transforming your passion into profession।
6: पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ, भक्तों में भारी उत्साह। दिल्ली NCR में भी निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, नोएडा के जगन्नाथ मंदिर में मेगा तैयारियां, पुरी से मंगवाया गया महाप्रसाद। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चार धाम की यात्रा, सुहाने मौसम के बीच में बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारी, सुरक्षा से लेकर सुविधाओं के खास इंतजाम, ड्रोन कैमरा से रखी जाएगी नजर। नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ, अबुधाबी के लिए पहली सेवा शुरू, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को मिला वाटर सैल्यूट। अब देखिए, जगत के पालनहार जगन्नाथ पधारने जा रहे हैं, उनकी भव्य रथ यात्रा की तस्वीरें जैसे जैसे आ रही हैं वैसे वैसे रंग भी बढ़ते जा रहे हैं और GNT पर यह कवरेज लगातार जारी रहेगी। कल सुबह भी आपको ये तस्वीरें हम लाइव दिखाएंगे। अब महाप्रभु श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभ मुहूर्त बहुत करीब है, क्योंकि पुरी की पावन धरती पर आस्था अपने चरम पर पहुंच चुकी है। करोड़ों श्रद्धालुओं की निगाहें उस दिव्य पल पर जाकर टिकी हैं जब कल महाप्रभु अपने भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ रथ सिंहासन से उतरकर रथों पर विराजमान होंगे और भक्तों के बीच में नगर भ्रमण के लिए वो निकल जाएंगे।
7: बिल्कुल, देखिए जीएनटी पर ये महाकवरेज जारी है और कल जो है तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से भक्त को उनका जो उत्साह है वो देखने को मिलेगा। और देखिए ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरा का जीवंत उत्सव है। इसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक पहुंचते हैं। हर रस्सी पर लाखों हाथ होंगे, जब जुबा पर जय जगन्नाथ का जयघोष होगा। रथ यात्रा के लिए पूरी में आस्था का महासागर देखने को मिल रहा है।
6: बिल्कुल, तस्वीरें चलिए इससे पहले आपको दिखाएं, उससे पहले जान लेते हैं कि इससे पहले रिपोर्ट की तरफ हम चले। आपने कभी ये कवरेज की?
10: नहीं, नहीं, मैंने कवरेज नहीं की, देखा है। मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको कनेक्ट कर सकती हूँ। देखिए हमारे देश में ना अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। मुझे इसको देख के याद आता है क्योंकि अभी 4 बजे हम इसी पे शो कर रहे थे, मुझे याद आता है दुर्गा पूजा का कितनी शिद्दत से लोग इंतजार करते हैं। वो तो हम लोग जाते हैं देखने के लिए, वहां तो मैंने लाइव देखा है कैसे कई बार लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक उसी तरीके से पूरा साल भक्त इंतजार करते हैं इस यात्रा का, क्योंकि भक्तों को ये लगता है कि साक्षात प्रभु उनके सामने हैं और प्रभु उनको दर्शन दे रहे हैं। भक्तों को ऐसा ही लगता है। तो कहीं ना कहीं ये हम भक्ति कह सकते हैं, मान्यता कह सकते हैं, कनेक्ट कह सकते हैं और बिल्कुल, और उस डिवाइन पावर के साथ हम कैसे खुद को जोड़ते हैं
6: सीधा,
10: ये सारी मान्यताएं उसी से जुड़ी हुई है।
6: बिल्कुल, चलिए अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: जगत के नाथ महाप्रभु अब से कुछ ही घंटों बाद अपने भक्तों के बीच पधारने वाले हैं। महाप्रभु की दिव्य रथ यात्रा के लिए अलौकिक और भव्य रथ मंदिर के बाहर पूरी आभा के साथ तैयार खड़ा है। वहीं उनके ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सजा दिए गए हैं।
1: ये रथ अब तीनों रथ तालो ध्वज नंदी घोष दर्प दलन तीनों रथ अब तैयार हो चुके हैं और कल जुलाई 16 तारीख को रथ खींचा जाएगा और भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया ये रथ के ऊपर विराजमान होंगे, दर्शन देंगे।
0: सुबह तीनों अपने अपने रथों पर आरूढ़ होकर भक्तों के बीच जाएंगे। मान्यता है कि रथ यात्रा का ये पावन अवसर वो दुर्लभ क्षण होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक पहुंचते हैं। इसलिए इस दिव्य आयोजन को भक्त और भगवान के महामिलन का पर्व भी कहा गया है।
1: पूरी में भक्तों का भीड़, भक्त और भगवान का मिलन के लिए अब पूरा विश्व तैयार है। अब पूरी में तीनों रथ भी तैयार हैं, भगवान तैयार हैं और भक्त भी तैयार हैं।
0: प्रभु के नगर भ्रमण पर आने की खुशी में उड़ीसा के पुरी नगरी भक्ति के रंग में सराबोर है। ढोल मंजीरों और कीर्तन की गूंज के बीच श्रद्धालु गली गली जय जगन्नाथ का जय घोष कर रहे हैं। भजन कीर्तन से पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो उठा है। चारों तरफ गूंजती प्रभु भक्ति की मधुर ध्वनि मानो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बनने का निमंत्रण दे रही है।
2: रथ यात्रा के लिए आया हूँ, पहली बार आए हैं यहाँ पे। बहुत सौभाग्य था कि मेरा एग्जाम अभी था तो एग्जाम के बहाने इधर रथ यात्रा देखने को भी मिल गया मुझे।
3: कि अगर हम भगवान को नहीं भी देख पाएंगे तो वो तो हमें देख ही पाएंगे, देख ही लेंगे, उन्हें पता है कि ये लोग आए हुए हैं। तो वी आर सो एक्साइटेड दैट ऑल द रथ आर वेरी कलरफुल एंड वी हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी।
4: जगन्नाथ महाप्रभु की हेतु की कृपा है कि यहाँ चराचर के मृतलोक के प्राणी तो आते ही आते हैं, यह जगत विदित है, लेकिन उससे अनोखी बात यह है स्कंद पुराण में इसकी महिमा वर्णित हुई है कि देवलोक से देवता भी आते हैं।
0: आलम ये है कि रथ यात्रा के इन दिव्य पलों का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे लगातार पूरी पहुंच रहे हैं। अब तक लाखों भक्त श्री क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला निरंतर जारी है। भक्ति में डूबे इन कदमों और आस्था से भरे इन चेहरों पर बस एक ही उद्घोष गूंज रहा है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत है। यहाँ पे आके तो कुछ अलग सी भावना हो जाती है।
6: बहुत सालों से मन था, इस साल पॉसिबल हुआ इसकी वजह से।
0: एक तरफ भक्ति के मधुर स्वर गूंज रहे हैं तो दूसरी ओर महाप्रभु के रथ को मोटी मोटी पवित्र रस्सियों से बांधा जा रहा है। इन्हीं रस्सियों के सहारे लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य का रथ खींचेंगे।
1: तीनों रथ में ये दिखाना चाहूंगा आपको कि तीनों रथ अब बनकर पूरा तैयार हो चुके हैं। रथ का रस्सी भी यहाँ रखा गया है। रथ में खींचने के लिए जो रस्सी व्यवहार होता है ये रस्सी अब तैयार है, रथ भी अभी तैयार है, भक्त तैयार है।
0: रथ यात्रा की तैयारियां अक्षय तृतीया के शुभ अवसर से ही शुरू हो जाती हैं। अब मंदिर में रथ यात्रा से पूर्व होने वाले सभी पारंपरिक और वैदिक अनुष्ठान पूरे किए जा रहे हैं।
7: जैसे हमारा इंतजार था अक्षय तृतीया को, काम शुरू होगा, आज्ञा माल से शुरू हुआ। प्रभु की आज्ञा माल आए थे, हम लोग वही कोशिश, वही सेवा के और वही तप्तरा के हिसाब से हम काम शुरू किए थे। आज भी वही उत्सव है।
0: सबकी निगाहें उस शुभ घड़ी पर टिकी हैं जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। जैसे ही रथों के पहिए आगे बढ़ेंगे पूरा पुरी धाम जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठेगा। अजयनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: सीधा चलेंगे अजय नाथपुरी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, रौनक दिखाइए जरा वहां की, कैसी तस्वीरें आ रही हैं?
9: जी मैं आपको पूरा तस्वीर दिखाना चाहूंगा। रथ यात्रा से एक दिन पहले यानी कल रथ यात्रा और आज से ही लोगों का ये भीड़ मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा ये भीड़ आप देख सकते हैं, कितना भीड़ अब से लग गया है, लाखों भक्तों का भीड़ अब से पूरी में हो गया है रथ को देखने के लिए। ये खाली रथ, अब रथ में भगवान विराजमान हुए नहीं है, लेकिन फिर भी यही रथ को देखने के लिए भी भक्तों का भीड़ आप देख के चौंक जाएंगे। ये देश का नहीं, ये उड़ीसा का नहीं, देश के नहीं, देश के कई प्रांतों से, देश के बाहर से भी लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। मैं आपको एक अलग चीज दिखाऊंगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं घंटुआ सेवक जो है, ये घंटुआ सेवक आप देख रहे हैं हाथ में ये जो पकड़ रहे हैं, ये जो घंटा पकड़ रहे हैं, ये घंटा भगवान रथ यात्रा मतलब जब रथ निकाला जाएगा उसी टाइम ये घंटा को बजाते हैं और जोर से आवाज होता है। यही एक घंटा जो आवाज सुन करके भगवान खुश हो जाते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सारे सेवक को आप देख सकते हैं, ये पूरा काल दिन भर ये घंटा बजाएंगे। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? कितने दिनों से ये घंटा बजा रहे हैं? त्रिपंडित जी, क्या नाम है आपका?
10: जय जगन्नाथ, बलराम।
9: क्या बोलना चाहेंगे, ये जो घंटा बजाने का ये जो सिलसिला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, मतलब कब से ये घंटा बजा रहे हैं आप?
10: ये जो घंटा जो ये सेवा मिला है जगन्नाथ जी का, ये हमारा गांव है इधर से 100 किलोमीटर दूर, तो ये जगन्नाथ जी का कृपा है हमारे गांव के ऊपर और हमारा पापा जेजे पापा उनके ऊपर, उनके आशीर्वाद से ये सेवा हमको मिला है। ठीक है, तो फिर ये जो जगन्नाथ जी का जो सेवा है वो भी करते आ रहे थे, हम भी आ रहे हैं।
9: ये सालों में क्या, सालों में एक बार 100 किलोमीटर आते हैं घंटा बजाने के लिए?
10: तो एक महीना के लिए ये सेवा है। स्नान पूर्णम गया पहले 15 दिन पहले, अभी आज हुआ, मतलब उभा यात्रा जो रथ को हम लेके आए खींच के बजा के, तो कल होगा श्री गुंडीचा यात्रा। तो गुंडीचा यात्रा में बलभद्र जी और सुदर्शन जी और सुभद्रा माता और जगन्नाथ जी, उनको हम पौंड करके घंटा बजा बजा करके लाएंगे। तो फिर रथ के ऊपर वो बैठ के फिर रथ जब चलेगा तो उस टाइम हम भी घंटा बजाएंगे।
9: तो कितना लोग कुल मिला करके आपका, कितना?
10: कम से कम हमारा अभी 150 लोगों को मतलब मिला है, जो कमिटी है उनके पास जो मिलता है 150 लोगों के लिए अलाउ है।
9: अच्छा,
10: रथ के ऊपर जो है 42 है,
9: रथ के ऊपर 42 लोग बैठ के ये घंटा बजाएंगे और नीचे जो बाकी लोग नीचे रहेंगे।
10: जो तीनों रथ है, बलभद्र रथ में 14 और हमारा सुभद्रा माता के रथ में 12 और जगन्नाथ जी के रथ में 16, तो इसे मिला के 42 हम जो सेवक है हम 42 रथ के ऊपर सेवा करते हैं।
9: पूरा कितना टाइम, दिन भर कितना टाइम बजाने का अवसर मिलता है आपको? पूरा बजाते हैं, हाथ में दर्द नहीं होता है? आप पावर कहाँ से आता है दिन भर पूरा बजाते हैं?
11: पावर जगन्नाथ जी देते, मालूम नहीं पड़ता है, हाथ दर्द होता है, छिल जाता है, कुछ होता है, मालूम नहीं पड़ता है। सेवा खत्म होगा तो
9: ये घंटा क्या मतलब

0: लेना पड़ता
1: साल में एक दो भी टूट जाता है।
0: अच्छा
1: अभी भी हमारा शेगुंडी
2: होगा बेटा लेना।
1: अच्छा यात्रा में जो बजाते हैं वो भी मतलब होता है कभी कभी टूट जाता है, फिर बाहुड़ा को और एक नया लाना पड़ता।
0: मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये आवाज थोड़ा दिखा दीजिए, थोड़ा आवाज जब नहीं होगा ये कल होगा, ये आवाज आप देख सकते हैं कितना भारी है कितना मजबूत है, लेकिन फिर भी ये टूट जाता है। भगवान का वो पावर भगवान का वो शक्ति आता है कहाँ से, ये लोग बजाते बजाते इसको टूट मतलब तोड़ देते हैं, ये टूट जाता है फिर भी ये हर साल आते हैं 100 किलोमीटर दूर इनका सेवा करने के लिए, क्योंकि हर किसी को अपना अपना सेवा दिया गया है, जो अपना जिसको जो सेवा दिया गया है।
3: बिल्कुल अजय, साफ तौर पर यहाँ पर भक्तों में काफी उत्साह भी है और जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पर पहुंच गई हैं। कल रथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और देखिए कहना गलत नहीं होगा कि ये भक्तों का भाव है, उनकी आस्था ही है कि वो पूरी ही नहीं भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के कोने कोने से सीधे तौर पर पूरी पहुंचते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के साक्षी बनने के लिए। ऐसे में अगर कोई इस बार पहली बार पहुंच रहा है तो वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, मौसम कैसा है, और साफ तौर पर पिछले साल से इस बार काफी कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं।
0: इस बार रथ यात्रा इसके साथ रॉक का जो कड़न होता है ये कड़न को कैसे सुरक्षा दिया जाएगा, इसलिए सरकार के तरफ से पहले से ही बोल दिया गया है कि ज्यादा लोगों को इस बार कॉर्डन पास क्या है, क्योंकि भीड़ बढ़ जाता है रथ के पास, ज्यादा भीड़ होने से रथ जाने के लिए दिक्कत होता है, तो इसलिए इस बार कॉर्डन पास के ऊपर ध्यान दिया गया है, ज्यादा लोगों को रथ के पास आने के लिए ये पाबंदी छोड़ा है। और इसके साथ साथ इस बार पुलिस बल को ज्यादा
4: बिल्कुल सुरक्षा क्योंकि वहां पर बहुत कड़ी है। आज नजर आप बना रखिये, बेहद खूबसूरत तस्वीरें पूरी से आ रही है और जैसा हम आपको बता ही रहे हैं कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, तो ये उत्सव आप गुड न्यूज टुडे पर देखेंगे। वैसे एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, नो डाउट की पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा, लेकिन हमारे देश में से बहुत सारे अलग अलग जगह, इनफैक्ट नोएडा अहमदाबाद में भी होती है रथ यात्रा, इनफैक्ट कुछ दिन पहले हम राजस्थान की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, दिल्ली नोएडा हर जगह पर रथ यात्रा होती
5: निकाली जाती है।
4: तो कल सुबह पुरी में आस्था और भक्ति का अनंत सैलाब उमड़ेगा, लाखों लोग बढ़ चढ़कर इस धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व में अपनी भागीदारी देंगे, ऐसे में प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई।
5: बिल्कुल चप्पे चप्पे पर आपको पहरा नजर आएगा पूरे रथ मार्ग पर, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती रहेगी, ड्रोन के माध्यम से सीसीटीवी कैमरों से और कंट्रोल रूम के जरिए हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। बस ये समझ लीजिए कि रथ यात्रा शांतिपूर्ण हो, सुरक्षित ढंग से पूर्ण हो जाए, इसके लिए हर मुमकिन बेहतर व्यवस्थाएं कर दी गई हैं।

0: पुरी की धरती पर महाप्रभु की पावन रथ यात्रा शुरू होने में बस कुछ घंटों का समय बाकी है। कल की सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, तो आस्थावानों का रेला भी उनके साथ साथ चलेगा। ऐतिहासिक पुरी नगरी में आस्था और भक्ति का अनंत सैलाब उमड़ेगा। उस उत्सवी माहौल में हर कोई बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देने के लिए ललायित है, क्योंकि दिल में महाप्रभु के मनोहारी दर्शन की जो आस है।
1: जगन्नाथपुरी तो दर्शन करने तो आ चुके हैं, पर ये रथ यात्रा में पहली बार आए हैं और आकर इतना आनंद आ रहा है कि जिसकी कुछ हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
2: प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे और ऐसी कृपा मिलती रहे कि हर वर्ष हम यहाँ पर रथ यात्रा देखने आए, यही महाप्रभु से कामना करते हैं।
3: बहुत अच्छा लग रहा।
4: अच्छा, मतलब ये रथ यात्रा आप देखेंगे इस बार?
3: देखेंगे जरूर।
5: बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। हम लोग पहले आ गए दर्शन करने, मगर अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है।
6: जगन्नाथ देव पूरा पब्लिक के लिए बाहर होता है, इससे अच्छा वाला कोई चीज ही नहीं है। जगन्नाथ देव को हम एकदम मन से देखता है। ये हमारा बहुत पुराना प्रभु है, उसको दर्शन करने के लिए फर्स्ट टाइम हमको प्रभु बुलाया, इसीलिए हम चला आया।
0: केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आस्थावान और दूसरे

0: पर्यटक रथ यात्रा में शामिल होने आते हैं। ऐसे में मंदिर से लेकर पूरे पूरी शहर में प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की हुई हैं। खासतौर से यहां आ रहे लोगों के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी की गई है। पूरे रथ मार्ग पर 13,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों का पहरा रहेगा।
1: 22 IPS ऑफिसर ये पूरा अरेंजमेंट को सुपरवाइज करने के लिए लगे हुए हैं। हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है। 450 से ज्यादा सीसीटीवी नजर रखा है ये शहर के ऊपर, ये सूरत का जो पथ है बड़ोगंड है इसके ऊपर। हमारा जो बैकअप सपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इंफॉर्मेशन हम कैसे भक्त जनों के पास पहुंचा सकते, इसीलिए हम लोग एक तो पूरी पुलिस का जो चैटबॉट है एप्लीकेशन है उसको भी लोगों को जानकारी के लिए हम दे रखे हैं। दूसरी बात है हम लोग 65 जगह एलईडी डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन डिसरिनेट करेंगे और ये जगह खाली पूरी शहर के अंदर नहीं है, घूमने तक घूमने को तक है।
0: ये रथ यात्रा पुरी के श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक होगी, फिर गुंडीचा से ही श्री मंदिर तक ये रथ यात्रा वापस आएगी। ऐसे में जगन्नाथ मंदिर के भीतर हो या बाहर, रथ यात्रा मार्ग हो या समंदर या फिर सड़क और रेलवे, सुरक्षा के लिहाज से ये सभी जगह चाक चौबंद की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी झेलनी न पड़े और इमरजेंसी में तत्काल मदद मिल पाए।
1: जहाँ तक रेलवे सिक्योरिटी का सवाल है उसका पूरा बंदोबस्त किया गया है, उसका रिहर्सल किया गया है। RBF और जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का समन्वय में ये अरेंजमेंट हम लोग कर रखे हैं। और पर्टिकुलरली जब रात खत्म होता है, बहुत भीड़ इकट्ठे होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको नजरअंदाज करते हुए बैरिकेडिंग किया है, डिप्लॉयमेंट की।
0: जाहिर है 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक कई पारंपरिक अनुष्ठान होंगे, जिनका साक्षी बनने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा का पहलू एक बड़ी चुनौती भी है।
2: हमने एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पॉलिसी करके रखा है, जिसमें का अरेंजमेंट का जो तैनात है 220 प्लाटून का प्रोसेस का अरेंजमेंट है, उसमें 19 IPS ऑफिसर, 23 SPs एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर है जो SI रैंक्स में, एंड इसके अलावा जो स्टेट फोर्स है, इसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारा रैपिड एक्शन फोर्सेस है, इसमें SOG है, STU है, हमारा NSG भी है। तो बेसिकली जल स्थल एंड आकाश जो बोलते हैं तीनों पार्ट को सिक्योर करने के लिए अरेंजमेंट किया गया है।
0: इसमें कोई दो राय नहीं कि जगन्नाथ रथ यात्रा देश की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। ऐसे में रथ यात्रा में शामिल हो रहे लोगों की सुख सुविधा और सुरक्षा में किसी लापरवाही की गुंजाइश छोड़ी नहीं जा रही। कोशिश भी यही है कि इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने वाला हर इंसान खुद को महफूज महसूस कर पाए और ये रथ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न कराई जा सके। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा यूं तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन रथ यात्रा की तैयारी सिर्फ पुरी में ही नहीं चल रही है, अहमदाबाद और कोलकाता भी इस पावन यात्रा के साक्षी बनने की तैयारी की जा रही है।
4: बिल्कुल, यानी कल से जय जगन्नाथ की गूंज केवल पुरी में ही नहीं बल्कि अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, हर जगह पर सुनाई देने वाली आस्था, एकता और सनातन परंपरा की खूबसूरत तस्वीरें दिखाई देंगी।

0: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 16 जुलाई वो शुभ घड़ी होगी जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भी रथ यात्रा की भव्य तैयारी है। रथ यात्रा के दिन सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में पाहिंद विधि होगी और भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलदेव के तीनों रथ मंदिर से प्रस्थान करेंगे। अहमदाबाद में ये रथ यात्रा 16 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी और 1 बजे तक सरसपुर पहुंचकर रात 8 बजे तक वापस जगन्नाथ मंदिर लौटेगी। भक्तों की भीड़ इस खास पल का साक्षी बनने के लिए उमड़ने लगी है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी की रथ यात्रा के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है। जाहिर है 16 जुलाई को यहां आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने खुद सड़कों पर उतरकर तैयारियों का जायजा लिया।
1: 16 जुलाई के दिन अहमदाबाद में 149वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन 149वीं रथ यात्रा के पहले अहमदाबाद की सड़कों पर ग्रैंड रिहर्सल आयोजित हो रहा है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरों में देख पा रहे हैं गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के साथ गुजरात के डीजीपी और सीपी की मौजूदगी में ये पूरा ग्रैंड रिहर्सल हो रहा है, जहां 31,000 पुलिस जवानों का बंदोबस्त सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और जिस रूट से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का रथ निकलेगा, उसी रूट पर ये ग्रैंड रिहर्सल आयोजित हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। साथ ही में आरएएफ की टुकड़ियां हो या जो भी सुरक्षा बल की तैनाती इस रथ यात्रा के रूट पर की जाएगी, उनकी मौजूदगी इस पूरे ग्रैंड रिहर्सल में देखने को मिल रही है। तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं गाड़ियों का लंबा एक काफिला और उसके बीच पुलिस जवानों की मौजूदगी। और खास करके इस रथ यात्रा की बात करें तो साल में ये एक पहला मौका होता है कि जब भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर निकलते हैं और सड़कों पर भारी संख्या में भक्तों की मौजूदगी होती है। हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी इस रथ यात्रा में होती है।
0: अहमदाबाद की तरह ही कोलकाता में भी रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। मंदिर परिसर को खूबसूरती से सजाया गया है, रथ भी सज धज कर तैयार है।
2: पर रथ यात्रा में ये स्पेशलिटी है, इस बार हम लोग दिखा रहे पहले बार ऐसे यूनिक मॉडल, हम लोग तिरुपति बालाजी का मॉडल बना रहे और बहुत सुंदर पंडाल बनेगा। सो हम लोग पूरा कलकत्ता को निवेदन करते हैं कि आप आइए दर्शन लीजिए कि कैसे कलकत्ता में हम लोग इस तिरुपति बालाजी का मॉडल बना रहे और हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे मंदिर के अंदर सब लोग आ सकते हैं और वहाँ पर आप शांति और समृद्धि पा सकते हैं।
0: अब इंतजार उस ऐतिहासिक क्षण का है जब भव्य रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच निकलेंगे। इस दौरान जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देगी और अहमदाबाद में एक बार फिर आस्था, एकता और सनातन परंपरा की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। अहमदाबाद से तुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कहते हैं भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि विश्वास और भावनाओं का रिश्ता होता है और यही वजह है कि सदियों पुरानी परंपराएं आज भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए नए नए माध्यम का सहारा ले रही हैं। जैसा कि कल पुरी की रथ यात्रा शुरू हो रही है तो वहीं अब भगवान जगन्नाथ की कहानी जन जन तक एक नए अंदाज में पहुंचने वाली है।
4: दरअसल एनिमेशन के जरिए भगवान जगन्नाथ की दिव्य गाथा को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे रथ यात्रा की आस्था और सिनेमा की कल्पना मिलकर भक्ति की एक नई कहानी बुन रहे हैं।

एक दिन बाद शुरू हो रही है पुरी की पवित्र रथ यात्रा, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। और रथ यात्रा की शुरुआत के ठीक एक दिन बाद भगवान जगन्नाथ की उसी दिव्यता से बड़ा पर्दा गुलजार होने वाला है। प्रभु जगन्नाथ पर भक्तों की वही आस्था और श्रद्धा को बड़े पर्दे पर दिखाने की तैयारी है एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ।

0: हर साल रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अब यही भावना एक नई कहानी और रंग बिरंगे एनिमेशन के जरिए सिनेमाघरों तक पहुंच रही है, ताकि बच्चे भी भगवान जगन्नाथ की कहानी को आसानी से समझ सके।
1: पुरी में क्या हो रहा है जगन? कोई है यहाँ? तुलसी काका, पुरी काकी, सब कहाँ चले गए?
0: फिल्म का ट्रेलर भी बेहद खास अंदाज में लॉन्च किया गया है। ओडिशा के कटक में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान आध्यात्मिक वक्ता इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने ट्रेलर जारी किया। इस मौके पर 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा पंडाल जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। फिल्म में भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीलाएं दिखाई गई है। कहानी बताती है कि जब भक्त संकट में पड़ते हैं तो भगवान उनकी पुकार सुनते हैं, फिर अपने बड़े भाई बलराम और गरुड़ के साथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक अद्भुत दिव्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यानी भक्ति, रोमांच और सीख, तीनों का सुंदर संगम। इस फिल्म को खास तौर पर बच्चों और परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मेकर्स का कहना है कि आज के बच्चे मोबाइल और सुपर हीरो की दुनिया से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर अपनी संस्कृति और भगवान की कहानियाँ उन्हें एनिमेशन के जरिए दिखाई जाए तो वो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उनसे जुड़ पाएंगे। महाप्रभु जगन्नाथ पहले एक लोकप्रिय एनिमेटेड टीवी शो के रूप में दर्शकों का प्यार जीत चुका है। अब यही कहानी बड़े पर्दे पर और भी भव्य रूप में आ रही है। फिल्म हिंदी, ओडिया और तेलुगु भाषा में देश भर के 300 से ज्यादा सिनेमाघर में रिलीज होगी। हाल के दिनों में पौराणिक एनिमेशन फिल्मों को दर्शकों का अच्छा साथ मिला है। ऐसे में महाप्रभु जगन्नाथ से भी काफी उम्मीदें हैं। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसका एनिमेशन नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की संस्कृति, परंपरा और भक्ति का संदेश है, जो नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। जब पुरी की सड़कों पर गूंजेगा जय जगन्नाथ, तो उसी समय सिनेमा घरों में भी भगवान जगन्नाथ की कहानी बच्चों और बड़ों को भक्ति, संस्कृति और अपनेपन का संदेश देती नजर आएगी। रथ यात्रा की आस्था अब बड़े पर्दे की कहानी भी बन चुकी है।
1: ना कुछ सोचूंगा, ना कुछ चिंता करूंगा,
2: परंतु तुम्हारे एक भक्त के मृत्यु भी तुम्हारी हार है।
1: कोई बात नहीं जगन, मैंने अपने आप को तुझे समर्पित कर दिया है।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: फिलहाल तो पुरी के साथ कई और शहरों में भी रथ यात्रा की तैयारी है। रास्ते सज चुके हैं और हर दिल प्रभु जगन्नाथ के स्वागत के लिए बेताब है। देश भर में आस्था के अद्भुत रंग बिखरे हुए। ऐसे में भुवनेश्वर के एक कलाकार ने अपनी मिनिएचर आर्ट से नन्हे रथ बनाकर श्रद्धा को आकार दिया है।
4: तो वहीं 100 साल पुरानी परंपरा के साथ विशाल रथ यात्रा की तैयारियां भी अजमेर में पूरी हो गई हैं। यानी भक्ति, संस्कृति और विश्वास का ऐसा संगम जो केवल पुरी ही नहीं बल्कि भारत के हर कोने में भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट आस्था का संदेश देता है।
5: रंग, श्रद्धा और भक्ति का ऐसा अद्भुत नजारा जिसे देखकर हर मन प्रभु जगन्नाथ के जयघोष में डूब जाए। कहीं हाथों की बेमिसाल कला आस्था को नया रूप दे रही है, तो कहीं 100 साल पुरानी परंपरा पूरे वैभव के साथ अगली यात्रा का स्वागत करने को तैयार है। देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। भुवनेश्वर के मिनिएचर आर्टिस्ट एल ईश्वर राम ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए बेहद आकर्षक छोटे रथ तैयार किए हैं। सुपारी के पत्तों, कागज और सजावटी सामग्री से बने ये इको फ्रेंडली रथ केवल 5 इंच ऊंचे हैं। इनमें विराजमान तीनों प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से बनाई गई हैं, जिनकी ऊंचाई करीब 1 इंच है। इस अनोखी कलाकृति को पूरा करने में 7 दिन लगे। पिछले 25 सालों से मिनिएचर आर्ट में अपनी अलग पहचान बना चुके ईश्वर राव अपनी रचनाओं के जरिए भगवान से सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना कर रहे हैं।
6: सुपारी पेड़ के पत्तों से मैं बनाया हूं और इसका हाइट है 5 इंच। और आप जो देख रहे हैं जो उसका पेपर से मैं छोटा छोटा घोड़ा भी बनाया हूं और दो ऊपर जो कलश है ना वो और कलश का साइड में जो सुआ भी किया हूं।
5: वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अजमेर में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यहां लगभग 100 साल पुरानी परंपरा के अनुसार नीम की लकड़ी से बना 17 फीट ऊंचा रथ सजधज कर तैयार है। सुंदर रंगों, घंटियों और आकर्षक सजावट से इसकी भव्यता देखते ही बनती है। रथ के आगे बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित की गई है।
7: इस रथ की विशेषता ये है कि भगवान 90 साल के बाद ये रथ बनने का आयोजन हुआ। इसके बाद इसके 800 किलोग्राम के हिसाब से ये रथ का आयोजन और 90 साल से बना हुआ ये रथ जो पुराना जो रथ था उसके बाद नया रथ बनाया गया है। उसके अंदर स्वर्ण कारीगरी से भगवान का रखा गया।
5: एक और कलाकार अपनी कल्पना से भक्ति को नया आकार दे रहे हैं। दूसरी ओर पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं आज भी उसी विश्वास के साथ निभाई जा रही हैं। यही वो आस्था है जो बताती है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं बल्कि पूरे देश को जोड़ने वाला विश्वास, संस्कृति और समर्पण का महापर्व है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार देखिए अमरनाथ यात्रा में बना आस्था का रिकॉर्ड।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े हेडलाइंस पर एक नजर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी। कल विशाल रथों पर सवार होकर दिव्य दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ, भक्तों में भारी उत्साह। दिल्ली एनसीआर में भी निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। नोएडा में जगन्नाथ मंदिर में मेगा तैयारियां। पुरी से मंगवाया गया महाप्रसाद। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। सुहावने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री। मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारी। सुरक्षा से लेकर सुविधा तक के खास इंतजाम। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर।
10: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भक्ति की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। देखिए अमरनाथ यात्रा की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। यात्रा का आज 13वां दिन है। बीते 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के ऐतिहासिक दर्शन किए हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
3: और बड़ी बात यह है कि बाबा बर्फानी का शिवलिंग पिघल चुका है, लेकिन इससे तीर्थयात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। अभी फिलहाल यात्रा खत्म होने में 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है और उम्मीद यही की जा रही है संख्या और बढ़ सकती है।
5: बाबा बर्फानी के दर्शन को निकला श्रद्धालुओं का ये कारवा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया है।
0: अब तक 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार पे हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
12: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आस्था और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
0: खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता और पल पल बदलता मौसम, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं। बाबा बर्फानी के दर्शन की चाह ऐसी है कि थोड़ी बहुत अगर परेशानी है भी तो रास्तों का फूल बर गई है। बस एक भाव है जो आंखों में नमी बनकर तैर जाता है, उत्साह है जो जयकारे में बदल जाता है।
13: बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस पर हम फर्स्ट बार आ रहे हैं अमरनाथ, लेकिन बहुत BSF सबका बहुत, हम पुलिस का शुक्रिया करते हैं कि हमको साथ में लेकर आए। बहुत अच्छा लगा,
14: बहुत बहुत बहुत अच्छा जोश है, बहुत अच्छे आनंद में है सब।
15: बाबा के दर्शनों को जा रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ तक आए।
0: कोई गुजरात से आया है तो कोई जौनपुर से, कोई पंजाब से तो कोई देश के किसी और कोने से। सुरक्षा और प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच पहलगाम और बालटाल के दोनों रास्तों से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, जिससे जैसे बर पड़ रहा है बाबा अमरनाथ के दरबार पहुंच रहा है। बस एक ही धुन है कि बाबा बर्फानी के दर पर हाजिरी लगानी है।
16: बहुत ही बढ़िया सिस्टम किया है, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है, बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी परपस है, मतलब बहुत बढ़िया लग गया आगे सानू। फर्स्ट टाइम में थे
17: पहलगाम में आए तो इतना ऊर्जा मिली हमको कि पूछो मत।
0: श्रद्धालुओं का ये जोश ही आस्था की इस यात्रा को ऐतिहासिक बना रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर खुशी जताई है और तीर्थ यात्रियों से लेकर यात्रा को सफल बनाने में लगे सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट में कहा है, श्री अमरनाथ जी यात्रा ने सिर्फ 12 दिनों में 3 लाख का आंकड़ा पार कर एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। मैं सभी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और स्वयं सेवकों की सराहना करता हूं। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने बाबा बर्फानी के हर भक्त के लिए इस पवित्र यात्रा को सुगम और यादगार बना दिया है। हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी, यानी अब भी यात्रा में 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के और कितने रिकॉर्ड ब्रेक होंगे। पहलगाम से आरिफ बलोच और श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया पर आखिर क्यों चर्चा हो रही है भागम भाग की।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
18: सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, क्या है इस राशि परिवर्तन का महत्व, क्या है देश दुनिया और राशियों पर प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
19: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: देखिए ये फिल्म ना हर किसी की फेवरेट फिल्मों में से एक मानी जाती है। 2006 में आई थी ये फिल्म, कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी, नाम था इसका भागम भाग। अब बात है इसके सीक्वल की, जिसका फैंस बड़े ही लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। अक्षय कुमार, गोविंदा, परेश रावल की फिल्म भागम भाग जबरदस्त हिट हुई थी।
2: बिल्कुल, उस समय जब ये फिल्म आई थी तो लोग इसके कॉमिक टाइमिंग से दीवाने हो गए थे। और देखिए 20 साल बाद अब लगता है कि जो फैंस का इंतजार है वो खत्म होने वाला है। दरअसल भागम भाग 2 की टीम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसके बाद भागम भाग 2 की चर्चा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है।

0: 20 साल पहले बंटी, बबली और चंपक चतुर्वेदी ने बड़े पर्दे पर कॉमेडी की जो बरसात की थी, उसकी फुहार सिने प्रेमियों को अब एक बार फिर भिगोने के लिए तैयार है, लेकिन एक नई ट्विस्ट के साथ। मतलब ये कि बंटी और चंपक तो वही रहेंगे, लेकिन बबला बदल जाएगा। 2006 में रिलीज हुई भागम भाग में बंटी का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया था और चंपक का किरदार परेश रावल ने। इसके सीक्वल भागम भाग 2 में इन दोनों ही किरदारों और उसे पर्दे पर निभाने वाले कलाकारों की वापसी हो रही है, लेकिन बाबला का किरदार निभाने वाले गोविंदा भागम भाग 2 में नजर नहीं आएंगे। इस किरदार को अब मनोज वाजपेयी निभा सकते हैं। सीक्वल में एक और बदलाव है। भागम भाग का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था, लेकिन भागम भाग 2 की कमान राज शांडिल्य को मिली है, जिन्होंने ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल 2, विकी विद्या का वो वाला वीडियो जैसी हिट फिल्में डायरेक्ट की है। भागम भाग एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसने दर्शकों को खूब हंसाया और गुदगुदाया था। इस फिल्म को अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, कंफ्यूजन से भरे मजेदार प्लॉट और मीम्स के लिए आज भी बेहद पसंद किया जाता है, लिहाजा कॉमिक के उसी सदाबहार अंदाज को देखने के लिए भागम भाग 2 का सिने प्रेमी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। अब जाकर ऐसा लग रहा है कि भागम भाग 2 का जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है। एक दिन पहले डायरेक्टर राज शांडिल्य और परेश रावल ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म के फर्स्ट लुक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लेकर बड़ा हिंट दिया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म को फ्लोर पर आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज शांडिल्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, बस थोड़ा और इंतजार, इसके बाद सारे सिग्नल खुलने वाले है। इसके बाद परेश रावल ने इसे रीपोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, आमीन। आपको बता दें कि सिग्नल भागम भाग का हिट गाना है, जिसे प्रीतम चक्रवर्ती ने कंपोज किया और रेमो फर्नांडिस सुजैन डी मेलो ने गाया था। लिहाजा कयास लगाए जाने लगे कि भागम भाग 2 की राह में लगे अड़चन अब दूर हो गए हैं और फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू की जा सकती है। भागम भाग 2 की शूटिंग पहले इसी साल मार्च में शुरू होने वाली थी, लेकिन प्रोड्यूसर एकता कपूर और डायरेक्टर राज शांडिल्य के बीच कॉन्ट्रैक्ट विवाद की वजह से इसे टाल दिया गया था। अब दोनों के बीच सुलह हो चुकी है। माना जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए फीफा में आज होने वाला महामुकाबला।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: TuneIn is bringing together your music, news, sports and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
4: continue to face political pressure to reach a peace deal,
3: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में
7: विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: फीफा वर्ल्ड कप की हलचल पर भी नजर डाल लेते हैं। विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज रात अर्जेंटीना और इंग्लैंड दोनों टीमें आमने सामने होंगी। आज ही दूसरे फाइनलिस्ट टीम का नाम भी तय हो जाएगा जो फाइनल में स्पेन से फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए भिड़ेगी। लेकिन इससे पहले अमेरिका के अटलांटा शहर में अर्जेंटीना के फुटबॉल फैंस का जबरदस्त जोश देखने को मिला। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से एक दिन पहले सैकड़ों समर्थक शहर के बीचों बीच इकट्ठा हुए और पारंपरिक बांदराजो यानी झंडा प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
2: इस दौरान पूरा इलाका नीले और सफेद रंग में रंगा हुआ नजर आया। हाथों में अर्जेंटीना के झंडे, ढोल नगाड़ों के गूंज, जोरदार नारे और टीम के समर्थन में गाए जा रहे गीत। देखिए, फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई समर्थकों ने अर्जेंटीना की जर्सी और टीम से जुड़े खास सामान भी पहन रखे थे। इतना ही नहीं, एक विशाल अर्जेंटीना का झंडा भी लहराया गया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
1: और चलिए, साथ ही फैंस ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के पोस्टर्स भी लहराए। कुछ फैंस ने खिलाड़ियों का मुखौटा भी पहना। फैंस का ये कहना है कि उनकी टीम शानदार फॉर्म में है, इस बार भी जीत अर्जेंटीना की ही होगी। अब सभी की नजरें हैं आज होने वाले बड़े मुकाबले पर, जहां अटलांटा स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना होगा इंग्लैंड के साथ। देखना काफी दिलचस्प होगा कि फैंस का ये जोश क्या मैदान पर टीम की जीत में बदल पाता है या नहीं।
2: तो मंगलवार को मैड्रिड के एक फैन जोन में सैकड़ों स्पेनिश फैंस ने अपनी टीम की फ्रांस पर 2-0 से जीत वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने का जश्न मनाया। समर्थकों ने खुशी के माहौल में नाचते, चीयर करते और स्पेन के झंडे लहराते हुए वीवा एस्पाना और यो सोए एस्पानोल के नारे लगाए।
1: फैंस की इस भीड़ का जोश देखने लायक था, क्योंकि फैंस रविवार को होने वाले फाइनल में स्पेन की जगह पक्की होने का जश्न मना रहे थे। फिलहाल तो स्पेन का मुकाबला रविवार को ईस्ट रदरफोर्ड के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना या फिर इंग्लैंड से होगा। फीफा वर्ल्ड कप का खुमार सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं, बल्कि भारत में भी फुटबॉल का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं धोते पर ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल के रंग चढ़ गए हैं तो कहीं मिठाई भी मेसी को ही दर्शाती हुई दिखाई दे रही है।
2: यानी धोती से लेकर मिठाई की दुकान खास है। मिठाई पर तो लियोनेल मेसी की ऐसी प्रतिमा बनाई गई है, ऐसी प्रतिमा उकेरी गई है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं फुटबॉल के रंग में रंगी ये खास तस्वीरें।

0: फीफा वर्ल्ड कप का खुमार सिर्फ मैदान तक नहीं है, भारत में भी फुटबॉल का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसी ही कुछ रौनक केरलम के बाजारों में दिखाई दे रही है। केरलम की पहचान यहाँ की खास धोती भी फुटबॉल के रंग में रंग गई है। बाजारों में ऐसी धोतियाँ खूब बिक रही है जिन पर ब्राजील का पीला और हरा रंग है, अर्जेंटीना की आसमानी सफेद धारियां हैं और पुर्तगाल का लाल हरा अंदाज भी। यानी अब सिर्फ जर्सी नहीं, धोती पहनकर भी लोग अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन कर रहे हैं। दुकान के बाहर लगे पुतलों पर भी जर्सी और रंग बिरंगी धोती पहनाई गई है। जो भी वहां से गुजरता है एक बार रुककर जरूर देखता है। मेसी, रोनाल्डो, एम्बापे या नेमार, यहां फैंस अपनी पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ी की जर्सी पहने आपको हर जगह दिखाई दे जाएंगे। लेकिन इस बार जर्सी के साथ साथ इन खास धोतियों की भी जबरदस्त मांग है। यही वजह है कि वर्ल्ड कप का रंग भी केरलम स्टाइल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां हर त्योहार, हर जश्न और फुटबॉल का उत्सव भी अपनी परंपरा के साथ मनाया जाता है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, जहां फुटबॉल का प्यार मिठास में बदल गया है। यहां एक मिठाई कारोबारी और मेसी के बड़े प्रशंसक देवाशीष घोष ने मिठाई से लियोनेल मेसी की एक शानदार प्रतिमा बना दी है। करीब 1.5 किलो खोया, खीर, व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और फूड कलर से बनी इस प्रतिमा में मेसी के चेहरे के भाव, दाढ़ी, बाल और जर्सी तक को बड़ी ही बारीकी से बनाया गया है। पहली नजर में देखकर कोई भी धोखा खा जाए, क्योंकि ये मूर्ति नहीं बल्कि पूरी तरह खाने वाली मिठाई है। दुकान पर लोगों की भीड़ लगी है, हर कोई इस क्यूट और स्वीट मेसी के साथ तस्वीर लेना चाहता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत में फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि दिल से जिया जाता है। दुर्गापुर से अनिल गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए, अब आपको इंस्टा पर चाहिए कि ऐसी क्यूट सी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक बच्ची फ्लाइट के अंदर होस्टेस को एक खास और क्यूट सा ऑफर देती है।
2: तो ये खास ऑफर क्या है, क्यों इस ऑफर को सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स बच्ची को खूब प्यार भरे मैसेजेस दे रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं होस्टेस की बच्ची संग ये खूबसूरत सी बातचीत।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, क्या है इस राशि परिवर्तन का महत्व, क्या है देश दुनिया और राशियों पर प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
6: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
5: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
3: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
2: पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी. जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर लाए गए विशाल रथ, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह.

निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। नोएडा के जगन्नाथ मंदिर में मेगा तैयारियां। पुरी से मंगवाया गया महाप्रसाद। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा। सुहाने मौसम के बीच में बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री। मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ। अबू धाबी के लिए पहली सेवा शुरू। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को मिला वाटर सैल्यूट। ब्रिटेन के चिड़ियाघर में एक साथ जन्मे 7 शावक। विप्स नेट जू में विलुप्त हो रहे प्रजाति के चीते के शावकों के जन्म का उत्सव। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात जगन्नाथ रथ यात्रा की। शाम के 6 बजे हैं और अब 12 घंटों से भी कम वक्त बचा है। कल सुबह सूरज निकलने के साथ ही पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। उत्सव की तैयारियों की तमाम तस्वीरें जगन्नाथ मंदिर प्रांगण से लगातार सामने आ रही हैं। अब से कुछ ही देर पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के रथों को खींचकर मंदिर के सिंह द्वार पर लाया गया। सेवायतों और सुरक्षा बलों के जवानों ने मिलकर इन रथों को खींचा और सिंह द्वार तक वो ले गए। अब कल सुबह तक ये तीनों रथ द्वार के ठीक सामने खड़े होंगे, क्योंकि परंपरा यही है कि हर साल सिंह द्वार से ही यात्रा की शुरुआत होती है। इससे पहले पाहंडी रस्म की जाती है। इस रस्म में मंदिर के गर्भगृह से रथों तक देवताओं को लाने की विशेष प्रक्रिया होती है। दरअसल ये शब्द संस्कृत के पादाभिक्रमण से आया है। इसका अर्थ होता है कदम दर कदम आगे बढ़ना। भगवान जगन्नाथ बहुत धीमी और झूलती हुई गति से चलते हैं। दरअसल भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के विग्रहों के पांव नहीं होते। दैतापति सेवक मूर्तियों को अपने कंधों और पीठ का सहारा देते हैं। भगवान आगे पीछे झूलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सुदर्शन चक्र, फिर बड़े भाई बलभद्र जी को बाहर लाया जाता है, फिर उनके बाद बहन सुभद्रा देवी और अंत में भगवान जगन्नाथ को रथ पर सवार करवाया जाता है, जिसके बाद यात्रा का शुभारंभ हो जाता है जो अब से कुछ ही घंटों में होना है। रथ यात्रा की तैयारी पर सीधे जगन्नाथपुरी से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय नाथ। सुनिए।
1: अब बस कुछ ही घंटों की बाकी है, रात के बाद दिन आएगी और भगवान भी आएंगे। जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर विराजमान होंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी जगन्नाथ मंदिर के सामने बिल्कुल तीनों रथ अब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये नंदीघोष, दर्प दलन और तालध्वज, तीनों रथ अब मौजूद हैं। कल ये रथ यात्रा के लिए भगवान कैसे आएंगे, भगवान को देखने के लिए भक्तों का मन में जितना उत्साह है, भगवान का मन में भी उससे कहीं अधिक उत्साह है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात इसलिए हम बोल रहे हैं, जो धूप हो रहा था, जो गर्मी हो रहा था, वो कहीं गायब हो गया है। लगातार 3 दिन से भारी बारिश हो रहा है और जिसके वजह से अब लोगों को राहत मिल रही है। और इसके वजह से 1 दिन से पहले यहाँ भक्तों का हजारे मात्रों में यहाँ हजार तादाद में भक्त यहाँ जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हम पूरी बड़दान से आपको विजुअल दिखा रहे हैं।
0: तो श्री मंदिर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिंह द्वार पर खड़े तीनों रथ सुबह के इंतजार में हैं, लेकिन आज श्री मंदिर के प्रांगण में लाखों भक्त जुट चुके हैं। अद्भुत माहौल है। आज की रात जगन्नाथपुरी में उत्सव की रात होने वाली है, आनंद की रात है। जिन नाथ के दर पर सारा जगत झुकता है, वो नाथ स्वयं मंदिर से निकलकर अपना जगत देखने पर धारेंगे। भक्तों और भगवान का मिलन होगा।
2: ओम नमो भगवते वासुदेव।

0: भगवान जगन्नाथ की नगरी आज आस्था के उत्सव में मगन है। जगन्नाथपुरी में साल के सबसे बड़े पर्व का शुभारंभ होने वाला है। पुरी के परमेश्वर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकलने वाले हैं। पुरी की सड़कों पर भगवान के आगमन का इंतजार हो रहा है। कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान तो कोई मध्य प्रदेश से पहुंचा है। हर तबके हर उम्र के भक्त पुरी में मौजूद हैं। और कमाल की बात यह है कि हर उम्र का श्रद्धालु इस यात्रा को, इस उत्सव में अपनी मौजूदगी को अपने अपने भाव के अनुसार देख रहा है। हर भक्त को लग रहा है बस जगन्नाथ प्रभु ने उसे ही यहाँ तक लाने के लिए ये सारा जतन किया है। मसलन बिहार से आए एक नौजवान श्रद्धालु को लगता है कि उसका एग्जाम इसी तारीख को पुरी में पढ़ना और उसका यात्रा में आना कुछ संयोग थोड़े ही है। उसका यहाँ पहुँचना जगन्नाथ प्रभु का प्लान था, भला फेल कैसे होता।
1: कैसा लग रहा है और रथ यात्रा के लिए आए हैं क्या?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, रथ यात्रा के लिए आया हूँ, पहली बार आए हैं यहाँ पे। बहुत सौभाग्य था कि मेरा एग्जाम अभी था तो एग्जाम के बहाने इधर रथ यात्रा देखने को भी मिल गया मुझे। भगवान ने ऑलरेडी ये सब प्लान कर रखा था शायद हमारे लिए, तो ये देखने का मौका मिला। मैं पहली बार ये रथ यात्रा देखने आया हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वहीं उम्र की ढलान पर खड़ी मुंबई से आई इन माताजी को यकीन है कि भगवान ने यहाँ तक बुलाया है तो कल चाहे रथ उन्हें छूने को न मिले लेकिन भगवान उन्हें दर्शन जरूर देंगे।
3: पहली बार ही आई, दर्शन हो जाएगा तो अच्छा है, भगवान का भगवान सामने मिल जाएगा मेरे को।
1: रथ यात्रा के बारे में आपको क्या क्या पता है?
3: रथ यात्रा में सब बलराम का, सुभद्रा का और भगवान का, तीनों रथ साथ में निकलते हैं।
1: और खुश लग रहा है?
3: खुश लग रहा है, लेकिन रथ को टच करने को नहीं मिलेगा मेरे को।
1: रहा है कल रथ में भगवान आएंगे?
3: आप आएंगे, जरूर आएंगे भगवान।
1: आपको लग रहा है रथ के ऊपर आप कल देख पाएंगे?
3: देख पाएंगे, भगवान दिखेगा मेरे को, क्यों नहीं दिखेगा।
0: वहीं किसी को यकीन है कि वो भगवान को देख न पाए तो भी क्या, भगवान तो उन्हें देखेंगे। उन्हें मालूम है ये मेरे द्वार पर आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं।
4: लेकिन क्या बात है कि अगर हम भगवान को नहीं भी देख पाएंगे तो वो तो हमें देख ही पाएंगे, देख ही लेंगे, उन्हें पता है कि ये लोग आए हुए हैं।
5: वी आर कमिंग फ्रॉम मुंबई। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी ऐसे ही लग रहा है कि पूरी जगमग रही है और एक स्वरूप हर एक को देखना चाहिए कि भगवान खुद अपने भक्तों को मिलने के लिए आते हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारे भारतीय और हम हिंदू समाज से हैं तो हम सभी लोगों को यहाँ आकर भगवान के दर्शन जरूर करना चाहिए पुरी में आके।
0: भक्ति का यही भाव और भक्तों का यही उल्लास पुरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। यही वजह है कि जब पुरी की पवित्र भूमि पर रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। पुरी में इस समय धरती पर भक्तों का नेह बरस रहा है और आसमान से मेह। यात्रा से पहले तैयार भगवान के रथ पर बरखा की बूंदें पड़ रही हैं। बारिश से मिलकर रथों का चटक रंग कुछ और उजला हो गया है तो असंख्य भक्तों के छातों से सजी पुरी की धरा भी सतरंगी दिख रही है। आषाढ़ में आस्था का सावन बरस रहा है और बरसते पानी में जो जगन्नाथ प्रभु से मिलने आए हैं उनके लिए ये बरखा भी आराध्य का आशीर्वाद ही है।
6: बारिश में तो देखो ये रस है, ठाकुर जी की कृपा वर्षण, अमृत वर्षण है। इसमें जो लोग भींगेंगे ना वही ठाकुर जी के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसमें भींगने की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खूब भींगो और ठाकुर जी का प्रेम है, जगन्नाथ महाप्रभु का प्रेम है, ये प्रेम का वर्षण है और ये प्रेम बना रहेगा ना तो सतत ठाकुर जी की प्राप्ति आपको होने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
0: आस्था और प्रेम की इसी वर्षा के बीच भक्तों से भगवान के मिलन की घड़ी अब बेहद करीब है। तैयारियां पूरी हैं, भगवान के विराजमान होने के लिए रथ भी तैयार है।
1: रथ पथ और जगन्नाथ यहाँ सब तैयार हैं। पूरी में तीनों रथ पूरी तरह बन चुका है और कल रथ यात्रा के लिए हर तरह की

0: व्यवस्था हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नंदीघोष, तालाध्वज और दर्पदलन रथ पूरा तैयार है। आप देख सकते हैं कपड़ा हो गया है, कल तक कपड़ा नहीं लगा था लेकिन आज कपड़ा लग गया है और ऊपर का काम जो बाकी था वो भी हो गया है और खाली कलश लगना बाकी है। आप देख सकते हैं भगवान का तीनों रथ, देवी सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ का तीनों रथ जो होता है, वो तीनों रथ का जो नीति होता है वो नीति अब शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं रस्सी अब लगाया जा रहा है और ये रस्सी जो रथ में लगेगा जिसमें रथ को खींचा जाएगा, इसलिए अब इसका तैयारी हो रहा है। आप देख सकते हैं पंडित लोग उसको अब रथ का चारों तरफ उसको ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना मोटा मोटा ये जो रस्सी है, ये रस्सी को खींचा जाने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं ये कॉर्डन का जो रस्सी को अब से तैयार किया जा रहा है, ये कॉर्डन रस्सी का मेजरमेंट किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो अंदर कैसे नहीं आ पाएंगे, जो रथ के पास जो आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाएगा, इसलिए ये रस्सी को पहले से तैयार किया जा रहा है। और आपको ये भी दिखाऊंगा ये रस्सी से ज्यादा मोटा ये है क्योंकि इस रस्सी में रथ को खींचा जाएगा। आप देख सकते हैं तीनों रथ का जो रस्सी है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है।
1: आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की इस अलौकिक रथ यात्रा में परंपरा के चलते सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ रवाना होता है। इसका नाम तालध्वज है कि 13.2 मीटर ऊंचा होता है। तालध्वज रथ लाल और हरे रंग का होता है और इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इसके पीछे दर्पदलन नाम का रथ होता है जिसमें बहन सुभद्रा विराजती हैं। ये 12.9 मीटर ऊंचा होता है। दर्पदलन रथ लाल और काले रंग का होता है। इसमें 12 चक्के होते हैं और रथ यात्रा के आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है। ये रथ 13 मीटर ऊंचा होता है। ये लाल और पीले रंग के वस्त्र से सजाया जाता है। नंदीघोष रथ में 16 पहिए लगे होते हैं। इसे बनाने में लकड़ी के 832 टुकड़े और सजाने में लगभग 1100 मीटर कपड़ा लगता है। इसके लिए परंपरा के अनुसार यात्रा से एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ के दरबार से आज्ञा आती है, जिसके बाद एक एक कर तीनों रथों को यात्रा से एक रात पहले ही मंदिर के सिंह द्वार पर खड़ा कर दिया जाता है।
2: देखिए आज नेत्रोत्सव का दिन है। आज आज्ञा माला आने से पहले नंदीघोष का रथ सिंहद्वार में लगेगा, उसके बाद दर्पदलन का रथ उसके पास लगेगा, उसके बाद तालध्वज का रथ अभी जाके आज का तिथि में जाके सिंहद्वार में खड़ा रहेगा, कल के लिए इंतजार रहेगा।
1: इसके बाद आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को तय मुहूर्त में रथ यात्रा की शुभ शुरुआत होती है। ये तीनों रथ सिंह द्वार पर जब खड़े हो जाएंगे उसके बाद आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को तय मुहूर्त में रथ यात्रा की शुभ शुरुआत होगी। गाजे बाजे के साथ पूरे विधि विधान से भगवान अपने श्री मंदिर से मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे।
3: बाबर का मंगलालती होगा, अवकाश होगा, खिचड़ी भोग होगा, मंगलार्पण होगा और 8:30 बजे महाप्रभु का दर्शन पांडी होगा। पांडी होके बाबा महाप्रभु रथ में बैठेंगे और इसका बाद चिता लगी इसमें होगा, इसका बाद गजपति महाराजा छेरा पहरा करेंगे, इसका बाद बाबर का रथ का दौड़ी लगेंगे। 3:30 बजे रथ जाएंगे जनकपुरी गुंडीचा मंदिर में नवदिन यात्रा के लिए। इसीलिए ऐसे प्रोग्राम फिक्स हुआ है और यही प्रोग्राम अनुसार भगवान का सब कार्य होगा और इसीलिए सब भक्त लोग पूरा पूरी शहर में प्रबल भक्त भरा आ गए है एवं भक्त लोग कल महाप्रभु को देखेंगे।
1: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं जो भक्तों के मन में सदियों से रची बसी हैं।
4: ये मान्यता है जो रथ में तीनों भगवान को देखेगा और एक बार ये रथ का रस्सी को पकड़ के खींचेगा तो उसका जितना सारा पाप है वो धुल जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं।
1: भव्य रथ यात्रा के जरिए भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। अगले 7 दिन भगवान इसी मंदिर में बिताते हैं। इसके बाद जितने भव्य तरीके से भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं उसी तरह दिव्य और भव्य यात्रा करके श्री मंदिर तक उनकी वापसी भी होती है। वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। भाव विभोर होकर नाचते गाते लाखों

श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान के रथ गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर निकलते हैं। बहुड़ा यात्रा के दौरान एक बार फिर वही पुरातन परंपरा निभाई जाती है, जिसमें पुरी के राजा गजपति स्वर्ण झाड़ू से तीनों रथों के आगे छेरा पहाड़ा यानी झाड़ू लगाने का अनुष्ठान करते हैं। वास्तव में ये परंपरा ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ के सामने राजा की विनम्रता

0: विनम्रता का प्रतीक है। तमाम परंपराओं और रस्मों को निभाए जाने के बाद भगवान का रथ श्री मंदिर प्रांगण में पहुंचता है, जहां भगवान को भोग लगाया जाता है। श्री मंदिर में प्रवेश करने से पहले कई और परंपराएं भी निभाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है सोना वेशा, यानी भगवान को स्वर्ण पोशाक पहनाने की परंपरा। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर देवता अपने रथों पर तब तक आराम करते हैं जब तक नीलाद्री विजय अनुष्ठान नहीं हो जाता। यह अनुष्ठान मंदिर के गर्भगृह में भगवान की अंतिम वापसी का प्रतीक होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ रूठी हुई देवी लक्ष्मी को मनाने के बाद मंदिर में प्रवेश पाते हैं। अपने आराध्य के प्रति अगाध आस्था और भावनाओं से भीगी इन्हीं परंपराओं के निर्वहन के साथ हर साल श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभ समापन होता है। भक्ति की डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जगन्नाथपुरी में इस समय भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कोई पहली बार आया है तो कोई पांचवीं बार। सबके लिए यात्रा के अलग अलग मायने हैं, लेकिन एक बात सब में एक सी, असीम खुशी और उत्साह। इनकी बातें ये एहसास करवाती हैं कि पुरी में पहुंचकर अपनी आंखों से रथ यात्रा देखने, उसमें शामिल होना कितनी बड़ी बात है।

0: जहानाबाद बिहार।
1: कैसा लग रहा है आज भगवान का ये रथ यात्रा देखने के?
0: बहुत अच्छा लग रहा।
1: अच्छा, मतलब ये रथ यात्रा आप देखेंगे इस बार?
0: देखेंगे जरूर।
1: इसलिए आए हैं?
0: इसलिए आए हैं।
1: कितने लोग आए हैं?
0: 4 लोग।
1: अच्छा, आपको देख के क्या लगता है? आपको
0: बहुत अद्भुत महसूस हो रहा है।
1: पहले कहीं आए थे?
0: नहीं, फर्स्ट बार है। अच्छा,
1: मैम कहाँ से हैं?
2: हम गुजरात देवभूमि द्वारका से हैं।
1: क्या लग रहा है भगवान का ये भव्य लीला को देख के?
2: बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। हम लोग पहले आ गए दर्शन करने, मगर अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है।
1: कितने बार देख चुके हैं रथ यात्रा पहले से?
2: रथ यात्रा फर्स्ट टाइम आए।
1: अच्छा,
2: फर्स्ट टाइम आए।
1: कैसे लग रहा है ये भीड़?
2: बहुत अति सुंदर
3: लग रहा है। हमको यहाँ आकर ऐसा लगा कि बहुत भगवान साक्षात यहाँ दर्शन दे रहे हैं।
1: आप देख रहे हैं भक्तों का भीड़, आप देख सकते हैं भक्तों का मन में ये खुशी को आप देख सकते हैं। हमारे साथ और भी भक्त जुड़ रहे हैं, हम बात करेंगे। ये भव्य लीला में आप शामिल हो रहे हैं, कैसा आपको फील, क्या हो रहा है?
4: रथ यात्रा हमारा जो हिंदू लोग है ना, इसके सबसे बड़ा अनुष्ठान है रथ यात्रा। इसे इससे आगे कोई नहीं है, इतना बढ़िया ये है। रथ के बाहर से तो आप देखता है, लेकिन जगन्नाथ जगन्नाथ देव पूरा पब्लिक के लिए बाहर होता है, इससे अच्छा वाला कोई चीज ही नहीं है। जगन्नाथ देव को हम एकदम मन से देखता है।
5: उसको दर्शन करने के लिए फर्स्ट टाइम हमको प्रभु बुलाया, इसीलिए हम चला आया।
1: पहली बार आ रहे हैं?
5: पहली बार आए हैं। तो हम वो तो बुलाता है, बुला जब बुलाएगा तब आएगा, जब बुलावा नहीं तो आएगा नहीं, कोई नहीं आ सकता यहाँ। इससे बात है फर्स्ट।
1: मैम कहाँ से हैं?
6: हम एमपी से, इंदौर देवास डिस्ट्रिक्ट।
1: क्या मतलब ये पहली बार आ रहे हैं या पहले से आए हैं?
6: जगन्नाथपुरी तो दर्शन करने तो आ चुके हैं, पर ये रथ यात्रा में पहली बार आए हैं और आकर इतना आनंद आ रहा है कि जिसकी कुछ हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
1: खुशी कितना है?
6: खुशी तो वही बता रही हूँ कि खुशी का तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा खुशी है।
1: कितने लोग आए हैं आपके साथ?
6: हम 4 लोग आए हैं, मेरी माताजी है, मेरे बेटे हैं और मेरे हस्बैंड है।
1: क्या बोलना चाहेंगे सर, परिवार को लेके आए हैं?
7: जय जगन्नाथ, महाप्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे और ऐसी कृपा मिलती रहे कि हर वर्ष हम यहाँ पर रथ यात्रा देखने आए, यही महाप्रभु से कामना करते हैं।
1: मैम कहाँ से हैं?
8: हम कच्छ मांडवी से आए हैं। इतना आनंद आ रहा, इतनी खुशी मिले, जैसे सफल हो गया जन्म हमारा, जगन्नाथ का दर्शन हो जाए, पहली बार आए हैं। इतनी खुशी है कि कुछ शब्द ही है नहीं, कुछ बोलती है हमें बोलने के लिए। हम 5 लोग आए हैं।
1: पहले आए नहीं थे?
8: नहीं नहीं, पहली बार आए। हम बाहर विदेश रहे थे, बाहर थे, अभी इंडिया आए। अभी इच्छा हो कि जगन्नाथ का
9: पूरी के साथ साथ देश के कई और शहरों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी पिछले कई दिनों से उत्साह के साथ की जा रही थी। अहमदाबाद, उदयपुर और कोलकाता जैसे कई शहरों में कल भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इन्हीं के बीच ताजा तस्वीरें आई हैं नोएडा के जगन्नाथ मंदिर से सामने। नोएडा के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही थी, अब ये मंदिर सज धज कर तैयार है। जगन्नाथ

0: पुरी से महाप्रसाद यहां पहुंच चुका है। इसके अलावा रथ के निर्माण के लिए कपड़ा भी पुरी से आया है, जिसके जरिए बेहद शानदार रथ तैयार किया गया है। कल सुबह इस रथ में अपने भाई बहन के साथ सवारी करते हुए भगवान जगन्नाथ नोएडा की सड़कों पर निकलेंगे। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 121 में भगवान जगन्नाथ का ये शानदार मंदिर मौजूद है। इस मंदिर को पुरी के मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है। पुरी के श्री मंदिर से आकार में ये भले ही छोटा है, लेकिन मंदिर की बनावट और इसकी सजावट में पुरी चिन्ह साफ नजर आते हैं और कल रथ यात्रा में इसकी झलक दिखने की पूरी उम्मीद है।
1: गुरुवार से जगन्नाथ यात्रा शुरू हो रही है। वैसे तो पुरी की जगन्नाथ यात्रा का कोई सानी नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जगन्नाथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं और आप दिल्ली NCR में रहते हैं, तो आप नोएडा के सेक्टर 21 में पहुंच सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर आप देख रहे हैं और नया नवेला यह मंदिर है, पिछले कुछ सालों में ही बनकर तैयार हुआ है, लेकिन इसकी भी भव्यता काफ़ी है। और जो लोग दिल्ली NCR में उड़ीसा के पुरी के या उस रीजन के लोग रहते हैं, वो यहाँ आकर उस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। यहाँ भी रथ यात्रा की तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। पुरी से महाप्रसाद नोएडा पहुँच चुका है, इस मंदिर के अंदर वो रखा हुआ है, रथ तैयार हो चुका है। ये वो रथ है जो बनकर तैयार हो गया है, जिस पर सवार होकर कल जगन्नाथ जी निकलेंगे, अपने भक्तों को दर्शन देंगे और अपनी मौसी के घर जाएंगे। इस रथ को बनाने में भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। पहले मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बता दूं, 16 फीट ये चौड़ा है, 18 फीट लंबा है और 22 फीट लगभग ये ऊंचा है।
0: जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई एक शानदार तस्वीर भुवनेश्वर से भी आई, जहां एक कलाकार ने अपनी कला के जरिए अनंत आस्था वाले की यात्रा की झलक भी दिखाई। भुवनेश्वर के मिनिएचर आर्टिस्ट अलेश्वर राव ने महाप्रभु की मिनी मूरत तैयार की है। रथ यात्रा से पहले इन्होंने 3 मिनिएचर रथ तैयार किए। हर रथ की ऊंचाई 5 इंच की है। सुपारी पेड़ के पत्तों से इन खास रथों को तैयार किया गया। इन रथों के लिए कागज के छोटे घोड़े और कलश भी तैयार किए गए हैं। कमाल की बात यह है कि नन्हे रथों में भगवान की छोटे छोटे मूर्तियां भी विराजमान दिख रही हैं। अलेश्वर राव ने नीम की लकड़ी से इन मूर्तियों को तैयार किया। हर मूर्ति की ऊंचाई 1 इंच है। 7 दिन की मेहनत से ये बेहद सुंदर रथ बनकर तैयार किए हैं।
2: जो 3 रथ बनाए हूँ, सुपारी पेड़ के पत्तों से मैं बनाया हूँ और उसका हाइट है 5 इंच। और आप जो देख रहे हैं, जो उसका पेपर से मैं छोटा छोटा घोड़ा भी बनाया हूँ और दो ऊपर जो कलश है ना, वो और कलश का साइड में जो सुआ भी किया हूँ। आप जानते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी और श्री बलभद्र जी और सुभद्र माता जी, वो जो काम किया हूँ छोटा काम 1 इंच का, वो नीम की लकड़ी से बनाया हूँ। टोटल इस काम करने के लिए मुझे, ये 3 रथ बनाने के लिए मुझे 7 दिन समय लगा। मेरे इस कला को लेकर, इस कला के माध्यम से सभी को रथ यात्रा का मैसेज विशेष देता हूँ। फिर मैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करता हूँ, उनका आशीर्वाद हम लोगों पर हमेशा रहे और सब नागरिक को स्वस्थ और शांति में रहे।
0: अनोखे हैं भगवान जगन्नाथ और उतना ही अनूठा है उनका पावन धाम पुरी। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। जो यहाँ विराजे हैं वो भले ही सारे जगत के नाथ कहलाते हों, लेकिन पुरी के श्री मंदिर में उनकी सेवा पूजा किसी छोटे से बालक की तरह की जाती है।

0: देश के नाम की पहचान रखने वाले उड़ीसा की पुरी नगरी सनातन धर्म की प्राचीन और पवित्र सात नगरियों में से एक मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुरी को बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ भगवान विष्णु के चार धामों में से एक का स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में जग के नाथ यानी जगन्नाथ के रूप में निवास करने लगे। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने निवास स्थानों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के मुताबिक यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति ही जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पहले सबर कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ यानी लकड़ी से बनाते थे। यही वजह है कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं। यहाँ पूजा के विधि विधान भी खास हैं। भगवान को नहलाना हो, वस्त्र पहनाना हो, सब्जी काटनी हो, पानी लाना हो, सामान समेटना हो या फिर भोग लगाना हो, हर काम के लिए एक अलग व्यक्ति निर्धारित है। सुबह भगवान उठने के बाद दंत मंजन करते हैं, उन्हें लकड़ी और कपूर दिया जाता है, फिर वे बिंब स्नान करते हैं यानी सात हाथ की दूरी से शीशे में अपना बिंब देखते हैं। वह शीशा सूर्य का प्रतीक होता है और मंत्रों से सिक्त करके स्थापित किया जाता है। स्नान के बाद भगवान का श्रृंगार होता है, भोग लगता है, साल धूप पूजा होती है, इसके बाद दोबारा श्रृंगार किया जाता है। यही प्रक्रिया दोपहर और शाम को भी दोहराई जाती है। शाम में भोग लगने के बाद भगवान सोने के लिए जाते हैं, इसके लिए पलंग लगाया जाता है, गद्दा डाला जाता है, उनके लिए पान, पानी और नारियल रखा जाता है। इस पूरे काम के लिए 119 लोग लगते हैं। जाहिर है ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो जगन्नाथ मंदिर को लाखों लाख मंदिरों से अलग बनाती हैं। जितना खास जगन्नाथ मंदिर है उतनी ही खास यहाँ की रसोई है। यहाँ रोज भगवान के लिए 56 तरह के प्रसाद बनते हैं। इसमें नारियल के लड्डू, मावे के लड्डू, दही चावल, अलग अलग तरह का पेठा, मालपुआ, दाल भात, कई प्रकार की सब्जियाँ, खीर, खिचड़ी जैसी चीजें शामिल होती हैं। प्रसाद बनाने के लिए कुएं का पानी का इस्तेमाल होता है जिसे सोने के घड़े से निकाला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रसाद की ये चीजें 742 अलग अलग चूल्हों पर एक साथ बनती हैं। इसके लिए एक के ऊपर एक 8 हांडियां चढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले ऊपर वाली हांडी का खाना पकता है, उसे उतारा जाता है, फिर नीचे वाली का पकता है। इस तरह 8 हांडियों से खाना उतारा जाता है। यही प्रक्रिया सभी 742 चूल्हों के लिए अपनाई जाती है। प्रसाद बनाने के लिए करीब 1500 लोग लगते हैं।
1: प्रसाद है ये विश्व प्रसिद्ध है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ जितने भी लोग आएंगे वो खाके ही जाएंगे, बिना खाली पेट कोई नहीं जाता है, ये यहाँ का महिमा ऐसा है।
0: भगवान जगन्नाथ के वर्तमान मंदिर का स्वरूप 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। सदियों से इस दिव्य मंदिर का अपना एक कठिन अनुशासन है, परंपराएं हैं और उससे बढ़कर ऐसे तमाम रहस्य हैं जो दुनिया के लिए सदा से कौतूहल का विषय रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के भक्त पूरी आस्था के साथ मंदिर से जुड़ी परंपराओं और रहस्यों का सम्मान करते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। इस यात्रा से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें आपको जीएनटी पर दिखाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.

0: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर लाए गए विशाल रथ, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली एनसीआर में भी निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, नोएडा के जगन्नाथ मंदिर में मेगा तैयारियां, पुरी से मंगवाया गया महाप्रसाद। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम की यात्रा, सुहाने मौसम के बीच में बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थ यात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ, अबुधाबी के लिए पहली सेवा शुरू, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को मिला वाटर सैल्यूट। ब्रिटेन के चिड़ियाघर में एक साथ जन्मे 7 शावक, विप्स नेट जू में विलुप्त हो रही प्रजाति के चीते के शावकों के जन्म का उत्सव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: मॉनसून में पहाड़ों पर सुहाना हुआ मौसम, बद्रीनाथ धाम में बढ़ा यात्रियों का उत्साह, बड़ी धाम की रौनक। चटक धूप और हल्की ठंड हवाओं के बीच में जारी है उत्तराखंड की चार धाम यात्रा, बिना किसी बड़ी बाधा के सुचारू रूप से जारी है हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ की यात्रा। रोजाना आने वाले भक्तों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही, प्रतिदिन दर्शनों को आ रहे 6,500 से ज्यादा भक्त, 14,89,146 श्रद्धालु कर चुके दर्शन। सुबह और सायंकाल में दर्शन को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़, भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में लौटे श्रद्धालुओं की रौनक, अब तक मत्था टेकने पहुंच चुके हैं 1,97,548 सिख श्रद्धालु। कल से शुरू हो रही भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा, ओडिशा की पुरी में मेगा तैयारी। आज रथ खला से श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने लाए गए तीनों रथ, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, भव्य रथ तैयार। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए मंदिर के आसपास उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़, भक्तों ने जमकर लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। पुरी में रथ यात्रा से पहले डीजीपी ने जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया, सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भुवनेश्वर में एक भक्त ने तैयार किया भगवान जगन्नाथ का इको फ्रेंडली रथ, ताड़ के पत्ते और नीम की लकड़ी से मिनिएचर रथ किया तैयार। अहमदाबाद में 149वीं रथ यात्रा की तैयारियां पूरी, जगन्नाथ मंदिर में रस्में भी शुरू। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने जगन्नाथ मंदिर में रस्मों को शुरू किया। मंदिर के गुंबज पर किया ध्वजारोहण। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने भगवान जगन्नाथ की उतारी आरती विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। अहमदाबाद में रथ यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम ने सड़कों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार में जोरों पर कांवड़ यात्रा की तैयारियां, कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए प्रबंध किए जा रहे। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, 500 सीसीटीवी कैमरा से होगी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा। कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए 24 घंटे हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित होगा, 8 ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, भाले, त्रिशूल, तलवार, बेसबॉल के डंडे, जुगाड़ वाहन, साइलेंसर का प्रयोग पूरी तरह बैन। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं के लिए अपना वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य, शराब या मादक पदार्थों पर होगी कार्रवाई। अमरनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, 12 दिनों में 3,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। पूरी आस्था और भक्तिभाव के साथ जारी है अमरनाथ की यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे बाबा बर्फानी के दर्शन। सुरक्षा प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच में पहलगाम और बालटाल के दोनों रास्तों से श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपने जन्मदिन पर श्री मंदिर में की पूजा अर्चना, राज्य और देश में शांति की कामना की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले, कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर मोहर। सेमीकंडक्टर 2.0 और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कैबिनेट ने दिया बूस्ट, 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ सेमीकंडक्टर 2.0 को हरी झंडी। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1,365 करोड़ का निवेश, 24,00,000 रोजगार के दिनों की उम्मीद। वाराणसी के लिए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी, वरुणा नदी के किनारे होगा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण। कृषि क्षेत्र किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 को स्वीकृति दी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से धीरे धीरे मजबूत उड़ानों का दायरा, 1 महीने के अंदर ही 61,000 यात्रियों ने भरी उड़ान। 15 जून से शुरू हुए थे एयरपोर्ट संचालन, जिसमें जून के आखिर 15 दिनों में 27,841 यात्री शामिल रहे। 10 जुलाई को सबसे ज्यादा 3,255 यात्रियों का आवागमन दर्ज हुआ, भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में तेजी। मुंबई से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची अबूधाबी से आने वाली पहली स्केड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान का शानदार स्वागत, दी गई पारंपरिक वाटर कैनन सलामी। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच में एमओयू साइन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ समझौता। महाराष्ट्र के किसानों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा तोहफा, किसानों का 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली बिल माफ करने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भावना दीदी की साइंस पाठशाला को दिखाई हरी झंडी, ग्रामीण विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ना मकसद। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट 2026 का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। तेलंगाना के मशहूर हैंडलूम कारीगर विजय कुमार ने देवी ब्रह्मरांबा को हाथ से बुनी हुई रेशम की अनोखी साड़ी भेंट की, माचिस की एक छोटी सी डिब्बे में आ जाती है ये। सोनीपत में एक परिवार ने अपनी पालतू गाय को दी अनोखी श्रद्धांजलि, निभाई गई 13वीं की रस्म। 18 साल तक परिवार के साथ रही पालतू गाय, हवन यज्ञ, गौ आरती और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। गुजरात के डांग में पारंपरिक 13 पर्व की धूम, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। वागदेव की पूजा के साथ धान की रोपाई का शुभारंभ, लोगों ने की अच्छी फसल की कामना। आदिवासी समाज के नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है ये पर्व, खेती और प्रकृति से गहरा संबंध है। बीड के गहिनीनाथ गढ़ से पंढरी की ओर चली आजय गुरु संत गहिनीनाथ की पालकी, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। पालकी की लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। तिरुपति के अस्पताल में जवानों की मॉक ड्रिल, इमरजेंसी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में ऑक्टोपस यूनिट, स्थानीय पुलिस, TDD, विजिलेंस, फायर डिपार्टमेंट और तमाम अन्य स्टाफ के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। जवानों ने कर्मचारियों के साथ आपसी सहयोग को परखा, लोगों को जागरूक किया। नेपाल में बारिश के बाद उफना आई पहाड़ी नदियां, 22 गांवों का संपर्क टूटा। कोलकाता में भारी बारिश हुई, तापमान में गिरावट के साथ मौसम भी सुहाना हुआ। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। सिक्किम के गैंगटॉक में जबरदस्त बारिश, भूस्खलन के अलर्ट के बीच में प्रशासन सतर्क। असम के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में ICC ने किए ऐतिहासिक बदलाव, इस नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर सेवन राउंड्स। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों को और ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाना इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य, ताकि शुरुआती दौर को हल्के में ना जा सके कोई भी टीम। इंग्लैंड में खेले गए वनडे में बुमराह ने रचा इतिहास, वनडे में पूरे किए अपने 150 विकेट, साथ ही इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विकेट वनडे विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने बुमराह। बदला जा सकता है टीम मुंबई इंडियंस का कैप्टन, मौजूदा कैप्टन हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कैप्टनसी। अगले साल से पूरी तरह से बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फिडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, अब शुरुआत से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे। आज रात को फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मैच, अटलांटा स्टेडियम में अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड का मुकाबला। फुटबॉल वर्ल्ड कप में इतिहास में 24 साल के बाद आमने सामने होंगे अर्जेंटीना और इंग्लैंड। वर्ल्ड कप में दोनों की पिछली भिड़ंत 2002 में हुई थी, तब 1-0 से इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी। दोनों टीमों में होगी कांटे की टक्कर वर्ल्ड कप इतिहास में, इससे पहले दोनों टीमों ने खेले 5 मुकाबले जिनमें इंग्लैंड ने 3 और अर्जेंटीना ने 2 जीते। कुल इंटरनेशनल मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच में अब तक खेले गए हैं 14 मैच, इसमें से इंग्लैंड 6 जबकि अर्जेंटीना ने 3 मैच अपने नाम किए। लियोनेल मेसी और हैरी केन पर रहेंगी सबकी नजरें, मेसी इस वर्ल्ड कप में 8 गोल कर गोल्डन बूट की रेस में दूसरे नंबर पर, वहीं इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन अब तक कर चुके हैं 6 गोल। फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया डांस सॉन्ग मैंने दिल तुझको दिया रिलीज, इस गाने को नकाश अजीज ने गाया है। बदली जा सकते हैं श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईठा की रिलीज डेट, यश की फिल्म टॉक्सिक से बॉक्स ऑफिस बैकलैश से बचने के लिए ये फैसला हो सकता है। इम्तियाज अली के करियर की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी मैं वापस आऊंगा, फिल्म ने 33वें दिन बॉक्स ऑफिस पर किया 27 लाख का कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर फिर से मचेगा रूह बाबा का धमाल, जल्द शुरू होगी कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया 4 की शूटिंग। फिल्म जनन आइकन के लिए 6 महीने का लंबा इंतजार कर रहे फैंस के लिए मेकर्स ने दी गुड न्यूज, मूवी के रिलीज डेट का किया अनाउंसमेंट। पंजाबी फिल्म इश्कनामा का ट्रेलर रिलीज, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। हनुमान अंश का नया गाना रिलीज, 31 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होगी। भूत बंगला वेलकम टू द जंगल जैसी कॉमेडी फिल्मों के बाद अक्षय कुमार अब मेहमान में नजर आएंगे, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। फिल्म भागम भाग का भी अब सीक्वल बनने को तैयार, फिल्म निर्माता ने ऐलान किया अक्षय कुमार परेश रावल का अहम रोल। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी की एडवांस बुकिंग शुरू, 17 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अब नेत्रहीनों की मदद के लिए एआई के लिए जा रही मदद, चीन के हेबेई प्रांत में स्मार्ट रोबोटिक गाइड डॉग का फील्ड ट्रायल शुरू। मल्टी मॉडल सेंसर और बड़े एआई मॉडल से लैस है ये रोबोटिक गाइड डॉग। सीढ़ियों, पाइपलाइन, गाड़ियों और पैदल चलने वाले लोगों जैसी रुकावटों की पहचान कर खुद से रास्ता बनाने में सक्षम। इन रोबोटिक गाइड डॉग में ऊंचाई पर चढ़ने, सेहत की निगरानी करने, गिरने पर अलर्ट देने के साथ तेजी से चार्ज होने, वीडियो कॉल करने, चीजें खोजने जैसे फंक्शंस। इन नॉम्स डॉग्स को लंबी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो भी महंगे होते हैं। ऐसे में ये रोबोटिक विकल्प घर के अंदर साथी के साथ साथ बाहर रास्ता खोजने में मददगार। चीन जल्दी ही मार्केट में उतारेगा इसको। चीन के हिबेई प्रांत में स्मार्ट रोबोटिक गाइड डॉग पहले कई तरह के परीक्षण से गुजरेंगे ये डॉग्स। चीन के चोंगकिंग में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका सामने आया। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान के बीच लोग स्विमिंग पूल में बैठकर चीन का टेबल गेम महजोंग खेलते हुए नजर आए। वाटर पार्क में पूल के अंदर लगाई गई महजोंग की टेबल, लोग ठंडे पानी में खेल का आनंद लेते हुए दिखे। भीषण गर्मी के चलते इस अनोखे इंतजाम ने पर्यटकों का ध्यान खींचा। पूल में महजोंग खेलने का वीडियो, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। गर्मी से राहत और मनोरंजन का यह अनोखा मेल लोगों को खूब पसंद आ रहा। वाटर पार्क में पूल के अंदर महजोंग खेलना इन दिनों आकर्षण का केंद्र। मौसम विभाग ने इस साल पहली बार रेड अलर्ट जारी किया, बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी। कनाडा के टोरंटो में पड़ रही भीषण गर्मी, धूप से बचने के लिए लोगों ने लिया पेड़ों की छांव का सहारा। गर्मी से राहत पाने की हर कोशिश जारी है। 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, इसलिए धूप से बचाव पर सबका ज्यादा जोर। हंस और पक्षी भी पानी की तलाश में नजर आए, तालाब और गड्ढों का पानी पीकर बुझाई अपनी प्यास। वाटर स्टेशन बने लोगों का सहारा, लोगों को हाइड्रेट रखकर खुद को घर पे ही रहने की सलाह दी गई। भीषण गर्मी के बीच में फीफा फैन फेस्ट का जोश बरकरार, लोग गर्मी से लड़ते हुए मैच का मजा लेने भी पहुंचे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी हुई यादगार चीजों की होगी शानदार नीलामी। वर्ल्ड फेमस ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज इस महीने के आखिर में आयोजित करेगा चैरिटी नीलामी। ऑक्शन की जा रही चीजों में मैच में इस्तेमाल गेंदें, टीमें के खिलाड़ियों के साइन की हुई जर्सीज, पहले वर्ल्ड कप फाइनल में हाफ टाइम शो से जुड़ी हुई चीजें शामिल की गई। नीलामी में इस वर्ल्ड कप सीजन के ओपनिंग गेम के साथ 19 जुलाई को होने वाले फाइनल मैच की गेंदें भी शामिल की जाएंगी। नीलामी में पहले वर्ल्ड कप फाइनल के हाफ टाइम शो से जुड़े कपड़े और परफॉर्मेंस में इस्तेमाल चीजें शामिल। इसमें कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन का नाम लिखी वर्ल्ड कप अर्थ बॉल आकर्षण का केंद्र। 22 से 29 जुलाई तक चलेगी ऑनलाइन सेल, फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड को दी जाएगी ऑक्शन से मिलने वाली रकम। न्यूयॉर्क में डायनासोर के कंकाल की नीलामी ने बनाया रिकॉर्ड। यहां पर गस नाम का 38 फीट लंबा कंकाल करीब $50 मिलियन में हुआ नीलाम। लगभग 6.7 करोड़ साल पुराने लेट क्रिटेशियस काल के इस कंकाल के $20 से $30 मिलियन में बिकने की उम्मीद थी। बीजिंग के ओल्ड समर पैलेस में इस साल पहली बार देखा गया जुड़वा कमल का एक दुर्लभ फूल। गर्मियों के मौसम में कमल के तालाब में खिला ये फूल। चांगचुन गार्डन इलाके में झील के किनारे मिला एक खूबसूरत कमल, इसमें एक ही डंठल से दो पूरी कलियां निकल रही हैं। कमल का एक दुर्लभ प्राकृतिक रूप ये जुड़वा कमल पारंपरिक चीनी संस्कृति में एकता सद्भाव सौभाग्य का प्रतीक कहते हैं इसको।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
5: सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, क्या है इस राशि परिवर्तन का महत्व, क्या है देश दुनिया और राशियों पर प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: अगर आप प्रकृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर आपका इंतजार कर रही है। पहाड़ों के बीच में जहां तक नजर जाएगी रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछी नजर आएगी। उत्तराखंड के चमोली जिले की मशहूर फूलों की घाटी इन दिनों अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई दे रही है। आइए चलते हैं इस घाटी में जहां हर कदम पर प्रकृति का करिश्मा आपका इंतजार कर रहा है। नजारों को देखिए, हरे भरे पहाड़, बादलों की छांव और रंग बिरंगे फूलों से सजी पूरी की पूरी घाटी। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बनाकर छोड़ दी है। कहीं गुलाबी रंग बिखरा है तो कहीं नीले पीले और बैंगनी फूलों ने धरती को इंद्रधनुष जैसा बना दिया है। उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है और इसकी खूबसूरती लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच रही है।
10: विश्व धरोहर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार दिखाई दे रही है। फूलों की घाटी का मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है और इस दौरान मानसून होने के साथ ही जो घाटी का दायरा है वो हर तरफ अलग अलग रंग के अलग अलग किस्म की जो प्रजातियां हैं यहाँ पे खिली हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी अब फूलों की घाटी पूरी तरह से यहाँ पे खिल चुकी है, हर तरफ पर जो प्रकृति का यौवन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
8: जुलाई के मध्य से अगस्त के बीच तक का समय इस घाटी का सबसे खास मौसम माना जाता है। यही वो दौर होता है जब दुर्लभ हिमालयी फूल एक साथ खिल उठते हैं और पूरी घाटी रंगों की ऐसी चादर ओढ़ लेती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। यही वजह है कि ट्रैकिंग के शौकीन हों, फोटोग्राफर हों या फिर प्रकृति प्रेमी, हर कोई इन दिनों फूलों की घाटी का रुख कर रहा है। वैसे इस घाटी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। साल 1932 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ की वजह से ये घाटी दुनिया की नजरों में आई। आज ये घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जहां मध्य जुलाई से सितंबर तक करीब 500 दुर्लभ प्रजातियों के फूल खिलते हैं। इतना ही नहीं, किस्मत साथ दे तो यहाँ दुर्लभ वन्य जीवों की झलक भी देखने को मिल सकती है। इस सीजन अब तक 11,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं, यानी पिछले साल की तुलना में ये लगभग दोगुनी है। पिछले साल इसी अवधि में करीब 5,172 पर्यटक आए थे, जबकि इस बार आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों का प्रकृति की ओर रुझान कैसे लगातार बढ़ रहा है।
11: इन पर्यटकों से जो आय प्राप्त हुई है वो है 20,16,250। इसके साथ ही हमारे पास जो विदेशी पर्यटक हैं वो 45 रहे हैं इस सीजन में। अभी तक अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो पिछले साल हमारे पास अभी तक 13 जुलाई 2025 तक आने वाले जो पर्यटकों की संख्या थी वो 5,490 थी, जो कि इस बार जो पर्यटकों की संख्या वो लगभग हमारी दोगुनी हो चुकी है।
8: माना जा रहा है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो इस साल फूलों की घाटी पर्यटकों के मामले में नया रिकॉर्ड बना सकती है।
12: 1 जून से खुला ये पार्क 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। तो अगर आप भी प्रकृति के सबसे खूबसूरत रंगों को करीब से देखना चाहते हैं, तो अभी सही वक्त है, क्योंकि कुछ नज़ारे सिर्फ तस्वीरों में अच्छे नहीं लगते बल्कि अपनी आँखों से महसूस किए जाते हैं। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
14: To right field, and it will leave.
13: From the first pitch of the season to the stretch run,
14: and that's the ball game.
13: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: इसके ऊपर
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
16: पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर लाए गए विशाल रथ, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली NCR में भी निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा,
1: नोएडा के जगन्नाथ मंदिर में मेगा तैयारियां, पुरी में मंगवाया गया महाप्रसाद। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, सुहावने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ, अबुधाबी के लिए पहली सेवा शुरू, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को मिला वाटर कैनन सैल्यूट। दर्शन के चिड़ियाघर में एक साथ जन्मे सात शावक, वेब्स नेट जू में विलुप्त हो रही प्रजाति के चीतों के शावकों के जन्म का उत्सव, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, शाम के साथ बज चुके हैं सात, गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज के साथ अच्छी खबरें बताएंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज, बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ा हुआ है। अमरनाथ यात्रा का आज 13वां दिन है और 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। हमारी आज की सबसे पहली गुड न्यूज यही है, 12 दिन 13 लाख पार, भक्ति अपार। अमरनाथ धाम आस्था भक्ति और उत्साह से गुलजार है। यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक भक्त महादेव की भक्ति में लीन है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। हर हर महादेव।
18: बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार कर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर दिशा में हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी का जय घोष गूंज रहा है। कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण सफर भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पा रहा। जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों के अंदर अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
19: कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ है जब 12 दिन के भीतर 3 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। 3 जुलाई से जारी अमरनाथ यात्रा में पहले 12 दिन के दौरान ही 3 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने से ये साफ हो गया है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अभी भी करीब 1.5 महीने का समय अमरनाथ यात्रा में बचा है और उस बीच अमरनाथ यात्रियों की श्रद्धा और अमरनाथ यात्रियों के जोश में कोई कमी नहीं है।
18: बाबा बर्फानी के भक्त खड़ी चढ़ाई, पथरीले रास्ते और पल पल बदलते मौसम के बावजूद आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा के दर्शन की चाह ही ऐसी है कि रास्ते में थोड़ी बहुत परेशानी है तो उसे भी नजरअंदाज कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस एक भाव है जो आंखों में नमी बनकर तैर जाता है, उत्साह है जो जयकारे में तब्दील हो जाता है।
20: अच्छा लग रहा है, इस बार हम फर्स्ट बार आ रहे हैं अमरनाथ, लेकिन बहुत BSF सबका बहुत, हम पुलिस का शुक्रिया करते हैं कि हमको साथ में लेकर आए, बहुत अच्छा लगा।
21: तो ऐसा है कि जल्दी से पैदल चढ़ के जाए, सब चीज का मजा ले।
22: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जोश है कि दर्शन हो रहा है बाबा जी की।
23: सुविधाओं को लेकर किस तरह से
22: सुविधा? बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है।
18: सुरक्षा और प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों में श्रद्धालुओं का जत्था लगातार बाबा बर्फानी की तरफ बढ़ रहा है। कोई पैदल चल रहा है, कोई घोड़े या पालकी का सहारा ले रहा है, तो कोई पिट्ठू के साथ कठिन चढ़ाई पार कर रहा है, लेकिन मंजिल अभी सभी की एक है, बाबा अमरनाथ के दर्शन।
24: आस्था चाहिए
0: बाबा का जो गुफा है उसका ही दर्शन, बस बाबा का जो बाबा की जो गुफा है उसमें ही बहुत पावर है। जमीन पे पावर रखा तो इतनी ऊर्जा आई हमको, तीन दिन से थके थे, लाइन में खड़े थे, सब हो गया, लेकिन आज इधर पावर पहलगाम में आए तो इतना ऊर्जा मिली हमको कि पूछो मत।
18: श्रद्धालुओं का ये जोश ही आस्था की इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दे रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर खुशी जताई और तीर्थयात्रियों से लेकर यात्रा को कामयाब बनाने में लगे सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। अमरनाथ यात्रा का समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर होगा, यानी यात्रा में अभी भी 1.5 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन भी यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है। पहलगाम से आरिफ बलोच और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: पुरी की पावन धरती एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। महाप्रभु जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। देश नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज भी इसी से जुड़ी हुई है। रथ तैयार, जगत के नाथ का इंतजार। मंदिर से लेकर ग्रैंड रोड तक तैयारियां अंतिम चरण में है। तीनों दिव्य रथ सजकर तैयार हो चुके हैं भक्त, और अब उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब महाप्रभु अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, रथ यात्रा के लिए आया हूँ, पहली बार आए हैं यहाँ पे।
10: हम भगवान को नहीं भी देख पाएंगे तो वो तो हमें देख ही पाएंगे, देख ही लेंगे, उन्हें पता है कि ये लोग आए हुए हैं।
24: बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी ऐसे ही लग रहा है कि पूरी जगमग रही है। ये एक स्वरूप हर एक को देखना चाहिए कि भगवान खुद अपने भक्तों को मिलने के लिए आते हैं।
25: ये उत्साह, ये उमंग, ये उल्लास अपने आराध्य के दर्शन के लिए है। महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त अब उस ऐतिहासिक और पावन क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु अपने भक्तों के बीच विराजमान होंगे।
26: भक्त और भगवान का मिलन के लिए अब पूरा विश्व तैयार है। अब पुरी में तीनों रथ भी तैयार हैं, भगवान तैयार हैं और भक्त भी तैयार हैं।
25: इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रथ यात्रा से पहले पुरी पूरी तरह भक्तिमय हो चुकी है। कल रथ यात्रा का आरंभ होना है और महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर पारंपरिक शैली में रथों तक पहुंचाया जाएगा। उससे पहले भगवान की मंगला आरती होगी और फिर भोग लगाया जाएगा और उसके साथ महाप्रभु नगर भ्रमण पर निकलेंगे।
27: भगवान का सकल दीपो खचड़ी भोग होता है। खचड़ी भोग खत्म होने के बाद भगवान महाप्रभु का आज्ञामाल वो तीनी रथ में आएंगे। वो आज्ञामाल लगने के बाद तीनी रथ रथ खला में जाएंगे हमारा सिंहद्वार में, और सिंहद्वार में कल सुबह रात 4 बजे मंगला आरती होगा, इसका अवकाश होगा। इसके बाद महाप्रभु का खिचड़ी भोग होगा, मंगला अर्पण होगा। 8:30 बजे भगवान यहाँ निकलेंगे तीनों रथों में। एक धाड़ी पांडी होकर आएंगे, पहले सुदर्शन महाप्रभु आएंगे, इसके बाद बलभद्र महाप्रभु आएंगे, इसके बाद माँ देवी सुभद्रा और सब लास्ट में जगन्नाथ महाप्रभु।
25: रथ यात्रा के बाद महाप्रभु 9 दिनों तक श्री गुंडीचा मंदिर में विराजमान रहते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु वहां पहुंच कर दर्शन करते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के माध्यम से महाप्रभु वापस श्री मंदिर लौटते हैं। ये पूरी यात्रा आस्था, अध्यात्म और समर्पण का ऐसा संगम है जो हर श्रद्धालु को भीतर तक भाव विभोर कर देता है। महाप्रभु जगन्नाथ की इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना भक्त अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं।
5: इसे उत्सव महोत्सव में आने के लिए और कहने के लिए केवल भाग ही इसमें कार्य क्षेत्र होता है, दूसरा कुछ होता नहीं है।
25: मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होकर महाप्रभु के दर्शन कर और उनके रथ की रस्सी को स्पर्श कर श्रद्धालु स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। यही कारण है कि देश दुनिया से लाखों भक्त पुरी पहुंचते हैं और इस आध्यात्मिक उत्सव का साक्षी बनकर खुद को भाग्यशाली समझते हैं।
2: फर्स्ट टाइम यहाँ रथ यात्रा में आए हैं। मेरा घर वाराणसी में है और मैं हैदराबाद में रहकर काम करता हूँ। कल रथ यात्रा है और उसके लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
25: रथ यात्रा से पहले ग्रैंड रोड को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा, यातायात और आपदा प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं महाप्रभु के रथों को खींचने वाली पवित्र रस्सियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
26: ये कॉटन रस्सी का मेजरमेंट किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो अंदर कैसे नहीं आ पाएंगे, रथ के पास जो आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाएगा, इसलिए ये रस्सी को पहले से तैयार किया जा रहा है। और आपको ये भी दिखाऊंगा, ये रस्सी से ज्यादा मोटा ये है क्योंकि इस रस्सी में रथ को खींचा जाएगा। आप देख सकते हैं तीनों रथ का जो रस्सी है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। और आपको ये दिखाऊंगा, भक्तों का ये भीड़ दिखाऊंगा आपको, कितना भीड़ आप देख सकते हैं, कहां कहां से लोग आए हैं।
25: रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और एकता का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ राजा हो या आम श्रद्धालु, देसी हो या विदेशी, सभी एक साथ महाप्रभु के रथ की रस्सी खींचते हैं। महाप्रभु के सामने सभी बराबर हैं और हर कोई उनकी सेवा को अपना सौभाग्य मानता है। यही प्रेम, समानता और भक्ति जगन्नाथ संस्कृति को पूरी दुनिया में खास बनाती है। पुरी से अजय नाथ, गुड न्यूज टुडे।
4: वैसे यहाँ ये भी बताते चले कि रथ यात्रा की तैयारी अब केवल पुरी में ही नहीं चल रही बल्कि अहमदाबाद और कोलकाता में भी लोग इस पावन यात्रा के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं। इन जगहों पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज भी इसी से जुड़ी हुई है। रथ यात्रा के रंग अनेक, यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं।

0: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 16 जुलाई वो शुभ घड़ी होगी जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भी रथ यात्रा की भव्य तैयारी है। रथ यात्रा के दिन सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में पाहिंद विधि होगी और भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलदेव के तीनों रथ मंदिर से प्रस्थान करेंगे। अहमदाबाद में ये रथ यात्रा 16 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी और 1 बजे तक सरसपुर पहुंचकर रात 8 बजे तक वापस जगन्नाथ मंदिर लौटेगी। भक्तों की भीड़ इस खास पल का साक्षी बनने के लिए उमड़ने लगी है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी की रथ यात्रा के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है। जाहिर है 16 जुलाई को यहां आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने खुद सड़कों पर उतरकर तैयारियों का जायजा लिया।
1: 16 जुलाई के दिन अहमदाबाद में 149वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन 149वीं रथ यात्रा के पहले अहमदाबाद की सड़कों पर ग्रैंड रिहर्सल आयोजित हो रहा है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरों में देख पा रहे हैं गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के साथ गुजरात के डीजीपी और सीपी की मौजूदगी में ये पूरा ग्रैंड रिहर्सल हो रहा है, जहाँ 31,000 पुलिस जवानों का बंदोबस्त सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और जिस रूट से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का रथ निकलेगा, उसी रूट पर ये ग्रैंड रिहर्सल आयोजित हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की मौजूदगी देखने को मिल रही है।
0: अहमदाबाद की तरह ही कोलकाता में भी रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। मंदिर परिसर को खूबसूरती से सजाया गया है, रथ भी सज धज कर तैयार है।
2: पर रथ यात्रा में ये स्पेशलिटी है, इस बार हम लोग दिखा रहे, पहले बार ऐसे यूनिक मॉडल हम लोग तिरुपति बालाजी का मॉडल बना रहे और बहुत सुंदर पंडाल बनेगा। सो हम लोग पूरा कलकत्ता को निवेदन करते हैं कि आप आइए, दर्शन लीजिए कि कैसे कलकत्ता में हम लोग इस तिरुपति बालाजी का मॉडल बना रहे और हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे मंदिर के अंदर सब लोग आ सकते हैं और वहाँ पर आप शांति और समृद्धि पा सकते हैं।
0: अब इंतजार उस ऐतिहासिक क्षण का है जब भव्य रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच निकलेंगे। इस दौरान जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देगी और अहमदाबाद में एक बार फिर आस्था, एकता और सनातन परंपरा की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। अहमदाबाद से तुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: आने वाले कुछ दिनों में भोलेनाथ का महापर्व कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाला है सावन के महीने में, और इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं।

0: की गई हैं और समयबद्ध तरीके से सभी की तैयारियां मुकम्मल करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: कांवड़ मेला 2026 के लिए सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और उसमें क्या क्या और कार्य किए जाने हैं और कार्यों के निरीक्षण करने के लिए आज सभी टीम के द्वारा कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। ये निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा, कल भी देहात क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा। इसमें मुख्यतः जो रोडीबेल वाला क्षेत्र है, साथ ही हमारा नजीबाबाद पे जो हाईवे का काम चल रहा है, भूपत वाला और सप्तषी क्षेत्र में जो सीवर लाइन का काम चल रहा है वहाँ पे जो सड़क के निर्माण कार्य होने, साथ ही मनसा देवी जो मार्ग है ब्रह्मपुरी का उसका निरीक्षण किया गया है। साथ में PWD वन विभाग, NHK डिपार्टमेंट के अधिकारी, सिंचाई विभाग, जल संस्थान सभी अधिकारियों के द्वारा मौके पर कार्य किया जा रहा है, उसका भी उसमें भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। आने वाले टाइम में कांवड़ पटरी का यहाँ से हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक और साथ ही जो अन्य क्षेत्र हैं जहाँ से ट्रैफिक डाइवर्जन होना है, जहाँ पर NH का काम भी चल रहा है, बादराबाद हो गया वहाँ पर दो जगह है और बटेरी राजपुतान का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कार्य चल रहा है, वहाँ पर भी निरीक्षण कल किया जाएगा। सभी जगह डायरेक्शंस दिए गए हैं कि समय रहते 25 जुलाई की डेडलाइन दी गई है, कार्य पूर्ण कर लिए जाए और गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाए, जगह जगह साइनेजेस लगाने के लिए भी बताया गया।
0: उत्तराखंड के टिहरी जिले में पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। यहां पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जनपद के सभी थानों में टीम गौरव शक्ति का गठन किया गया है। प्रशिक्षण टीम स्कूल, कॉलेजों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से गश्त करेगी। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 5 यही है, टिहरी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात गौरव शक्ति। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की रोकथाम और उनकी सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से टिहरी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत जिले के सभी थानों में टीम गौरव शक्ति का गठन किया गया जो महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा जागरूकता और त्वरित सहायता सुनिश्चित करवाएगी। जिन थानों में महिला सब इंस्पेक्टर तैनात है वहां वो टीम का नेतृत्व करेंगी, जबकि अन्य थानों में एडिशनल सब इंस्पेक्टर और महिला हेड कांस्टेबल टीम की कप्तानी संभालेंगी। टीम के सभी सदस्यों को महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े मामलों को संवेदनशील तरीके से सुलझाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीम गौरव शक्ति का मुख्य उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर छात्राओं को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना है।
2: इन टीम गौरव के मेंबर्स का प्रॉपर एक दिवसीय प्रशिक्षण पुलिस लाइन में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के तहत करवाया गया, जहाँ पे मुख्य रूप से उनको अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी गई, जो लीगल राइट्स होते हैं महिलाओं संबंधी उसके संदर्भ में, पॉक्सो से संदर्भ में उनकी कार्यशाला करवाई गई और उसके साथ ही साथ साइबर सेफ्टी भी इस मॉड्यूल में जोड़ा गया। मुख्यतः ये टीम गौरव का यही कार्य है कि जो हमारे संवेदनशील स्थल है या हॉटस्पॉट्स हैं जो हमारे स्कूल कॉलेजेस के बाहर, ये टीम गौरव जो है लगातार छुट्टियों के टाइम पेट्रोलिंग करेंगी, जो बालिकाएं हैं उनकी समस्याएं अगर कोई है तो उसका समाधान करेंगी और इसके अतिरिक्त अलग से हफ्ते में एक या दो दिन अपने क्षेत्र के किसी भी विद्यालय में जाकर ये बालिकाओं को आत्मसुरक्षा, साइबर सेफ्टी और लीगल राइट्स, गुड टच बैड टच इस संदर्भ में ट्रेनिंग देंगी।
0: केंद्र सरकार देशभर में रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने की योजना चला रही है। इसी के तहत पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन को भी नए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलप किया गया है। इससे स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज भी इसी से जुड़ी हुई है। 110 साल पुराने स्टेशन का मॉडर्न अवतार, अंग्रेजों के जमाने में बने जालंधर कैंट स्टेशन के पुनर्विकास का मकसद यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं को स्टेशन की ऐतिहासिक पहचान के साथ जोड़ना है और इस नए स्टेशन का उद्घाटन 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।

0: देश के रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदल रही है। केंद्र सरकार के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का स्वरूप बदल रहा है और इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसा ही एक स्टेशन जलंधर कैंट है, जहां करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया गया है। करीब 110 साल पुराने स्टेशन के पुनर्विकास का मकसद यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं को स्टेशन के ऐतिहासिक पहचान के साथ जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को इस फिर से बने स्टेशन का उद्घाटन करेंगे।
1: जब से आया तब से देखा यहाँ पर सफाई चालू ही है, यहाँ पर सफाई चालू है। स्टेशन के हर एक 10 कदम पे कोई ना कोई पुलिस वाला खड़ा मिलेगा आपको सिक्योरिटी के लिए, तो काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। यहाँ पर पंजाब में आके

0: लगभग 10 दिन हो गए बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा। मैं और मेरे दोस्त यही बात कर रहे थे, लगता गलती से एयरपोर्ट आ गए। ये काफी अच्छा स्टेशन लगा, एयरपोर्ट वाला लुक भी, इधर से अगर जाओगे तो एयरपोर्ट वाला लुक भी सेम वैसी लग रहा है, काफी साफ सफाई है इधर।
1: इस स्टेशन के डिजाइन में पंजाब के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक भी शामिल की गई है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए रीडेवलपमेंट के तहत यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिनमें आधुनिक टिकट काउंटर, फूड प्लाजा, रिटेल कियोस्क, 2 नए फुटओवर ब्रिज, मजबूत स्टील की छत वाली प्लेटफॉर्म शेड और सामान स्कैन करने की मशीनें शामिल हैं। यात्रा के दौरान लंबी दूरी के यात्रियों को आराम करने के लिए पुरुष और महिला यात्रियों के लिए अलग अलग डॉर्मेट्री भी बनाई गई है।
2: बहुत सुंदर बना है, सबसे सफाई बहुत ज्यादा है और वो वाले स्टेशन से ये बहुत अच्छा है।
3: सर ऐसे ही होना चाहिए, हर जगह सारे स्टेशन ऐसे साफ सफाई होनी चाहिए। इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री को,
2: और सफाई हमेशा ऐसी रहे जैसे अब बना हुआ है, और पब्लिक भी थोड़ी अपने ध्यान दे साफ सफाई का।
1: भारत सरकार इस समय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खास फोकस कर रही है। देश में कई रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत रीडेवलप किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें राजस्थान का जैसलमेर स्टेशन भी शामिल है। जैसलमेर में इस योजना के तहत करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से इसका नया रूप तैयार किया गया है। स्टेशन यात्रियों के लिए सभी मॉडर्न सुविधाएं दी गई है। इसके साथ ही जैसलमेर की ऐतिहासिक पहचान भी इस नई बिल्डिंग में दिखाई देगी।
4: जैसलमेर एयरपोर्ट के तर्ज पर जो यात्रियों को एयरपोर्ट पर सुविधाएं मिलती है, उसी के तर्ज पर भारतीय रेल भी अपनी सुविधाएं बढ़ाती जा रही है। यहां भी उसी तरह की साफ सफाई, यात्रियों को रहने के लिए रिटायरिंग रूम की सुविधाएं, फूड प्लाजा, सब चीजें हैं, एयर कॉन्कोर्स है पूरा, ये सब चीजें यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिया गया है। बड़ी वेटिंग हॉल है, एसी वेटिंग हॉल है, सामान्य प्रतीक्षालय भी है, सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए दिया जा रहा है।
1: इस रेलवे स्टेशन की नई 3 मंजिला इमारत को बनाने में यहां के प्रसिद्ध सुनहरे पीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका लुक महल जैसा नजर आए। यात्रियों की सुविधा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर कई आधुनिक व्यवस्थाएं दी गई हैं। स्टेशन पर 10 अत्याधुनिक लिफ्ट और 10 एस्केलेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्मों के बीच आसान आवाजाही के लिए 6 मीटर चौड़ाई वाले 2 नए फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं।
5: विश्व विख्यात पर्यटन स्थल जैसलमेर में एक बहुत बड़ी नई सौगात मिलने वाली है आगामी 3-4 दिनों में। यहाँ पर एक बहुत ही भव्य जो है रेलवे स्टेशन का जो है पुनर्निर्माण किया गया है। 140 करोड़ रुपए की लागत से यह जैसलमेर का जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही सुंदर आर्ट और कला से पूरा इसको परिपूर्ण किया गया है, पीले पत्थर से इसको तैयार किया गया है।
1: जैसलमेर और जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन के कायाकल्प से न केवल यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि शहरों की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखते हुए पर्यटन और व्यापार को भी नई मजबूती मिलेगी। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अगर आप प्रकृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स आपका इंतजार कर रही है। पहाड़ों के बीच जहां तक नजर जाए रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछी हुई है। यहां अभी तक 11,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। ऐसे में हमारी आज की आखिरी गुड न्यूज यानी गुड न्यूज नंबर 7 यही है, फूल खिले हैं घाटी में। उत्तराखंड के चमोली जिले की मशहूर फूलों की घाटी इन दिनों अपने खूबसूरत रूप में नजर आ रही है और इसकी खूबसूरती लोगों को दूर दूर से अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जुलाई के मध्य से अगस्त के बीच तक का समय यहां पर होता है जब घाटी में बेहद खूबसूरत फूल खिलते हैं, और ये वो दौर होता है जब दुर्लभ हरियाली फूल एक साथ खिल उठते हैं और पूरी घाटी रंगों की ऐसी चादर ओढ़ लेती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान है। और ये वजह कि ट्रैकिंग के शौकीनों, फोटोग्राफर्स, यहां तक कि प्रकृति प्रेमी हर कोई इन दिनों फूलों की घाटी का रुख कर रहा है। वैसे इस घाटी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 1932 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ की वजह से ये घाटी दुनिया में नजर आई थी। आज ये घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जहां मध्य जुलाई से सितंबर तक करीब 500 दुर्लभ प्रजातियों के फूल खिलते हैं। इतना ही नहीं, किस्मत साथ दे तो यहां दुर्लभ वन्य जीवों की झलक भी देखने को मिल सकती है। इस सीजन में 11,000 पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं।
7: विश्व धरोहर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार दिखाई दे रही है। फूलों की घाटी का मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है। इस दौरान मानसून होने के साथ ही जो घाटी का दायरा है वो हर तरफ अलग अलग रंग के अलग अलग किस्म की जो प्रजातियां हैं यहाँ पे खिली हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी अब फूलों की घाटी पूरी तरह से यहाँ पे खिल चुकी है। हर तरफ पर जो प्रकृति का यौवन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
6: 7:30 की 7 अच्छी खबरें देश और दुनिया की, तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears, or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s Hits or ask your device to play 90s Hits on TuneIn.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: K-pop takes center stage, bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां पूरी, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर लाए गए विशाल रथ, श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा। सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थ यात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ, अबू धाबी के लिए पहली सेवा शुरू, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को मिला वाटर सैल्यूट। आईसीसी ने बदला वनडे और टी20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, वनडे वर्ल्ड कप में अब सुपर सीरीज और सुपर सेवन चरण खेले जाएंगे, टी20 वर्ल्ड कप में सुपर टेन चरण और एलिमिनेटर मुकाबले होंगे शामिल। ब्रिटेन के चिड़ियाघर में एक साथ जन्मे सात शावक, विस्नेंट जू में विलुप्त हो रही प्रजाति के चीते के शावकों के जन्म का उत्सव सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी पर पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी जो है कई बार सच और झूठ की रेखा को लांघ जाती है, कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ती जाती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियोस जो हैं चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर दो वीडियो खूब तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि ये दोनों वीडियोस चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: चीन की सेना के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के दावे से दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिकों को मार्च करते हुए देखा जा रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में हथियारबंद सैनिकों को ट्रक से उतरते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियो चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वायरल पोस्ट को शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, चीन की सेना 60 किलोमीटर भारत के अंदर घुस आई। वहीं एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, चीन ने भारत पर 60 किलोमीटर का कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियोस धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं। पहले वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिकों को मार्च करते हुए देखा जा सकता है, वहीं पर दूसरे वीडियो में हथियारबंद सैनिकों को ट्रक से उतरते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियोस चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, 60 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने दोनों वीडियो उसकी जांच की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे दोनों वीडियो को गौर से देखा और सुना। दोनों वीडियो के बैकग्राउंड में आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये चीन की आधिकारिक भाषा यानी मैंड्रिन जैसा नहीं हमको सुनाई दिया, ये कोई और भाषा थी। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने फिर से दोनों वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान दूसरे वीडियो में जवानों के यूनिफॉर्म पर गया। जब हमने इसे गौर से जूम करके देखा तो ये थाईलैंड के झंडे जैसा नजर आया। इसके अलावा सर्च के दौरान ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि सरकार और भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि चीनी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए। ये रिपोर्ट गलत है और इनका कोई आधार नहीं है। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल हो रहे दोनों वीडियोज के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर दोनों वीडियोस के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने दोनों वीडियो की बारी बारी से पड़ताल की। पहले वीडियो का सच जानने के लिए सबसे पहले हमने इसके कई की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो थाईलैंड के फेसबुक पेज पर 16 जून 2026 को शेयर किया हुआ मिला। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो थाई सेना का है। इसमें दूसरी रेजिमेंट की 3rd बटालियन के नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के जवानों की ट्रेनिंग को दिखाया गया है। पेज पर थाई सेना और उसकी ट्रेनिंग से जुड़ी कई और पोस्ट भी मौजूद हैं। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि थाई सेना के ट्रेनिंग के कई वीडियो यहाँ मौजूद हैं। जवानों को वायरल वीडियो में जो झंडा पकड़े हुए दिखाया गया है उसी हूबहू झंडे को इस पेज पर मौजूद कुछ वीडियो में भी जवानों को पकड़े हुए देखा जा सकता है। दूसरे वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने इसके कई की फ्रेम निकाले और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो थाईलैंड के कई टिकटॉक यूजर्स की प्रोफाइल पर मिला। भारत में प्रतिबंधित होने की वजह से इन वीडियो को हमने एक्सप्रेस वीपीएन टूल की मदद से चेक किया। एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए थाई आर्मी का बताया, जिसमें ट्रक से उतर रहे सभी जवानों के यूनिफॉर्म पर थाईलैंड के झंडे को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि भारतीय सेना भी अपने आधिकारिक फैक्ट चेक अकाउंट से इस दावे का खंडन करते हुए इसे थाई आर्मी का बताया है। यानी दोनों ही वीडियो का भारत चीन मामले से कोई संबंध नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के घुसपैठ करने का दावा फेक है और इस दावे से वायरल हो रहा वीडियो थाईलैंड की आर्मी का है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भारतीय सेना ने भी चीन के घुसपैठ के दावे का खंडन किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: देखो, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
4: सोशल मीडिया पर मानव पिरामिड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मानव पिरामिड बनाया है। कुछ ही देर में यह पिरामिड डगमगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद संभल जाता है और लोग गिरने से बच जाते हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मानव पिरामिड तेज हवा में डगमगाने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कोई भी नीचे नहीं गिरा। क्या आप इस मानव पिरामिड के सबसे ऊपर खड़े होने की हिम्मत करेंगे? वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है।
2: We got it. We're not falling. दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मानव पिरामिड बनाया है। कुछ ही देर में यह पिरामिड डगमगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद संभल जाता है और लोग गिरने से बच जाते हैं। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो की जांच की, तो देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर की फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कोई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने ये पाया कि पिरामिड बनाने वाले लोग अजीब तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं। जब ये मानव पिरामिड हिलने लगता है तब सभी लोग अस्वाभाविक तरीके से बिल्कुल हिलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई हाल फिलहाल में प्रमाणिक रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। देखिए पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें क्यों नहीं मिली। दूसरा ये कि कहीं एडिटेड मॉफ्ट वीडियो को वायरल करके गुमराह तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी अस्वाभाविक चीजें नजर आईं जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। लिहाजा पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स के जरिए जांचा गया। हमने हाई मॉडरेशन का इस्तेमाल किया। इस टूल ने वीडियो के AI से बने होने की करीब 100% संभावना जताई। इस टूल के एनालिसिस के मुताबिक इस वीडियो को सीडेंस 2 मॉडल की मदद से बनाए जाने की संभावना अधिक है, जो AI वीडियो जनरेट करने वाला एक टूल है। हमने एक दूसरे टूल undetectable.ai की मदद से भी वायरल वीडियो को सर्च किया। इस टूल ने भी वीडियो के 97% तक AI से बने होने की संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले, फिर इन्हें सर्च किया गया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 9 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ AI की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि मानव पिरामिड का वायरल हो रहा वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फिलहाल ले रहा है छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
0: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और इसी के साथ वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
9: इंटरनेट पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं। ये वीडियो एक माँ और उसके एक साल के बच्चे के उस खूबसूरत रिश्ते को दिखाता है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपने एक साल के बच्चे को बिस्तर पर लेटाने की कोशिश कर रही है, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़ती है। चोट इतनी तेज थी कि मां दर्द से कराते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी का दिल जीत लिया। अपनी मां को दर्द में देखकर वो छोटा सा बच्चा फौरन अपनी जगह से उठा और बिना देर किए अपनी मां की तरफ भागा। आमतौर पर इतने छोटे बच्चे खुद गिरने पर रोने लगते हैं, लेकिन यहां नन्हे बच्चे ने अपनी मां के दर्द को महसूस किया। वो रेंगते हुए अपनी मां के पास पहुंचा और अपने छोटे छोटे हाथों से मां के सिर को बड़े प्यार से सहलाने लगा, मानो वो कह रहा हो, मां रो मत, मैं हूं ना। बच्चे का ये निस्वार्थ प्यार और उसकी मासूमियत देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख भर आई।
10: हेलो गाइस, ये मेरी परदादी और अभी 90 इयर्स की हो चुकी है।
11: 90
9: सोशल मीडिया पर 90 साल की बुजुर्ग परदादी और उनके छोटे से परपोते का एक बेहद इमोशनल और प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे की जिद पर दादी ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया।
11: सुनो सया, हम का बोला वो सनकार के है? और गए?
10: पूरा गांव,
11: पूरा गांव।
9: दोनों के बीच का प्यार और मासूमियत लोगों को बहुत पसंद आ रही है।
10: दादी बस आप गाना गाओ।
9: चलती ट्रेन में पूजा पाठ और हवन का ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। वायरल वीडियो में एक पुजारी ट्रेन के फर्श पर हवन कुंड रखकर रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहा है। चलती ट्रेन में हवन कुंड चलता देख लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे और देखते ही देखते ये मामला बड़ा विवाद बन गया। इंटरनेट पर भारी बवाल मचने के बाद उत्तर रेलवे ने एक बयान जारी कर स्थिति साफ की है। रेलवे के मुताबिक ये पूजा किसी सामान्य डिब्बे जैसे जनरल, स्लीपर या एसी कोच में नहीं हो रही थी। ये एक पूरी तरह से प्राइवेट कोच था, जिसे एक यात्री ने विशेष यात्रा के लिए बुक किया था। इस विशेष कोच को 10 जुलाई को नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12926 में जोड़ा गया था। रेलवे ने ये भी साफ किया कि इस यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन किया गया है और किसी तरह की अनहोनी या दुर्घटना की कोई खबर नहीं है। सैलून कोच आम ट्रेनों के डिब्बों से बिल्कुल अलग होते हैं। इन्हें पटरी पर दौड़ता हुआ 5-स्टार होटल भी कहा जाता है।

0: हाथों में हथियार और चेहरों पर मुस्कान लिए जवानों का ये अंदाज उनके हौसले, भाईचारे और देशभक्ति की खूबसूरत झलक दिखाता है। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए जरा, कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। यही होता है कि बाढ़ जैसी हालात में लोग सड़कों से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तक्ष ने स्थिति का फायदा उठाते हुए जो किया वो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर भारी बारिश के कारण काफी पानी भरा हुआ है और पानी का बहाव भी बना हुआ है। तभी अचानक एक शख्स हाथ में एक बड़ा फॉर्म का टुकड़ा लेकर आता है और वो बड़े आराम से उस फॉर्म को सड़क के पानी पर बिछाता है और उस पर लेट जाता है। जैसे ही वो फॉर्म पर लेटता है, पानी का बहाव उसे एक नाव की तरह धीरे धीरे आगे की ओर ले जाने लगता है। वो शख्स बिना किसी डर या हिचकिचाहट के मजे से लेटा रहता है, मानो वो किसी एडवेंचर ट्रिप पर हो। शख्स का ये अंदाज देखकर वहां मौजूद राहगीर भी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने तुरंत अपने फोन निकाल कर इस नज़ारे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, क्या है इस राशि परिवर्तन का महत्व, क्या है देश दुनिया और राशियों पर प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: A burst pipe, a dead water heater. The AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
4: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
5: जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
5: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंह। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में शुरुआत करेंगे जय जगन्नाथ, यानी कि रथ यात्रा का काम रन शुरू हो चुका है। दिखाएंगे तमाम तस्वीरें किस तरीके से जगन्नाथपुरी में तैयारियां चल रही हैं। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में रिकॉर्ड, फूलों की घाटी में पर्यटकों की बहार, कितनी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं ये भी जानिए। और अब मेरठ नहीं स्पोर्ट्स हब कहिए, स्पोर्ट्स कैपिटल में खेल उद्योग की उछाल भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: टीआईटी भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: पुरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर लाए गए विशाल रथ, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, सुहावने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ, अबुधाबी के लिए पहली सेवा शुरू, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को मिला वाटर कैनन सैल्यूट। आईसीसी ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, वनडे वर्ल्ड कप में अब होंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड, टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और आईपीएल की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले। मृजन के चिड़ियाघर में एक साथ जन्मे 7 शावक, वेबस्नेट जू में विलुप्त हो रही प्रजाति के चीते के शावकों के जन्म का उत्सव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।

शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात जगन्नाथ रथ यात्रा की, जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही घंटों बाद होने वाली है। ऐसे में यात्रा शुरू होने से पहले पूजा पाठ के लिए तीनों रथों को बारी बारी से मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचाया गया, जिन पर सुबह भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होंगे। और फिर शुरू होगी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, जिसके लिए देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में जगन्नाथ जी के भक्त पुरी पहुंच रहे हैं।

0: महाप्रभु के धाम पुरी में अब से कुछ घंटों पर शुरू होगी रथ यात्रा, जिसके लिए भगवान जगन्नाथ के धाम में जुटने लगे हैं श्रद्धालु। हर तरफ हो रही है महाप्रभु की जय जयकार। ढोल मंजीरों और भजनों से भक्तिमय हो गया है पूरा माहौल। इस रथ यात्रा को लेकर महाप्रभु के भक्त कितने उत्साहित हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुबह से ही पुरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बावजूद इसके मंदिर के बाहर जुटे श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पुरी पहुंच रहे हैं। कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आया है और कोई परिवार संग महाप्रभु का आशीर्वाद लेने आया है।
1: इतना भीड़ आप देख सकते हैं, कहां कहां से लोग आए हैं भगवान का ये रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। दो दिन से यहां लोगों का भीड़ हो रहा है। कहां से हैं?
2: जहानाबाद, बिहार। जय
1: जय। कैसा लग रहा है आज भगवान का ये रथ यात्रा देखने के?
2: बहुत अच्छा लग रहा।
1: अच्छा, मतलब ये रथ यात्रा आप देखेंगे इस बार?
2: देखेंगे जरूर।
1: इसलिए आए हैं। कितने लोग आए हैं?
2: 4 लोग।
1: क्या लग रहा है भगवान का ये भव्य लीला को देख?
3: बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। हम लोग पहले आ गए दर्शन करने, मगर अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है।
1: कितने बार देख चुके हैं रथ यात्रा पहले से?
3: रथ यात्रा फर्स्ट टाइम आए।
1: मैम कहाँ से हैं?
4: हम MP से, इंदौर देवास डिस्ट्रिक्ट।
1: क्या मतलब ये पहली बार आ रहे हैं या पहले से आए हैं?
4: जगन्नाथपुरी तो दर्शन करने तो आ चुके हैं, पर ये रथ यात्रा में पहली बार आए हैं और आकर इतना आनंद आ रहा है कि जिसकी कुछ हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
0: रथ यात्रा के शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में मंदिर के अंदर पूजा पाठ और अनुष्ठान चल रहे हैं, तो बाहर यात्रा के लिए रथों को तैयार किया जा रहा है। तीनों रथ नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन को बारी बारी से खींचकर मंदिर के सिंह द्वार पर लगा दिया गया है, ताकि सुबह भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने रथ पर विराजमान हो सके। तीनों रथों में बांधी जाने वाली ये रस्सी इस रथ यात्रा की एक अहम कड़ी है। मान्यता है कि इन रस्सियों को छूने या फिर खींचने मात्र से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
1: कल रथ यात्रा के लिए हर तरह की व्यवस्था हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नंदी घोष, तालोध्वज और दर्पदलन रथ पूरा तैयार है। आप देख सकते हैं कपड़ा हो गया, कल तक कपड़ा नहीं लगा था लेकिन आज कपड़ा लग गया है और ऊपर का काम जो बाकी था वो भी हो गया है और खाली कलश लगना बाकी है। आप देख सकते हैं भगवान का तीनों रथ, देवी सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ का तीनों रथ जो होता है, वो तीनों रथ का जो नीति होता है वो नीति अब शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं रस्सी अब लगाया जा रहा है और ये रस्सी जो रथ में लगेगा, जिसमें रथ को खींचा जाएगा। देख सकते हैं ये पूरी जगन्नाथ मंदिर के सामने बिल्कुल तीनों रथ अब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये नंदी घोष, दर्प दलन और तालोध्वज, तीनों रथ अब मौजूद हैं।
5: आज नेत्रोत्सव का दिन है, आज आज्ञामाला आने से पहले नंदी घोष का रथ सिंहद्वार में लगेगा, उसके बाद दर्प दलन का रथ उसके पास लगेगा, उसके बाद तालोध्वज का रथ अभी जाके आज का तिथि में जाके सिंहद्वार में खड़ा रहेगा, कल के लिए इंतजार रहेगा।
0: वही रथ यात्रा के लिए पूरे रूट को सजा दिया गया है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीने के पानी, मेडिकल, यातायात और आपदा प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
1: पूरी में भक्तों का ये सुरक्षा के लिए यहाँ हर तरह की व्यवस्था किया गया। मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ फायर टीम मौजूद है, फायर का गाड़ी पूरा रखा गया है, इसके साथ साथ पुलिस टीम हर चप्पे चप्पे में ये मौजूद हैं और इसके साथ एम्बुलेंस टीम आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस का गाड़ी भी अब मौजूद है और इसके साथ आप फर्स्ट एड टीम देख सकते हैं, फर्स्ट एड का सेंटर भी लग गया है। इसके साथ हर गली में आपको पुलिस नजर आएंगे, आर्म फोर्सेस नजर आएंगे, शहर के बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे आपको आर्म फोर्सेस नजर आएंगे और शहर को कैसे सुरक्षा दिया जाएगा इसलिए 476 से ज्यादा CCTV कैमरास इंस्टॉल हुए हैं।
6: हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है। 450 से ज्यादा सीसीटीवी नजर रखा है ये शहर के ऊपर, ये रथ का जो पथ है बड़ा दंड इसके ऊपर। हमारा जो बैकअप सपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो इन्फॉर्मेशन हम कैसे भक्त जनों के पास पहुंचा सकते हैं, इसीलिए हम लोग एक तो पूरी पुलिस का जो चैटबॉट है, एप्लीकेशन है, उसको भी लोगों को जानकारी के लिए हम दे रखे हैं। दूसरी बात है, हम लोग 65 जगह एलईडी डिस्प्ले में इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे, और ये जगह खाली पूरी शहर के अंदर नहीं है, भुवनेश्वर तक है। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके यह इन्फॉर्मेशन भुवनेश्वर में कैसे स्प्रेड होगा, उसका भी बंदोबस्त किया गया है।
0: अब सबकी निगाहें उस शुभ घड़ी पर टिकी है जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। ये पल रथ यात्रा में शामिल होने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपने मंदिर से बाहर आकर उनको दर्शन देते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता सिर्फ आस्था का नहीं है, बल्कि विश्वास और भावनाओं का रिश्ता भी होता है, और यही वजह है कि सदियों पुरानी परंपराएं आज भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए नए नए माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। जैसे कि कल पुरी की रथ यात्रा शुरू हो रही है, तो वहीं अब भगवान जगन्नाथ की कहानी जन जन तक एक नए अंदाज में भी पहुंचाने की कोशिश है। दरअसल एनिमेशन के जरिए भगवान जगन्नाथ की दिव्य गाथा को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे रथ यात्रा की आस्था और सिनेमा की कल्पना मिलकर भक्ति की एक नई कहानी बुन रहे हैं।
8: एक दिन बाद शुरू हो रही है पुरी की पवित्र रथ यात्रा, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। और रथ यात्रा की शुरुआत के ठीक एक दिन बाद भगवान जगन्नाथ की उसी दिव्यता से बड़ा पर्दा गुलजार होने वाला है। प्रभु जगन्नाथ पर भक्तों की वही आस्था और श्रद्धा को बड़े पर्दे पर दिखाने की तैयारी है एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ।

0: हर साल रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अब यही भावना एक नई कहानी और रंग बिरंगे एनिमेशन के जरिए सिनेमाघरों तक पहुंच रही है, ताकि बच्चे भी भगवान जगन्नाथ की कहानी को आसानी से समझ सके।
1: पुरी में क्या हो रहा है जगन? कोई है यहाँ? तुलसी काका, पुरी काकी, सब कहाँ चले गए?
0: फिल्म का ट्रेलर भी बेहद खास अंदाज में लॉन्च किया गया है। ओडिशा के कटक में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान आध्यात्मिक वक्ता इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने ट्रेलर जारी किया। इस मौके पर 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा पंडाल जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। फिल्म में भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीलाएं दिखाई गई है। कहानी बताती है कि जब भक्त संकट में पड़ते हैं तो भगवान उनकी पुकार सुनते हैं, फिर अपने बड़े भाई बलराम और गरुड़ के साथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक अद्भुत दिव्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यानी भक्ति, रोमांच और सीख, तीनों का सुंदर संगम। इस फिल्म को खास तौर पर बच्चों और परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मेकर्स का कहना है कि आज के बच्चे मोबाइल और सुपर हीरो की दुनिया से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर अपनी संस्कृति और भगवान की कहानियाँ उन्हें एनिमेशन के जरिए दिखाई जाए तो वो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उनसे जुड़ पाएंगे। महाप्रभु जगन्नाथ पहले एक लोकप्रिय एनिमेटेड टीवी शो के रूप में दर्शकों का प्यार जीत चुका है। अब यही कहानी बड़े पर्दे पर और भी भव्य रूप में आ रही है। फिल्म हिंदी, ओडिया और तेलुगु भाषा में देश भर के 300 से ज्यादा सिनेमाघर में रिलीज होगी। हाल के दिनों में पौराणिक एनिमेशन फिल्मों को दर्शकों का अच्छा साथ मिला है। ऐसे में महाप्रभु जगन्नाथ से भी काफी उम्मीदें हैं। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसका एनिमेशन नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की संस्कृति, परंपरा और भक्ति का संदेश है, जो नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। जब पुरी की सड़कों पर गूंजेगा जय जगन्नाथ, तो उसी समय सिनेमा घरों में भी भगवान जगन्नाथ की कहानी बच्चों और बड़ों को भक्ति, संस्कृति और अपनेपन का संदेश देती नजर आएगी। रथ यात्रा की आस्था अब बड़े पर्दे की कहानी भी बन चुकी है।
1: ना कुछ सोचूंगा, ना कुछ चिंता करूंगा,
2: परंतु तुम्हारे एक भक्त के मृत्यु भी तुम्हारी हार है।
1: कोई बात नहीं जगन, मैंने अपने आप को तुझे समर्पित कर दिया है।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अगली खबर है देवभूमि उत्तराखंड से, जहां पर चमोली जिले में मौजूद यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर यानी फूलों की घाटी में इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। सीजन शुरू होने के बाद से अब तक 11,000 से ज्यादा सैलानी फूलों की घाटी की सैर कर चुके हैं, जिससे सरकारी खजाने को 20 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। अनुमान ये जताया जा रहा है कि अगर मौसम अनुकूल बना रहा तो फिर इस साल फूलों की घाटी पर्यटकों की संख्या के मामले में पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती है।

बादलों से घिरे पहाड़, हरी भरी वादियाँ और इन वादियों के दामन में खिले एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूल। ये किसी चित्रकार या फिर किसी कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो इन दिनों अपनी बेपनाह खूबसूरती

0: तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि पिछले साल 13 जुलाई तक फूलों की घाटी में 5,490 सैलानी पहुंचे थे। ये संख्या इस साल दोगुनी हो गई है। इतनी संख्या में सैलानियों के आने से सरकारी खजाने को भी फायदा हुआ और इस साल अब तक 20 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या और आय दोनों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
1: यहाँ पे आने वाले पर्यटकों की जो संख्या थी वो 11,080 पर्यटक थे और हमारे पास इन पर्यटकों से जो आय प्राप्त हुई है वो है 20,16,250। इसके साथ ही हमारे पास जो विदेशी पर्यटक हैं वो 45 रहे इस सीजन में अभी तक। अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो पिछले साल हमारे पास अभी तक 13 जुलाई 2025 तक आने वाले जो पर्यटकों की संख्या थी वो 5,490 थी, जो कि इस बार जो पर्यटकों की संख्या वो लगभग हमारी दोगुनी हो चुकी है और जो आय थी पिछले साल वो भी 11,11,950 रुपये थी।
0: फूलों की घाटी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ केवल एक तरह के ही फूल नहीं खिलते बल्कि पूरी घाटी में 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ फूल भी शामिल हैं। हर 15 दिन बाद यहाँ नई किस्म के फूल खिलते हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नजारा लगातार बदलता रहता है। फूलों की घाटी का यही बदलता स्वरूप यहाँ आने वाले सैलानियों को खूब भाता है। इस खूबसूरती को यादों में सजोने के लिए कोई यहाँ सेल्फी लेता है और कोई दुर्लभ फूलों की तस्वीरें खींचता है।
2: हम लोग ओडिशा से आए हैं, हमारी टीम है, 6 लोगों का टीम है, आए थे इस वैली ऑफ फ्लावर्स के, अभी नीचे आए, अच्छा लगा।
3: हम लोग बहुत एंजॉय किए, ट्रैकिंग इजी टू मॉडरेट था,
2: पहली बार था हमारा, अच्छा लगा,
3: पहला ट्रैक था हमारा, मजा आ रहा है और सबको बोलेंगे कि एक बार
2: ट्राई करना चाहिए, वैली ऑफ फ्लावर्स करना तो चाहिए।
0: रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि जुलाई अगस्त में घाटी में फूलों के खिलने का चरम समय होता है, इसलिए हर साल इस दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। अनुमान यह है कि अगर मौसम सही रहा तो इस साल फूलों की घाटी पर्यटकों की संख्या के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
1: इस बार फूलों की घाटी में अच्छे खिले हैं, कैंपेनुला लैटिफोलिया, पोटेंटिला, जिरेनियम और रोडोडेंड्रॉन, लैपिडोटम, बिस्टोटा, पेडिकुलारिस, काफी प्रजातियों में काफी अच्छा फ्लावरिंग हुई है जो पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।
0: फूलों की घाटी में सैलानियों की बढ़ती संख्या का फायदा यहाँ के होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट, पोर्टर और घोड़ा खच्चर मालिकों को भी मिल रहा है। यानी स्थानीय रोजगार भी फूलों की घाटी की वजह से तेजी से फल फूल रहा है। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी, गुड न्यूज टुडे।
4: और अब बात उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की, जो महाभारत काल से जुड़ी अपनी ऐतिहासिक विरासत, 1857 की क्रांति के उद्गम और खेल कूद की दुनिया में अपने योगदान के लिए मशहूर है। स्पोर्ट्स सिटी नाम से मशहूर मेरठ खेल के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। यहाँ क्रिकेट के बैट और दूसरी क्रिकेट गियर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। हालांकि इंग्लिश विलो या फिर कश्मीर विलो लकड़ी से बनने वाले बैट की जगह अब पॉलीमर के बैट ने ले ली है। बेहतर कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा की वजह से स्पोर्ट्स कैपिटल मेरठ के खेल उद्योग में नई उछाल देखने को मिल रही है। महिलाओं की भागीदारी में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। पहले इस उद्योग में महिलाओं की भागीदारी केवल 1% थी, जो कि बढ़कर 9 से 10% हो गई है, जो समाज के लिए सकारात्मक बदलाव की तरह है।

उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर खेल प्रेमियों के लिए अलग पहचान रखता है। खासकर क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल होने वाले बैट या गेंद ही नहीं, यहाँ बैटिंग ग्लव्स, पैड और हेलमेट जैसे प्रोटेक्टिव गियर का भी निर्माण होता है। उनकी क्वालिटी की बात जब भी आती है तो खेलों की दुनिया में भरोसेमंद नाम के तौर पर मेरठ ही उभरता है। दशकों तक क्रिकेट गुड्स तक सीमित रहने वाला मेरठ अब बदल रहा है। कभी इंग्लिश विलो या कश्मीरी विलो की लकड़ी से क्रिकेट बैट बनते थे, पर अब पॉलीमर से भी बैट बनाए जा रहे हैं। लकड़ी की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण संरक्षण की जोरदार वकालत के बीच स्पोर्ट गुड्स के निर्माता बड़े पैमाने पर प्लास्टिक और फाइबर क्रिकेट बैट बनाने पर फोकस कर रहे हैं। लकड़ी के बैट की तरह उनका वजन भी 1200 ग्राम तक है।

0: मौजूद है मेरठ की एक और स्पोर्ट्स फैक्ट्री में, जहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां बल्ले तैयार हो रहे हैं, क्रिकेट के बल्ले। लेकिन ये क्रिकेट के बल्ले लकड़ी के नहीं, अब प्लास्टिक के तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लकड़ी है उसको मिलने में परेशानी आती है, उसका एक तो मेरठ में अब निकाला गया है। प्लास्टिक के बल्ले तैयार किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, यह प्लास्टिक के बल्ले तैयार हो रहे हैं। लगातार अब ये काम मेरठ में बढ़ रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लकड़ी के बल्ले थे और जो प्लास्टिक के बल्ले हैं, उनमें आपको वजन भी एक सा ही मिलेगा। पहले प्लास्टिक के बल्ले जो हैं वो कम वजन के हुआ करते थे, लेकिन अब जो नई तकनीक के द्वारा ये बल्ले तैयार किए जा रहे हैं, इसमें जो वजन है, जो आप देख सकते हैं कि ये वजन है, ये लकड़ी के बैट के बराबर ही है। जो लकड़ी का वुडन का बैट जो आता था, चाहे वो इंग्लिश विलो हो चाहे वो कश्मीर विलो हो, उसमें जो लकड़ी आती थी उसी वजन के बल्ले तैयार किए जा रहे हैं। और आपको कहीं ये महसूस नहीं होगा के वजन बराबर है, इसलिए कहीं महसूस नहीं होगा कि आप लकड़ी के बल्ले से खेल रहे थे या आप प्लास्टिक के बल्ले से खेल रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अब मेरठ में ये लगने लगी है, जो प्लास्टिक के बल्ले तैयार कर रहे हैं, और अब मार्केट में आपको जल्द ही प्लास्टिक के बल्ले मिल जाएंगे देखने के लिए।
1: मेरठ अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स हब के तौर पर उभर रहा है। क्रिकेट के सामान के अलावा दूसरे खेलों से जुड़े उत्पाद भी यहां बनाए जाते हैं। पहले मेरठ की पहचान केवल क्रिकेट के सामान तक ही सीमित थी, लेकिन अब यहां एथलेटिक्स, जिमनास्टिक, फुटबॉल, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और दूसरे खेलों से जुड़ी सामग्री का भी बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है।
2: करने वाले बिल्कुल कर रहे हैं, DICC आप कुछ भी कर सकते हैं। आज हम लोग कोई भी मशीनरीज परचेज करते हैं तो हमारे को सब्सिडीज मिलती है, और ये सब मैं समझता हूँ कि पंजाब में नहीं है, हमारे यूपी में है। अगर मैं अभी पीछे हम लोगों ने प्लास्टिक यूनिट्स के लिए जैसे कुछ मशीनरी परचेज करी है तो सब्सिडी मिलती है। इंडोर गेम्स जितने हैं ना, जैसे वो कैरम बोर्ड हो, चेस हो, लूडो है, या टेबल टेनिस है, फुटबॉल टेबल्स हैं, इसकी बहुत यूनिट्स बन रही है। जिसे हमारी कोई मशीन की कॉस्ट है लगभग 16 से 17 लाख रुपये, अगर एक मशीन इतने की आती है तो उसमें लगभग हमारे को 50% हमारे को सब्सिडी सरकार ने दी है। यूपी गवर्नमेंट ने हमारे को पैसा दिया है। अगर हमने मतलब 8 मशीनें लगाई हैं, 10 मशीन लगे हैं, तो हमारे को सब्सिडी मिली है।
1: पहले मेरठ में केवल 4 या 5 स्पोर्ट्स यूनिट्स हुआ करती थी, जबकि आज छोटी बड़ी मिलाकर करीब 5 से 7 हजार यूनिट्स यहां पर चल रही हैं, जिसकी वजह से मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का सालाना कारोबार 15 से 20 हजार करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है।
2: एक्चुअली क्या था, ये इंडस्ट्री सारी पहले होती थी सियालकोट में, डिवाइडेशन के बाद जब ये आया तो हम लोग 4 या 5 यूनिट्स आई थी। आज हमारी कंपनी को भी समझो कि 95 साल होने वाले, 1934 से हमारी यूनिट है, तो उस वक्त 4-5 यूनिट आके यहाँ काम शुरू किया, और आज मैं समझता हूँ 5 से 7 हजार यूनिट होंगी यहाँ पे। बिल्कुल होंगी, इतने यूनिट्स होंगी। देखो मैं वो पूरा एक आंकड़ा तो नहीं आपको पूरा करेक्ट बता सकता, लेकिन 15 से 20 हजार करोड़ का तो टर्नओवर है यहाँ का। जी हाँ।
1: केंद्र और प्रदेश सरकारों की खेलो इंडिया नीति ने मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को नई पहचान दी है। सरकार की तरफ से MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए 1 साल तक ब्याज मुक्त ऋण योजना ने भी स्पोर्ट्स कुछ से जुड़े छोटे उद्योगों के लिए बड़ी राहत दी है। 1 साल तक ब्याज नहीं देने की अवधि के बाद ब्याज दर काफी कम रहती है, जिससे मेरठ में खेल सामग्री से जुड़े छोटे बड़े उद्योगों का विस्तार आसान हुआ है।
3: देखिए, सरकार ने अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक MSME स्कीम निकाली है सब उद्योगपतियों के लिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट फ्री 1 साल के लिए गवर्नमेंट आपको लोन सुविधा दे रही है सब बैंकों के थ्रू। MSME स्कीम है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं MSME में तो आपको 1 साल के लिए लोन मिलेगा आपकी क्षमता के हिसाब से, और 1 साल तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो उसका दर ब्याज भी बहुत कम है, और ये मेरे ख्याल से सबको बड़ा सपोर्ट करने वाला है।
1: मेरठ के खेल उद्योग में महिलाओं की भागीदारी में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक पहले इस उद्योग में महिलाओं की भागीदारी केवल 1% के करीब ही थी, जो कि अब बढ़कर 9 से 10% हो चुकी है। पिछले कुछ सालों से बड़ी संख्या में महिलाएं घर के काम निपटाने के बाद बैडमिंटन रैकेट, क्रिकेट उपकरण या फिर दूसरे खेलों से जुड़े सामान तैयार करने का काम कर रही हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का सबसे बड़ा कारण मेरठ शहर समेत पूरे राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल है। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान की वजह से कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित पेशेवर माहौल भी मिला है।
4: अब योगी बाबा खड़े हैं सपोर्ट में और मोदी जी खड़े हैं, तो किसी को डरना की महिला तो पहले डरती थी, अब नहीं डरती है।
1: साफ है कि मेरठ का खेल उद्योग अब केवल क्रिकेट के बल्ले बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक विशाल स्पोर्ट्स इकोनॉमी क्लस्टर और स्पोर्ट्स हब के रूप में तेजी से बदल रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
7: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं और आज हम बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 जुलाई 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 8:52 तक, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 7:52 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:52 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में, यानी कर्क संक्रांति के बारे में। कर्क संक्रांति क्या होती है? देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि में भ्रमण करते हैं तो इसको संक्रांति कहा जाता है। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं और कुल 12 राशियां हैं, इसीलिए साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। परंतु 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य देव जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है और जब कर्क राशि में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति के समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं, वातावरण में तमस बढ़ता चला जाता है। इस बार सूर्य की कर्क संक्रांति 16 जुलाई को है। सूर्य देव कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश विशेष मायने रखता है। जब सूर्य देव कर्क राशि में जाते हैं तो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, ध्यान किया जाता है और इसके परिणाम काफी शुभ होते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी इस समय, काम का दबाव समाप्त होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो सूर्य देव 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव के कर्क राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य देव अब मिथुन राशि छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय मीन लग्न का उदय हो रहा है, सूर्य के राशि परिवर्तन के समय। सूर्य और बृहस्पति पंचम भाव में विद्यमान हैं, इसमें गुरु अस्त हो रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। चूंकि सूर्य का राशि परिवर्तन जल की राशि में हो रहा है, बृहस्पति भी वहां विद्यमान है, इस वजह से जल से आपदा, भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां बनेंगी। दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां इस समय गंभीर हो सकती हैं। आम जनता के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, ऐसी संभावना दिख रही है। और इस समय लोगों को, सामान्य आदमी को, अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन प्राकृतिक आपदाएं लाएगा, जल से संबंधित दिक्कतें पूरी दुनिया में फैलेंगी, भूकंप जैसी स्थिति भी बन रही है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले एक महीने तक अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष के बारे में जानते हैं। मेष राशि के लोग अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। इस समय जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, चिंताएं और तनाव आपके दूर होंगे। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन आपका बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, सर दर्द और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, हड्डियों में दर्द और सर दर्द की शिकायत हो सकती है। सिंह राशि, कोई भी बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा और जोखिम लेने से बचाव करिएगा। किसी भी तरह का रिस्क लेने से फिलहाल बचना आपके लिए जरूरी होगा। कन्या राशि, आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपके तमाम रुके हुए काम इस एक महीने में पूरे हो जाएंगे। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, लेकिन काम का प्रेशर, काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग आपके साथ बने हुए हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का बाकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब वो भी जानते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, करियर की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। और साथ में तुला वालों के लिए धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। वृश्चिक राशि, इस समय अपने पिता के स्वास्थ्य का और परिवार जनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुद अपना भी ध्यान रखें, लेकिन परिवार जनों के स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा रखिएगा। धनु राशि, इस समय दुर्घटनाओं से बचें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, चोट चपेट या दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। मकर राशि, अपने कारोबार का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। आपके व्यापार में, आपकी फैमिली लाइफ में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, पैसे का फायदा भी आपको होगा। मीन राशि, इस समय करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा, करियर में कोई जोखिम लेंगे या कोई रिस्क लेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। देखिए, साल भर में कुल मिला के 12 संक्रांतियां पड़ती हैं, लेकिन दो संक्रांतियां, एक मकर संक्रांति जो लगभग जनवरी के मध्य में आती है और एक कर्क संक्रांति जो लगभग जुलाई के मध्य में आती है, वो सबसे ज्यादा पवित्र अवसर माना जाता है। तो 16 तारीख को, 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो सूर्य देव के कर्क संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करें, अन्न का, वस्त्र का, जूते छाते का दान करें और जितना संभव हो मंत्र जप करें, ध्यान करें, साधना करें, तो इसके परिणाम बड़े बेहतर होंगे। जिस तरह मकर संक्रांति पर दान करना बड़ा पवित्र माना जाता है, उसी तरह कर्क संक्रांति पर दान करना भी बहुत शुभ होता है। अगर वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं, स्त्री हों या पुरुष हों, एक पीतल का या सोने का छल्ला तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को प्रातः अगर धारण करें तो काफी बेहतर होगा। आज हमने बात की सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। अगर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह और शाम शिव मंत्र का नमः शिवाय का जप करिएगा, हर रविवार को गुड़ का या आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा अगले एक महीने तक आप करें, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
2: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
6: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अब जोत संधावा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। रहा जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती हैं, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: पूरी में रथ यात्रा की तैयारी पूरी, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर लाए गए विशाल रथ, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, सुहावने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू होगा 56 इलेक्ट्रिक बसों का खास नेटवर्क, 28 रूट्स पर शुरू होगी सेवा, 30 लेडीज स्पेशल और 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बसें शामिल। ICC ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, वनडे वर्ल्ड कप में अब होंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और IPL की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले। चीन के हेफई में गर्मी से बेजुबानों को बचाने की खास पहल, चिड़ियाघर में स्पेशल कूलिंग स्ट्रेटजी का पालन, बर्फ से लेकर फलों और स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा पश्चिम बंगाल में वाराणसी की तर्ज पर गंगा आरती की भी हो रही है।
10: गंगा आरती की ये दिव्य तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के शिवराफुली घाट की। काशी यानी वाराणसी की तर्ज पर शुरू की गई ये भव्य आरती इस तट पर एक शानदार आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करती है। शंखनाद, मंत्रोच्चार और दीपों की जगमगाहट के बीच आयोजित ये गंगा आरती पश्चिम बंगाल के पवित्र और भव्य आयोजनों में से एक है। इस आरती की छटा हर किसी को मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। शंखनाद, घंटियों की गूंज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस आरती की विधिवत शुरुआत होती है, जिसमें पुजारी पारंपरिक धोती और कुर्ता पहनकर आरती को संपन्न करते हैं। पुजारी वजनदार बड़े बड़े दियों को हवा में लहराते हुए जब आरती शुरू करते हैं तो पूरा वातावरण धूप और कपूर की खुशबू से सुगंधित हो जाता है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में खिले ये रंग बिरंगे फूल पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित ये घाटी रंग बिरंगे दुर्लभ हिमालय फूलों से सज चुकी है, जिससे चारों तरफ मनोरम नजारा देखने को मिल रहा है। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक यहाँ का मुख्य सीजन होता है, जिसमें घाटी अपने सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। यहाँ के अलग अलग तरह की सैकड़ों प्रजातियों के फूलों और प्राकृतिक नजारों के दीदार के लिए इन दिनों यहाँ लगातार पर्यटक पहुँच रहे हैं। बादलों से घिरी पहाड़ियों के बीच रंग बिरंगे फूलों से सजी इस घाटी का दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। 1 जून से पर्यटकों के लिए खोली गई फूलों की घाटी में अब तक 11,000 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। अभी तक प्रवेश शुल्क के माध्यम से 20 लाख रुपए से अधिक का राजस्व भी प्राप्त हो चुका है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या और आय दोनों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। श्रीनगर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ खासकर डल झील के पास बड़ी तादाद में पर्यटक नजर आ रहे हैं, जो यहाँ के सुहाने मौसम और शांत वातावरण के बीच शिकारा की सवारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। देश विदेश से पहुँच रहे पर्यटक हाउस बोट में ठहरने का आनंद भी ले रहे हैं, साथ ही शिकारा से डल झील में सैर करते हुए यहाँ के खूबसूरत नजारों का दीदार करते नजर आते हैं। पर्यटकों के आने से यहाँ के निवासियों के चेहरे भी खिले खिले हैं, इससे उनके रोजगार को रफ्तार मिल रही है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के खाने पीने और खरीदारी करने से लोगों को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। गुजरात के डांग जिले के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में इन दिनों पारंपरिक तेरा पर्व की धूम है। आदिवासी समाज के नए वर्ष की शुरुआत माने जाने वाले इस पर्व का खेती और प्रकृति से गहरा संबंध है। इस पर्व के तहत वागदेव की पूजा के साथ धान की रोपाई का शुभारंभ होता है। बारिश की दस्तक के साथ ही डांग जिले के आदिवासी गाँव में तेरा पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पर्व से पहले गाँव के बुजुर्ग और गणमान्य लोग एक साथ बैठकर उत्सव की तिथि तय करते हैं, जिसके बाद पूरा गांव सामूहिक रूप से इसकी तैयारियों में जुट जाता है। सदियों पुरानी पूर्वजों की परंपरा वाले इस पर्व में लोग गांव की सीमा पर स्थापित वागदेव की पूजा करते हैं और अच्छी बारिश, अच्छी फसल, जंगली जानवरों से सुरक्षा समेत पूरे गाँव की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इस पूजा के बाद ही धान की रोपाई शुरू की जाती है। वागदेव स्थल पर पूजा अर्चना के बाद किसान खेतों में उतरते हैं और धान की रोपाई की शुरुआत करते हैं।
11: बात करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगी और यात्रा शुरू होने से पहले पूजा पाठ के लिए तीनों रथों को मुख्य मंदिर के द्वार तक पहुंचा दिया गया है, जिन पर सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान होंगे। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है और देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं।

0: के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ अब से कुछ ही घंटों बाद अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त अब उस ऐतिहासिक और पावन क्षण का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं जब प्रभु अपने भक्तों के बीच विराजमान होंगे। महाप्रभु की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य रथ मंदिर के बाहर सज धज कर तैयार है। वहीं उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सजा दिए गए हैं।
1: प्रभु जगन्नाथ जी का सकाल धूप खिचड़ी भोग के बाद में प्रभु जगन्नाथ जी से शरीर से आज्ञा माला कर तीनों रथों को अभी सिंह द्वार पर रथ खड़ा से सिंह द्वार खींचा हुआ अभी नंदगेश्वर रथ लग गए हैं और उसके बाद में माता सुभद्रा जी का आएगा, उसके बाद में बलदाव जी का रथ आएगा। ये रथ यात्रा के लिए शुभ संकेत है, बहुत पाग अनुकूल है, मौसम भाई बहुत अच्छा है। जगन्नाथ की कृपा से काल जो रथ यात्रा होगा ये जिला प्रशासन राज्य सरकार और सेवायत के लिए बहुत कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा रथ यात्रा होगा।
0: प्रभु के नगर भ्रमण पर आने की खुशी में उनकी नगरी पुरी भक्ति के रंग में सराबोर है। ढोल मंजीरे और कीर्तन की गूंज के बीच श्रद्धालु गली गली जय जगन्नाथ का जय घोष कर रहे हैं। भजन कीर्तन से पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो उठा है। चारों तरफ गूंजती प्रभु भक्ति की मधुर ध्वनि हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है और इस दिव्य उत्सव में शामिल होने का मानो निमंत्रण दे रही है।
2: भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की अहेतु की कृपा है कि यहाँ चराचर के मृतलोक के प्राणी तो आते ही आते हैं, यह जगत विदित है, लेकिन उससे अनोखी बात यह है स्कंद पुराण में इसकी महिमा वर्णित हुई है कि देवलोक से देवता भी आते हैं।
3: हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। हम फर्स्ट टाइम यहाँ रथ यात्रा में आए हैं, मेरा घर वाराणसी में है और मैं हैदराबाद में रह के काम करता हूँ।
4: बहुत अच्छा लग रहा है, रथ यात्रा के लिए आया हूँ, पहली बार आए हैं यहाँ पे। बहुत सौभाग्य था कि मेरा एग्जाम अभी था तो एग्जाम के बहाने इधर रथ यात्रा देखने को भी मिल गया मुझे।
5: अगर हम भगवान को नहीं भी देख पाएंगे तो वो तो हमें देख ही पाएंगे, देख ही लेंगे, उन्हें पता है कि ये लोग आए हुए हैं। तो वी आर सो एक्साइटेड दैट ऑल द रथ आर वेरी कलरफुल एंड वी हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी।
0: गुरुवार सुबह भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के बीच जाएंगे। मान्यता है कि रथ यात्रा का ये पावन अवसर वो दुर्लभ क्षण होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार उन्हें दर्शन देने पहुंचते हैं, इसलिए इस दिव्य आयोजन को भक्त और भगवान के महामिलन का पर्व भी कहते हैं।
6: भगवान का मिलन के लिए अब पूरा विश्व तैयार है, अब पूरी में तीनों रथ भी तैयार हैं, भगवान तैयार हैं और भक्त भी तैयार हैं। सब मिलन के लिए, ये अपूर्व मिलन के लिए सब एक ही वही मोमेंट के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रथ, अब तीनों रथ तालो ध्वज नंदी घोष दर्प दलन तीनों रथ अब तैयार हो चुके हैं और कल जुलाई 16 तारीख को रथ खींचा जाएगा और भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया ये रथ के ऊपर विराजमान होंगे, दर्शन देंगे।
0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि रथ यात्रा से पहले पूरी तरह भक्तिमय हो चुकी है। कल रथ यात्रा का आरंभ होगा और महाप्रभु जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर पारंपरिक शैली में रथों तक पहुंचाया जाएगा। उससे पहले भगवान की मंगला आरती होगी और फिर भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही महाप्रभु नगर भ्रमण पर निकलेंगे।
1: अभी भगवान का सकल खिचड़ी भोग होता है, खिचड़ी भोग खत्म होने के बाद भगवान महाप्रभु का आज्ञामाल वो तीन रथ में आएंगे, वो आज्ञामाल लगने के बाद तीन रथ हाँ रथ खला में जाएंगे हमारा सिंहद्वार में और सिंहद्वार में कल सुबह रात 4 बजे मंगला आरती होगा, इसका अवकाश होगा, इसके बाद महाप्रभु का खिचड़ी भोग होगा, मंगला अर्पण होगा। 8:30 बजे भगवान मैया निकलेंगे तीन रथों में, एक धाड़ी पांडी होकर आएंगे, पहले सुदर्शन महाप्रभु आएंगे, इसके बाद बलभद्र महाप्रभु आएंगे, इसके बाद माँ देवी सुभद्रा और सब लास्ट में जगन्नाथ महाप्रभु।
0: एक तरफ भक्ति के मधुर स्वर गूंज रहे हैं तो दूसरी तरफ महाप्रभु के रथ को मोटी मोटी पवित्र रस्सियों से बांधा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं रस्सियों के सहारे लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य का रथ खींचेंगे।
6: तीनों रथ में ये दिखाना चाहूंगा आपको कि तीनों रथ अब बनकर पूरा तैयार हो चुके हैं। रथ का रस्सी भी यहाँ रखा गया है। रथ में खींचने के लिए जो रस्सी व्यवहार होता है, ये रस्सी अब तैयार है, रथ भी अभी तैयार है, भक्त तैयार है।
0: मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होकर महाप्रभु के दर्शन कर और उनके रथ की रस्सी को स्पर्श कर श्रद्धालु स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। श्रद्धा और भक्ति की एक अद्भुत मिसाल ये भी है। मिनिएचर आर्टिस्ट अलेश्वर राव ने पूरी रथ यात्रा के लिए सुपारी पेड़ के पत्तों से तीन रथ बनाए हैं, जिनकी ऊंचाई 5 इंच है। इन रथों में कागज से बने छोटे घोड़े और कलश के साथ सुवा भी शामिल है। रथों पर विराजमान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता जी की मूर्तियाँ 1 इंच ऊंची नीम की लकड़ी से बनाई गई हैं। रथ यात्रा से पहले ग्रैंड रोड को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। पूरे रथ मार्ग पर 13,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों का पहरा रहेगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा, यातायात और आपदा प्रबंधन की विशेष व्यवस्था भी की गई है।
7: 22 हाईवे पूरा अरेंजमेंट को सुपरवाइज करने के लिए लगे हैं। हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है। 450 से ज्यादा सीसीटीवी नजर रखा है ये शहर के ऊपर। ये रथ का जो पथ है बड़ा दंडा इसके ऊपर। हमारा जो बैकअप सपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इन्फॉर्मेशन हम कैसे भक्त जनों के पास पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक तो पूरी पुलिस का जो चैटबॉट है, एप्लीकेशन है, उसको भी लोगों को जानकारी के लिए हम दे रखते हैं। दूसरी बात है, हम लोग 65 जगह एलईडी डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये जगह खाली पूरी शहर के अंदर नहीं है, घूमने तक घूमने को तक है।
0: ये रथ यात्रा पुरी के श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक होगी, उसके बाद गुंडीचा से श्री मंदिर वापस आएगी। ऐसे में जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा मार्ग से लेकर समंदर और सड़क तक सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद किया गया है। सबकी निगाहें उस शुभ घड़ी पर टिकी हैं जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और जैसे ही रथों के पहिए आगे बढ़ेंगे, पूरा पुरी धाम जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठेगा। ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और एकता का महाउत्सव भी है। यहाँ राजा हो या रंक, देसी हो या विदेशी, सभी एक साथ महाप्रभु के रथ की रस्सी खींचते हैं। महाप्रभु के सामने सभी बराबर हैं। हर श्रद्धालु महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की सेवा को अपना परम सौभाग्य मानता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ हो गया है। अबुधाबी के लिए पहली सेवा शुरू कर दी गई है। आज एयरपोर्ट पर लैंड हुए इंडिगो एक्सप्रेस के विमान को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। चलते न्यूज एक्सप्रेस वे पर जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
9: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, जहां कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई। 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1,365 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वाराणसी के लिए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर्स को भी मंजूरी दे दी गई है। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने और कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक अहम MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के जरिए दिल्ली की डेयरियों और गौशालाओं

एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबुधाबी से आने वाली पहली फ्लाइट नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जिसे हवाई अड्डे पर भव्य वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में नई पहल की शुरुआत हुई है। सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भावना दीदी की साइंस पाठशाला को हरी झंडी दिखाई है। एक तरह की निशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब है। ये लैब पंडरिया इलाके में स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी महानगरों की तर्ज पर आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक करना है, जिससे वो आने वाले तकनीक युग के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ की पवित्र यात्रा का आज 13वां दिन है। बीते 12 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अभी भी बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक भक्त महादेव का जय घोष कर रहे हैं। पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है।

बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा अमरनाथ में आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। देश दुनिया के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार कर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उनके धाम पहुंच रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन को निकला श्रद्धालुओं का ये कारवां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है।

0: हर महादेव, जय बाबा बर्फानी का जय घोष पूरे यात्रा मार्ग में गूंज रहा है। कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण सफर श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पा रहा। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिनों में दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। अब तक 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अपनी मंजिल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि इस साल यात्रा सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सकती है।
1: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं के उत्साह और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
0: 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अब यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
2: कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ है जब 12 दिन के भीतर 3 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। 3 जुलाई से जारी अमरनाथ यात्रा में पहले 12 दिन के दौरान ही 3 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने से ये साफ हो गया है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अभी भी करीब 1.5 महीने का समय अमरनाथ यात्रा में बचा है और उस बीच अमरनाथ यात्रियों की श्रद्धा और अमरनाथ यात्रियों के जोश में कोई कमी नहीं है। अब की बार अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस बीच अमरनाथ गुफा की ओर यात्रा जारी है।
0: खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता और पल पल बदलता मौसम, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं है। बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा ही ऐसी है कि थोड़ी बहुत अगर परेशानी है भी तो श्रद्धालुओं की भक्ति उससे कहीं ज्यादा है। श्रद्धालुओं में बस एक भाव है जो आंखों में नमी बनकर तैर जाता है और उत्साह बाबा बर्फानी के जयकारे में बदल जाता है।
3: बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस बार हम फर्स्ट बार आ रहे हैं अमरनाथ, लेकिन बहुत बीएसएफ सबका बहुत हम पुलिस का शुक्र

0: बताया करते हैं कि हमको साथ में लेकर आए, बहुत अच्छा लगा।
1: ऐसा है कि जल्दी से पैदल चढ़ के जाए, सब चीज का मजा ले।
2: काफी थकान आपके चेहरे पर नजर आ रही है, कल रात से ही शायद आप लाइनों में लगे हैं।
1: लाइन में लगे हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा, भगवान को मिलने का है तो।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जोश है कि दर्शन हो रहा है बाबा जी की।
2: सुविधाओं को लेकर किस तरह से
3: सुविधा? बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है।
4: कोई गुजरात से आया है, कोई जौनपुर, कोई पंजाब, तो कोई देश के किसी और हिस्से से। सुरक्षा और प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों से श्रद्धालुओं का जत्था लगातार बाबा बर्फानी के दरबार की तरफ बढ़ रहा है। कोई पैदल चल रहा है, कोई घोड़े या पालकी का सहारा ले रहा है, तो कोई पिट्ठू के साथ कठिन चढ़ाई पार कर रहा है।
5: भक्तों का आस्था चाहिए, बाबा का जो गुफा है उसका ही दर्शन, बस बाबा का जो बाबा की जो गुफा है उसमें ही बहुत पावर है, उसमें ही बहुत पावर। जमीन पे पावर रखा तो इतनी ऊर्जा आई हमको। तीन दिन से थके थे, लाइन में खड़े थे, सब हो गया, लेकिन आज इधर पावर पहलगाम में आए तो इतना ऊर्जा मिली हमको कि पूछो मत।
4: जयपुर से 13 श्रद्धालुओं का एक जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकला है। ये श्रद्धालु पिछले 33 दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद काजीगुंड पहुँच गए हैं। वहीं दिल्ली के एक शिव भक्त ने तो कार, ट्रेन या विमान नहीं बल्कि साइकिल से ही दिल्ली से कश्मीर तक का लंबा सफर तय कर अमरनाथ यात्रा पूरी की है। श्रद्धालुओं का ये जोश ही आस्था की इस यात्रा को ऐतिहासिक बना रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर खुशी जताई और तीर्थयात्रियों से लेकर यात्रा को सफल बनाने में लगे सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और ये 57 दिनों तक चलेगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। वहीं यात्रा के शुरुआती दिनों में ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से ये साफ है कि देश भर के लोगों में बाबा अमरनाथ के दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। लगातार बढ़ती संख्या ने इस धार्मिक यात्रा को नए मुकाम पर पहुँचा दिया है। पहलगाम से आरिफ बलोच और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर लेते हैं।
4: ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर मार्केट में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। बुधवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 130 अंकों की बढ़त के साथ 77,185 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर्स वाला एनएसई निफ्टी 26 अंकों की गिरावट के साथ 24,078 पर बंद हुआ। बुधवार को गोल्ड की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,46,300 रुपए पर बना हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 15 जुलाई को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 100 रुपए गिरकर 2,26,000 रुपए पर पहुंच गई। वेस्ट एशिया में बड़े तनाव और कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों के बीच 15 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में फिर गिरावट देखने को मिली। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 16 पैसे कमजोर होकर 96.32 के स्तर पर बंद हुआ।
6: रिलीज हुआ फिल्म तेरा यार हूँ मैं का मैंने दिल तुझको दिया गाना। इसी के साथ ऐसी और कई खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
7: फिल्म तेरा यार हूँ मैं का नया और वाइब्रेंट डांस गाना रिलीज किया गया है। फिल्म की लीड जोड़ी अमन इंद्र कुमार और आकांक्षा शर्मा पर फिल्माए गए इस मैंने दिल तुझको दिया गाने को नकाश अजीज ने गाया है। इस गाने के बोल इंद्र कुमार ने लिखे हैं, जबकि संगीत संजीव दर्शन ने दिया है। मिलाप मिलन जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा यार हूँ मैं में परेश रावल, जॉनी लीवर, सुप्रिया पिलगांवकर, मृणाल कुलकर्णी, नेहा खान, पूजा कतुरड़े, आनंद आचार्य और दर्शन जरीवाला भी हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
8: हनुमान जी के भक्त तो निडर होते हैं।
7: फिल्म हनुमान अंश का नया भक्ति गीत जय हनुमान रिलीज कर दिया गया है। श्रेयस धर्माधिकारी के गाए और कंपोज किए इस गाने को ऋषि पाठक और श्रेयस धर्माधिकारी ने लिखे हैं। ये गाना फिल्म की आध्यात्मिक दुनिया को दर्शाता है। विशाल चतुर्वेदी लिखित और निर्देशित फिल्म हनुमान अंश में शोभिनव सत्या, विहान शेडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी और गुलशन पांडे मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 31 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
9: भक्ति से हो परिपूर्ण।
10: मैं सुनया इश्क कमजोर बना देता है, पर मेरे इश्क ने मेनू ताकत दिती है।
7: शहनाज गिल और जय रंधावा की पंजाबी फिल्म इश्कनामा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।
10: बिठा के ओदी अखां चखां पा के पुछया कि दस,
7: जिसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी, सुकून का एहसास कराने वाला संगीत के साथ ही भावनाओं से भरपूर दृश्य देखने को मिलते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है जो भारत पाकिस्तान सीमा पर आधारित निम्मा और नसीमा की सच्ची प्रेम कहानी से प्रेरित है।
11: किधर उड़ गया फिरदा तितरा, सीधा दस कौन है तुम?
10: आंख देख के पता नहीं लगा, चढ़ दे पंजाब।
7: ये फिल्म मशहूर किताब हिंद पाक बॉर्डर नामा पर आधारित है, जिसमें सौरभ सचदेवा भी अहम भूमिका में हैं। अरविंदर एस खैरा के निर्देशन में बनी फिल्म इश्कनामा 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
12: ओ खान दी भेणे ते सिद्धी मौत ए खान,
10: हल इक्को ही है
12: की
10: चक्का गंडासी ते वड़दे खान ते खान दे लोंग लाने ना।
6: और न्यूज़ पद पर आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: कल पुरी में शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। मंदिर के सिंह द्वार पर लाए गए विशाल रथ कंट्रोल रूम में रहेगी, चप्पे चप्पे पर नजर। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, सुहावने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू होगा 56 इलेक्ट्रिक बसों का खास नेटवर्क, 28 रूट्स पर शुरू होगी सेवा, 30 लेडीज स्पेशल और 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बसें शामिल। न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये माँ सर आइज़क न्यूटन से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को भरपूर प्रोटीन खिलाने के लिए माँ ने जो तरकीब घड़ाई है, ऐसा प्रयोग तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। माँ ने बच्चे को लुभाने के लिए धागे से एक चॉकलेट का टुकड़ा बांध दिया और उसे प्रोटीन मिक्स मटेरियल के कटोरे में डाल दिया। बच्चे को चम्मच में खाने वाले पदार्थ के साथ चॉकलेट का टुकड़ा दिखता है, वो मुंह खोलता है और तभी धागे से बंधा वो टुकड़ा फिर कटोरी में गिरा दिया जाता है और इस तरह बच्चा उस टुकड़े के लालच में पूरा खाना खा जाता है। यूजर्स वीडियो को देखकर माँ की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन माओं को सलाह दे रहे हैं जिनके बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं और ये तस्वीरें देखकर वो इससे सीख ले सकते हैं। शैतान कौए की कारस्तानी की तस्वीरें देखिए जरा, कौआ सफेद बिल्ली की पूंछ में चोंच मारता नजर आ रहा है। बिल्ली ने सोचा कि दूसरी काली बिल्ली ने शरारत की है, बस फिर क्या था, दोनों लड़ पड़ती हैं। इधर कौआ फिर आकर चोंच मार देता है लेकिन तभी एक सफेद कुत्ते की एंट्री होती है और उसके बीच में पड़ने पर कौआ तो उड़न छू हो जाता है और बाकी दोनों बिल्लियां अपने रास्ते भाग लेती हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। फुटबॉल की क्रेज के बीच ये वायरल तस्वीरें देखिए और फैसला करिए कि आपकी नजर में ये गोल हुआ है या नहीं। यकीनन आप कहेंगे कि गोल तो हुआ है, क्योंकि गोल करने वाला खिलाड़ी कैसे गोलकीपर को कंफ्यूज करता है और आसानी से गोल दाग देता है कि गोलकीपर हक्का बक्का रह जाता है ना कमाल की तस्वीरें। अब यूजर्स गोलकीपर का चेहरा देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं।
14: थैंक यू,
6: दादी माँ और पोती की तस्वीरें लोगों को खूब भा रही हैं। जरा देखिए कि कैसे एक ही फ्रेम में दो अलग अलग उम्र के लोग आमने सामने बैठे हैं। एक दादी माँ है और एक 4-5 महीने का बच्चा, दोनों दांत विहीन एक दूसरे के साथ जिस तरह से आनंद ले रहे हैं, यूजर्स उन्हें देखकर आनंदित हो रहे हैं। और न्यूज पथ के सफर में अब आगे सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की। इन दिनों इस ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का पद खाली है, इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। अयोध्या के रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के महज 24 घंटे के भीतर 1,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए आवेदन करने वालों में प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग, सामाजिक संगठनों के अनुभवी कार्यकर्ताओं के अलावा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर चर्चा में रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी इस पद के लिए आवेदन करने की सार्वजनिक घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 14 जुलाई से हुई है, जिसके बाद देश भर में अभ्यर्थी सीईओ पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 18 जुलाई है। ट्रस्ट की चयन समिति 19 जुलाई को बैठक कर सभी आवेदनों की प्रारंभिक जांच और छटनी करेगी और इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि 22 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ का चयन पर अंतिम मोहर लग सकती है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट को एक ऐसे सीईओ की तलाश है जो कि मंदिर प्रशासन के कामकाज को बेहतर तरीके से संभाल सके और श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करने का काम करे। ट्रस्ट के इस कदम को लेकर हमने अयोध्या में लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
14: वो ऐसा होना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कोई भी इस तरह वारदात ना हो फिर से, और जो उनका पहले का जो फीडबैक है काम करने का, जो भी जहां से उनका एजुकेशन से लेके जहां तक रहे हों, तो उनके बराबर मॉनिटरिंग करके फिर बनाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि भगवान राम के इस क्षेत्र में जो भी रहते हों, बाहर से लोग आते हैं तो उनके आदर्श के बारे में सोचते हैं कि वो कितने मर्यादित थे, कभी उन्होंने चोरी नहीं किया, कभी गलत नीत पे उन्होंने विश्वास नहीं किया, है ना। तो भगवान के तो आदर्श पे जीना चाहिए, खासकर भगवान।
15: सीईओ की नियुक्ति की बात आ रही है, वो सीईओ की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसा आदमी बनना चाहिए?
14: वो ईमानदार होना चाहिए, पूरी तरह से एक ईमानदार अफसर होना चाहिए।
16: सीईओ हो जो जानकारी रखे चारों तरफ, और सीईओ पूरा ईमानदार अगर वहाँ से रहेगा तो नीचे तक ईमानदारी आएगी। और ये घटना जो है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, तो यही आशा की जा रही है कि ऐसा हो कि यहाँ ईमानदारी से चले, जो इतना खर्चा किया गया है और इतनी भावना जुड़ी है लोगों की यहाँ से, तो यहाँ से मर्यादा का बिल्कुल ही उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा सीईओ हो कि जो कड़ी से कड़ी सजा रखे ऐसे लोगों के लिए, ताकि उनको डर रहे कि ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा सीईओ आए कि जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रखे ऊपर से नीचे तक लोगों को।
17: मुझे नहीं लगता है, मानव अपने नेचर से जो है हर जगह गंदगी फैला सकता है। वो आप किसी को भी बैठाइए, कोई उसका निकलने वाला हल नहीं है।
18: तो कैसी चीजें बेटर होंगी?
17: ये तो आदमी खुद सोचे, जिनको वहाँ बैठाया जा रहा है वो सोचे कि हम किस पद पे हैं और क्या कर रहे हैं। ये तो अंदर से उनकी आवाज़ आएगी तभी कुछ हो सकता है, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आप किसी को भी बैठाइए।
19: नहीं, मेरे हिसाब से भी वही है, इंसान को खुद चेंज होना पड़ेगा। ऐसे किसी के बैठने से और कंटिन्यूसली मॉनिटर करने से अगर चीज़ें बदलती तो बहुत चीज़ें बदल जाती। वैसे इंसान को खुद ही चेंज होना पड़ेगा।
20: आई फील ये सिविक सेंस और वो खुद में समझदारी होना कि आप किस जगह काम कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से आनी चाहिए फ्रॉम विद इन। तो मुझे नहीं लगता कि किसी सीईओ के आने से इट वुड मेक एनी डिफरेंस अंटिल आपको खुद इस चीज का एहसास हो रहा है कि कहाँ है आप और आपके पद का आपको कितने सावधानी से यू नो रहना चाहिए अपने पद पे।
0: जो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह इस टाइप की एडमिन में एडमिन से रिलेटेड होनी चाहिए, कुछ कॉमर्शियल नॉलेज भी होना चाहिए क्योंकि ये चोरी जिस तरह से हुई उसको कंट्रोल करना, बैंकिंग फंडामेंटल्स भी का नॉलेज उनको होना चाहिए, हाँ फाइनेंस रिलेटेड। नहीं बैकग्राउंड उसका अच्छा होता तो क्यों नहीं, शायद इतनी इस तरह से तो नहीं होती जिस तरह से हुआ है।
21: हो सकता है नीट एंड क्लीन आदमी हो तो अच्छा तो हो ही सकता है क्योंकि पीछे उनका बैकग्राउंड बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए, सब नॉलेज होना चाहिए, तो इतनी पब्लिक आए कोई परेशानी का मतलब लोग बोले कि भाई ऐसा के चोरी हुई ये हुआ वो हुआ तो अपना भी सब नाम खराब हुआ कि भाई हाँ ऐसा हुआ, तो सीओ ऐसा होना चाहिए।
22: देखिए बेहतर तभी होगा जब ये आप ब्यूरोक्रेट्स अगर जैसे इसकी चुनने की जो प्रक्रिया होगी वो अब पहले की अकॉर्डिंग इसमें जो अनैतिकता जो भरी हुई है वो ठीक किया जाएगा तभी ब्यूरोक्रेट्स कुछ अच्छे से काम कर पाएंगे, वैसे उम्मीद नहीं है कि सुधर पाएगी।
6: और आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। देश की लड़कियां और महिलाएं हर क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रही हैं लेकिन उनके प्रति बढ़ती आपराधिक घटनाएं चिंता की बड़ी वजह हैं और देश की प्रगति के लिए एक रोड़ा बनकर सामने खड़ी है। इन सबको देखते हुए महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पुलिस ने एक बेहतरीन पहल की है जिसके बारे में जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।

0: लड़कियों की सुरक्षा एक बड़ी जरूरत है। छेड़छाड़, हिंसा, भेदभाव और साइबर क्राइम उनके लिए एक बड़ी समस्या है जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलने पर लड़कियां परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अहम योगदान दे सकती हैं। स्कूलों में नैतिक शिक्षा, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग और सुरक्षा संबंधी जागरूकता के जरिए लड़कियों को डर के माहौल से बाहर निकाला जा सकता है। कुछ इसी सोच के साथ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के सभी थानों में टीम गौरा शक्ति का गठन किया गया है जो महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा, जागरूकता और जल्द मदद सुनिश्चित करेगी। एसएसपी श्वेता चौबे की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत टीम गौरा शक्ति जिले के सभी स्कूल्स और शिक्षण संस्थानों में पहुंचने लगी है। वहां बच्चों को महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, महिला हेल्पलाइन के बारे में जागरूक करने के साथ ही लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
1: मुख्यतः ये टीम गौरा का यही कार्य है कि जो हमारे संवेदनशील स्थल है या हॉटस्पॉट्स हैं जो हमारे स्कूल कॉलेजेस के बाहर, ये टीम गौरा जो है लगातार छुट्टियों के टाइम पेट्रोलिंग करेंगी। जो बालिकाएं हैं उनकी समस्याएं अगर कोई हैं तो उसका समाधान करेंगी, और इसके अतिरिक्त अलग से हफ्ते में एक या दो दिन अपने क्षेत्र के किसी भी विद्यालय में जाकर ये बालिकाओं को आत्मसुरक्षा, साइबर सेफ्टी और लीगल राइट्स, गुड टच बैड टच, इस संदर्भ में ट्रेनिंग दें।
0: टीम गौरा शक्ति को जिन थानों में महिला सब इंस्पेक्टर तैनात हैं वो लीड करेंगी, बाकी दूसरे थानों में एडिशनल सब इंस्पेक्टर और महिला हेड कांस्टेबल टीम की कमान संभालेंगी। टीम के सभी सदस्यों को इसके लिए खास तौर से ट्रेंड किया गया है।
1: जनपद में महिला व बाल सुरक्षा को, बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के सभी जो हमारे 12 थाने हैं उसमें हमने टीम गौरा का गठन किया गया है। जहाँ जहाँ हमारी सब इंस्पेक्टर्स हैं वो टीम गौरा को लीड कर रही हैं, और जहाँ हमारी एडिशनल सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल्स हैं वो इसको लीड कर रही हैं। इन टीम गौरा के मेंबर्स का प्रॉपर एक दिवसीय प्रशिक्षण पुलिस लाइन में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के तहत करवाया गया, जहाँ पे मुख्य रूप से उनको अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी गई, जो लीगल राइट्स होते हैं महिलाओं संबंधी उसके संदर्भ में, पॉक्सो से संदर्भ में उनकी कार्यशाला करवाई गई, और उसके साथ ही साथ साइबर सेफ्टी भी इस मॉड्यूल में जोड़ा गया।
0: भिलंगना विकास खंड स्थित एक स्कूल में टीम गौरा शक्ति ने लड़कियों को किसी मुश्किल में फंसने पर वो किस तरह से अपनी रक्षा कर सकती हैं उसके अलग अलग तरह से गुर सिखाए।
2: तो आप ऐसे ऐसे करके छुड़ाओगे, नहीं छुड़ पाओगे, तो क्या करना है, ये इस तरह से अंगूठा पकड़ा और ऐसे करा और ऐसे लात मार देनी है, ठीक है, जोर से लात मार देनी है, ठीक है, आप ऐसे अपना बचाव कर सकते हो।
3: घनसाली पुलिस द्वारा हमें यह बताया गया कि साइबर सुरक्षा से कैसे बचना है, और अपनी जब आप अकेले कहीं सड़क पे जा रहे हो तो कोई आप पे अचानक से हमला करे तो उसमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, और कई सारी चीजें हमें बताई
4: पुलिस द्वारा। हमें साइबर क्राइम के बारे में बताया गया, और हमें जो सड़क में दुर्घटना होती है उसके बारे में बताया गया, और कि हमें इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए।
5: पुलिस द्वारा हमें साइबर क्राइम अपराध के बारे में बताया गया कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, और बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो हमें उनके बारे में बताया गया कि हमें स्पीड से बाइक वगैरह नहीं चलानी है, और कई सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया।
0: घनसाली पुलिस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध से बचने को लेकर भी टिप्स दिए गए।
6: खिलाड़ी सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है, ऐसा नहीं करना है, तुम्हारी फोटो का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, तुम्हारी मोबाइल को नहीं फिट करेगा और तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है।
7: थाना अध्यक्ष महोदय घनसाली से आए हुए अध्यक्ष और उनकी टीमें, उन्होंने हमें साइबर क्राइम और अपने सेफ्टी से संबंधित बारे में बताया।
8: मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने हमें क्राइम के, आजकल हो रहे क्राइम के बारे में बताया, सोशल मीडिया क्राइम के बारे में बताया, जो मतलब सोशल मीडिया द्वारा क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जानकारी मिली।
0: लड़कियों और महिलाओं को लेकर ये सराहनीय पहल की गई है, लेकिन जरूरत समाज की सोच में भी सकारात्मक बदलाव की है। लड़कियों की सुरक्षा सिर्फ सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का ही दायित्व है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश तभी सार्थक होगा जब हर लड़की खुद को हर जगह सुरक्षित महसूस करेगी। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चीन के चोंगकिंग और कनाडा के टोरंटो में भीषण गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं नए नए तरीके। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर जहां देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरें मौजूद हैं।
0: चीन के चोंगकिंग में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका सामने आया है। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान के बीच लोग स्विमिंग पूल में बैठकर चीन का टेबल गेम महजोंग खेलते नजर आए। वाटर पार्क में पूल के अंदर महजोंग की टेबल लगाई गई है। लोग ठंडे पानी में खेल का आनंद लेते भी देखे गए। भीषण गर्मी के चलते इस अनोखे इंतजाम ने पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पूल में महजोंग खेलने का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। गर्मी से राहत और मनोरंजन का यह अनोखा मेल लोगों को पसंद आ रहा है। वाटर पार्क में पूल के अंदर महजोंग खेलना इन दिनों खास आकर्षण बना हुआ है। मौसम विभाग ने इस साल पहली बार रेड अलर्ट दिया है और बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की ही सलाह दी है। कनाडा के टोरंटो में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। धूप से बचने के लिए लोगों ने पेड़ों की छांव का सहारा लिया। गर्मी से राहत पाने की हर कोशिश जारी है। 40 डिग्री के पार पारा पहुंचा हुआ है, इसलिए धूप से बचाव पर सबसे ज्यादा जोर है। हंस और पक्षी भी पानी की तलाश में दिख रहे थे। सभी तालाब और गड्ढों का पानी पीकर प्यास बुझाते नजर आए। वाटर स्टेशन लोगों का सहारा बने हुए हैं। लोग खुद को हाइड्रेटेड रखकर घर से बाहर निकल रहे हैं। न्यूयॉर्क में डायनासोर के कंकाल की नीलामी ने रिकॉर्ड बना लिया है। गस नाम का 38 फीट लंबा कंकाल यहां करीब $50 मिलियन में नीलाम हुआ है। लगभग 6.7 करोड़ साल पुराने लेट क्रिटेशियस काल के इस कंकाल के 20 से 30 मिलियन डॉलर में बिकने की उम्मीद थी। आकार और पूर्णता के चलते यहां रिकॉर्ड बोली लगाई गई। बीजिंग के ओल्ड समर पैलेस में इस साल पहली बार जुड़वा कमल का एक दुर्लभ फूल देखा गया है। गर्मियों के मौसम में तालाब में कमल का ये फूल खिला है। चांगचून गार्डन इलाके में झील किनारे मिले इस खूबसूरत फूल में एक ही डंठल से दो पूरी कलियां निकल रही हैं, जो हरे कमल के पत्तों के बीच खड़ी हैं। ये कमल का एक दुर्लभ प्राकृतिक रूप है जो पारंपरिक चीनी संस्कृति में एकता सद्भाव और सौभाग्य का शुभ संकेत माना गया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी यादगार चीजों की शानदार नीलामी होगी। वर्ल्ड फेमस ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज इस महीने के आखिर में आयोजित किया जाएगा। चैरिटी नीलामी ऑक्शन में मैच में इस्तेमाल गेंदे, टीम के खिलाड़ियों के साइन वाली जर्सी और पहले वर्ल्ड कप फाइनल हाफ टाइम शो से जुड़ी चीजें शामिल की गई हैं। $100 से बोली शुरू होगी। नीलामी में इस वर्ल्ड कप सीजन के ओपनिंग गेम के साथ 19 जुलाई को होने वाले फाइनल मैच की गेंदें भी शामिल की जाएंगी। नीलामी में पहले वर्ल्ड कप फाइनल के हाफ टाइम शो से जुड़े कपड़े और परफॉर्मेंस में इस्तेमाल चीजें भी ऑक्शन में शामिल की गई हैं। इसमें कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन का नाम लिखी वर्ल्ड कप अर्थ बॉल आकर्षण का केंद्र है। ये ऑनलाइन सेल यहां 22 से 29 जुलाई तक चलेगी। ऑक्शन से मिलने वाली रकम फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड को देने की योजना है।
9: और न्यूज पथ पर थोड़ी देर रुकेंगे ब्रेक प्लाजा पर और ब्रेक के उस पार खेल की खबरों के लिए आपको लिए चलेंगे खेल चक्कर दिखाने।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
11: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. All streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
10: एक अच्छी शुरुआत।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
13: ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 होगा एकदम अनोखा और रोमांचक। आईसीसी लेकर आया है नई सुपर सीरीज और सुपर सेवन फॉर्मेट। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
17: आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे 3 चरणों में बांट दिया है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें सुपर सीरीज और सुपर सेवन जैसे नए राउंड से गुजरना होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में सबसे कम रैंकिंग वाली 3 क्वालिफाइड टीमों के बीच एक सुपर सीरीज होगी। इस फेज से केवल शीर्ष पर रहने वाली टीम यानी नंबर 1 टीम ही मुख्य टूर्नामेंट में जगह बना पाएगी, जबकि बाकी 2 टीमें बाहर हो जाएंगी। सुपर सीरीज से आई 1 टीम और बाकी बची 11 टीमें यानी कुल 12 टीमों को 6-6 के 2 समूह में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह से शीर्ष 3-3 टीमें और दोनों समूह में चौथे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ टीम अगले दौर के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरे राउंड में कुल 7 टीमें पहुंचेंगी और इसे सुपर सेवन नाम दिया गया है। सुपर सेवन में शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 4 टीमें अंत में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में इतिहास रचते हुए एक अनूठा 3रा कीर्तिमान बना दिया है। बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स यानी टेस्ट में 200 से ज्यादा, वनडे में 150 से ज्यादा और T20 में 100 से ज्यादा विकेट लेकर सभी में विकेटों का शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने लगभग 968 दिनों के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैच के दौरान इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही उनके वनडे करियर के 150 विकेट पूरे हो गए। इसके साथ ही इंग्लैंड की धरती पर बुमराह के 31 विकेट हो गए हैं और उन्होंने रविंद्र जडेजा के 30 विकेट को पीछे छोड़कर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। मुंबई इंडियंस का कप्तान बदला जा सकता है और इस पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी का मैनेजमेंट कप्तानी और कोचिंग स्टाफ में भारी फेरबदल करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या से कप्तानी वापस ली जा सकती है और उनके टीम से बाहर होने की भी पूरी संभावना है। हार्दिक के बाद कप्तानी की रेस में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर अंतिम और आधिकारिक फैसला मैनेजमेंट की आगामी रिव्यू मीटिंग में लिया जाएगा।
18: और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत सिंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
19: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
20: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
14: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
22: अविश्वास में विश्वास बसता है।
23: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
25: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है।
23: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
25: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन हुआ लॉन्च, टेस्टिंग के फीडबैक के बाद पोर्टल में किए जाएंगे सुधार। गुजरात के डाकोर में उमड़ा आस्था का मेला, धूमधाम से निकली भगवान रणछोड़ राय की रथ यात्रा, भजन मंडलियों ने बांधा समा। कल पुरी में शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, मंदिर के सिंह द्वार पर लाए गए विशाल रथ, कंट्रोल रूम से रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। ICC ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट जारी किया, वनडे वर्ल्ड कप में अब होंगे सुपर सीरीज और सुपर सेवन राउंड, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और IPL की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं रथ यात्रा की। कुछ घंटों के बाद ही जब सुबह होगी, पूरी में भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान होकर यात्रा पर निकलने के लिए तैयार होंगे। मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार पर तीनों रथ सज कर तैयार खड़े हो जाएंगे। भगवान ने यात्रा की मंजूरी भी दे दी है। देखिए, बस इंतजार जो है अब कल का है, जब दोपहर के बाद भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर के लिए रवाना हो जाएंगे और इस यात्रा में उनके साथ चलेंगे लाखों लाखों भक्त, जो इस वक्त पुरी में मौजूद हैं। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह रथों का सिंह द्वार तक लाया जाता है उनको, और आज्ञा मल्ल की रस्म निभाई हुई। और देखिए, इसके अलावा हम बात करेंगे रथ और रथ की रस्सियों का धार्मिक महत्व किस प्रकार से होता है वो समझाएंगे। रथ में प्रतीक के तौर पर घोड़े क्यों बने हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे। और साथ ही साथ अहमदाबाद और दिल्ली NCR में रथ यात्रा की तैयारियां और धूम दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर से, जहां पर इस वक्त भक्ति का महामेला लगा हुआ है। पुरी में लाखों की तादाद में जुटे भक्तों को सुबह का इंतजार है, जब भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती और भोग के बाद उनके रथ पर विराजमान होने का वक्त होगा और रथ के साथ भक्ति का सैलाब चलेगा। पुरी की रथ यात्रा से जुड़े हर विधान, अनुष्ठान और परंपरा की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आज मंदिर परिसर में तीनों रथों को सिंह द्वार पर खड़ा करने के लिए खींचा गया और इसके बाद आज्ञा मल्ल की रस्म निभाई गई। और रथ यात्रा को लेकर भक्तों में कैसा उत्साह है और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट।

होठों पर हरि का नाम, सामने हरि का धाम, चेहरों पर आनंद ही आनंद है, झांझ मंजीरे और ढोलक की थाप, उठे दोनों हाथ, कण कण पुकारता जय जय जगन्नाथ। भक्ति की ऐसी तस्वीर भला और कहां? हर दिशा से हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का जत्था पुरी की ओर बढ़ता आ रहा है, अपने आराध्य को करीब से देखने, रथ की रस्सी खींचने और उस महान धार्मिक यात्रा का हिस्सा बनने, जो सौभाग्य का प्रतीक है। यात्रा शुरू होने ही वाली है, इसलिए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में देश और दुनिया भर से आए भक्तों की भीड़ जमा है। इसमें संत हैं, महंत हैं, गृहस्थ हैं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर उम्र, हर तबके के लोग, एक ही नारा, एक जय घोष, हरि बोल।

0: भजन संकीर्तन के साथ भक्त एक के बाद एक आ रहे हैं, ग्रुप के साथ आ रहे हैं, भगवान से मिल रहे हैं, भगवान को दर्शन के लिए इंतजार है, क्योंकि आज तो दर्शन बंद है, लेकिन कल भगवान और भक्तों के बीच में ये जो बंद था, मतलब दर्शन के लिए लगातार 15-16 दिन से जो बंद था, ये दरवाज़ा अब तोड़ा जाएगा। यानी ये जो भगवान और भक्तों के बीच में जो बंद था, जो भगवान जब अनासर में थे, ये अनासर से आ गए हैं, भगवान अब ठीक हो गए हैं, तो अब ये ठीक हो गया है, भक्तों से मिलेंगे।
1: यात्रा को लेकर उमंग है, उत्साह है, बारिश हो रही है तो होती रहे, श्रद्धालुओं पर उसका असर नहीं, जोश में कोई कमी नहीं। हाथों में छाते लिए लोग रथ यात्रा के इंतजार में खड़े हैं, भक्ति की डोर से बंधे लोग बस चलते ही आ रहे हैं, कोई रूस से आया है तो कोई वृंदावन से।
2: और मैं श्रीधाम बरसाने वृंदावन से हूँ।
0: पंडित जी क्या बोलना चाहेंगे आज ये रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए?
2: देखो, यह इसे उत्सव महोत्सव में आने के लिए और कहने के लिए केवल भाग ही इसमें कार्य क्षेत्र होता है, दूसरा कुछ होता नहीं है। वाणी का विषय नहीं है कि इसको व्यक्त किया जा सकता है। जिसके अनेक पुण्यों का जो एक पुंज बना होगा, तो उन पुण्यों के पुंज के प्रभाव से इस रथ यात्रा महोत्सव में लोगों की भागीदारी होती है, आते हैं।
1: इधर भक्त इंतजार में हैं, उधर मंदिर में यात्रा से जुड़े अनुष्ठान हो रहे हैं। परंपरा के अनुसार यात्रा से पहले आज्ञा मल की रस्म निभाई गई। यात्रा से पहले तीनों रथों को उनकी जगह से खींचकर सिंहद्वार तक लाया जाता है। तीनों रथों यानी नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन को बारी बारी से खींचकर उसी क्रम में रखा जाता है जिसमें यात्रा निकलती है। रथों को सिंहद्वार पर लगाने के बाद और यात्रा शुरू होने से पहले पुजारी भगवान जगन्नाथ से आज्ञा और स्वीकृति मांगते हैं। भगवान जगन्नाथ की ओर से मंजूरी मिलने के प्रतीक के रूप में एक विशेष माला रथों पर लाई जाती है। आज्ञामल प्राप्त होने के बाद ही महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को रथों में विराजमान करने की प्रक्रिया होती है और रथ खींचने की शुरुआत होती है।
3: रथ यात्रा के लिए आज प्रस्तुति है, आज उभा अमावस्या है। प्रभु जगन्नाथ जी का सकाल धूप खिचड़ी भोग के बाद में प्रभु जगन्नाथ जी से शरीर से आज्ञा माला आकर तीनों रथों को अभी सिंह द्वार पर रथ खड़ा से सिंह द्वार खींचा हुआ, अभी नंदगेश्वर रथ लग गए हैं और उसके बाद में माता सुभद्रा जी का आएगा, उसके बाद में बलदाव जी का रथ आएगा। आज रात को प्रभु भगवान जगन्नाथ जी को रथ यात्रा के लिए सेनापटा लागी जो बोलते हैं वहाँ सर जाएगा। कल सुबह मंगल आरती होगा, अबकाश होगा, उसके बाद में गोपाल बल्लभ खिचड़ी भोग के बाद में मंगल अर्पण होकर रथ के लिए पांडी विजय आरंभ होगा।
1: विशाल रथ, अलग अलग रंग के वस्त्रों से भव्य सजावट, जब हरि बोल के जय घोष के साथ आगे बढ़ेंगे तो कैसा अद्भुत दृश्य होगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देख कर लगाया जा सकता है।
0: देख सकते हैं ये पूरी जगन्नाथ मंदिर के सामने बिल्कुल तीनों रथ अब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये नंदीघोष, दर्प दलन और तालो ध्वज, तीनों रथ अब मौजूद हैं। कल रथ के लिए, कल ये रथ यात्रा के लिए भगवान कैसे आएंगे, भगवान को देखने के लिए भक्तों का मन में जितना उत्साह है, भगवान का मन में भी उससे कई अधिक उत्साह है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात इसलिए हम बोल रहे हैं, जो धूप हो रहा था, जो गर्मी हो रहा था, वो कहीं गायब हो गया है। लगातार तीन दिन से भारी बारिश हो रहा है और जिसके वजह से अब लोगों को राहत मिल रही है और इसके वजह से एक दिन से पहले यहाँ भक्तों का हजारे मात्रों में यहाँ हजार तादाद में भक्त यहाँ जुड़ रहे हैं।
4: ऐसा लगता है जैसे मनोकामना पूर्ण हो गया हमारा।
0: भगवान को एक साथ ये तीनों रथ देख रहे हैं, फीलिंग क्या हो रहा है अंदर से?
4: बहुत ही खुश, बहुत ही आनंद, बहुत ही आशापन आशा है।
0: पहले कभी रथ के ऊपर भगवान को देखे नहीं?
4: नहीं, नहीं, नहीं।
0: इस बार देखने के लिए तैयार हैं?
4: ये पहली बार।
5: ये हम हर साल आते हैं, अभी 10 times हो रहा है मेरा, हर साल आते हैं। ऐसा जगन्नाथ के पास सब दिल खुश हो जाता है, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। ये सामने में से देखना वो बढ़िया वाला है।
1: लेकिन ये भीड़ कुछ भी नहीं। गुरुवार को जब मंदिर के प्रांगण से यात्रा आरंभ होगी, यहाँ भक्तों का सैलाब होगा। ऐसे में एक बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, जिसके लिए पुलिस से लेकर एनएसजी कमांडोज तक तैनात हैं।
6: हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है, 450 से ज्यादा सीसीटीवी नजर रखा है ये शहर के ऊपर, ये रथ का जो पथ है बड़ा दंडा इसके ऊपर। हमारा जो बैकअप सपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इन्फॉर्मेशन हम कैसे भक्त जनों के पास पहुंचा सकते हैं, इसीलिए हम लोग एक तो पूरी पुलिस का जो चैटबॉट है, एप्लीकेशन है, उसको भी लोगों को जानकारी के लिए हम दे रखे हैं। दूसरी बात है, हम लोग 65 जगह एलईडी डिस्प्ले में इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे, और ये जगह खाली पूरी शहर के अंदर नहीं है, भुवनेश्वर तक है। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके यह इन्फॉर्मेशन भुवनेश्वर में कैसे स्प्रेड होगा उसका भी बंदोबस्त किया गया है।
1: पुलिस के आला अधिकारियों की टीम खुद तैयारियों का जायजा ले रही है, कमांडो और सुरक्षा कर्मियों को जरूरी निर्देश दे रही है। हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की न सिर्फ मंदिर बल्कि यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर तैनाती है। काले लिबास में चाक चौबंद और आधुनिक हथियारों से लैस एनएसजी कमांडोज अपनी जगह पर मुस्तैद खड़े हैं। रथ यात्रा के लिए पूरे रूट को सजा दिया गया है, और पूरे शहर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीने के पानी, मेडिकल, यातायात और आपदा प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की गई है।
0: भक्तों का ये सुरक्षा के लिए यहाँ हर तरह की व्यवस्था किया गया। मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ फायर टीम मौजूद है, फायर का गाड़ी पूरा रखा गया है, इसके साथ साथ पुलिस टीम हर चप्पे चप्पे में ये मौजूद हैं, और इसके साथ एम्बुलेंस टीम आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस का गाड़ी भी अब मौजूद है, और इसके साथ आप फर्स्ट एड टीम देख सकते हैं, फर्स्ट एड का सेंटर भी लग गया है। इसके साथ हर गली में आपको पुलिस नजर आएंगे, आर्म फोर्सेस नजर आएंगे, शहर के बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे आपको आर्म फोर्सेस नजर आएंगे, और शहर को कैसे सुरक्षा दिया जाएगा इसलिए 476 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हुए हैं, और लोगों का ये टॉयलेट्स जाने के लिए लोगों को असुविधा हो रहा है इसलिए इस बार 1700 से ज्यादा बायो टॉयलेट्स इंस्टॉल हुआ है, और इसके साथ 13,000 से ज्यादा आर्म फोर्सेस डिप्लॉय किया गया है ताकि कुछ भी सुरक्षा में चूक ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एनएसजी कमांडोज भी डिप्लॉयड हैं, और एनएसजी कमांडोज शहर के हर कोने कोने में चप्पे चप्पे में रहे हैं, और पूरा शहर अब पुलिस के निगरानी में है, आर्म फोर्सेस के निगरानी में है।
1: यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा देर नहीं, पूजा पाठ और अनुष्ठान के साथ हर धार्मिक प्रक्रिया और रस्म को भक्तिभाव से निभाया जा रहा है।
7: मैं कल सुबह रात 4 बजे मंगला आरती होगा, इसका अवकाश होगा, इसके बाद बापू का खिचड़ी भोग होगा, मंगला अर्पण होगा, 8-8:30 बजे भगवान मैया निकलेंगे तीन रथों में, एक धाड़ी पांडी होकर आएंगे, पहले सुदर्शन महाप्रभु आएंगे, इसका बाद बलभद्र महाप्रभु आएंगे, इसका बाद माँ देवी सुभद्रा, और सब लास्ट में जगन्नाथ महाप्रभु तीनों रथों में बैठेंगे। जगन्नाथ महाप्रभु का रथ का नाम है नंदीघोष, और देवी माँ सुभद्रा का रथ का नाम है दर्पदलन, और प्रभु बलदेव जी का नाम रथ का नाम है ताड़ध्वज। ये तीन ही रथ में भगवान 9 दिन यात्रा करेंगे।
1: गुरुवार को जब भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे तो उन्हें देखने और पूजने की होड़ रहेगी। यात्रा का हर पल विशेष होगा, क्योंकि साल में यही अवसर होता है जब भगवान मंदिर से बाहर अपने भक्तों के बीच होते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: अपने आराध्य को नगर भ्रमण कराएंगे। ये वही अवसर है जिसका इंतजार केवल ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे करोड़ों श्रद्धालु पूरे साल करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान का रथ खींचना सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए हर श्रद्धालु कुछ पल के लिए ही सही लेकिन रथ के इस रस्सी को थामने या छूने की इच्छा रखता है। इस तरह रथ खींचना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। ये रस्सी केवल मोटे नारियल रेशों से बनी साधारण डोर नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच जुड़ने वाले विश्वास का प्रतीक मानी जाती है।
1: बहुत अति सुंदर, हम लोग पहले आ गए दर्शन करने मगर अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है।
2: कितने बार देख चुके हैं रथ यात्रा पहले से?
1: रथ यात्रा फर्स्ट टाइम आए।
2: अच्छा,
1: फर्स्ट टाइम आए।
2: कैसा लग रहा है ये भीड़?
1: बहुत अति सुंदर
3: लग रहा है। हमको यहाँ आकर ऐसा लगा कि बहुत भगवान साक्षात यहाँ दर्शन दे रहे हैं।
0: जो रस्सी भगवान जगन्नाथ के रथ से जुड़ी है वो शंखचूड़ कहलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार शंखचूड़ नाम के असुर ने भगवान के हरण का प्रयास किया था, बाद में उसे मोक्ष मिला और प्रभु की सेवा का वरदान प्राप्त हुआ। उसी स्मृति में भगवान के रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ रखा गया। मान्यता है कि इस रस्सी का स्पर्श शुभ फल देता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसी तरह दूसरे यानी भगवान बलभद्र के रथ से जुड़ी रस्सी का भी महत्व है। मान्यता है कि वासुकी नाग ने अपने बड़े भाई शेषनाग से सेवा करने की इच्छा जताई थी, तब उन्हें भविष्य में भगवान बलभद्र की सेवा का अवसर मिलने का आशीर्वाद मिला, इसलिए बलभद्र के रथ की रस्सी को वासुकी कहा जाता है। तीसरे यानी देवी सुभद्रा के रथ से जुड़ी रस्सी भी भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्वर्ण चूड़ कहलाती है और संसार के मोह, कर्म और आत्मा के परमात्मा से जुड़ने का संदेश देती है। श्रद्धालु इसे जीवन में सद्गति और आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक मानते हैं।
4: तो ये हमारा रथ का चलने का तैयारी हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं रथ में सारी रस्सियों को हम तैयार करके रख रहे हैं। ये जो रस्सी है ये रथ का गार्डन का रस्सी है, इनर गार्डन, आउटडोर गार्डन, ये सब गार्डन का रस्सी है। अभी तो सिर्फ भगवान का आज्ञामाल का अपेक्षा है, जब आज्ञामाल आएगा तब हम रथ को खींच के सिंह द्वार में लेके जाएंगे और वहाँ पर हमारा जो रथ का सीढ़ी, हमारा भाषा में जो हम बोलते हैं चार माल, वो बांधेंगे। अभी भगवान जी का पंडित का फिर अगले दिन का अपेक्षा करेंगे।
2: चारमाल में ये जो आज्ञामाल आएगा कब आएगा?
4: आज्ञामाल तो 11 बजे का फिक्स टाइम फिक्स है, बाकी भगवान का इच्छा कब आएगा, लेकिन 11 बजे का टाइम अभी हमको बुला है तो देखते हैं क्या होता है।
2: ये जो रस्सी बांधा जा रहा है ये क्यों बांधा जा रहा है?
4: ये कॉटन का रस्सी है, ये जो इनर कॉटन, आउटडोर कॉटन, जो लोग अंदर नहीं आ सकते, इसलिए रथ का सुरक्षा के लिए ये सब कॉटन का रस्सी बन रहा है। इसके बाद हमने जैसे रथ को खींचने का दौड़ जो रस्सी है वो भी लाके रथ के सामने रख दिया।
2: ये रस्सी का जो मोटाई होता है ये कितना इंच का मोटाई होता है?
4: ये तो जो खींचने का होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 3-4 इंच का होगा, और ये कॉटन का रस्सी ये थोड़ा पतला होता है, लेकिन खींचने का रस्सी बहुत मोटा होता है। और अभी तो ये कॉटन का हम तैयार कर रहे हैं।
0: रस्सियों के साथ रथ पर लगे घोड़े भी धार्मिक महत्व रखते हैं। सभी रथों पर 4-4 प्रतीकात्मक घोड़े लगाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के सफेद घोड़े सत्य, शांति, शुभता और ऊर्जा का संदेश देते हैं। बलभद्र के काले घोड़े समय, परिश्रम, धैर्य और आत्म संयम का प्रतीक माने जाते हैं, जबकि देवी सुभद्रा के रथ की 4 घोड़ियां नारी शक्ति, विजय, आनंद, मोक्ष और अडिग साहस का संदेश देती हैं। यानी इस यात्रा का हर हिस्सा केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक संदेश भी है। पुरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान है। यहाँ रथ आगे बढ़ते हैं तो साथ चलता है विश्वास। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, जिसे पीले और लाल वस्त्रों से सजाया जाता है। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जिसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है, जिसे लाल और काले वस्त्रों से सजाया जाता है। इन 3 रथों की ऊंचाई, पहियों की संख्या और सजावट भी अलग अलग होती है। यही विविधता इस परंपरा को और भी अनूठा बनाती है।
5: रथ, पथ और जगन्नाथ, यहाँ सब तैयार हैं। पूरी में 3 रथ पूरी तरह बन चुका है और कल रथ यात्रा के लिए हर तरह की व्यवस्था हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन रथ पूरा तैयार हैं। आप देख सकते हैं कपड़ा हो गया, कल तक कपड़ा नहीं लगा था लेकिन आज कपड़ा लग गया है और ऊपर का काम जो बाकी था वो भी

0: गया है और खाली कलश लगना बाकी है। आप देख सकते हैं भगवान का तीनों रथ, देवी सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ का तीनों रथ जो होता है, वो तीनों रथ का जो नीति होता है वो नीति अब शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं रस्सी अब लगाया जा रहा है और ये रस्सी जो रथ में लगेगा जिसमें रथ को खींचा जाएगा, इसलिए अब इसका तैयारी हो रहा है। आप देख सकते हैं पंडित लोग उसको अब रथ का चारों तरफ उसको ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना मोटा मोटा ये जो रस्सी है, ये रस्सी को खींचा जाने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरी जगन्नाथ मंदिर के सामने बिल्कुल तीनों रथ अब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये नंदीघोष, दर्प दलन और तालो ध्वज, तीनों रथ अब मौजूद है।
1: आज नेत्रोत्सव का दिन है, आज आज्ञामाला आने से पहले नंदीघोष का रथ सिंह द्वार पे लगेगा, उसके बाद दर्प दलन का रथ उसके पास लगेगा, उसके बाद तालो ध्वज का रथ अभी जाके आज का तिथि में जाके सिंहद्वार में खड़ा रहेगा, कल के लिए इंतजार रहेगा।
2: हर साल तीनों रथ नई लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इस निर्माण में परंपरा का पूरी तरह पालन किया जाता है। बिना किसी लोहे के ढांचे के विशेष विधि से विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि साल में एक बार भगवान और भक्त का निकट से मिलन होता है। इस यात्रा में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। शायद यही वजह है कि सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है।
0: श्रद्धा, ये भाव, ये प्रेम आप देख रहे थे, वही भक्ति, वही उत्साह भक्तों का मन में है। भगवान कैसे आएंगे, भगवान रथ पर विराजमान होंगे, भगवान का आंखों को भगवान का वो झलक देखेंगे, भगवान को रथ पर विराजमान वो वेश देखेंगे और रथ यात्रा में शामिल होंगे। और ये भक्तों का भीड़ आज से ही पता चल रहा है कि कल रथ यात्रा में कैसे भक्तों का भीड़ होगा। पूरी से अजय कुमार, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।

0: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: Right field, and it will...
1: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन हुआ लॉन्च, टेस्टिंग के फीडबैक के बाद पोर्टल में किए जाएंगे सुधार। गुजरात के डाकोर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, धूमधाम से निकली भगवान रणछोड़ राय की रथ यात्रा, भजन मंडलियों ने बांधा समा। कल पुरी में शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, मंदिर के सिंह द्वार पर लाए गए विशाल रथ, कंट्रोल रूम से रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा, सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। ICC ने वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में किया बदलाव, वनडे वर्ल्ड कप में अब होंगे सुपर सीजन और सुपर सेवन राउंड, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और IPL की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: आज रात फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल्स, अटलांटा स्टेडियम में अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड का मुकाबला। फुटबॉल वर्ल्ड कप में इतिहास में 24 साल बाद आमने सामने होने जा रहे हैं अर्जेंटीना और इंग्लैंड, वर्ल्ड कप में दोनों की पिछली भिड़ंत 2002 में हुई थी। दोनों टीमों में होंगे कांटे की टक्कर, वर्ल्ड कप इतिहास में इससे पहले दोनों टीमों ने खेले हैं 5 मुकाबले जिन पर इंग्लैंड ने 3 मैच जीते हैं। कुल इंटरनेशनल मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए हैं कुल 14 मुकाबले, इनमें इंग्लैंड ने 6 जबकि अर्जेंटीना ने 3 मैच जीते हैं। लियोनल मैसी और हैरी केन पर रहेंगी सबकी नजरें, मैसी इस वर्ल्ड कप में 8 गोल करके गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे। अर्जेंटीना के लिए अपने करियर में 200 से ज्यादा मुकाबले खेल चुके मैसी पहली बार करेंगे इंग्लैंड का सामना। कई मायनों में खास है ये मुकाबला, सिर्फ मैसी ही नहीं बल्कि दोनों टीमों के मौजूदा सभी खिलाड़ी पहली बार सीनियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगे। इस मुकाबले में जीत के साथ ही अर्जेंटीना 7वीं बार फाइनल्स में पहुंच जाएगी, इससे 3 बार चैंपियन और रनर अप रह चुकी अर्जेंटीना की टीम। अगर इंग्लैंड ये मुकाबला जीत जाती है तो वो 60 साल बाद वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी। आज जीतने वाली टीम स्पेन के खिलाफ जीतेगी फाइनल में खिताबी मुकाबला, 19 जुलाई की रात को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होगा मैच। अगले साल से पूरी तरह से बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फिडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, अब शुरुआत से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में ICC ने किया ऐतिहासिक बदलाव, नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड। टूर्नामेंट की शुरुआती मैचों और ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाना है इसका मकसद, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य। इंग्लैंड में खेले गए वनडे मुकाबले में बुमराह ने राष्ट्रीय इतिहास वनडे में पूरे किए अपने 150 विकेट। बदला जा सकता है टीम। मुंबई इंडियंस का कप्तान, मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कमान। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ घंटे शेष। सिंह द्वार पर तीनों भव्य रथ श्रद्धापूर्वक भगवान के आगमन की कर रहे हैं प्रतीक्षा। इन रथों पर सुबह भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा होंगे विराजमान। इस दिव्य नजारे को देखने और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंच चुके हैं देश विदेश से लाखों श्रद्धालु। भक्तिमय यात्रा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, पूरे रथ मार्ग पर 13,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। भक्ति के रंग में सराबोर है ऐतिहासिक शहर पुरी, ढोल मजीरे और कीर्तन की गूंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा से पहले निभाई परंपरा। अहमदाबाद में कल भगवान जगन्नाथ की नगर यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर के लिए भेजी विशेष भेंट। अहमदाबाद में 149वीं रथ यात्रा की तैयारियां पूरी, जगन्नाथ मंदिर में रस्में शुरू। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने जगन्नाथ मंदिर में रस्मों को किया शुरू, मंदिर के गुंबज पर ध्वजारोहण। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने भगवान जगन्नाथ की उतारी आरती, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। अहमदाबाद में रथ यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम ने सड़कों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। नोएडा में भी रथ यात्रा की तैयारियां, भव्य तरीके से सजाया जा रहा है मंदिर, मंगवाया गया है पुरी का महाप्रसाद। 16 फीट चौड़ा, 18 फीट लंबा और 22 फीट ऊंचा है भव्य रथ। खासतौर पर पुरी से मंगवाया गया है रथ के शिखर को सजाने में इस्तेमाल हुआ कपड़ा। सुबह मंगला आरती होगी, रथ यात्रा का शुभारंभ, उसके बाद लगेगा खिचड़ी प्रसाद, चढ़ाया जाएगा 56 भोग। पूरी आस्था और भक्ति के साथ जारी अमरनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। सुरक्षा और प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच पहलगाम और बालडार के दोनों रास्तों से श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी। मॉनसून में पहाड़ों पर सुहाना मौसम, बद्रीनाथ धाम में बढ़ा यात्रियों का उत्साह, बड़ी धाम की रौनक। चटक धूप और हल्की ठंडी हवाओं के बीच जारी है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, बिना किसी बड़ी बाधा के सुचारू रूप से जारी है बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा। रोजाना आने वाले भक्तों की संख्या में बड़ा इजाफा, प्रतिदिन दर्शनों के लिए आ रहे हैं 6,500 से ज्यादा भक्त। सुबह और सायकाल में दर्शन को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी आमद। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी लौटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अब तक मत्था टेकने पहुंच चुके हैं 1,97,548 सिख श्रद्धालु। हरिद्वार में जोरों पर कांवड़ यात्रा की तैयारी, कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए किए जा रहे हैं प्रबंधों के निरीक्षण। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 500 सीसीटीवी से हो रही है निगरानी। कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए 24 घंटे हाईटेक कंट्रोल रूम होगा स्थापित, 8 ड्रोन कैमरों से हो रही है निगरानी। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, भाले, त्रिशूल, तलवार, बेसबॉल के डंडे, जुगाड़ वाहन और साइलेंसर का प्रयोग पूरी तरीके से बैन। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं के लिए अपना वैध पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य। दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू होगा 56 इलेक्ट्रिक बसों का खास नेटवर्क, 28 रूट्स पर शुरू होगी सेवा। राजस्थान में कल मातृ और शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजन। दिल्ली में आयोजित ICAR कॉन्क्लेव में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदर्शनी का किया दौरा, केंद्रीय मंत्री भागीदारी, भागीरथ चौधरी साथ नजर आए। कानपुर में मुख्यमंत्री यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में बदली 3,500 युवाओं की जिंदगी, अपने लघु उद्योग स्थापित करके अब हजारों लोगों को दे रहे हैं रोजगार। गुजरात के सूरत जिले में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत की खबर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 550 करोड़ के पुनर्विकास सहायता पैकेज की घोषणा की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए। कुल 2,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की मुहर। सेमीकंडक्टर 2.2 और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1,365 करोड़ का निवेश। 24 लाख रोजगार देना उम्मीद। वाराणसी के लिए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई। वरुणा नदी के किनारे होगा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण। कृषि क्षेत्र और किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 को दी स्वीकृति। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से धीरे धीरे मजबूत उड़ानों का दायरा। 1 महीने के अंदर ही 61,000 यात्रियों ने भरी उड़ान। अभी 15 शहरों के लिए मिल रही है फ्लाइट्स। 15 जून से शुरू हुआ था एयरपोर्ट संचालन, जिसमें जून के आखिरी 15 दिनों में 27,841 यात्री शामिल हुए। 10 जुलाई को सबसे ज्यादा 3,255 यात्रियों का आवागमन दर्ज हुआ। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में होगा इजाफा। मुंबई से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची अबूधाबी से आने वाली पहली एक्सशेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान का हुआ शानदार स्वागत। पारंपरिक वाटर कैनन से सलामी दी गई। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुआ एमओयू साइन। महाराष्ट्र के किसानों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा तोहफा। किसानों का 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली बिल माफ करने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भावना दीदी की साइंस पाठशाला को दिखाई हरी झंडी। ग्रामीण विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ना मकसद। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट 2026 का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। तेलंगाना के मशहूर हैंडलूम कारीगर विजय कुमार ने देवी ब्रह्मांबा को हाथ से बनी रेशम की अनोखी साड़ी भेंट की। सोनीपत में एक परिवार ने अपनी पालतू गाय को दी अनोखी श्रद्धांजलि। निभाई गई 13वीं की रस्म, पूरा गांव शामिल हुआ। 18 साल तक परिवार के साथ रही थी पालतू गाय। हवन, यज्ञ, गोआरती और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। गुजरात के डांग में पारंपरिक 13 पर्व की धूम, बड़ी संख्या में लोग शामिल। वाघदेव की पूजा अर्चना के साथ धाम की रोपाई का शुभारंभ। आदिवासी समाज के नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है यह पर्व। नेपाल में बारिश के बाद उफनाई पहाड़ों पर नदियां, 22 गांव का संपर्क टूटा। कोलकाता में भारी बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम हुआ सुहाना लेकिन थमी ट्रैफिक की रफ्तार। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर। वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का जलस्तर। सिक्किम के गैंगटॉक में भी जबरदस्त बारिश, भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन सतर्क। असम के लखीपुर में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी। फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया डांस सॉन्ग मैंने दिल तुझको दिया रिलीज। इस गाने को नकाश अजीज ने गाया। बंदी जा सकती है श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईटा की रिलीज डेट। यश की फिल्म टॉक्सिक से बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए 28 अगस्त को रिलीज हो सकती है फिल्म। इम्तियाज अली के करियर की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी फिल्म मैं वापस आऊंगा। बॉक्स ऑफिस पर वह फिर चलेगा रूह बाबा का धमाल। जल्द शुरू होगी कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 4। फिल्म जननायकन के लिए 6 महीने का लंबा इंतजार कर रहे हैं फैंस के लिए अब बेकर्स भी खुशखबरी। मूवी की रिलीज डेट रिलीज हो गई, 23 जुलाई को होगी रिलीज। पंजाबी फिल्म इश्कनामा का ट्रेलर हुआ रिलीज, 24 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म हरमान अंश का नया गाना हुआ रिलीज, 31 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल जैसी कॉमेडी फिल्मों के बाद अक्षय कुमार अब हैवान में आएंगे नजर। सुपरहिट कॉमेडी फिल्म भागम भाग का बनेगा सीक्वल, फिल्म निर्माता ने किया ऐलान। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, 17 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अब नेत्रहीनों की मदद से एआई की ली जाएगी मदद, चीन के हेबेई प्रांत में स्मार्ट रोबोटिक का गाइड लॉक का फील्ड ट्रायल, मल्टी मॉडल सेंसर और बड़े एआई मॉडल से लैस। इन रोबोटिक गाइड डॉग में ऊंचाई पर चढ़ने, सेहत की निगरानी करने और गिरने पर अलर्ट देने की सुविधा। नॉर्मस डॉग्स को लंबी ट्रेनिंग की जरूरत होती और वे महंगे भी होते हैं। चीन जल्द ही मार्केट में उतारेगा ये चीन के हेबेई प्रांत में स्मार्ट रोबोटिक गाइड डॉग। चीन के चोंगकिंग में गर्मी से बचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान के बीच लोग स्विमिंग पूल में बैठकर चीन का टेप। वाटर पार्क में पूल के अंदर लगाई गई है महजोंग की टेबल। भीषण गर्मी के चलते इस अनोखे इंतजाम ने पर्यटकों का खींचा ध्यान। गर्मी से राहत और मनोरंजन का यह अनोखा मेला लोगों को खूब भा रहा है। मौसम विभाग ने इस साल पहली बार रेड अलर्ट जारी कर दिया, बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की अपील। कनाडा के टोरंटो में पड़ रही है भीषण गर्मी, धूप से बचने के लिए लोगों ने लिया पेड़ों की छांव का सहारा। गर्मी से राहत पाने के लिए हर कोशिश जारी, 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, इसलिए धूप से बचाव के लिए तमाम इंतजाम। हंस और पक्षी भी पानी की तलाश में नजर आए बाहर। वाटर स्टेशन बने लोगों का सहारा, लोग खुद को हाइड्रेट रखने की कर रहे हैं कोशिश। भीषण गर्मी के बीच फीफा फैन फेस्ट का जोश बरकरार, लोग गर्मी से लड़ते हुए मैच का मजा ले रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में जुड़ी यादगार चीजों की होगी शानदार नीलामी, वर्ल्ड फेमस ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज इस महीने के आखिरी में आयोजित किया जाएगा। ऑक्शन की जा रही चीजों में मैच में इस्तेमाल गेंदें, टीम के खिलाड़ियों के साइन वाली जर्सी और पहले वर्ल्ड कप फाइनल और हाफ टाइम शो से जुड़ी हुई चीजें शामिल है। नीलामी में इस वर्ल्ड कप सीजन के ओपनिंग गेम के साथ 19 जुलाई को होने वाला फाइनल मैच की गेंद भी शामिल की जाएगी। नीलामी में पहले वर्ल्ड कप फाइनल के हाफ टाइम शो से जुड़े कपड़े और परफॉर्मेंस में इस्तेमाल चीजें भी शामिल होंगी। 22 से 29 जुलाई तक चलेगी ऑनलाइन सेल, फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड को दी जाएगी ऑक्शन से मिलने वाली धनराशि।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए अब आपको भक्ति की तस्वीरें दिखाते हैं, अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें। तो यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और देखिए यात्रा का आज 13वां दिन है। बीते 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के ऐतिहासिक दर्शन किए हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड।
2: बाबा बर्फानी के दर्शन को निकला श्रद्धालुओं का ये कारवा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया है। अब तक 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार पे हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
3: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं के आस्था और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
2: खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता और पल पल बदलता मौसम, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं। बाबा बर्फानी के दर्शन की चाह ऐसी है कि थोड़ी बहुत अगर परेशानी है भी तो रास्तों का फूल बर गई है, बस एक भाव है जो आंखों में नमी बनकर तैर जाता है, उत्साह है जो जयकारे में

0: बदल जाता है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस बार हम फर्स्ट बार आ रहे हैं अमरनाथ, लेकिन बहुत बीएसएफ सबका बहुत हम पुलिस का शुक्रिया करते हैं कि हमको साथ में लेकर आए। बहुत अच्छा लगा,
2: बहुत बहुत बहुत अच्छा जोश है, बहुत अच्छे आनंद में है सब।
3: बाबा की दर्शनों को जा रहे हैं तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ तक आए।
0: कोई गुजरात से आया है तो कोई जौनपुर से, कोई पंजाब से तो कोई देश के किसी और कोने से। सुरक्षा और प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच पहलगाम और बालटाल के दोनों रास्तों से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, जिससे जैसे बर पड़ रहा है बाबा अमरनाथ के दरबार पहुंच रहा है। बस एक ही धुन है कि बाबा बर्फानी के दर पर हाजिरी लगानी है।
4: बहुत ही बढ़िया सिस्टम किया है, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है, बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी पर्पस है, मतलब बहुत बढ़िया लग गया आगे सानू। फर्स्ट टाइम में
5: पहलगाम में आए तो इतना ऊर्जा मिली हमको कि पूछो मत।
0: श्रद्धालुओं का ये जोश ही आस्था की इस यात्रा को ऐतिहासिक बना रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर खुशी जताई है और तीर्थ यात्रियों से लेकर यात्रा को सफल बनाने में लगे सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट में कहा है, श्री अमरनाथ जी यात्रा ने सिर्फ 12 दिनों में 3,00,000 का आंकड़ा पार कर एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। मैं सभी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और स्वयं सेवकों की सराहना करता हूं। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने बाबा बर्फानी के हर भक्त के लिए इस पवित्र यात्रा को सुगम और यादगार बना दिया है। हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी, यानी अब भी यात्रा में 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के और कितने रिकॉर्ड ब्रेक होंगे। पहलगाम से आरिफ बलोच और श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Test Fasio.
8: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
9: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
8: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
9: Remember, around here, we use the F Word, never the S Word.
7: The S Word, available now on TuneIn, wherever you get your podcasts, and on the S Word YouTube channel.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
12: रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन हुआ लॉन्च, टेस्टिंग के फीडबैक के बाद पोर्टल में किए जाएंगे सुधार। गुजरात के डाकोर में उमड़ा आस्था का मेला, धूमधाम से निकली भगवान रणछोड़ राय की रथ यात्रा, भजन मंडलियों ने बांधा समा। कल पुरी में शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, मंदिर के सिंह द्वार पर लाए गए विशाल रथ, कंट्रोल रूम से रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। आईसीसी ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट जारी किया। वनडे वर्ल्ड कप में आप होंगे सुपर सीरीज और सुपर सेवन राउंड, टी20 वर्ल्ड कप में सुपर टेन और आईपीएल की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है तो इसी के साथ सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है तो इससे देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
2: अगर वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, एक पीतल का या सोने का छल्ला तर्जनी अंगुली में इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को प्रातः अगर धारण करें तो काफी बेहतर होगा।
0: और आइए जान लेते हैं 16 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
2: दिनांक 16 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 8:52 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 7:52 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:52 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि क्या होती है संक्रांति और क्या है कर्क संक्रांति।
2: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में, यानी कर्क संक्रांति के बारे में। कर्क संक्रांति क्या होती है? देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि में भ्रमण करते हैं तो इसको संक्रांति कहा जाता है। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं और कुल 12 राशियां हैं, इसीलिए साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। परंतु 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य देव जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है, और जब कर्क राशि में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति के समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं, वातावरण में तमस बढ़ता चला जाता है। इस बार सूर्य की कर्क संक्रांति 16 जुलाई को है। सूर्य देव कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश विशेष मायने रखता है। जब सूर्य देव कर्क राशि में जाते हैं तो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, ध्यान किया जाता है और इसके परिणाम काफी शुभ होते हैं।
0: और आइए अब जानते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
2: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब जानेंगे कि सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा।
2: तो सूर्य देव 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव के कर्क राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य देव अब मिथुन राशि छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय मीन लग्न का उदय हो रहा है, सूर्य के राशि परिवर्तन के समय सूर्य और बृहस्पति पंचम भाव में विद्यमान हैं। इसमें गुरु अस्त हो रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। चूंकि सूर्य का राशि परिवर्तन जल की राशि में हो रहा है, बृहस्पति भी वहां विद्यमान है, इस वजह से जल से आपदा, भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां बनेंगी। दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां इस समय गंभीर हो सकती हैं। आम जनता के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, ऐसी संभावना दिख रही है और इस समय लोगों को, सामान्य आदमी को, अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन प्राकृतिक आपदाएं लाएगा, जल से संबंधित दिक्कतें पूरी दुनिया में फैलेंगी, भूकंप जैसी स्थिति भी बन रही है।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
2: कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी इस समय, काम का दबाव समाप्त होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया है आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही आज का पहला सवाल का जवाब वो किसका देने वाले हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न शीतल दत्त भरणे जी ने हमें लिखा है, हैदराबाद से लिखती हैं। 7 जून 1993 का जन्म है, 12:05 मध्य रात्रि में हैदराबाद तेलंगाना। ये कह रही हैं कि 2025 में मेरा विवाह हुआ है, वैवाहिक जीवन मेरा ठीक नहीं चल रहा है, क्या ये विवाह मेरा चल सकेगा? शीतल, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा भी राहु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इस विवाह के चल पाने की संभावना कमजोर है। साल 2027 में आपसी सुलह समझौते से ये विवाह भंग होगा, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है, और आगे चल करके आप दूसरा विवाह करेंगी जो आपके लिए बेहतर होगा। इस विवाह से निकल सकें और आगे भविष्य आपका बेहतर हो उसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं उस सवाल का जवाब पंडित जी द्वारा दिया जाए तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न सूरज कुमार ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 30 नवंबर 1996 का जन्म है, 6:22 प्रातः गिरिडीह झारखंड। ये कह रहे हैं कि मैं माइनिंग इंजीनियर हूं और नौकरी के लिए करियर के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो आने वाले समय में मेरा भविष्य और मेरा जीवन कैसा रहेगा? सूरज जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कर्क राशि की, महादशा केतु की और अंतर दशा राहु की शुरू हुई है। ज्योतिष के हिसाब से इस समय आपको कोई प्राइवेट नौकरी मिलेगी जो आप लगभग 6-8 महीने कर पाएंगे, उसके बाद आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने के, सरकारी सेवा में जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो आप माइनिंग के सेक्टर में ही भविष्य में गवर्नमेंट की किसी संस्था में जाएंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। एक मोती बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन से उसका अलग अलग राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में।
0: देखिए, सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले एक महीने तक अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष के बारे में जानते हैं। मेष राशि के लोग अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे, इस समय जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, चिंताएं और तनाव आपके दूर होंगे। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन आपका बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, सर दर्द और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, हड्डियों में दर्द और सर दर्द की शिकायत हो सकती है। सिंह राशि, कोई भी बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा और जोखिम लेने से बचाव करिएगा, किसी भी तरह का रिस्क लेने से फिलहाल बचना आपके लिए जरूरी होगा। कन्या राशि,

0: परिवर्तन अच्छा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपके तमाम रुके हुए काम इस एक महीने में पूरे हो जाएंगे।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: तो पहली 6 राशियों के बारे में तो हमने जान लिया, बाकी बची हुई 6 राशियों का सूर्य के राशि परिवर्तन से क्या उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा, आइए जान लेते हैं।
0: तो सूर्य के राशि परिवर्तन का बाकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब वो भी जानते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, करियर की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी और साथ में तुला वालों के लिए धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। वृश्चिक राशि, इस समय अपने पिता के स्वास्थ्य का और परिवार जनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुद अपना भी ध्यान रखें, लेकिन परिवार जनों के स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा रखिएगा। धनु राशि, इस समय दुर्घटनाओं से बचें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, चोट चपेट या दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। मकर राशि, अपने कारोबार का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, आपके व्यापार में, आपकी फैमिली लाइफ में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं।

0: कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, पैसे का फायदा भी आपको होगा। मीन राशि, इस समय करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा, करियर में कोई जोखिम लेंगे या कोई रिस्क लेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा।
1: और अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का।
0: मकर राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, लेकिन काम का प्रेशर, काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग आपके साथ बने हुए हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग आपके लिए होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही आज का तीसरा प्रश्न, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न तिथि दत्ता ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं, 24 अक्टूबर 2002 का जन्म है, 12:55 दोपहर में, कल्याणी नदिया पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, आगे किस तरह के करियर में मुझे जाना चाहिए। तिथि आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई क्लेरिकल नौकरी आपको मिलेगी ये संभावना बनती है साल 2028 में। मकर लग्न और वृषभ राशि है आपकी, अपने बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए एक नीलम बनवा करके पहनिए, 5-6 रत्ती का नीलम चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, शनिवार की रात को नीलम धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और गुडलक में वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम प्रश्न वो किसका लेंगे।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न विराट सिंह ने हमें लिखा है, फरीदाबाद से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 28 जून 2022 9:05 प्रातः, फरीदाबाद हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा 4 साल का हो गया है लेकिन बोलने में उसको दिक्कत होती है, बोलने में कठिनाई होती है, उसकी स्पीच थेरेपी भी चल रही है लेकिन बहुत लाभ नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करूं जिससे मेरे बेटे का जीवन बेहतर हो और वो अच्छी तरह से बोल सके। देखिए विराट जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। अक्टूबर 2027 के बाद आपके बेटे के जीवन में सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप 2-3 उपाय करिए एक तो इस कुंडली में अमावस दोष है, इसीलिए अपने पुत्र के अमावस दोष की शांति करवाइए। एक पन्ना बनवा लीजिए 6-7 रत्ती का, चांदी के लॉकेट में काले धागे में डाल करके बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाइएगा। और आप इनके पिता हैं, आप या इनकी माता, इसमें से कोई भी व्यक्ति इनके लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो काफी बेहतर होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 16 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रोजगार में परिवर्तन होगा, परिवर्तन के बाद सफलता मिलेगी, कर्ज की और आर्थिक समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। अविवाहितों का विवाह इस समय हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा।
1: और अब जानेंगे आज की जिज्ञासा के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि क्या दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन नहीं करना चाहिए? देखिए, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है, सामान्यतः इस दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन नहीं करना चाहिए। पूरब या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करना ज्यादा उत्तम होता है।
1: गुड लक में अब जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में, तो आइए जानते हैं 16 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 16 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान और शिक्षा के मामले में फायदा होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज की गुडलक राशि वो हमें कौन सी बताने वाले हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह का दान करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है वृषभ राशि। इनको नियमित रूप से बृहस्पति ग्रह की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर ये ऐसा करें तो जीवन की तमाम बाधाएं कम होती चली जाएंगी।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज हमने बात की सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। अगर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह और शाम शिव मंत्र का नमः शिवाय का जप करिएगा, हर रविवार को गुड़ का या आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा अगले एक महीने तक आप करें, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको दिक्कत नहीं होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की, जिसकी शुरुआत अब से कुछ घंटों बाद होने जा रही है। और देखिए, ऐसे में यात्रा शुरू होने से पहले पूजा पाठ के लिए तीनों रथों को बारी बारी से मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा दिया जाएगा, और जिन पर सुबह भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होंगी, और फिर शुरू होगी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, जिसके लिए देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में जगन्नाथ जी के भक्त पुरी पहुंच रहे हैं।

0: महाप्रभु के धाम पुरी में अब से कुछ घंटों पर शुरू होगी रथ यात्रा, जिसके लिए भगवान जगन्नाथ के धाम में जुटने लगे हैं श्रद्धालु। हर तरफ हो रही है महाप्रभु की जय जयकार। ढोल मंजीरों और भजनों से भक्तिमय हो गया है पूरा माहौल। इस रथ यात्रा को लेकर महाप्रभु के भक्त कितने उत्साहित हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुबह से ही पुरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बावजूद इसके मंदिर के बाहर जुटे श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पुरी पहुंच रहे हैं। कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आया है और कोई परिवार संग महाप्रभु का आशीर्वाद लेने आया है।
1: इतना भीड़ आप देख सकते हैं, कहां कहां से लोग आए हैं भगवान का ये रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। दो दिन से यहां लोगों का भीड़ हो रहा है। कहां से हैं?
2: जहानाबाद बिहार।
1: कैसा लग रहा है आज भगवान का ये रथ यात्रा देखने के?
2: बहुत अच्छा लग रहा।
1: अच्छा, मतलब ये रथ यात्रा आप देखेंगे इस बार?
2: देखेंगे जरूर,
1: इसलिए आए हैं। कितने लोग आए हैं?
2: 4 लोग।
1: क्या लग रहा है भगवान का ये भव्य लीला को देख?
3: बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। हम लोग पहले आ गए दर्शन करने, मगर अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है।
1: कितने बार देख चुके हैं रथ यात्रा पहले से?
3: रथ यात्रा फर्स्ट टाइम आए।
1: मैम कहाँ से हैं?
4: हम MP से, इंदौर देवास डिस्ट्रिक्ट।
1: क्या मतलब ये पहली बार आ रहे हैं या पहले से आए हैं?
4: जगन्नाथपुरी तो दर्शन करने तो आ चुके हैं, पर ये रथ यात्रा में पहली बार आए हैं और आकर इतना आनंद आ रहा है कि जिसकी कुछ हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
0: रथ यात्रा के शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में मंदिर के अंदर पूजा पाठ और अनुष्ठान चल रहे हैं, तो बाहर यात्रा के लिए रथों को तैयार किया जा रहा है। तीनों रथ नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन को बारी बारी से खींचकर मंदिर के सिंह द्वार पर लगा दिया गया है, ताकि सुबह भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने रथ पर विराजमान हो सके। तीनों रथों में बांधी जाने वाली ये रस्सी इस रथ यात्रा की एक अहम कड़ी है। मान्यता है कि इन रस्सियों को छूने या फिर खींचने मात्र से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
1: कल रथ यात्रा के लिए हर तरह की व्यवस्था हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नंदी घोष, तालध्वज और दर्प दलन, रथ पूरा तैयार है। आप देख सकते हैं कपड़ा हो गया, कल तक कपड़ा नहीं लगा था लेकिन आज कपड़ा लग गया है और ऊपर का काम जो बाकी था वो भी हो गया है और खाली कलश लगना बाकी है। आप देख सकते हैं भगवान का तीनों रथ, देवी सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ का तीनों रथ जो होता है, वो तीनों रथ का जो नीति होता है वो नीति अब शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं रस्सी अब लगाया जा रहा है और ये रस्सी जो रथ में लगेगा, जिसमें रथ को खींचा जाएगा। देख सकते हैं ये पूरी जगन्नाथ मंदिर के सामने बिल्कुल तीनों रथ अब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये नंदी घोष, दर्प दलन और तालध्वज, तीनों रथ अब मौजूद हैं।
5: आज नेत्रोत्सव का दिन है, आज आज्ञा माला आने से पहले नंदी घोष का रथ सिंहद्वार में लगेगा, उसके बाद दर्प दलन का रथ उसके पास लगेगा, उसके बाद तालध्वज का रथ अभी जाके आज का तिथि में जाके सिंहद्वार में खड़ा रहेगा, कल के लिए इंतजार रहेगा।
0: वही रथ यात्रा के लिए पूरे रूट को सजा दिया गया है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीने के पानी, मेडिकल, यातायात और आपदा प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
1: पूरी में भक्तों का ये सुरक्षा के लिए यहाँ हर तरह की व्यवस्था किया गया। मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ फायर टीम मौजूद है, फायर का गाड़ी पूरा रखा गया है, इसके साथ साथ पुलिस टीम हर चप्पे चप्पे में ये मौजूद हैं और इसके साथ एम्बुलेंस टीम आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस का गाड़ी भी अब मौजूद है और इसके साथ आप फर्स्ट एड टीम देख सकते हैं, फर्स्ट एड का सेंटर भी लग गया है। इसके साथ हर गली में आपको पुलिस नजर आएंगे, आर्म फोर्सेस नजर आएंगे, शहर के बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे आपको आर्म फोर्सेस नजर आएंगे और शहर को कैसे सुरक्षा दिया जाएगा इसलिए 476 से ज्यादा CCTV कैमरास इंस्टॉल हुए हैं।
6: हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है, 450 से ज्यादा CCTV नजर रखा है ये शहर के ऊपर, ये रथ का जो पथ है बड़ा दंड, इसके ऊपर हमारा जो बैकअप सपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो इन्फॉर्मेशन हम कैसे भक्त जनों के पास पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक तो पूरी पुलिस का जो चैटबॉट है, एप्लीकेशन है, उसको भी लोगों को जानकारी के लिए हम दे रखे हैं। दूसरी बात है, हम लोग 65 जगह एलईडी डिस्प्ले में इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे, और ये जगह खाली पूरी शहर के अंदर नहीं है, भुवनेश्वर तक है। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके यह इन्फॉर्मेशन भुवनेश्वर में कैसे स्प्रेड होगा, उसका भी बंदोबस्त किया गया है।
0: अब सबकी निगाहें उस शुभ घड़ी पर टिकी है जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। ये पल रथ यात्रा में शामिल होने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपने मंदिर से बाहर आकर उनको दर्शन देते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि आपको बता दें विश्वास और भावनाओं का भी रिश्ता होता है। यही वजह है कि सदियों पुरानी परंपराएं आज भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए नए नए माध्यमों का सहारा ले रही है। जैसा कि कल पुरी की रथ यात्रा शुरू हो रही है, तो वहीं पर अब भगवान जगन्नाथ की कहानी जन जन तक एक नए अंदाज में भी पहुंचने वाली है। देखिए, दरअसल एनिमेशन के जरिए भगवान जगन्नाथ की दिव्य गाथा को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे रथ यात्रा की आस्था और सिनेमा की कल्पना मिलकर भक्ति की एक नई कहानी बुन रहे हैं।

एक दिन बाद शुरू हो रही है पुरी की पवित्र रथ यात्रा, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। और रथ यात्रा की शुरुआत के ठीक एक दिन बाद भगवान जगन्नाथ की उसी दिव्यता से बड़ा पर्दा गुलजार होने वाला है। प्रभु जगन्नाथ पर भक्तों की वही आस्था और श्रद्धा को बड़े पर्दे पर दिखाने की तैयारी है एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ।

0: हर साल रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अब यही भावना एक नई कहानी और रंग बिरंगे एनिमेशन के जरिए सिनेमाघरों तक पहुंच रही है, ताकि बच्चे भी भगवान जगन्नाथ की कहानी को आसानी से समझ सके।
1: पुरी में क्या हो रहा है जगन? कोई है यहाँ? तुलसी काका, पुरी काकी, सब कहाँ चले गए?
0: फिल्म का ट्रेलर भी बेहद खास अंदाज में लॉन्च किया गया है। ओडिशा के कटक में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान आध्यात्मिक वक्ता इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने ट्रेलर जारी किया। इस मौके पर 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा पंडाल जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। फिल्म में भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीलाएं दिखाई गई है। कहानी बताती है कि जब भक्त संकट में पड़ते हैं तो भगवान उनकी पुकार सुनते हैं, फिर अपने बड़े भाई बलराम और गरुड़ के साथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक अद्भुत दिव्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यानी भक्ति, रोमांच और सीख, तीनों का सुंदर संगम। इस फिल्म को खास तौर पर बच्चों और परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मेकर्स का कहना है कि आज के बच्चे मोबाइल और सुपर हीरो की दुनिया से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर अपनी संस्कृति और भगवान की कहानियाँ उन्हें एनिमेशन के जरिए दिखाई जाए तो वो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उनसे जुड़ पाएंगे। महाप्रभु जगन्नाथ पहले एक लोकप्रिय एनिमेटेड टीवी शो के रूप में दर्शकों का प्यार जीत चुका है। अब यही कहानी बड़े पर्दे पर और भी भव्य रूप में आ रही है। फिल्म हिंदी, ओडिया और तेलुगु भाषा में देश भर के 300 से ज्यादा सिनेमाघर में रिलीज होगी। हाल के दिनों में पौराणिक एनिमेशन फिल्मों को दर्शकों का अच्छा साथ मिला है। ऐसे में महाप्रभु जगन्नाथ से भी काफी उम्मीदें हैं। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसका एनिमेशन नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की संस्कृति, परंपरा और भक्ति का संदेश है, जो नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। जब पुरी की सड़कों पर गूंजेगा जय जगन्नाथ, तो उसी समय सिनेमा घरों में भी भगवान जगन्नाथ की कहानी बच्चों और बड़ों को भक्ति, संस्कृति और अपनेपन का संदेश देती नजर आएगी। रथ यात्रा की आस्था अब बड़े पर्दे की कहानी भी बन चुकी है।
1: ना कुछ सोचूंगा, ना कुछ चिंता करूंगा,
2: परंतु तुम्हारे एक भक्त के मृत्यु भी तुम्हारी हार है।
1: कोई बात नहीं जगन, मैंने अपने आप को तुझे समर्पित कर दिया है।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर चमोली जिले में मौजूद यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक का धरोहर फूलों की घाटी में इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे। सीजन शुरू होने के बाद से अब तक 11,000 से ज्यादा सैलानी फूलों की घाटी की सैर कर चुके हैं, और देखिए जिससे सरकारी खजाने को 20 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है।

0: बादलों से घिरे पहाड़, हरी भरी वादियाँ और इन वादियों के दामन में खिले एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूल। ये किसी चित्रकार या फिर किसी कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो इन दिनों अपनी बेपनाह खूबसूरती से देखने वालों का मन मोह ले रही है, खासकर उन सैलानियों का जो इस खूबसूरती का दीदार करने के लिए देवभूमि में मौजूद फूलों की घाटी पहुंच रहे हैं। इस साल 1 जून को फूलों की घाटी के द्वार पर्यटकों के लिए खोले गए थे, तब से अब तक यहां 11,000 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है।
1: विश्व धरोहर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार दिखाई दे रही है। फूलों की घाटी का मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है। इस दौरान मानसून होने के साथ ही जो घाटी का दायरा है वो हर तरफ अलग अलग रंग के अलग अलग किस्म की जो प्रजातियां हैं यहाँ पे खिली हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी अब फूलों की घाटी पूरी तरह से यहाँ पे खिल चुकी है। हर तरफ पर जो प्रकृति का यौवन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने आप में बेहद खूबसूरत फूलों की घाटी दिखाई दे रही। तो वहीं इस बार रिकॉर्ड पर्यटक जो है 10,000 से अधिक पर्यटक अब तक फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं।
0: यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल फूलों की घाटी हमेशा से प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद रही है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि पिछले साल 13 जुलाई तक फूलों की घाटी में 5,490 सैलानी पहुंचे थे। ये संख्या इस साल दोगुनी हो गई है। इतनी संख्या में सैलानियों के आने से सरकारी खजाने को भी फायदा हुआ और इस साल अब तक 20 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या और आय दोनों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
2: यहाँ पे आने वाले पर्यटकों की जो संख्या थी वो 11,080 पर्यटक थे और हमारे पास इन पर्यटकों से जो आय प्राप्त हुई है वो है 20,16,250। इसके साथ ही हमारे पास जो विदेशी पर्यटक हैं वो 45 रहे इस सीजन में अभी तक। अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो पिछले साल हमारे पास अभी तक 13 जुलाई 2025 तक आने वाले जो पर्यटकों की संख्या थी वो 5,490 थी, जो कि इस बार जो पर्यटकों की संख्या वो लगभग हमारी दोगुनी हो चुकी है और जो आय थी पिछले साल वो भी 11,11,950 रुपए थी।
0: फूलों की घाटी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ केवल एक तरह के ही फूल नहीं खिलते, बल्कि पूरी घाटी में 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ फूल भी शामिल है। हर 15 दिन बाद यहाँ नई किस्म के फूल खिलते हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नजारा लगातार बदलता रहता है। फूलों की घाटी का यही बदलता स्वरूप यहाँ आने वाले सैलानियों को खूब भाता है। इस खूबसूरती को यादों में सजोने के लिए कोई यहाँ सेल्फी लेता है और कोई दुर्लभ फूलों की तस्वीरें खींचता है।
3: हम लोग ओडिशा से आए हैं, हमारा टीम है, 6 लोगों का टीम है, आए थे इस वैली ऑफ फ्लावर्स के, अभी नीचे आए, अच्छा लगा।
4: हम लोग बहुत एंजॉय किए, ट्रैकिंग इजी टू मॉडरेट था,
3: पहली बार था हमारा, अच्छा लगा,
4: पहला ट्रैक था हमारा, मजा आ रहा है और सबको बोलेंगे कि एक बार
3: ट्राई करना चाहिए, वैली
4: ट्राई करना तो चाहिए।
0: रेंज अधिकारी चेता कांडपाल ने बताया कि जुलाई अगस्त में घाटी में फूलों के खिलने का चरम समय होता है, इसलिए हर साल इस दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। अनुमान यह है कि अगर मौसम सही रहा तो इस साल फूलों की घाटी पर्यटकों की संख्या के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
2: इस बार फूलों की घाटी में अच्छे खिले हैं, कैंपेनुला लैटिफोलिया, पोटेंटिला, जिरेनियम और रोडोडेंड्रॉन, लैपिडोटम, बिस्टोटा, पेडिकुलारेंस, काफी प्रजातियों में काफी अच्छा फ्लावरिंग हुई है जो पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।
0: फूलों की घाटी में सैलानियों की बढ़ती संख्या का फायदा यहाँ के होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट, पोर्टर और घोड़ा खच्चर मालिकों को भी मिल रहा है। यानी स्थानीय रोजगार भी फूलों की घाटी की वजह से तेजी से फल फूल रहा है। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ अब से कुछ ही घंटों बाद अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त अब उस ऐतिहासिक और पावन क्षण का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं जब प्रभु अपने भक्तों के बीच विराजमान होंगे। महाप्रभु की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य रथ मंदिर के बाहर सज धज कर तैयार है। वहीं उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सजा दिए गए हैं।
1: प्रभु जगन्नाथ जी का सकाल धूप खिचड़ी भोग के बाद में प्रभु जगन्नाथ जी से शरीर से आज्ञा माला कर तीनों रथों को अभी सिंह द्वार पर रथ खड़ा से सिंह द्वार खींचा हुआ अभी नंदगेश्वर रथ लग गए हैं, और उसके बाद में माता सुभद्रा जी का आएगा, उसके बाद में बलदाव जी का रथ आएगा। ये रथ यात्रा के लिए शुभ संकेत है, बहुत पाग अनुकूल है, मौसम भाई बहुत अच्छा है। जगन्नाथ की कृपा से काल जो रथ यात्रा होगा ये जिला प्रशासन राज्य सरकार और सेवायत के लिए बहुत कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा रथ यात्रा होगा।
0: प्रभु के नगर भ्रमण पर आने की खुशी में उनकी नगरी पूरी भक्ति के रंग में सराबोर है। ढोल मंजीरे और कीर्तन की गूंज के बीच श्रद्धालु गली गली जय जगन्नाथ का जय घोष कर रहे हैं। भजन कीर्तन से पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो उठा है। चारों तरफ गूंजती प्रभु भक्ति की मधुर ध्वनि हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है और इस दिव्य उत्सव में शामिल होने का मानो निमंत्रण दे रही है।
2: भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की हेतु की कृपा है कि यहाँ चराचर के मृतलोक के प्राणी तो आते ही आते हैं, यह जगत विदित है, लेकिन उससे अनोखी बात यह है स्कंद पुराण में इसकी महिमा वर्णित हुई है कि देवलोक से देवता भी आते हैं।
3: हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। हम फर्स्ट टाइम यहाँ रथ यात्रा में आए हैं, मेरा घर वाराणसी में है और मैं हैदराबाद में रह के काम करता हूँ।
4: बहुत अच्छा लग रहा है, रथ यात्रा के लिए आया हूँ, पहली बार आए हैं यहाँ पे। बहुत सौभाग्य था कि मेरा एग्जाम अभी था तो एग्जाम के बहाने इधर रथ यात्रा देखने को भी मिल गया मुझे।
5: अगर हम भगवान को नहीं भी देख पाएंगे तो वो तो हमें देख ही पाएंगे, देख ही लेंगे, उन्हें पता है कि ये लोग आए हुए हैं। तो वी आर सो एक्साइटेड दैट ऑल द रथ आर वेरी कलरफुल एंड वी हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी।
0: गुरुवार सुबह भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के बीच जाएंगे। मान्यता है कि रथ यात्रा का ये पावन अवसर वो दुर्लभ क्षण होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार उन्हें दर्शन देने पहुंचते हैं, इसलिए इस दिव्य आयोजन को भक्त और भगवान के महामिलन का पर्व भी कहते हैं।
6: भगवान का मिलन के लिए अब पूरा विश्व तैयार है, अब पूरी में तीनों रथ भी तैयार हैं, भगवान तैयार हैं और भक्त भी तैयार हैं। सब मिलन के लिए, ये अपूर्व मिलन के लिए सब एक ही वही मोमेंट के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रथ, अब तीनों रथ तालो ध्वज नंदी घोष दर्प दलन तीनों रथ अब तैयार हो चुके हैं और कल जुलाई 16 तारीख को रथ खींचा जाएगा और भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया ये रथ के ऊपर विराजमान होंगे, दर्शन देंगे।
0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि रथ यात्रा से पहले पूरी तरह भक्तिमय हो चुकी है। कल रथ यात्रा का आरंभ होगा और महाप्रभु जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर पारंपरिक शैली में रथों तक पहुंचाया जाएगा। उससे पहले भगवान की मंगला आरती होगी और फिर भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही महाप्रभु नगर भ्रमण पर निकलेंगे।
1: अभी भगवान का सकल खिचड़ी भोग होता है, खिचड़ी भोग खत्म होने के बाद भगवान महाप्रभु का आज्ञामाल वो तीन रथ में आएंगे, वो आज्ञामाल लगने के बाद तीन रथ हाँ रथ खला में जाएंगे हमारा सिंहद्वार में, और सिंहद्वार में कल सुबह रात 4 बजे मंगला आरती होगा, इसका अवकाश होगा, इसके बाद महाप्रभु का खिचड़ी भोग होगा, मंगला अर्पण होगा। 8:30 बजे भगवान मैया निकलेंगे तीन रथों में, एक धाड़ी पांडी होकर आएंगे, पहले सुदर्शन महाप्रभु आएंगे, इसके बाद बलभद्र महाप्रभु आएंगे, इसके बाद माँ देवी सुभद्रा और सब लास्ट में जगन्नाथ महाप्रभु।
0: एक तरफ भक्ति के मधुर स्वर गूंज रहे हैं तो दूसरी तरफ महाप्रभु के रथ को मोटी मोटी पवित्र रस्सियों से बांधा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं रस्सियों के सहारे लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य का रथ खींचेंगे।
6: तीनों रथ में ये दिखाना चाहूंगा आपको कि तीनों रथ अब बनकर पूरा तैयार हो चुके हैं। रथ का रस्सी भी यहाँ रखा गया है। रथ में खींचने के लिए जो रस्सी व्यवहार होता है, ये रस्सी अब तैयार है, रथ भी अभी तैयार है, भक्त तैयार है।
0: मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होकर महाप्रभु के दर्शन कर और उनके रथ की रस्सी को स्पर्श कर श्रद्धालु स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। श्रद्धा और भक्ति की एक अद्भुत मिसाल ये भी है। मिनिएचर आर्टिस्ट अलेश्वर राव ने पूरी रथ यात्रा के लिए सुपारी पेड़ के पत्तों से तीन रथ बनाए हैं, जिनकी ऊंचाई 5 इंच है। इन रथों में कागज से बने छोटे घोड़े और कलश के साथ सुवा भी शामिल है। रथों पर विराजमान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता जी की मूर्तियाँ 1 इंच ऊंची नीम की लकड़ी से बनाई गई हैं। रथ यात्रा से पहले ग्रैंड रोड को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। पूरे रथ मार्ग पर 13,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों का पहरा रहेगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा, यातायात और आपदा प्रबंधन की विशेष व्यवस्था भी की गई है।
7: 22 आईपीएस पूरा अरेंजमेंट को सुपरवाइज करने के लिए लगे हैं। हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है। 450 से ज्यादा सीसीटीवी नजर रखा है ये शहर के ऊपर। रथ का जो पथ है बड़ा दंगा इसके ऊपर। हमारा जो बैकअप सपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इन्फॉर्मेशन हम कैसे भक्त जनों के पास पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक तो पूरी पुलिस का जो चैटबॉट है, एप्लीकेशन है, उसको भी लोगों को जानकारी के लिए हम दे रखते हैं। दूसरी बात है, हम लोग 65 जगह एलईडी डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये जगह खाली पूरी शहर के अंदर नहीं है, भुवनेश्वर भुवनेश्वर तक है।
0: ये रथ यात्रा पुरी के श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक होगी, उसके बाद गुंडीचा से श्री मंदिर वापस आएगी। ऐसे में जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा मार्ग से लेकर समंदर और सड़क तक सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद किया गया है। सबकी निगाहें उस शुभ घड़ी पर टिकी हैं जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और जैसे ही रथों के पहिए आगे बढ़ेंगे, पूरा पुरी धाम जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठेगा। ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और एकता का महाउत्सव भी है। यहाँ राजा हो या रंक, देसी हो या विदेशी, सभी एक साथ महाप्रभु के रथ की रस्सी खींचते हैं। महाप्रभु के सामने सभी बराबर हैं। हर श्रद्धालु महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की सेवा को अपना परम सौभाग्य मानता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ हो गया है। अबुधाबी के लिए पहली सेवा शुरू कर दी गई है। आज एयरपोर्ट पर लैंड हुए इंडिगो एक्सप्रेस के विमान को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। चलते न्यूज एक्सप्रेस वे पर जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
9: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, जहां कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई। 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1,365 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वाराणसी के लिए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर्स को भी मंजूरी दे दी गई है। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने और कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक अहम MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के जरिए दिल्ली की डेयरियों और गौशालाओं से निकलने वाले गोबर का इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद्य बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य डेयरियों से निकलने वाले कचरे और गोबर को नालियों या यमुना नदी में जाने से रोकना है। इससे न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यावरण सुरक्षित होगा, साथ ही साथ पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 महीने के अंदर ही 61,000 यात्रियों ने उड़ान भरी। अभी 15 शहरों के लिए फ्लाइट्स मिल रही हैं। 15 जून से एयरपोर्ट संचालन शुरू हुआ था। जिसमें जून के आखिरी 15 दिनों में 27,841 यात्रियों ने उड़ान भरी, जबकि जुलाई के पहले 13 दिनों में ही 33,446 यात्रियों ने एयरपोर्ट का उपयोग किया। 10 जुलाई को सबसे ज्यादा 3,255 यात्रियों का आवागमन हुआ। अब भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के बाद यात्रियों की संख्या में और तेजी से वृद्धि होने का अनुमान जताया जा रहा है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू कर दी हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अबू धाबी के लिए पहली विदेशी उड़ान का संचालन किया। करीब 100 यात्रियों को लेकर ये उड़ान सुबह 2:55 पर रवाना हुई। इसने लगभग 2.5 घंटे में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी से आने वाली पहली फ्लाइट नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जिसे हवाई अड्डे पर भव्य वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में नई पहल की शुरुआत हुई है। सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भावना दीदी की साइंस पाठशाला को हरी झंडी दिखाई है। एक तरह की निशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब है। ये लैब पंडरिया इलाके में स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी महानगरों की तर्ज पर आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक करना है, जिससे वो आने वाले तकनीक युग के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके।
8: रिलीज हुआ फिल्म तेरा यार हूं मैं का मैंने दिल तुझको दिया गाना। इसी के साथ ऐसी और कई खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
10: फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया और वाइब्रेंट डांस गाना रिलीज किया गया है। फिल्म की लीड जोड़ी अमन इंद्र कुमार और आकांक्षा शर्मा पर फिल्माए गए इस मैंने दिल तुझको दिया गाने को नकाश अजीज ने गाया है। इस गाने के बोल इंद्र कुमार ने लिखे हैं, जबकि संगीत संजीव दर्शन ने दिया है। मिलाप मिलन जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा यार हूँ मैं में परेश रावल, जॉनी लीवर, सुप्रिया पिलगांवकर, मृणाल कुलकर्णी, नेहा खान, पूजा कतुरड़े, आनंद आचार्य और दर्शन जरीवाला भी हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
11: हनुमान जी के भक्त तो निडर होते हैं।
10: फिल्म हनुमान अंश का नया भक्ति गीत जय हनुमान रिलीज कर दिया गया है। श्रेयस धर्माधिकारी के गाए और कंपोज किए इस गाने को ऋषि पाठक और श्रेयस धर्माधिकारी ने लिखे हैं। ये गाना फिल्म की आध्यात्मिक दुनिया को दर्शाता है। विशाल चतुर्वेदी लिखित और निर्देशित फिल्म हनुमान अंश में शोभिनव सत्या, विहान शेडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी और गुलशन पांडे मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 31 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
12: मैं सुनया इश्क कमजोर बना देता है, पर मेरे इश्क ने मेनू ताकत दिती है।
10: शहनाज गिल और जय रंधावा की पंजाबी फिल्म इश्कनामा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी, सुकून का एहसास कराने वाला संगीत के साथ ही भावनाओं से भरपूर दृश्य देखने को मिलते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर आधारित निम्मा और नसीमा की सच्ची प्रेम कहानी से प्रेरित है। ये फिल्म मशहूर किताब हिंद पाक बॉर्डर नामा पर आधारित है, जिसमें सौरभ सचदेवा भी अहम भूमिका में हैं। अरविंदर एस खैरा के निर्देशन में बनी फिल्म इश्कनामा 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
13: ओ खान दी भेणे ते सिद्धी मौत ए खान,
14: हल इक्को ही है
13: की
14: चक्का गंडासी ते वड़दियां खान ते खान दे लोंग लाने ना।
8: न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
9: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये माँ सर आइज़क न्यूटन से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को भरपूर प्रोटीन खिलाने के लिए माँ ने जो तरकीब घड़ाई है, ऐसा प्रयोग तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। माँ ने बच्चे को लुभाने के लिए धागे से एक चॉकलेट का टुकड़ा बांध दिया और उसे प्रोटीन मिक्स मटेरियल के कटोरे में डाल दिया। बच्चे को चम्मच में खाने वाले पदार्थ के साथ चॉकलेट का टुकड़ा दिखता है, वो मुंह खोलता है और तभी धागे से बंधा वो टुकड़ा फिर कटोरी में गिरा दिया जाता है और इस तरह बच्चा उस टुकड़े के लालच में पूरा खाना खा जाता है। यूजर्स वीडियो को देखकर माँ की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन माओं को सलाह दे रहे हैं जिनके बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं और ये तस्वीरें देखकर वो इससे सीख ले सकते हैं। शैतान कौए की कारस्तानी की तस्वीरें देखिए जरा। कौआ सफेद बिल्ली की पूंछ में चोंच मारता नजर आ रहा है। बिल्ली ने सोचा कि दूसरी काली बिल्ली ने शरारत की है, बस फिर क्या था, दोनों लड़ पड़ती हैं। इधर कौआ फिर आकर चोंच मार देता है, लेकिन तभी एक सफेद कुत्ते की एंट्री होती है और उसके बीच में पड़ने पर कौआ तो उड़न छू हो जाता है और बाकी दोनों बिल्लियां अपने रास्ते भाग लेती हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। फुटबॉल की क्रेज के बीच ये वायरल तस्वीरें देखिए और फैसला करिए कि आपकी नजर में ये गोल हुआ है या नहीं। यकीनन आप कहेंगे कि गोल तो हुआ है, क्योंकि गोल करने वाला खिलाड़ी कैसे गोलकीपर को कंफ्यूज करता है और आसानी से गोल दाग देता है कि गोलकीपर हक्का बक्का रह जाता है ना कमाल की तस्वीरें। अब यूजर्स गोलकीपर का चेहरा देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। दादी माँ और पोते की तस्वीरें लोगों को खूब भा रही है। जरा देखिए कि कैसे एक ही फ्रेम में दो अलग अलग उम्र के लोग आमने सामने बैठे हैं। एक दादी माँ है और एक 4-5 महीने का बच्चा, दोनों दांत विहीन एक दूसरे के साथ जिस तरह से आनंद ले रहे हैं, यूजर्स उन्हें देखकर आनंदित हो रहे हैं। और न्यूज पथ के सफर में अब आगे सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी अयोध्या में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की इन दिनों इस ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का पद खाली है, इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। अयोध्या के रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के महज 24 घंटे के भीतर 1000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए आवेदन करने वालों में प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग, सामाजिक संगठनों के अनुभवी कार्यकर्ताओं के अलावा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर चर्चा में रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी इस पद के लिए आवेदन करने की सार्वजनिक घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 14 जुलाई से हुई है, जिसके बाद देश भर में अभ्यर्थी सीईओ पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 18 जुलाई है। ट्रस्ट की चयन समिति 19 जुलाई को बैठक कर सभी आवेदनों की प्रारंभिक जांच और छटनी करेगी और इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि 22 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ का चयन पर अंतिम मोहर लग सकती है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट को एक ऐसे सीईओ की तलाश है जो कि मंदिर प्रशासन के कामकाज को बेहतर तरीके से संभाल सके और श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करने का काम करे। ट्रस्ट के इस कदम को लेकर हमने अयोध्या में लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
15: ऐसा होना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कोई भी इस तरह वारदात ना हो फिर से, और जो उनका पहले का जो फीडबैक है काम करने का, जो भी जहाँ से उनका एजुकेशन से लेके जहाँ तक रहे हों, तो उन पर बराबर मॉनिटरिंग करके फिर बनाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि भगवान राम के इस क्षेत्र में जो भी रहते हों, बाहर से लोग आते हैं तो उनके आदर्श के बारे में सोचते हैं कि वो कितने मर्यादित थे, कभी उन्होंने चोरी नहीं किया, कभी गलत नीत पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, है ना। तो भगवान के तो आदर्श पे जीना चाहिए, खासकर भगवान।
16: सीईओ की नियुक्ति की बात आ रही है, वो सीईओ की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसा आदमी बनना चाहिए?
15: वो ईमानदार होना चाहिए पूरी तरह से, एक ईमानदार अफसर होना चाहिए।
17: सीईओ हो जो जानकारी रखे चारों तरफ, और सीईओ पूरा ईमानदार अगर वहां से रहेगा तो नीचे तक ईमानदारी आएगी। और ये घटना जो है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, तो यही आशा की जा रही है कि ऐसा हो कि यहाँ ईमानदारी से चले।

0: ये तो अंदर से ही उनकी आवाज आएगी तभी कुछ हो सकता है, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आप किसी को भी बैठाइए।
1: नहीं, मेरे हिसाब से भी वही है, इंसान को खुद चेंज होना पड़ेगा। ऐसे किसी के बैठने से और कंटिन्यूसली मॉनिटर करने से अगर चीज़ें बदलती तो बहुत चीज़ें बदल जाती। वैसे इंसान को खुद ही चेंज होना पड़ेगा।
2: आई फील ये सिविक सेंस और वो खुद में समझदारी होना कि आप किस जगह काम कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से आनी चाहिए फ्रॉम विद इन। तो मुझे नहीं लगता कि किसी सीईओ के आने से इट वुड मेक एनी डिफरेंस अंटिल आपको खुद इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कहाँ है आप और आपके पद का आपको कितने सावधानी से रहना चाहिए अपने पद पे।
3: जो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह इस टाइप की एडमिन से रिलेटेड होनी चाहिए, कुछ कॉमर्शियल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि ये चोरी जिस तरह से हुई उसको कंट्रोल करना, बैंकिंग फंडामेंटल्स भी का नॉलेज उनको होना चाहिए। हाँ, फाइनेंस रिलेटेड नहीं, बैकग्राउंड उसका अच्छा होता तो क्यों नहीं, शायद इतनी इस तरह से तो नहीं होती जिस तरह से हुआ है।
4: हो सकता है, नीट एंड क्लीन आदमी हो तो अच्छा तो हो ही सकता है, क्योंकि पीछे उनका बैकग्राउंड बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए, सब नॉलेज होना चाहिए। तो इतनी पब्लिक आए कोई परेशानियों का मतलब, लोग बोले कि भाई ऐसा के चोरी हुई, ये हुआ वो हुआ, तो अपना भी सब नाम खराब हुआ कि भाई हाँ ऐसा हुआ। तो सीईओ ऐसा होना चाहिए।
5: देखिए, बेहतर तभी होगा जब ये आप ब्यूरोक्रेट्स अगर जैसे इसकी चुनने की जो प्रक्रिया होगी वो पहले की अकॉर्डिंग, इसमें जो अनैतिकता जो भरी हुई है वो ठीक किया जाएगा, तभी ब्यूरोक्रेट्स कुछ अच्छे से काम कर पाएंगे। वैसे उम्मीद नहीं है कि सुधर पाएगी।
6: ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 होगा एकदम अनोखा और रोमांचक। आईसीसी लेकर आया है नई सुपर सीरीज और सुपर सेवन फॉर्मेट। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
7: आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे तीन चरणों में बांट दिया है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें सुपर सीरीज और सुपर सेवन जैसे नए राउंड से गुजरना होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में सबसे कम रैंकिंग वाली तीन क्वालिफाइड टीमों के बीच एक सुपर सीरीज होगी। इस फेज से केवल शीर्ष पर रहने वाली टीम यानी नंबर वन टीम ही मुख्य टूर्नामेंट में जगह बना पाएगी, जबकि बाकी दो टीमें बाहर हो जाएंगी। सुपर सीरीज से आई एक टीम और बाकी बची 11 टीमें यानी कुल 12 टीमों को 6-6 के दो समूहों में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह से शीर्ष तीन तीन टीमें और दोनों समूहों में चौथे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ टीम अगले दौर के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरे राउंड में कुल 7 टीमें पहुंचेंगी और इसे सुपर सेवन नाम दिया गया है। सुपर सेवन में शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 4 टीमें अंत में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में इतिहास रचते हुए एक अनूठा तीसरा कीर्तिमान बना दिया है। बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स यानी टेस्ट में 200 से ज्यादा, वनडे में 150 से ज्यादा और T20 में 100 से ज्यादा विकेट लेकर सभी में विकेटों का शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने लगभग 968 दिनों के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैच के दौरान इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही उनके वनडे करियर के 150 विकेट पूरे हो गए। इसके साथ ही इंग्लैंड की धरती पर बुमराह के 31 विकेट हो गए हैं और उन्होंने रविंद्र जडेजा के 30 विकेट को पीछे छोड़कर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। मुंबई इंडियंस का कप्तान बदला जा सकता है और इस पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी का मैनेजमेंट कप्तानी और कोचिंग स्टाफ में भारी फेरबदल करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या से कप्तानी वापस ली जा सकती है और उनके टीम से बाहर होने की भी पूरी संभावना है। हार्दिक के बाद कप्तानी की रेस में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर अंतिम और आधिकारिक फैसला मैनेजमेंट की आगामी रिव्यू मीटिंग में लिया जाएगा।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों

0: कि मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
1: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
2: बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
4: Swing and a foul out of play off to the left.
3: Big 12 Radio.
5: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
3: Talk Sport.
6: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
3: And more. Search sports to find the stations covering your team.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: आज पुरी में शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, कंट्रोल रूम से रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। गुजरात के डाकोर में उमड़ा आस्था का मेला, धूमधाम से निकली भगवान रणछोड़ राय की रथ यात्रा, भजन मंडलियों ने बांधा समा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन हुआ लॉन्च, टेस्टिंग के फीडबैक के बाद पोर्टल में किए जाएंगे सुधार। ICC ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट किया डिसाइड, वनडे वर्ल्ड कप में अब होंगे सुपर सीरीज और सुपर सेवन राउंड, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और IPL की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी पर पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी जो है कई बार सच और झूठ की रेखा को लांघ जाती है, कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ती जाती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियोस जो हैं चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: देखिए, सोशल मीडिया पर दो वीडियो खूब तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि ये दोनों वीडियोस चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
8: चीन की सेना के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के दावे से दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिकों को मार्च करते हुए देखा जा रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में हथियारबंद सैनिकों को ट्रक से उतरते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियो चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वायरल पोस्ट को शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, चीन की सेना 60 किलोमीटर भारत के अंदर घुस आई। वहीं एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, चीन ने भारत पर 60 किलोमीटर का कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
7: देखिए, सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियोस धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं। पहले वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिकों को मार्च करते हुए देखा जा सकता है, वहीं पर दूसरे वीडियो में हथियारबंद सैनिकों को ट्रक से उतरते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियोस चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, 60 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने दोनों वीडियो उसकी जांच की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे दोनों वीडियो को गौर से देखा और सुना। दोनों वीडियो के बैकग्राउंड में आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये चीन की आधिकारिक भाषा यानी मैंड्रिन जैसा नहीं हमको सुनाई दिया, ये कोई और भाषा थी। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने फिर से दोनों वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान दूसरे वीडियो में जवानों के यूनिफॉर्म पर गया। जब हमने इसे गौर से जूम करके देखा तो ये थाईलैंड के झंडे जैसा नजर आया। इसके अलावा सर्च के दौरान ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि सरकार और भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि चीनी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए। ये रिपोर्ट गलत है और इनका कोई आधार नहीं है। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल हो रहे दोनों वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर दोनों वीडियोस के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
8: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने दोनों वीडियो की बारी बारी से पड़ताल की। पहले वीडियो का सच जानने के लिए सबसे पहले हमने इसके कई की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो थाईलैंड के फेसबुक पेज पर 16 जून 2026 को शेयर किया हुआ मिला। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो थाई सेना का है। इसमें दूसरी रेजिमेंट की तीसरी बटालियन के नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के जवानों की ट्रेनिंग को दिखाया गया है। पेज पर थाई सेना और उसकी ट्रेनिंग से जुड़ी कई और पोस्ट भी मौजूद हैं। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि थाई सेना के ट्रेनिंग के कई वीडियो यहां मौजूद हैं। जवानों को वायरल वीडियो में जो झंडा पकड़े हुए दिखाया गया है उसी हूबहू झंडे को इस पेज पर मौजूद कुछ वीडियो में भी जवानों को पकड़े हुए देखा जा सकता है। दूसरे वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने इसके कई की फ्रेम निकाले और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो थाईलैंड के कई टिकटॉक यूजर्स की प्रोफाइल पर मिला। भारत में प्रतिबंधित होने की वजह से इन वीडियो को हमने एक्सप्रेस वीपीएन टूल की मदद से चेक किया। एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए थाई आर्मी का बताया, जिसमें ट्रक से उतर रहे सभी जवानों के यूनिफॉर्म पर थाईलैंड के झंडे को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि भारतीय सेना भी अपने आधिकारिक फैक्ट चेक अकाउंट से इस दावे का खंडन करते हुए इसे थाई आर्मी का बताया है। यानी दोनों ही वीडियो का भारत चीन मामले से कोई संबंध नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के घुसपैठ करने का दावा फेक है और इस दावे से वायरल हो रहा वीडियो थाईलैंड की आर्मी का है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भारतीय सेना ने भी चीन के घुसपैठ के दावे का खंडन किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: देखो सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
9: सोशल मीडिया पर मानव पिरामिड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मानव पिरामिड बनाया है। कुछ ही देर में यह पिरामिड डगमगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद संभल जाता है और लोग गिरने से बच जाते हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मानव पिरामिड तेज हवा में डगमगाने लगा, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि कोई भी नीचे नहीं गिरा। क्या आप इस मानव पिरामिड के सबसे ऊपर खड़े होने की हिम्मत करेंगे? वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है।
7: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मानव पिरामिड बनाया है। कुछ ही देर में यह पिरामिड डगमगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद संभल जाता है और लोग गिरने से बच जाते हैं। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो की जांच की, तो देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर की फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कोई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने ये पाया कि पिरामिड बनाने वाले लोग अजीब तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं। जब ये मानव पिरामिड हिलने लगता है तब सभी लोग अस्वाभाविक तरीके से बिल्कुल हिलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई हाल फिलहाल में प्रमाणिक रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। देखिए पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो सच्चा है तो उसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें क्यों नहीं मिली। दूसरा ये कि कहीं एडिटेड मॉफ्ट वीडियो को वायरल करके गुमराह तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
9: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी अस्वाभाविक चीजें नजर आईं, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स के जरिए जांचा गया। हमने हाई मॉडरेशन का इस्तेमाल किया। इस टूल ने वीडियो के AI से बने होने की करीब 100% संभावना जताई। इस टूल के एनालिसिस के मुताबिक इस वीडियो को सीडेंस 2 मॉडल की मदद से बनाए जाने की संभावना अधिक है, जो AI वीडियो जनरेट करने वाला एक टूल है। हमने एक दूसरे टूल undetectable.ai की मदद से भी वायरल वीडियो को सर्च किया। इस टूल ने भी वीडियो के 97% तक AI से बने होने की संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले, फिर इन्हें सर्च किया गया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 9 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ AI की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि मानव पिरामिड का वायरल हो रहा वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: फिलहाल ले रहा है छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits,
10: somebody save me,
1: to timeless favorites,
10: life is like a song,
1: and new discoveries.
10: You and I, so much more than a history. Wake up!
11: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn. You and I, so much more than a history.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
7: और इसी के साथ वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
12: इंटरनेट पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं। ये वीडियो एक माँ और उसके एक साल के बच्चे के उस खूबसूरत रिश्ते को दिखाता है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपने एक साल के बच्चे को बिस्तर पर लेटाने की कोशिश कर रही है, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़ती है। चोट इतनी तेज थी कि मां दर्द से कराते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी का दिल जीत लिया। अपनी मां को दर्द में देखकर वो छोटा सा बच्चा फौरन अपनी जगह से उठा और बिना देर किए अपनी मां की तरफ भागा। आमतौर पर इतने छोटे बच्चे खुद गिरने पर रोने लगते हैं, लेकिन यहां नन्हे बच्चे ने अपनी मां के दर्द को महसूस किया। वो रेंगते हुए अपनी मां के पास पहुंचा और अपने छोटे छोटे हाथों से मां के सिर को बड़े प्यार से सहलाने लगा, मानो वो कह रहा हो, मां रो मत, मैं हूं ना। बच्चे का ये निस्वार्थ प्यार और उसकी मासूमियत देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख भर आई।
13: हेलो गाइस, ये मेरी परदादी और अभी 90 इयर्स की हो चुकी है।
14: 90
12: सोशल मीडिया पर 90 साल की बुजुर्ग परदादी और उनके छोटे से परपोते का एक बेहद इमोशनल और प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे की जिद पर दादी ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया।
14: सुनो सया, हम का बोला वो सनकार के नहीं और गए
13: पूरा गांव
14: पूरा गए।
12: दोनों के बीच का प्यार और मासूमियत लोगों को बहुत पसंद आ रही है। चलती ट्रेन में पूजा पाठ और हवन का ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। वायरल वीडियो में एक पुजारी ट्रेन के फर्श पर हवन कुंड रखकर रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहा है। चलती ट्रेन में हवन कुंड चलता देख लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे और देखते ही देखते ये मामला बड़ा विवाद बन गया। इंटरनेट पर भारी बवाल मचने के बाद उत्तर रेलवे ने एक बयान जारी कर स्थिति साफ की है। रेलवे के मुताबिक ये पूजा किसी सामान्य डिब्बे जैसे जनरल स्लीपर या एसी कोच में नहीं हो रही थी। ये एक पूरी तरह से प्राइवेट कोच था, जिसे एक यात्री ने विशेष यात्रा के लिए बुक किया था। इस विशेष कोच को 10 जुलाई को नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12926 में जोड़ा गया था। रेलवे ने ये भी साफ किया कि इस यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन किया गया है और किसी तरह की अनहोनी या दुर्घटना की कोई खबर नहीं है। सैलून कोच आम ट्रेनों के डिब्बों से बिल्कुल अलग होते हैं। इन्हें पटरी पर दौड़ता हुआ 5-स्टार होटल भी कहा जाता है।

हाथों में हथियार और चेहरों पर मुस्कान लिए जवानों का ये अंदाज उनके हौसले, भाईचारे और देशभक्ति की खूबसूरत झलक दिखाता है। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए जरा, कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। यही होता है कि बाढ़ जैसी हालात में लोग सड़कों से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तख्त ने स्थिति का फायदा उठाते हुए जो किया वो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर भारी बारिश के कारण काफी पानी भरा हुआ है और पानी का बहाव भी बना हुआ है। तभी अचानक एक शख्स हाथ में एक बड़ा फोम का टुकड़ा लेकर आता है और वो बड़े आराम से उस फोम को सड़क के पानी पर बिछाता है और उस पर लेट जाता है। जैसे ही वो फोम पर लेटता है, पानी का बहाव उसे एक नाव की तरह धीरे धीरे आगे की ओर ले जाने लगता है। वो शख्स बिना किसी डर या हिचकिचाहट के मजे से लेटा रहता है, मानो वो किसी एडवेंचर ट्रिप पर हो। शख्स का ये अंदाज देखकर वहां मौजूद राहगीर भी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने तुरंत अपने फोन निकाल कर इस नज़ारे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो यूजर्स का खूब ध्यान खींच रहे हैं। एक महिला ने प्यास से परेशान एक लंगूर की मदद करके हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंगूर काफी देर से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने एक नल मौजूद है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। बंदर बार बार नल को छूता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो काफी देर से प्यासा है और किसी तरह पानी पीना चाहता है। उसी दौरान वहाँ मौजूद एक महिला की नज़र उस लंगूर पर पड़ती है। वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास जाती है। महिला को देखकर लंगूर भी कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करता। महिला तुरंत नल खोल देती है और इस तरह पानी बहने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ की मदद से बंदर को आराम से पानी पीने देती है। वीडियो में सबसे खास बात यह है कि लंगूर पूरे समय बिल्कुल शांत रहता है। वो आराम से पानी पीता है और महिला पर पूरा भरोसा करता हुआ नजर आता है। वहीं महिला भी पूरे धैर्य और प्यार के साथ उसकी मदद करती है। दोनों के बीच का ये भरोसा और अपनापन लोगों को काफी भावुक कर रहा है।

और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सैंटोस और उनके K9 पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से ये दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मोमेंट करते हैं, कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच के गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनकी इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी है कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलैन के नाम से जानते हैं। हुआ यू के एनरिचमेंट सेशन के दौरान कैटेकर ने थोड़ी सी मस्ती करने की सोची। उन्होंने एक विग पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलैन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि आखिर केयरटेकर करने क्या वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विग को हवा में उछाल दिया और अचानक उसका चमकता हुआ गंजा सिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आए ट्विस्ट को देखकर मैंगलैन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे कि जैसे वो पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू हुआ कैसे। वो इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो ये प्रैंक किया, उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर चमोली जिले में मौजूद यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक का धरोहर फूलों की घाटी में इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे। सीजन शुरू होने के बाद से अब तक 11,000 से ज्यादा सैलानी फूलों की घाटी की सैर कर चुके हैं और देखिए जिससे सरकारी खजाने को 20 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है।

0: बादलों से घिरे पहाड़, हरी भरी वादियाँ और इन वादियों के दामन में खिले एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूल। ये किसी चित्रकार या फिर किसी कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो इन दिनों अपनी बेपनाह खूबसूरती से देखने वालों का मन मोह ले रही है, खासकर उन सैलानियों का जो इस खूबसूरती का दीदार करने के लिए देवभूमि में मौजूद फूलों की घाटी पहुंच रहे हैं। इस साल 1 जून को फूलों की घाटी के द्वार पर्यटकों के लिए खोले गए थे, तब से अब तक यहां 11,000 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है।
1: विश्व धरोहर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार दिखाई दे रही है। फूलों की घाटी का मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है और इस दौरान मानसून होने के साथ ही जो घाटी का दायरा है वो हर तरफ अलग अलग रंग के अलग अलग किस्म की जो प्रजातियां हैं यहाँ पे खिली हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी अब फूलों की घाटी पूरी तरह से यहाँ पे खिल चुकी है, हर तरफ पर जो प्रकृति का यौवन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने आप में बेहद खूबसूरत फूलों की घाटी दिखाई दे रही, तो वहीं इस बार रिकॉर्ड पर्यटक जो है 10,000 से अधिक पर्यटक अब तक फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं।
0: यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल फूलों की घाटी हमेशा से प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद रही है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि पिछले साल 13 जुलाई तक फूलों की घाटी में 5,490 सैलानी पहुंचे थे। ये संख्या इस साल दोगुनी हो गई है। इतनी संख्या में सैलानियों के आने से सरकारी खजाने को भी फायदा हुआ और इस साल अब तक 20 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या और आय दोनों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
2: यहाँ पे आने वाले पर्यटकों की जो संख्या थी वो 11,080 पर्यटक थे और हमारे पास इन पर्यटकों से जो आय प्राप्त हुई है वो है 20,16,250। इसके साथ ही हमारे पास जो विदेशी पर्यटक हैं वो 45 रहे इस सीजन में अभी तक। अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो पिछले साल हमारे पास अभी तक 13 जुलाई 2025 तक आने वाले जो पर्यटकों की संख्या थी वो 5,490 थी, जो कि इस बार जो पर्यटकों की संख्या वो लगभग हमारी दोगुनी हो चुकी है और जो आय थी पिछले साल वो भी 11,11,950 रुपये थी।
0: फूलों की घाटी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ केवल एक तरह के ही फूल नहीं खिलते, बल्कि पूरी घाटी में 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ फूल भी शामिल हैं। हर 15 दिन बाद यहाँ नई किस्म के फूल खिलते हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नजारा लगातार बदलता रहता है। फूलों की घाटी का यही बदलता स्वरूप यहाँ आने वाले सैलानियों को खूब भाता है। इस खूबसूरती को यादों में सजोने के लिए कोई यहाँ सेल्फी लेता है और कोई दुर्लभ फूलों की तस्वीरें खींचता है।
3: हम लोग ओडिशा से आए हैं, हमारा टीम है, 6 लोगों का टीम है, आए थे इस वैली ऑफ फ्लावर्स के, अभी नीचे आए, अच्छा लगा।
4: हम लोग बहुत एंजॉय किए, ट्रैकिंग इजी टू मॉडरेट था,
3: पहली बार था हमारा, अच्छा लगा,
4: पहला ट्रैक था हमारा, मजा आ रहा है और सबको बोलेंगे कि एक बार
3: ट्राई करना चाहिए।
0: रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि जुलाई अगस्त में घाटी में फूलों के खिलने का चरम समय होता है, इसलिए हर साल इस दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। अनुमान यह है कि अगर मौसम सही रहा तो इस साल फूलों की घाटी पर्यटकों की संख्या के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
2: इस बार फूलों की घाटी में अच्छे खिले हैं, कैंपेनुला लैटिफोलिया, पोटेंटिला, जिरेनियम और रोडोडेंड्रॉन, लैपिडोटम, बिस्टोटा, पेडिकुलारेंस, काफी प्रजातियों में काफी अच्छा फ्लावरिंग हुई है जो पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।
0: फूलों की घाटी में सैलानियों की बढ़ती संख्या का फायदा यहाँ के होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट, पोर्टर और घोड़ा खच्चर मालिकों को भी मिल रहा है। यानी स्थानीय रोजगार भी फूलों की घाटी की वजह से तेजी से फल फूल रहा है। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: आज पुरी में शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, कंट्रोल रूम से रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। गुजरात के डाकोर में उमड़ा आस्था का मेला, धूमधाम से निकली भगवान रणछोड़ राय की रथ यात्रा, भजन मंडलियों ने बांधा समा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में पढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन हुआ लॉन्च, टेस्टिंग के फीडबैक के बाद पोर्टल में किए जाएंगे सुधार। ICC ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट किया डिसाइड, वनडे वर्ल्ड कप में अब होंगे सुपर सीरीज और सुपर सेवन राउंड, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और IPL की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी
9: बात करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की, महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगी और यात्रा शुरू होने से पहले पूजा पाठ के लिए तीनों रथों को मुख्य मंदिर के द्वार तक पहुंचा दिया गया है, जिन पर सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान होंगे। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है और देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं।

0: महाप्रभु जगन्नाथ अब से कुछ ही घंटों बाद अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त अब उस ऐतिहासिक और पावन क्षण का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं जब प्रभु अपने भक्तों के बीच विराजमान होंगे। महाप्रभु की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य रथ मंदिर के बाहर सज धज कर तैयार है। वहीं उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सजा दिए गए हैं।
1: प्रभु जगन्नाथ जी का सकाल धूप खिचड़ी भोग के बाद में प्रभु जगन्नाथ जी से शरीर से आज्ञा माला कर तीनों रथों को अभी सिंह द्वार पर रथ खड़ा से सिंह द्वार खींचा हुआ अभी नंदगेश रथ लग गए हैं और उसके बाद में माता सुभद्रा जी का आएगा, उसके बाद में बलदाव जी का रथ आएगा। ये रथ यात्रा के लिए शुभ संकेत है, बहुत पाग अनुकूल है, मौसम भाई बहुत अच्छा है। जगन्नाथ की कृपा से काल जो रथ यात्रा होगा ये जिला प्रशासन राज्य सरकार और सेवायत के लिए बहुत कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा रथ यात्रा होगा।
0: प्रभु के नगर भ्रमण पर आने की खुशी में उनकी नगरी पुरी भक्ति के रंग में सराबोर है। ढोल मंजीरे और कीर्तन की गूंज के बीच श्रद्धालु गली गली जय जगन्नाथ का जय घोष कर रहे हैं। भजन कीर्तन से पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो उठा है। चारों तरफ गूंजती प्रभु भक्ति की मधुर ध्वनि हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है और इस दिव्य उत्सव में शामिल होने का मानो निमंत्रण दे रही है।
2: भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की अहेतु की कृपा है कि यहाँ चराचर के मृतलोक के प्राणी तो आते ही आते हैं, यह जगत विदित है, लेकिन उससे अनोखी बात यह है स्कंद पुराण में इसकी महिमा वर्णित हुई है कि देवलोक से देवता भी आते हैं।
3: हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। हम फर्स्ट टाइम यहाँ रथ यात्रा में आए हैं, मेरा घर वाराणसी में है और मैं हैदराबाद में रहकर काम करता हूँ।
4: बहुत अच्छा लग रहा है, रथ यात्रा के लिए आया हूँ, पहली बार आए हैं यहाँ पे। बहुत सौभाग्य था कि मेरा एग्जाम अभी था तो एग्जाम के बहाने इधर रथ यात्रा देखने को भी मिल गया मुझे।
5: अगर हम भगवान को नहीं भी देख पाएंगे तो वो तो हमें देख ही पाएंगे, देख ही लेंगे, उन्हें पता है कि ये लोग आए हुए हैं। तो वी आर सो एक्साइटेड दैट ऑल द रथ आर वेरी कलरफुल एंड वी हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी।
0: गुरुवार सुबह भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के बीच जाएंगे। मान्यता है कि रथ यात्रा का ये पावन अवसर वो दुर्लभ क्षण होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार उन्हें दर्शन देने पहुंचते हैं, इसलिए इस दिव्य आयोजन को भक्त और भगवान के महामिलन का पर्व भी कहते हैं।
6: भगवान का मिलन के लिए अब पूरा विश्व तैयार है, अब पूरी में तीनों रथ भी तैयार हैं, भगवान तैयार हैं और भक्त भी तैयार हैं, सब मिलन के लिए, ये अपूर्व मिलन के लिए सब एक ही वही मोमेंट के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रथ, अब तीनों रथ ताला ध्वज नंदी घोष दर्प दलन तीनों रथ अब तैयार हो चुके हैं और कल जुलाई 16 तारीख को रथ खींचा जाएगा और भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया ये रथ के ऊपर विराजमान होंगे, दर्शन देंगे।
0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि रथ यात्रा से पहले पूरी तरह भक्तिमय हो चुकी है। कल रथ यात्रा का आरंभ होगा और महाप्रभु जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर पारंपरिक शैली में रथों तक पहुंचाया जाएगा। उससे पहले भगवान की मंगला आरती होगी और फिर भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही महाप्रभु नगर भ्रमण पर निकलेंगे।
1: अभी भगवान का सकल खिचड़ी भोग होता है, खिचड़ी भोग खत्म होने के बाद भगवान महाप्रभु का आज्ञामाल वो तीन रथ में आएंगे, वो आज्ञामाल लगने के बाद तीन रथ हाँ रथ खला में जाएंगे हमारा सिंहद्वार में, और सिंहद्वार में कल सुबह रात 4 बजे मंगला आरती होगा, इसका अवकाश होगा, इसके बाद महाप्रभु का खिचड़ी भोग होगा, मंगला अर्पण होगा, 8:30 बजे भगवान मैया निकलेंगे तीन रथों में, एक धाड़ी पांडी होकर आएंगे, पहले सुदर्शन महाप्रभु आएंगे, इसके बाद बलभद्र महाप्रभु आएंगे, इसके बाद माँ देवी सुभद्रा और सब लास्ट में जगन्नाथ महाप्रभु।
0: एक तरफ भक्ति के मधुर स्वर गूंज रहे हैं तो दूसरी तरफ महाप्रभु के रथ को मोटी मोटी पवित्र रस्सियों से बांधा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं रस्सियों के सहारे लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य का रथ खींचेंगे।
6: तीनों रथ में ये दिखाना चाहूंगा आपको कि तीनों रथ अब बनकर पूरा तैयार हो चुके हैं। रथ का रस्सी भी यहाँ रखा गया है। रथ में खींचने के लिए जो रस्सी व्यवहार होता है, ये रस्सी अब तैयार है, रथ भी अभी तैयार है, भक्त तैयार है।
0: मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होकर महाप्रभु के दर्शन कर और उनके रथ की रस्सी को स्पर्श कर श्रद्धालु स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। श्रद्धा और भक्ति की एक अद्भुत मिसाल ये भी है। मिनिएचर आर्टिस्ट अलेश्वर राव ने पूरी रथ यात्रा के लिए सुपारी पेड़ के पत्तों से तीन रथ बनाए हैं, जिनकी ऊंचाई 5 इंच है। इन रथों में कागज से बने छोटे घोड़े और कलश के साथ सुवा भी शामिल है। रथों पर विराजमान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता जी की मूर्तियाँ 1 इंच ऊंची नीम की लकड़ी से बनाई गई हैं। रथ यात्रा से पहले ग्रैंड रोड को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। पूरे रथ मार्ग पर 13,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों का पहरा रहेगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा, यातायात और आपदा प्रबंधन की विशेष व्यवस्था भी की गई है।
7: 22 को सुपरवाइज करने के लिए लगे हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है। 450 से ज्यादा नजर रखा है ये शहर के ऊपर, का जो पथ है बड़ोदा इसके ऊपर। हमारा जो बैकअप सपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इंफॉर्मेशन हम कैसे भक्त जनों के पास पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक तो पूरी पुलिस का जो चैटबॉट है, एप्लीकेशन है, उसको भी लोगों को जानकारी के लिए हम दे रखे हैं। दूसरी बात है, हम लोग 65 जगह होली भी जिससे में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये जगह खाली पूरी शहर के अंदर नहीं है, भुवनेश्वर घूमने को तक है।
0: ये रथ यात्रा पुरी के शिव मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक होगी, उसके बाद गुंडीचा से शिव मंदिर वापस आएगी। ऐसे में जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा मार्ग से लेकर समंदर और सड़क तक सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद किया गया है। सबकी निगाहें उस शुभ घड़ी पर टिकी हैं जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और जैसे ही रथों के पहिए आगे बढ़ेंगे, पूरा पुरी धाम जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठेगा। ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और एकता का महाउत्सव भी है। यहाँ राजा हो या रंक, देसी हो या विदेशी, सभी एक साथ महाप्रभु के रथ की रस्सी खींचते हैं। महाप्रभु के सामने सभी बराबर हैं। हर श्रद्धालु महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की सेवा को अपना परम सौभाग्य मानता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ हो गया है। अबुधाबी के लिए पहली सेवा शुरू कर दी गई है। आज एयरपोर्ट पर लैंड हुए इंडिगो एक्सप्रेस के विमान को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। चलते न्यूज एक्सप्रेस वे पर जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
9: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, जहां कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई। 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1,365 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वाराणसी के लिए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर्स को भी मंजूरी दे दी गई है। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने और कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक अहम MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के जरिए दिल्ली की डेयरियों और गौशालाओं से निकलने वाले गोबर का इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य डेयरियों से निकलने वाले कचरे और गोबर को नालियों या यमुना नदी में जाने से रोकना है। इससे न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यावरण सुरक्षित होगा, साथ ही साथ पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महीने के अंदर ही 61,000 यात्रियों ने उड़ान भरी। अभी 15 शहरों के लिए फ्लाइट्स मिल रही हैं। 15 जून से एयरपोर्ट संचालन शुरू हुआ था। जिसमें जून के आखिरी 15 दिनों में 27,841 यात्रियों ने उड़ान भरी, जबकि जुलाई के पहले 13 दिनों में ही 33,446 यात्रियों ने एयरपोर्ट का उपयोग किया। 10 जुलाई को सबसे ज्यादा 3,255 यात्रियों का आवागमन हुआ। अब भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के बाद यात्रियों की संख्या में और तेजी से वृद्धि होने का अनुमान जताया जा रहा है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू कर दी हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अबू धाबी के लिए पहली विदेशी उड़ान का संचालन किया। करीब 100 यात्रियों को लेकर ये उड़ान सुबह 2:55 पर रवाना हुई। इसने लगभग 2.5 घंटे में संयुक्त अरब अमीरात के अबूधाबी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबूधाबी से आने वाली पहली फ्लाइट नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जिसे हवाई अड्डे पर भव्य वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में नई पहल की शुरुआत हुई है। सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भावना दीदी की साइंस पाठशाला को हरी झंडी दिखाई है। एक तरह की निशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब है। ये लैब पंडरिया इलाके में स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी महानगरों की तर्ज पर आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक करना है, जिससे वो आने वाले तकनीक युग के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके।
8: रिलीज हुआ फिल्म तेरा यार हूं मैं का मैंने दिल तुझको दिया गाना। इसी के साथ ऐसी और कई खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
10: फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया और वाइब्रेंट डांस गाना रिलीज किया गया है। फिल्म की लीड जोड़ी अमन इंद्र कुमार और आकांक्षा शर्मा पर फिल्माए गए इस मैंने दिल तुझको दिया गाने को नकाश अजीज ने गाया है। इस गाने के बोल इंद्र कुमार ने लिखे हैं, जबकि संगीत संजीव दर्शन ने दिया है। मिलाप मिलन जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा यार हूँ मैं में परेश रावल, जॉनी लीवर, सुप्रिया पिलगांवकर, मृणाल कुलकर्णी, नेहा खान, पूजा कतुरड़े, आनंद आचार्य और दर्शन जरीवाला भी हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
11: हनुमान जी के भक्त तो निडर होते हैं।
10: फिल्म हनुमान अंश का नया भक्ति गीत जय हनुमान रिलीज कर दिया गया है। श्रेयस धर्माधिकारी के गाए और कंपोज किए इस गाने को ऋषि पाठक और श्रेयस धर्माधिकारी ने लिखे हैं। ये गाना फिल्म की आध्यात्मिक दुनिया को दर्शाता है। विशाल चतुर्वेदी लिखित और निर्देशित फिल्म हनुमान अंश में शोभिनव सत्या, विहान शेडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी और गुलशन पांडे मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 31 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
12: मैं सुनया इश्क कमजोर बना देता है, पर मेरे इश्क ने मेनू ताकत दिती है।
10: शहनाज गिल और जय रंधावा की पंजाबी फिल्म इश्क नामा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।
12: उठा के ओदी आंखां चखां पा के पुछया कि दस,
10: जिसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी, सुकून का एहसास कराने वाला संगीत के साथ ही भावनाओं से भरपूर दृश्य देखने को मिलते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर आधारित निम्मा और नसीमा की सच्ची प्रेम कहानी से प्रेरित है।
13: किधर उड़ गया फिरदा तितरा, सीधा दस कौन है तुम?
12: आंख देख के पता नहीं लगा, चढ़ दे पंजाब।
10: ये फिल्म मशहूर किताब हिंद पाक बॉर्डर नामा पर आधारित है, जिसमें सौरभ सचदेवा भी अहम भूमिका में है। अरविंदर एस खैरा के निर्देशन में बनी फिल्म इश्क नामा 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
14: ओ खान दी भेणे ते सिद्धी मौत ए खान,
12: हल इक्को ही है
14: की
12: चक्का गंडासी ते वड़दियां खान ते खान दे लोंग लाने ना।
8: न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
9: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये माँ सर आइज़क न्यूटन से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को भरपूर प्रोटीन खिलाने के लिए माँ ने जो तरकीब भिड़ाई है, ऐसा प्रयोग तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। माँ ने बच्चे को लुभाने के लिए धागे से एक चॉकलेट का टुकड़ा बांध दिया और उसे प्रोटीन मिक्स मटेरियल के कटोरे में डाल दिया। बच्चे को चम्मच में खाने वाले पदार्थ के साथ चॉकलेट का टुकड़ा दिखता है, वो मुंह खोलता है और तभी धागे से बंधा वो टुकड़ा फिर कटोरी में गिरा दिया जाता है और इस तरह बच्चा उस टुकड़े के लालच में पूरा खाना खा जाता है। यूजर्स वीडियो को देखकर माँ की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन माओं को सलाह दे रहे हैं जिनके बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं और ये तस्वीरें देखकर वो इससे सीख ले सकते हैं। शैतान कौए की कारस्तानी की तस्वीरें देखिए जरा। कौआ सफेद बिल्ली की पूंछ में चोंच मारता नजर आ रहा है। बिल्ली ने सोचा कि दूसरी काली बिल्ली ने शरारत की है, बस फिर क्या था, दोनों लड़ पड़ती हैं। इधर कौआ फिर आकर चोंच मार देता है, लेकिन तभी एक सफेद कुत्ते की एंट्री होती है और उसके बीच में पड़ने पर कौआ तो उड़न छू हो जाता है और बाकी दोनों बिल्लियां अपने रास्ते भाग लेती हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। फुटबॉल की क्रेज के बीच ये वायरल तस्वीरें देखिए और फैसला करिए कि आपकी नजर में ये गोल हुआ है या नहीं। यकीनन आप कहेंगे कि गोल तो हुआ है, क्योंकि गोल करने वाला खिलाड़ी कैसे गोलकीपर को कंफ्यूज करता है और आसानी से गोल दाग देता है कि गोलकीपर हक्का बक्का रह जाता है ना कमाल की तस्वीरें। अब यूजर्स गोलकीपर का चेहरा देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। दादी माँ और पोते की तस्वीरें लोगों को खूब भा रही है। जरा देखिए कि कैसे एक ही फ्रेम में दो अलग अलग उम्र के लोग आमने सामने बैठे हैं। एक दादी माँ है और एक 4-5 महीने का बच्चा, दोनों दांत विहीन एक दूसरे के साथ जिस तरह से आनंद ले रहे हैं, यूजर्स उन्हें देखकर आनंदित हो रहे हैं।
8: और न्यूज पथ के सफर में अब आगे सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की। इन दिनों इस ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का पद खाली है, इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। अयोध्या के रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के महज 24 घंटे के भीतर 1000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए आवेदन करने वालों में प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग, सामाजिक संगठनों के अनुभवी कार्यकर्ताओं के अलावा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर चर्चा में रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी इस पद के लिए आवेदन करने की सार्वजनिक घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 14 जुलाई से हुई है, जिसके बाद देश भर में अभ्यर्थी सीईओ पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 18 जुलाई है। ट्रस्ट की चयन समिति 19 जुलाई को बैठक कर सभी आवेदनों की प्रारंभिक जांच और छटनी करेगी और इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि 22 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ का चयन पर अंतिम मोहर लग सकती है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट को एक ऐसे सीईओ की तलाश है जो कि मंदिर प्रशासन के कामकाज को बेहतर तरीके से संभाल सके और श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करने का काम करे। ट्रस्ट के इस कदम को लेकर हमने अयोध्या में लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
15: ऐसा होना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कोई भी इस तरह वारदात न हो फिर से, और जो उनका पहले का जो फीडबैक है काम करने का, जो भी जहाँ से उनका एजुकेशन से लेके जहाँ तक रहे हों, तो उनके बराबर मॉनिटरिंग करके फिर बनाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि भगवान राम के इस क्षेत्र में जो भी रहते हों, बाहर से लोग आते हैं तो उनके आदर्श के बारे में सोचते हैं कि वो कितने मर्यादित थे, कभी उन्होंने चोरी नहीं किया, कभी गलत नीति पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, है ना। तो भगवान के तो आदर्श पे जीना चाहिए, खासकर भगवान।
16: सीईओ की नियुक्ति की बात आ रही है, वो सीईओ की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसा आदमी बनना चाहिए?
15: वो ईमानदार होना चाहिए पूरी तरह से, एक ईमानदार अफसर होना चाहिए।
17: सीईओ हो जो जानकारी रखे चारों तरफ, और सीईओ पूरा ईमानदार अगर वहां से रहेगा तो नीचे तक ईमानदारी आएगी। और ये घटना जो है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, तो यही आशा की जा रही है कि ऐसा हो कि यहाँ ईमानदारी से चले, जो इतना खर्चा किया गया है और इतनी भावना जुड़ी है लोगों की यहाँ से, तो यहाँ से मर्यादा का बिल्कुल ही उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा सीईओ हो कि जो कड़ी से कड़ी सजा रखे ऐसे लोगों के लिए, ताकि उनको डर रहे कि ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा सीईओ आए कि जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रखे ऊपर से नीचे तक लोगों को।
18: मुझे नहीं लगता है, मानव अपने नेचर से जो है हर जगह गंदगी फैला सकता है। तो आप किसी को भी बैठाइए, कोई उसका निकलने वाला हल नहीं है।
19: तो कैसी चीजें बेटर होगी?
18: ये तो आदमी खुद सोचे, जिनको वहाँ बैठाया जा रहा है वो सोचे कि हम किस पद पे हैं और क्या कर रहे हैं। ये तो अंदर से उनकी आवाज आएगी तभी कुछ हो सकता है, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आप किसी को भी बैठाइए।
20: नहीं, मेरे हिसाब से भी वही है, इंसान को खुद चेंज होना पड़ेगा। ऐसे किसी के बैठने से और कंटिन्यूसली मॉनिटर करने से अगर चीज़ें बदलती तो बहुत चीज़ें बदल जाती। वैसे इंसान को खुद ही चेंज होना पड़ेगा।
21: आई फील ये सिविक सेंस और वो खुद में समझदारी होना कि आप किस जगह काम कर रहे हैं,

0: चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह इस टाइप की एडमिन में, एडमिन से रिलेटेड होनी चाहिए। कुछ कॉमर्शियल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि ये चोरी जिस तरह से हुई उसको कंट्रोल करना, बैंकिंग फंडामेंटल्स भी का नॉलेज उनको होना चाहिए। हाँ, फाइनेंस रिलेटेड
1: आदमी बैठा होता तो नहीं होती चोरी यहाँ।
0: नहीं, बैकग्राउंड उसका अच्छा होता तो क्यों नहीं, शायद इतनी इस तरह से तो नहीं होती जिस तरह से हुआ है।
2: हो सकता है, नीट एंड क्लीन आदमी हो तो अच्छा तो हो ही सकता है, क्योंकि पीछे उनका बैकग्राउंड बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए, सब नॉलेज होना चाहिए। तो इतनी पब्लिक आए, कोई परेशानी का मतलब लोग बोले कि भाई ऐसा के चोरी हुई, ये हुआ वो हुआ, तो अपना भी सब नाम खराब हुआ कि भाई हाँ ऐसा हुआ। तो सीओ ऐसा होना चाहिए।
3: देखिए, बेहतर तभी होगा जब ये आप ब्यूरोक्रेट्स, अगर जैसे इसकी चुनने की जो प्रक्रिया होगी वो अब पहले की अकॉर्डिंग, इसमें जो अनैतिकता जो भरी हुई है वो ठीक किया जाएगा, तभी ब्यूरोक्रेट्स कुछ अच्छे से काम कर पाएंगे। वैसे उम्मीद नहीं है कि सुधर पाएगी।
4: ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 होगा एकदम अनोखा और रोमांचक। आईसीसी लेकर आया है नई सुपर सीरीज और सुपर सेवन फॉर्मेट। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
5: आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे तीन चरणों में बांट दिया है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें सुपर सीरीज और सुपर सेवन जैसे नए राउंड से गुजरना होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में सबसे कम रैंकिंग वाली तीन क्वालिफाइड टीमों के बीच एक सुपर सीरीज होगी। इस फेज से केवल शीर्ष पर रहने वाली टीम यानी नंबर वन टीम ही मुख्य टूर्नामेंट में जगह बना पाएगी, जबकि बाकी दो टीमें बाहर हो जाएंगी। सुपर सीरीज से आई एक टीम और बाकी बची 11 टीमें यानी कुल 12 टीमों को 6-6 के दो समूहों में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह से शीर्ष तीन तीन टीमें और दोनों समूहों में चौथे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ टीम अगले दौर के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरे राउंड में कुल 7 टीमें पहुंचेंगी और इसे सुपर सेवन नाम दिया गया है। सुपर सेवन में शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 4 टीमें अंत में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में इतिहास रचते हुए एक अनूठा तिहरा कीर्तिमान बना दिया है। बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स यानी टेस्ट में 200 से ज्यादा, वनडे में 150 से ज्यादा और T20 में 100 से ज्यादा विकेट लेकर सभी में विकेटों का शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने लगभग 968 दिनों के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैच के दौरान इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक का विकेट लेते ही उनके वनडे करियर के 150 विकेट पूरे हो गए। इसके साथ ही इंग्लैंड की धरती पर बुमराह के 31 विकेट हो गए हैं और उन्होंने रविंद्र जडेजा के 30 विकेट को पीछे छोड़कर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। मुंबई इंडियंस का कप्तान बदला जा सकता है और इस पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी का मैनेजमेंट कप्तानी और कोचिंग स्टाफ में भारी फेरबदल करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या से कप्तानी वापस ली जा सकती है और उनके टीम से बाहर होने की भी पूरी संभावना है। हार्दिक के बाद कप्तानी की रेस में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर अंतिम और आधिकारिक फैसला मैनेजमेंट की आगामी रिव्यू मीटिंग में लिया जाएगा।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: Summer hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
8: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, क्या है सूर्य।

0: सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: आज पुरी में शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, कंट्रोल रूम से रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। गुजरात के डाकोर में उमड़ा आस्था का मेला, धूमधाम से निकली भगवान रणछोड़ राय की रथ यात्रा, भजन मंडलियों ने बांधा समा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन हुआ लॉन्च, टेस्टिंग के फीडबैक के बाद पोर्टल में किए जाएंगे सुधार। ICC ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट किया डिसाइड, वनडे वर्ल्ड कप में अब होंगे सुपर सीरीज और सुपर सेवन राउंड, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और IPL की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
4: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी पर पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी जो है कई बार सच और झूठ की रेखा को लांघ जाती है, कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ती जाती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियोस जो हैं चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: देखिए, सोशल मीडिया पर दो वीडियो खूब तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि ये दोनों वीडियोस चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
5: चीन की सेना के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के दावे से दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिकों को मार्च करते हुए देखा जा रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में हथियारबंद सैनिकों को ट्रक से उतरते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियो चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वायरल पोस्ट को शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, चीन की सेना 60 किलोमीटर भारत के अंदर घुस आई। वहीं एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, चीन ने भारत पर 60 किलोमीटर का कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: देखिए, सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियोस धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं। पहले वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिकों को मार्च करते हुए देखा जा सकता है, वहीं पर दूसरे वीडियो में हथियारबंद सैनिकों को ट्रक से उतरते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियोस चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, 60 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने दोनों वीडियो की जांच की, तो देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे दोनों वीडियो को गौर से देखा और सुना। दोनों वीडियो के बैकग्राउंड में आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो यह चीन की आधिकारिक भाषा यानी मैंड्रिन जैसा नहीं हमको सुनाई दिया, यह कोई और भाषा थी। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने फिर से दोनों वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान दूसरे वीडियो में जवानों के यूनिफॉर्म पर गया। जब हमने इसे गौर से जूम करके देखा तो ये थाईलैंड के झंडे जैसा नजर आया। इसके अलावा सर्च के दौरान ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि सरकार और भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि चीनी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए। ये रिपोर्ट गलत है और इनका कोई आधार नहीं है। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा, तो पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल हो रहे दोनों वीडियोज के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर दोनों वीडियोस के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
5: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने दोनों वीडियो की बारी बारी से पड़ताल की। पहले वीडियो का सच जानने के लिए सबसे पहले हमने इसके कई की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो थाईलैंड के फेसबुक पेज पर 16 जून 2026 को शेयर किया हुआ मिला। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो थाई सेना का है। इसमें दूसरी रेजिमेंट की 3rd बटालियन के नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के जवानों की ट्रेनिंग को दिखाया गया है। पेज पर थाई सेना और उसकी ट्रेनिंग से जुड़ी कई और पोस्ट भी मौजूद हैं। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि थाई सेना के ट्रेनिंग के कई वीडियो यहां मौजूद हैं। जवानों को वायरल वीडियो में जो झंडा पकड़े हुए दिखाया गया है उसी हूबहू झंडे को इस पेज पर मौजूद कुछ वीडियो में भी जवानों को पकड़े हुए देखा जा सकता है। दूसरे वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने इसके कई की फ्रेम निकाले और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो थाईलैंड के कई टिकटॉक यूजर्स की प्रोफाइल पर मिला। भारत में प्रतिबंधित होने की वजह से इन वीडियो को हमने एक्सप्रेस वीपीएन टूल की मदद से चेक किया। एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए थाई आर्मी का बताया, जिसमें ट्रक से उतर रहे सभी जवानों के यूनिफॉर्म पर थाईलैंड के झंडे को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि भारतीय सेना भी अपने आधिकारिक फैक्ट चेक अकाउंट से इस दावे का खंडन करते हुए इसे थाई आर्मी का बताया है। यानी दोनों ही वीडियो का भारत चीन मामले से कोई संबंध नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के घुसपैठ करने का दावा फेक है और इस दावे से वायरल हो रहा वीडियो थाईलैंड की आर्मी का है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भारतीय सेना ने भी चीन के घुसपैठ के दावे का खंडन किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: देखो, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
6: सोशल मीडिया पर मानव पिरामिड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मानव पिरामिड बनाया है। कुछ ही देर में यह पिरामिड डगमगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद संभल जाता है और लोग गिरने से बच जाते हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मानव पिरामिड तेज हवा में डगमगाने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कोई भी नीचे नहीं गिरा। क्या आप इस मानव पिरामिड के सबसे ऊपर खड़े होने की हिम्मत करेंगे? वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मानव पिरामिड बनाया है। कुछ ही देर में यह पिरामिड डगमगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद संभल जाता है और लोग गिरने से बच जाते हैं। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो की जांच की, तो देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर की फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कोई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने ये पाया कि पिरामिड बनाने वाले लोग अजीब तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं। जब ये मानव पिरामिड हिलने लगता है तब सभी लोग अस्वाभाविक तरीके से बिल्कुल हिलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई हाल फिलहाल में प्रमाणिक रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। देखिए पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो सच्चा है तो उसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें क्यों नहीं मिली। दूसरा ये कि कहीं एडिटेड मॉफ्ट वीडियो को वायरल करके गुमराह तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी अस्वाभाविक चीजें नजर आईं, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। लिहाजा पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स के जरिए जांचा गया। हमने हाई मॉडरेशन का इस्तेमाल किया। इस टूल ने वीडियो के AI से बने होने की करीब 100% संभावना जताई। इस टूल के एनालिसिस के मुताबिक इस वीडियो को सीडेंस 2 मॉडल की मदद से बनाए जाने की संभावना अधिक है, जो AI वीडियो जनरेट करने वाला एक टूल है। हमने एक दूसरे टूल undetectable.ai की मदद से भी वायरल वीडियो को सर्च किया। इस टूल ने भी वीडियो के 97% तक AI से बने होने की संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले, फिर इन्हें सर्च किया गया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 9 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ AI की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि मानव पिरामिड का वायरल हो रहा वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: फिलहाल ले रहा है छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
4: और इसी के साथ वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
8: इंटरनेट पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं। ये वीडियो एक माँ और उसके एक साल के बच्चे के उस खूबसूरत रिश्ते को दिखाता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपने एक साल के बच्चे को बिस्तर पर लेटाने की कोशिश कर रही है, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़ती है। चोट इतनी तेज थी कि मां दर्द से कराते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी का दिल जीत लिया। अपनी मां को दर्द में देखकर वो छोटा सा बच्चा फौरन अपनी जगह से उठा और बिना देर किए अपनी मां की तरफ भागा। आमतौर पर इतने छोटे बच्चे खुद गिरने पर रोने लगते हैं, लेकिन यहां नन्हे बच्चे ने अपनी मां के दर्द को महसूस किया। वो रेंगते हुए अपनी मां के पास पहुंचा और अपने छोटे छोटे हाथों से मां के सिर को बड़े प्यार से सहलाने लगा, मानो वो कह रहा हो, माँ रो मत, मैं हूँ ना। बच्चे का ये निस्वार्थ प्यार और उसकी मासूमियत देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंख भर आई।
9: हेलो गाइस, ये मेरी परदादी और अभी 90 ईयर्स की हो चुकी है।
10: 90।
8: सोशल मीडिया पर 90 साल की बुजुर्ग परदादी और उनके छोटे से परपोते का एक बेहद ही इमोशनल और प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे की जिद पर दादी ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया।
10: सुनो सया, हम का बोला वो सनकार के नहीं और गए
9: पूरा गांव
10: पूरा गए।
8: दोनों के बीच का प्यार और मासूमियत लोगों को बहुत पसंद आ रही है।
9: दादी बस आप गाना गाओ।
8: चलती ट्रेन में पूजा पाठ और हवन का ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। वायरल वीडियो में एक पुजारी ट्रेन के फर्श पर हवन कुंड रखकर रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहा है। चलती ट्रेन में हवन कुंड चलता देख लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे और देखते ही देखते ये मामला बड़ा विवाद बन गया। इंटरनेट पर भारी बवाल मचने के बाद उत्तर रेलवे ने एक बयान जारी कर स्थिति साफ की है। रेलवे के मुताबिक ये पूजा किसी सामान्य डिब्बे जैसे जनरल, स्लीपर या एसी कोच में नहीं हो रही थी। ये एक पूरी तरह से प्राइवेट कोच था जिसे एक यात्री ने विशेष यात्रा के लिए बुक किया था। इस विशेष कोच को 10 जुलाई को नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12926 में जोड़ा गया था। रेलवे ने ये भी साफ किया कि इस यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन किया गया है और किसी तरह की अनहोनी या दुर्घटना की कोई खबर नहीं है। सैलून कोच आम ट्रेनों के डिब्बों से बिल्कुल अलग होते हैं। इन्हें पटरी पर दौड़ता हुआ 5-स्टार होटल भी कहा जाता है।

हाथों में हथियार और चेहरों पर मुस्कान लिए जवानों का ये अंदाज उनके हौसले, भाईचारे और देशभक्ति की खूबसूरत झलक दिखाता है। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए जरा, कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। यही होता है कि बाढ़ जैसी हालात में लोग सड़कों से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तक्ष ने स्थिति का फायदा उठाते हुए जो किया वो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर भारी बारिश के कारण काफी पानी भरा हुआ है और पानी का बहाव भी बना हुआ है। तभी अचानक एक शख्स हाथ में एक बड़ा फॉर्म का टुकड़ा लेकर आता है और वो बड़े आराम से उस फॉर्म को सड़क के पानी पर बिछाता है और उस पर लेट जाता है। जैसे ही वो फॉर्म पर लेटता है, पानी का बहाव उसे एक नाव की तरह धीरे धीरे आगे की ओर ले जाने लगता है। वो शख्स बिना किसी डर या हिचकिचाहट के मजे से लेटा रहता है, मानो वो किसी एडवेंचर ट्रिप पर हो। शख्स का ये अंदाज देखकर वहां मौजूद राहगीर भी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने तुरंत अपने फोन निकाल कर इस नज़ारे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो यूजर्स का खूब ध्यान खींच रहे हैं। एक महिला ने प्यास से परेशान एक लंगूर की मदद करके हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंगूर काफी देर से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने एक नल मौजूद है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। बंदर बार बार नल को छूता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो काफी देर से प्यासा है और किसी तरह पानी पीना चाहता है। उसी दौरान वहाँ मौजूद एक महिला की नज़र उस लंगूर पर पड़ती है। वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास जाती है। महिला को देखकर लंगूर भी कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करता। महिला तुरंत नल खोल देती है और इस तरह पानी पीने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ की मदद से बंदर को आराम से पानी पीने देती है। वीडियो में सबसे खास बात यह है कि लंगूर पूरे समय बिल्कुल शांत रहता है। वो आराम से पानी पीता है और महिला पर पूरा भरोसा करता हुआ नजर आता है। वहीं महिला भी पूरे धैर्य और प्यार के साथ उसकी मदद करती है। दोनों के बीच का ये भरोसा और अपनापन लोगों को काफी भावुक कर रहा है।

और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सैंटोस और उनकी K9 पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से ये दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मोमेंट करते हैं, कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच के गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनकी इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी है कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलैन के नाम से जानते हैं। हुआ यू के एनरिचमेंट सेशन के दौरान कैटेकर ने थोड़ी सी मस्ती करने की सोची। उन्होंने एक विग पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलैन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि आखिर केयरटेकर करने क्या वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विग को हवा में उछाल दिया और अचानक उसका चमकता हुआ गंजा सिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आए ट्विस्ट को देखकर मैंगलैन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे कि जैसे वो पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू हुआ कैसे। वो इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो ये प्रैंक किया, उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
1: Come see.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर चमोली जिले में मौजूद यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक का धरोहर फूलों की घाटी में इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे। सीजन शुरू होने के बाद से अब तक 11,000 से ज्यादा सैलानी फूलों की घाटी की सैर कर चुके हैं और देखिए जिससे सरकारी खजाने को 20 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है।

0: बादलों से घिरे पहाड़, हरी भरी वादियाँ और इन वादियों के दामन में खिले एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूल। ये किसी चित्रकार या फिर किसी कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो इन दिनों अपनी बेपनाह खूबसूरती से देखने वालों का मन मोह ले रही है, खासकर उन सैलानियों का जो इस खूबसूरती का दीदार करने के लिए देवभूमि में मौजूद फूलों की घाटी पहुंच रहे हैं। इस साल 1 जून को फूलों की घाटी के द्वार पर्यटकों के लिए खोले गए थे, तब से अब तक यहां 11,000 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है।
1: विश्व धरोहर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार दिखाई दे रही है। फूलों की घाटी का मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है और इस दौरान मानसून होने के साथ ही जो घाटी का दायरा है वो हर तरफ अलग अलग रंग के अलग अलग किस्म की जो प्रजातियां हैं यहाँ पे खिली हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी अब फूलों की घाटी पूरी तरह से यहाँ पे खिल चुकी है, हर तरफ पर जो प्रकृति का यौवन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने आप में बेहद खूबसूरत फूलों की घाटी दिखाई दे रही। तो वहीं इस बार रिकॉर्ड पर्यटक जो है 10,000 से अधिक पर्यटक अब तक फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं।
0: यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल फूलों की घाटी हमेशा से प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद रही है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि पिछले साल 13 जुलाई तक फूलों की घाटी में 5,490 सैलानी पहुंचे थे। ये संख्या इस साल दोगुनी हो गई है। इतनी संख्या में सैलानियों के आने से सरकारी खजाने को भी फायदा हुआ और इस साल अब तक 20 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या और आय दोनों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
2: यहाँ पे आने वाले पर्यटकों की जो संख्या थी वो 11,080 पर्यटक थे और हमारे पास इन पर्यटकों से जो आय प्राप्त हुई है वो है 20,16,250। इसके साथ ही हमारे पास जो विदेशी पर्यटक हैं वो 45 रहे इस सीजन में अभी तक। अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो पिछले साल हमारे पास अभी तक 13 जुलाई 2025 तक आने वाले जो पर्यटकों की संख्या थी वो 5,490 थी, जो कि इस बार जो पर्यटकों की संख्या वो लगभग हमारी दोगुनी हो चुकी है और जो आय थी पिछले साल वो भी 11,11,950 रुपये थी।
0: फूलों की घाटी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ केवल एक तरह के ही फूल नहीं खिलते, बल्कि पूरी घाटी में 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ फूल भी शामिल हैं। हर 15 दिन बाद यहाँ नई किस्म के फूल खिलते हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नजारा लगातार बदलता रहता है। फूलों की घाटी का यही बदलता स्वरूप यहाँ आने वाले सैलानियों को खूब भाता है। इस खूबसूरती को यादों में सजोने के लिए कोई यहाँ सेल्फी लेता है और कोई दुर्लभ फूलों की तस्वीरें खींचता है।
3: हम लोग ओडिशा से आए हैं, हमारी टीम है, 6 लोगों का टीम है, आए थे इस वैली ऑफ फ्लावर्स के, अभी नीचे आए, अच्छा लगा।
4: हम लोग बहुत एंजॉय किए, ट्रैकिंग इजी टू मॉडरेट था,
3: पहली बार था हमारा, अच्छा लगा,
4: पहला ट्रैक था हमारा, मजा आ रहा है और सबको बोलेंगे कि एक बार
3: ट्राई करना चाहिए।
0: रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि जुलाई अगस्त में घाटी में फूलों के खिलने का चरम समय होता है, इसलिए हर साल इस दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। अनुमान यह है कि अगर मौसम सही रहा तो इस साल फूलों की घाटी पर्यटकों की संख्या के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
2: इस बार फूलों की घाटी में अच्छे खिले हैं, कैंपेनुला लैटिफोलिया, पोटेंटिला, जिरेनियम और रोडोडेंड्रॉन, लैपिडोटम, बिस्टोटा, पेडिकुलारिस, काफी प्रजातियों में काफी अच्छा फ्लावरिंग हुई है जो पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।
0: फूलों की घाटी में सैलानियों की बढ़ती संख्या का फायदा यहाँ के होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट, पोर्टर और घोड़ा खच्चर मालिकों को भी मिल रहा है। यानी स्थानीय रोजगार भी फूलों की घाटी की वजह से तेजी से फल फूल रहा है। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: सोच दिखाती
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: आज पुरी में शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, कंट्रोल रूम से रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। गुजरात के डाकोर में उमड़ा आस्था का मेला, धूमधाम से निकली भगवान रणछोड़ राय की रथ यात्रा, भजन मंडली मेला धूमधाम से निकली भगवान रणछोड़ राय की रथ यात्रा भजन मंडली

0: रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन हुआ लॉन्च, टेस्टिंग के फीडबैक के बाद पोर्टल में किए जाएंगे सुधार। ICC ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट किया डिसाइड, वनडे वर्ल्ड कप में अब होंगे सुपर सीरीज और सुपर सेवन राउंड, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और IPL की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: बात करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगी और यात्रा शुरू होने से पहले पूजा पाठ के लिए तीनों रथों को मुख्य मंदिर के द्वार तक पहुंचा दिया गया है, जिन पर सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान होंगे। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है और देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं।

0: के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ अब से कुछ ही घंटों बाद अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त अब उस ऐतिहासिक और पावन क्षण का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं जब प्रभु अपने भक्तों के बीच विराजमान होंगे। महाप्रभु की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य रथ मंदिर के बाहर सज धज कर तैयार है। वहीं उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सजा दिए गए हैं।
1: प्रभु जगन्नाथ जी का सकाल धूप खिचड़ी भोग के बाद में प्रभु जगन्नाथ जी से शरीर से आज्ञा माला कर तीनों रथों को अभी सिंह द्वार पर रथ खड़ा से सिंह द्वार खींचा हुआ अभी नंदगेश रथ लग गए हैं और उसके बाद में माता सुभद्रा जी का आएगा, उसके बाद में बलदाव जी का रथ आएगा। ये रथ यात्रा के लिए शुभ संकेत है, बहुत पाग अनुकूल है, मौसम भाई बहुत अच्छा है। जगन्नाथ की कृपा से काल जो रथ यात्रा होगा ये जिला प्रशासन राज्य सरकार और सेवायत के लिए बहुत कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा रथ यात्रा होगा।
0: प्रभु के नगर भ्रमण पर आने की खुशी में उनकी नगरी पूरी भक्ति के रंग में सराबोर है। ढोल मंजीरे और कीर्तन की गूंज के बीच श्रद्धालु गली गली जय जगन्नाथ का जय घोष कर रहे हैं। भजन कीर्तन से पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो उठा है। चारों तरफ गूंजती प्रभु भक्ति की मधुर ध्वनि हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है और इस दिव्य उत्सव में शामिल होने का मानो निमंत्रण दे रही है।
2: भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की अहेतु की कृपा है कि यहाँ चराचर के मृतलोक के प्राणी तो आते ही आते हैं, यह जगत विदित है, लेकिन उससे अनोखी बात यह है अस्कंद प्राण में इसकी महिमा वर्णित हुई है कि देवलोक से देवता भी आते हैं।
3: हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। हम फर्स्ट टाइम यहाँ रथ यात्रा में आए हैं, मेरा घर वाराणसी में है और मैं हैदराबाद में रहकर काम करता हूँ।
4: बहुत अच्छा लग रहा है, रथ यात्रा के लिए आया हूँ, पहली बार आए हैं यहाँ पे। बहुत सौभाग्य था कि मेरा एग्जाम अभी था तो एग्जाम के बहाने इधर रथ यात्रा देखने को भी मिल गया मुझे।
5: अगर हम भगवान को नहीं भी देख पाएंगे तो वो तो हमें देख ही पाएंगे, देख ही लेंगे, उन्हें पता है कि ये लोग आए हुए हैं। तो वी आर सो एक्साइटेड दैट ऑल द रथ आर वेरी कलरफुल एंड वी हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी।
0: गुरुवार सुबह भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के बीच जाएंगे। मान्यता है कि रथ यात्रा का ये पावन अवसर वो दुर्लभ क्षण होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार उन्हें दर्शन देने पहुंचते हैं, इसलिए इस दिव्य आयोजन को भक्त और भगवान के महामिलन का पर्व भी कहते हैं।
6: भगवान का मिलन के लिए अब पूरा विश्व तैयार है, अब पूरी में तीनों रथ भी तैयार हैं, भगवान तैयार हैं और भक्त भी तैयार हैं। सब मिलन के लिए, ये अपूर्व मिलन के लिए सब एक ही वही मोमेंट के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रथ, अब तीनों रथ तालो ध्वज नंदी घोष दर्प दलन तीनों रथ अब तैयार हो चुके हैं और कल जुलाई 16 तारीख को रथ खींचा जाएगा और भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया ये रथ के ऊपर विराजमान होंगे, दर्शन देंगे।
0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि रथ यात्रा से पहले पूरी तरह भक्तिमय हो चुकी है। कल रथ यात्रा का आरंभ होगा और महाप्रभु जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर पारंपरिक शैली में रथों तक पहुंचाया जाएगा। उससे पहले भगवान की मंगला आरती होगी और फिर भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही महाप्रभु नगर भ्रमण पर निकलेंगे।
1: अभी भगवान का सकल दीपो खिचड़ी भोग होता है, खिचड़ी भोग खत्म होने के बाद भगवान महाप्रभु का आज्ञामाल वो तीन रथ में आएंगे, वो आज्ञामाल लगने के बाद तीन रथ हाँ रथ खला में जाएंगे हमारा सिंहद्वार में, और सिंहद्वार में कल सुबह रात 4 बजे मंगला आरती होगा, इसका अवकाश होगा, इसके बाद महाप्रभु का खिचड़ी भोग होगा, मंगला अर्पण होगा। 8:30 बजे भगवान मैया निकलेंगे तीन रथों में, एक धाड़ी पांडी होकर आएंगे, पहले सुदर्शन महाप्रभु आएंगे, इसके बाद बलभद्र महाप्रभु आएंगे, इसके बाद माँ देवी सुभद्रा और सब लास्ट में जगन्नाथ महाप्रभु।
0: एक तरफ भक्ति के मधुर स्वर गूंज रहे हैं तो दूसरी तरफ महाप्रभु के रथ को मोटी मोटी पवित्र रस्सियों से बांधा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं रस्सियों के सहारे लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य का रथ खींचेंगे।
6: तीनों रथ में ये दिखाना चाहूंगा आपको कि तीनों रथ अब बनकर पूरा तैयार हो चुके हैं। रथ का रस्सी भी यहाँ रखा गया है। रथ में खींचने के लिए जो रस्सी व्यवहार होता है, ये रस्सी अब तैयार है, रथ भी अभी तैयार है, भक्त तैयार है।
0: मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होकर महाप्रभु के दर्शन कर और उनके रथ की रस्सी को स्पर्श कर श्रद्धालु स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। श्रद्धा और भक्ति की एक अद्भुत मिसाल ये भी है। मिनिएचर आर्टिस्ट अलेश्वर राव ने पूरी रथ यात्रा के लिए सुपारी पेड़ के पत्तों से तीन रथ बनाए हैं, जिनकी ऊंचाई 5 इंच है। इन रथों में कागज से बने छोटे घोड़े और कलश के साथ सुवा भी शामिल है। रथों पर विराजमान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता जी की मूर्तियाँ 1 इंच ऊंची नीम की लकड़ी से बनाई गई हैं। रथ यात्रा से पहले ग्रैंड रोड को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। पूरे रथ मार्ग पर 13,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों का पहरा रहेगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा, यातायात और आपदा प्रबंधन की विशेष व्यवस्था भी की गई है।
7: 22 आईपीएस ऑफिसर पूरा अरेंजमेंट को सुपरवाइज करने के लिए लगे हुए। हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है। 450 से ज्यादा सीसीटीवी नजर रखा है ये शहर के ऊपर। ये रथ का जो पथ है बड़ोदंड इसके ऊपर हमारा जो बैकअप सपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इन्फॉर्मेशन हम कैसे भक्त जनों के पास पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक तो पूरी पुलिस का जो चार्जबोर्ड है, एप्लीकेशन है, उसको भी लोगों को जानकारी के लिए हम दे रखते हैं। दूसरी बात है हम लोग 65 जगह एलईडी डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करेंगे और ये जगह खाली पूरी शहर के अंदर नहीं है, घूमने तक घूमने को तक है।
0: ये रथ यात्रा पुरी के शिव मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक होगी, उसके बाद गुंडीचा से शिव मंदिर वापस आएगी। ऐसे में जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा मार्ग से लेकर समंदर और सड़क तक सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद किया गया है। सबकी निगाहें उस शुभ घड़ी पर टिकी हैं जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और जैसे ही रथों के पहिए आगे बढ़ेंगे पूरा पुरी धाम जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठेगा। ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और एकता का महाउत्सव भी है। यहाँ राजा हो या रंक, देसी हो या विदेशी, सभी एक साथ महाप्रभु के रथ की रस्सी खींचते हैं। महाप्रभु के सामने सभी बराबर हैं। हर श्रद्धालु महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की सेवा को अपना परम सौभाग्य मानता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ हो गया है। अबुधाबी के लिए पहली सेवा शुरू कर दी गई है। आज एयरपोर्ट पर लैंड हुए इंडिगो एक्सप्रेस के विमान को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। चलते न्यूज एक्सप्रेस वे पर जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
9: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, जहां कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई। 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1,365 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वाराणसी के लिए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर्स को भी मंजूरी दे दी गई है। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने और कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक अहम MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के जरिए दिल्ली की डेयरियों और गौशालाओं से निकलने वाले गोबर का इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद्य बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य डेयरियों से निकलने वाले कचरे और गोबर को नालियों या यमुना नदी में जाने से रोकना है। इससे न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यावरण सुरक्षित होगा, साथ ही साथ पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महीने के अंदर ही 61,000 यात्रियों ने उड़ान भरी। अभी 15 शहरों के लिए फ्लाइट्स मिल रही हैं। 15 जून से एयरपोर्ट संचालन शुरू हुआ था। जिसमें जून के आखिरी 15 दिनों में 27,841 यात्रियों ने उड़ान भरी, जबकि जुलाई के पहले 13 दिनों में ही 33,446 यात्रियों ने एयरपोर्ट का उपयोग किया। 10 जुलाई को सबसे ज्यादा 3,255 यात्रियों का आवागमन हुआ। अब भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के बाद यात्रियों की संख्या में और तेजी से वृद्धि होने का अनुमान जताया जा रहा है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू कर दी हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अबुधाबी के लिए पहली विदेशी उड़ान का संचालन किया। करीब 100 यात्रियों को लेकर ये उड़ान सुबह 2:55 पर रवाना हुई। इसने लगभग 2.5 घंटे में संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबुधाबी से आने वाली पहली फ्लाइट नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जिसे हवाई अड्डे पर भव्य वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में नई पहल की शुरुआत हुई है। सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भावना दीदी की साइंस पाठशाला को हरी झंडी दिखाई है। एक तरह की निशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब है। ये लैब पंडरिया इलाके में स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी महानगरों की तर्ज पर आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक करना है, जिससे वो आने वाले तकनीक युग के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके।
8: रिलीज हुआ फिल्म तेरा यार हूं मैं का मैंने दिल तुझको दिया गाना। इसी के साथ ऐसी और कई खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
10: फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया और वाइब्रेंट डांस गाना रिलीज किया गया है। फिल्म की लीड जोड़ी अमन इंद्र कुमार और आकांक्षा शर्मा पर फिल्माए गए इस मैंने दिल तुझको दिया गाने को नकाश अजीज ने गाया है। इस गाने के बोल इंद्र कुमार ने लिखे हैं, जबकि संगीत संजीव दर्शन ने दिया है। मिलाप मिलन जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा यार हूँ मैं में परेश रावल, जॉनी लीवर, सुप्रिया पिलगांवकर, मृणाल कुलकर्णी, नेहा खान, पूजा कतुरड़े, आनंद आचार्य और दर्शन जरीवाला भी हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
11: हनुमान जी के भक्त निडर होते हैं।
10: फिल्म हनुमान अंश का नया भक्ति गीत जय हनुमान रिलीज कर दिया गया है। श्रेयस धर्माधिकारी के गाए और कंपोज किए इस गाने को ऋषि पाठक और श्रेयस धर्माधिकारी ने लिखे हैं। ये गाना फिल्म की आध्यात्मिक दुनिया को दर्शाता है। विशाल चतुर्वेदी लिखित और निर्देशित फिल्म हनुमान अंश में शोभिनव सत्या, विहान शेडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी और गुलशन पांडे मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 31 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
12: मैं सुनया इश्क कमजोर बना देता है, पर मेरे इश्क ने मेनू ताकत दिती है।
10: शहनाज गिल और जय रंधावा की पंजाबी फिल्म इश्क नामा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।
12: बिठा के ओदी आंखां चखां पा के पुछया कि दस,
10: जिसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी, सुकून का एहसास कराने वाला संगीत के साथ ही भावनाओं से भरपूर दृश्य देखने को मिलते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर आधारित निम्मा और नसीमा की सच्ची प्रेम कहानी से प्रेरित है।
13: किधर उड़ गया फिरदा तितरा, सीधा दस कौन है तुम?
12: आंख देख के पता नहीं लगा, चढ़ दे पंजाब।
10: ये फिल्म मशहूर किताब हिंद पाक बॉर्डर नामा पर आधारित है, जिसमें सौरभ सचदेवा भी अहम भूमिका में है। अरविंदर एस खैरा के निर्देशन में बनी फिल्म इश्क नामा 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
14: ओ खान दी भैने ते सिद्धी मौत ए खान,
12: हल इको ही है
14: की
12: चक्का गंडासी ते वड़दियां खान ते खान दे लोंग लाने ना।
8: न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
9: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये माँ सर आइज़क न्यूटन से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को भरपूर प्रोटीन खिलाने के लिए माँ ने जो तरकीब भड़ाई है, ऐसा प्रयोग तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। माँ ने बच्चे को लुभाने के लिए धागे से एक चॉकलेट का टुकड़ा बांध दिया और उसे प्रोटीन मिक्स मटेरियल के कटोरे में डाल दिया। बच्चे को चम्मच में खाने वाले पदार्थ के साथ चॉकलेट का टुकड़ा दिखता है, वो मुंह खोलता है और तभी धागे से बंधा वो टुकड़ा फिर कटोरी में गिरा दिया जाता है और इस तरह बच्चा उस टुकड़े के लालच में पूरा खाना खा जाता है। यूजर्स वीडियो को देखकर माँ की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन माओं को सलाह दे रहे हैं जिनके बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं और ये तस्वीरें देखकर वो इससे सीख ले सकते हैं। शैतान कौए की कारस्तानी की तस्वीरें देखिए जरा। कौआ सफेद बिल्ली की पूंछ में चोंच मारता नजर आ रहा है। बिल्ली ने सोचा कि दूसरी काली बिल्ली ने शरारत की है, बस फिर क्या था, दोनों लड़ पड़ती हैं। इधर कौआ फिर आकर चोंच मार देता है, लेकिन तभी एक सफेद कुत्ते की एंट्री होती है और उसके बीच में पड़ने पर कौआ तो उड़न छू हो जाता है और बाकी दोनों बिल्लियां अपने रास्ते भाग लेती हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। फुटबॉल की क्रेज के बीच ये वायरल तस्वीरें देखिए और फैसला करिए कि आपकी नजर में ये गोल हुआ है या नहीं। यकीनन आप कहेंगे कि गोल तो हुआ है, क्योंकि गोल करने वाला खिलाड़ी कैसे गोलकीपर को कंफ्यूज करता है और आसानी से गोल दाग देता है कि गोलकीपर हक्का बक्का रह जाता है ना कमाल की तस्वीरें। अब यूजर्स गोलकीपर का चेहरा देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। दादी माँ और पोते की तस्वीरें लोगों को खूब भा रही है। जरा देखिए कि कैसे एक ही फ्रेम में दो अलग अलग उम्र के लोग आमने सामने बैठे हैं। एक दादी माँ है और एक 4-5 महीने का बच्चा, दोनों दांत विहीन एक दूसरे के साथ जिस तरह से आनंद ले रहे हैं, यूजर्स उन्हें देखकर आनंदित हो रहे हैं। और न्यूज पथ के सफर में अब आगे सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी अयोध्या में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की इन दिनों इस ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का पद खाली है, इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। अयोध्या के रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के महज 24 घंटे के भीतर 1000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए आवेदन करने वालों में प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग, सामाजिक संगठनों के अनुभवी कार्यकर्ताओं के अलावा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर चर्चा में रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी इस पद के लिए आवेदन करने की सार्वजनिक घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 14 जुलाई से हुई है, जिसके बाद देश भर में अभ्यर्थी सीईओ पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 18 जुलाई है। ट्रस्ट की चयन समिति 19 जुलाई को बैठक कर सभी आवेदनों की प्रारंभिक जांच और छटनी करेगी और इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि 22 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ का चयन पर अंतिम मोहर लग सकती है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट को एक ऐसे सीईओ की तलाश है जो कि मंदिर प्रशासन के कामकाज को बेहतर तरीके से संभाल सके और श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करने का काम करे। ट्रस्ट के इस कदम को लेकर हमने अयोध्या में लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
15: ऐसा होना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कोई भी इस तरह वारदात ना हो फिर से, और जो उनका पहले का जो फीडबैक है काम करने का, जो भी जहां से उनका एजुकेशन से लेके जहां तक रहे हों, तो उन पे बराबर मॉनिटरिंग करके फिर बनाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि भगवान राम के इस क्षेत्र में जो भी रहते हों, बाहर से लोग आते हैं तो उनके आदर्श के बारे में सोचते हैं कि वो कितने मर्यादित थे, कभी उन्होंने चोरी नहीं किया, कभी गलत नीत पे उन्होंने विश्वास नहीं किया, है ना। तो भगवान के तो आदर्श पे जीना चाहिए, खासकर भगवान।
16: सीईओ की नियुक्ति की बात आ रही है, वो सीईओ की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसा आदमी बनना चाहिए?
15: वो ईमानदार होना चाहिए पूरी तरह से, एक ईमानदार अफसर होना चाहिए।
17: सीईओ हो जो जानकारी रखे चारों तरफ, और सीईओ पूरा ईमानदार अगर वहां से रहेगा तो नीचे तक ईमानदारी आएगी। और ये घटना जो है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, तो यही आशा की जा रही है कि ऐसा हो कि यहाँ ईमानदारी से चले, जो इतना खर्चा किया गया है और इतनी भावना जुड़ी है लोगों की यहाँ से, तो यहाँ से मर्यादा का बिल्कुल ही उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा सीईओ हो कि जो कड़ी से कड़ी सजा रखे ऐसे लोगों के लिए, ताकि उनको डर रहे कि ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा सीईओ आए कि जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रखे ऊपर से नीचे तक लोगों को।
18: मुझे नहीं लगता है, मानव अपने नेचर से जो है हर जगह गंदगी फैला सकता है। तो आप किसी को भी बैठाइए, कोई उसका निकलने वाला हल नहीं है।
19: तो कैसे चीजें बेटर होंगी?
18: ये तो आदमी खुद सोचे, जिनको वहाँ बैठाया जा रहा है वो सोचे कि हम किस पद पे हैं और क्या कर रहे हैं। ये तो अंदर से ही उनकी आवाज आएगी तभी कुछ हो सकता है, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आप किसी को भी बैठाइए।
20: नहीं, मेरे हिसाब से भी वही है, इंसान को खुद चेंज होना पड़ेगा। ऐसे किसी के बैठने से और कंटिन्यूसली मॉनिटर करने से अगर चीज़ें बदलती तो बहुत चीज़ें बदल जाती। वैसे इंसान को खुद ही चेंज होना पड़ेगा।
21: आई फील ये सिविक सेंस और वो खुद में समझदारी होना कि आप किस जगह काम कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से आनी चाहिए फ्रॉम विद इन। तो मुझे नहीं लगता कि किसी सीईओ के आने से इट वुड मेक एनी डिफरेंस अंटिल आपको खुद इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कहाँ है आप और आपके पद का आपको कितने सावधानी से रहना चाहिए अपने पद पे।
22: जो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह इस टाइप की एडमिन से रिलेटेड होनी चाहिए, कुछ कॉमर्शियल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि ये चोरी जिस तरह से हुई उसको कंट्रोल करना, बैंकिंग फंडामेंटल्स भी का नॉलेज उनको होना चाहिए। हाँ, फाइनेंस रिलेटेड नहीं, बैकग्राउंड उसका अच्छा होता तो क्यों नहीं, शायद इतनी इस तरह से तो नहीं होती जिस तरह से हुआ है।
23: हो सकता है, नीट एंड क्लीन आदमी हो तो अच्छा तो हो ही सकता है, क्योंकि पीछे उनका बैकग्राउंड बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए, सब नॉलेज होना चाहिए, तो इतनी पब्लिक आए कोई परेशानी होगा

0: अनैतिकता जो भरी हुई है वो ठीक किया जाएगा, तभी ब्यूरोक्रेट्स कुछ अच्छे से काम कर पाएंगे। वैसे उम्मीद नहीं है कि सुधर पाएगी।
1: ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 होगा एकदम अनोखा और रोमांचक। आईसीसी लेकर आया है नई सुपर सीरीज और सुपर सेवन फॉर्मेट। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
2: आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे तीन चरणों में बांट दिया है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें सुपर सीरीज और सुपर सेवन जैसे नए राउंड से गुजरना होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में सबसे कम रैंकिंग वाली तीन क्वालिफाइड टीमों के बीच एक सुपर सीरीज होगी। इस फेज से केवल शीर्ष पर रहने वाली टीम यानी नंबर वन टीम ही मुख्य टूर्नामेंट में जगह बना पाएगी, जबकि बाकी दो टीमें बाहर हो जाएंगी। सुपर सीरीज से आई एक टीम और बाकी बची 11 टीमें यानी कुल 12 टीमों को 6-6 के दो समूहों में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह से शीर्ष तीन तीन टीमें और दोनों समूहों में चौथे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ टीम अगले दौर के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरे राउंड में कुल 7 टीमें पहुंचेंगी और इसे सुपर सेवन नाम दिया गया है। सुपर सेवन में शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 4 टीमें अंत में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में इतिहास रचते हुए एक अनूठा तिहरा कीर्तिमान बना दिया है। बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स यानी टेस्ट में 200 से ज्यादा, वनडे में 150 से ज्यादा और T20 में 100 से ज्यादा विकेट लेकर सभी में विकेटों का शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने लगभग 968 दिनों के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैच के दौरान इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही उनके वनडे करियर के 150 विकेट पूरे हो गए। इसके साथ ही इंग्लैंड की धरती पर बुमराह के 31 विकेट हो गए हैं और उन्होंने रविंद्र जडेजा के 30 विकेट को पीछे छोड़कर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। मुंबई इंडियंस का कप्तान बदला जा सकता है और इस पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी का मैनेजमेंट कप्तानी और कोचिंग स्टाफ में भारी फेरबदल करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या से कप्तानी वापस ली जा सकती है और उनके टीम से बाहर होने की भी पूरी संभावना है। हार्दिक के बाद कप्तानी की रेस में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर अंतिम और आधिकारिक फैसला मैनेजमेंट की आगामी रिव्यू मीटिंग में लिया जाएगा।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
4: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
5: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here. On TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ।

0: good news today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: आज पुरी में शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, कंट्रोल रूम से रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। गुजरात के डाकोर में उमड़ा आस्था का मेला, धूमधाम से निकली भगवान रणछोड़ राय की रथ यात्रा, भजन मंडलियों ने बांधा समा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन हुआ लॉन्च, टेस्टिंग के फीडबैक के बाद पोर्टल में किए जाएंगे सुधार। ICC ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट किया डिसाइड, वनडे वर्ल्ड कप में अब होंगे सुपर सीरीज और सुपर सेवन राउंड, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और IPL की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी पर पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी जो है कई बार सच और झूठ की रेखा को लांघ जाती है, कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ती जाती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियोस जो हैं चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर दो वीडियो खूब तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि ये दोनों वीडियोस चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: चीन की सेना के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के दावे से दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिकों को मार्च करते हुए देखा जा रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में हथियारबंद सैनिकों को ट्रक से उतरते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियो चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वायरल पोस्ट को शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, चीन की सेना 60 किलोमीटर भारत के अंदर घुस आई। वहीं एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, चीन ने भारत पर 60 किलोमीटर का कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियोस धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं। पहले वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिकों को मार्च करते हुए देखा जा सकता है, वहीं पर दूसरे वीडियो में हथियारबंद सैनिकों को ट्रक से उतरते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियोस चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, 60 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने दोनों वीडियो उसकी जांच की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे दोनों वीडियो को गौर से देखा और सुना। दोनों वीडियो के बैकग्राउंड में आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये चीन की आधिकारिक भाषा यानी मैंड्रिन जैसा नहीं हमको सुनाई दिया, ये कोई और भाषा थी। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने फिर से दोनों वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान दूसरे वीडियो में जवानों के यूनिफॉर्म पर गया। जब हमने इसे गौर से जूम करके देखा तो ये थाईलैंड के झंडे जैसा नजर आया। इसके अलावा सर्च के दौरान ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि सरकार और भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि चीनी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए। ये रिपोर्ट गलत है और इनका कोई आधार नहीं है। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा तो पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल हो रहे दोनों वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर दोनों वीडियोस के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने दोनों वीडियो की बारी बारी से पड़ताल की। पहले वीडियो का सच जानने के लिए सबसे पहले हमने इसके कई की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो थाईलैंड के फेसबुक पेज पर 16 जून 2026 को शेयर किया हुआ मिला। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो थाई सेना का है। इसमें दूसरी रेजिमेंट की तीसरी बटालियन के नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के जवानों की ट्रेनिंग को दिखाया गया है। पेज पर थाई सेना और उसकी ट्रेनिंग से जुड़ी कई और पोस्ट भी मौजूद हैं। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि थाई सेना के ट्रेनिंग के कई वीडियो यहां मौजूद हैं। जवानों को वायरल वीडियो में जो झंडा पकड़े हुए दिखाया गया है उसी हुबहू झंडे को इस पेज पर मौजूद कुछ वीडियो में भी जवानों को पकड़े हुए देखा जा सकता है। दूसरे वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने इसके कई की फ्रेम निकाले और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो थाईलैंड के कई टिकटॉक यूजर्स की प्रोफाइल पर मिला। भारत में प्रतिबंधित होने की वजह से इन वीडियो को हमने एक्सप्रेस वीपीएन टूल की मदद से चेक किया। एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए थाई आर्मी का बताया, जिसमें ट्रक से उतर रहे सभी जवानों के यूनिफॉर्म पर थाईलैंड के झंडे को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि भारतीय सेना भी अपने आधिकारिक फैक्ट चेक अकाउंट से इस दावे का खंडन करते हुए इसे थाई आर्मी का बताया है। यानी दोनों ही वीडियो का भारत चीन मामले से कोई संबंध नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के घुसपैठ करने का दावा फेक है और इस दावे से वायरल हो रहा वीडियो थाईलैंड की आर्मी का है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भारतीय सेना ने भी चीन के घुसपैठ के दावे का खंडन किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: सोशल मीडिया पर मानव पिरामिड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मानव पिरामिड बनाया है। कुछ ही देर में यह पिरामिड डगमगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद संभल जाता है और लोग गिरने से बच जाते हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मानव पिरामिड तेज हवा में डगमगाने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कोई भी नीचे नहीं गिरा। क्या आप इस मानव पिरामिड के सबसे ऊपर खड़े होने की हिम्मत करेंगे? वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मानव पिरामिड बनाया है। कुछ ही देर में यह पिरामिड डगमगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद संभल जाता है और लोग गिरने से बच जाते हैं। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो की जांच की। तो देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर की फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कोई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने ये पाया कि पिरामिड बनाने वाले लोग अजीब तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं। जब ये मानव पिरामिड हिलने लगता है तब सभी लोग अस्वाभाविक तरीके से बिल्कुल हिलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई हाल फिलहाल में प्रमाणिक रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। देखिए पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो सच्चा है तो उसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें क्यों नहीं मिली। दूसरा ये कि कहीं एडिटेड मॉफ्ट वीडियो को वायरल करके गुमराह तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी अस्वाभाविक चीजें नजर आईं जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। लिहाजा पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स के जरिए जांचा गया। हमने हाई मॉडरेशन का इस्तेमाल किया। इस टूल ने वीडियो के AI से बने होने की करीब 100% संभावना जताई। इस टूल के एनालिसिस के मुताबिक इस वीडियो को सीडेंस 2 मॉडल की मदद से बनाए जाने की संभावना अधिक है, जो AI वीडियो जनरेट करने वाला एक टूल है। हमने एक दूसरे टूल undetectable.ai की मदद से भी वायरल वीडियो को सर्च किया। इस टूल ने भी वीडियो के 97% तक AI से बने होने की संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले, फिर इन्हें सर्च किया गया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 9 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ AI की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि मानव पिरामिड का वायरल हो रहा वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फिलहाल ले रहा छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और इसी के साथ वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
4: इंटरनेट पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं। ये वीडियो एक माँ और उसके एक साल के बच्चे के उस खूबसूरत रिश्ते को दिखाता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपने एक साल के बच्चे को बिस्तर पर लेटाने की कोशिश कर रही है, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़ती है। चोट इतनी तेज थी कि मां दर्द से कराहते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी का दिल जीत लिया। अपनी मां को दर्द में देखकर वो छोटा सा बच्चा फौरन अपनी जगह से उठा और बिना देर किए अपनी मां की तरफ भागा। आमतौर पर इतने छोटे बच्चे खुद गिरने पर रोने लगते हैं, लेकिन यहां नन्हे बच्चे ने अपनी मां के दर्द को महसूस किया। वो रेंगते हुए अपनी मां के पास पहुंचा और अपने छोटे छोटे हाथों से मां के सिर को बड़े प्यार से सहलाने लगा, मानो वो कह रहा हो, मां रो मत, मैं हूं ना। बच्चे का ये निस्वार्थ प्यार और उसकी मासूमियत देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख भर आई।
5: हेलो गाइस, ये मेरी परदादी और अभी 90 इयर्स की हो चुकी है।
6: 90
4: सोशल मीडिया पर 90 साल की बुजुर्ग परदादी और उनके छोटे से परपोते का एक बेहद इमोशनल और प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे की जिद पर दादी ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया।
6: सुनो सया, हम का बोला वो सनकार के नहीं और गए
5: पूरा गांव
4: दोनों के बीच का प्यार और मासूमियत लोगों को बहुत पसंद आ रही है।
5: अरे दादी बस आप गाना गाओ।
4: चलती ट्रेन में पूजा पाठ और हवन का ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। वायरल वीडियो में एक पुजारी ट्रेन के फर्श पर हवन कुंड रखकर रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहा है। चलती ट्रेन में हवन कुंड जलता देख लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे और देखते ही देखते ये मामला बड़ा विवाद बन गया। इंटरनेट पर भारी बवाल मचने के बाद उत्तर रेलवे ने एक बयान जारी कर स्थिति साफ की है। रेलवे के मुताबिक ये पूजा किसी सामान्य डिब्बे जैसे जनरल स्लीपर या एसी कोच में नहीं हो रही थी। ये एक पूरी तरह से प्राइवेट कोच था जिसे एक यात्री ने विशेष यात्रा के लिए बुक किया था। इस विशेष कोच को 10 जुलाई को नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12926 में जोड़ा गया था। रेलवे ने ये भी साफ किया कि इस यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन किया गया है और किसी तरह की अनहोनी या दुर्घटना की कोई खबर नहीं है। सैलून कोच आम ट्रेनों के डिब्बों से बिल्कुल अलग होते हैं। इन्हें पटरी पर दौड़ता हुआ फाइव स्टार होटल भी कहा जाता है।

हाथों में हथियार और चेहरों पर मुस्कान लिए जवानों का ये अंदाज उनके हौसले, भाईचारे और देशभक्ति की खूबसूरत झलक दिखाता है। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए जरा, कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। यही होता है कि बाढ़ जैसी हालात में लोग सड़कों से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तक्ष ने स्थिति का फायदा उठाते हुए जो किया वो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर भारी बारिश के कारण काफी पानी भरा हुआ है और पानी का बहाव भी बना हुआ है। तभी अचानक एक शख्स हाथ में एक बड़ा फोम का टुकड़ा लेकर आता है और वो बड़े आराम से उस फोम को सड़क के पानी पर बिछाता है और उस पर लेट जाता है। जैसे ही वो फोम पर लेटता है, पानी का बहाव उसे एक नाव की तरह धीरे धीरे आगे की ओर ले जाने लगता है। वो शख्स बिना किसी डर या हिचकिचाहट के मजे से लेटा रहता है, मानो वो किसी एडवेंचर ट्रिप पर हो। शख्स का ये अंदाज देखकर वहाँ मौजूद राहगीर भी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने तुरंत अपने फोन निकाल कर इस नज़ारे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो यूजर्स का खूब ध्यान खींच रहे हैं। एक महिला ने प्यास से परेशान एक लंगूर की मदद करके हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंगूर काफी देर से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने एक नल मौजूद है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। बंदर बार बार नल को छूता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो काफी देर से प्यासा है और किसी तरह पानी पीना चाहता है। उसी दौरान वहाँ मौजूद एक महिला की नज़र उस लंगूर पर पड़ती है। वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास जाती है। महिला को देखकर लंगूर भी कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करता। महिला तुरंत नल खोल देती है और इस तरह पानी पीने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ की मदद से बंदर को आराम से पानी पीने देती है। वीडियो में सबसे खास बात यह है कि लंगूर पूरे समय बिल्कुल शांत रहता है। वो आराम से पानी पीता है और महिला पर पूरा भरोसा करता हुआ नजर आता है। वही महिला भी पूरे धैर्य और प्यार के साथ उसकी मदद करती है। दोनों के बीच का ये भरोसा और अपनापन लोगों को काफी भावुक कर रहा है।

दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सैंटोस और उनके K9 पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से ये दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मोमेंट करते हैं, कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच के गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनकी इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी है कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलैंड के नाम से जानते हैं। हुआ यू के एनरिचमेंट सेशन के दौरान कैटेकर ने थोड़ी सी मस्ती करने की सोची। उन्होंने एक विग पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलैंड अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि आखिर केयरटेकर करने क्या वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विग को हवा में उछाल दिया और अचानक उसका चमकता हुआ गंजा सिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आए ट्विस्ट को देखकर मैंगलैंड का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे कि जैसे वो पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू हुआ कैसे। वो इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो ये प्रैंक किया, उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर चमोली जिले में मौजूद यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक का धरोहर फूलों की घाटी में इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे। सीजन शुरू होने के बाद से अब तक 11,000 से ज्यादा सैलानी फूलों की घाटी की सैर कर चुके हैं और देखिए जिससे सरकारी खजाने को 20 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है।

0: बादलों से घिरे पहाड़, हरी भरी वादियाँ और इन वादियों के दामन में खिले एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूल। ये किसी चित्रकार या फिर किसी कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो इन दिनों अपनी बेपनाह खूबसूरती से देखने वालों का मन मोह ले रही है, खासकर उन सैलानियों का जो इस खूबसूरती का दीदार करने के लिए देवभूमि में मौजूद फूलों की घाटी पहुंच रहे हैं। इस साल 1 जून को फूलों की घाटी के द्वार पर्यटकों के लिए खोले गए थे, तब से अब तक यहां 11,000 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है।
1: विश्व धरोहर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार दिखाई दे रही है। फूलों की घाटी का मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है। इस दौरान मानसून होने के साथ ही जो घाटी का दायरा है वो हर तरफ अलग अलग रंग के अलग अलग किस्म की जो प्रजातियां हैं यहाँ पे खिली हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी अब फूलों की घाटी पूरी तरह से यहाँ पे खिल चुकी है। हर तरफ पर जो प्रकृति का यौवन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने आप में बेहद खूबसूरत फूलों की घाटी दिखाई दे रही। तो वहीं इस बार रिकॉर्ड पर्यटक जो है 10,000 से अधिक पर्यटक अब तक फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं।
0: यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल फूलों की घाटी हमेशा से प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद रही है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि पिछले साल 13 जुलाई तक फूलों की घाटी में 5,490 सैलानी पहुंचे थे। ये संख्या इस साल दोगुनी हो गई है। इतनी संख्या में सैलानियों के आने से सरकारी खजाने को भी फायदा हुआ और इस साल अब तक 20 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या और आय दोनों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
2: यहाँ पे आने वाले पर्यटकों की जो संख्या थी वो 11,080 पर्यटक थे और हमारे पास इन पर्यटकों से जो आय प्राप्त हुई है वो है 20,16,250। इसके साथ ही हमारे पास जो विदेशी पर्यटक हैं वो 45 रहे इस सीजन में अभी तक। अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो पिछले साल हमारे पास अभी तक 13 जुलाई 2025 तक आने वाले जो पर्यटकों की संख्या थी वो 5,490 थी, जो कि इस बार जो पर्यटकों की संख्या वो लगभग हमारी दोगुनी हो चुकी है और जो आय थी पिछले साल वो भी 11,11,950 रुपये थी।
0: फूलों की घाटी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ केवल एक तरह के ही फूल नहीं खिलते, बल्कि पूरी घाटी में 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ फूल भी शामिल हैं। हर 15 दिन बाद यहाँ नई किस्म के फूल खिलते हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नजारा लगातार बदलता रहता है। फूलों की घाटी का यही बदलता स्वरूप यहाँ आने वाले सैलानियों को खूब भाता है। इस खूबसूरती को यादों में सजोने के लिए कोई यहाँ सेल्फी लेता है और कोई दुर्लभ फूलों की तस्वीरें खींचता है।
3: हम लोग ओडिशा से आए हैं, हमारे टीम एक 6 लोगों का टीम है, आए थे इस वैली ऑफ फ्लावर्स के, अभी नीचे आए, अच्छा लगा।
4: हम लोग बहुत एंजॉय किए, ट्रैकिंग इजी टू मॉडरेट था,
3: पहली बार था हमारा, अच्छा लगा,
4: पहला ट्रैक था हमारा, मजा आ रहा है और सबको बोलेंगे कि एक बार
3: ट्राई करना चाहिए, वैली
4: ट्राई करना तो चाहिए।
0: रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि जुलाई अगस्त में घाटी में फूलों के खिलने का चरम समय होता है, इसलिए हर साल इस दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। अनुमान यह है कि अगर मौसम सही रहा तो इस साल फूलों की घाटी पर्यटकों की संख्या के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
2: इस बार फूलों की घाटी में अच्छे खिले हैं, कैंपेनुला लैटिफोलिया, पोटेंटिला, जिरेनियम और रोडोडेंड्रॉन, लैपिडोटम, बिस्टोटा, पेडिकुलारेंस, काफी प्रजातियों में काफी अच्छा फ्लावरिंग हुई है जो पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।
0: फूलों की घाटी में सैलानियों की बढ़ती संख्या का फायदा यहाँ के होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट, पोर्टर और घोड़ा खच्चर मालिकों को भी मिल रहा है। यानी स्थानीय रोजगार भी फूलों की घाटी की वजह से तेजी से फल फूल रहा है। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
8: आज पुरी में शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, कंट्रोल रूम से रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। गुजरात के डाकोर में उमड़ा आस्था का मेला, धूमधाम से निकली भगवान रणछोड़ राय की रथ यात्रा, भजन मंडलियों ने बांधा समा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन हुआ लॉन्च, टेस्टिंग के फीडबैक के बाद पोर्टल में किए जाएंगे सुधार। ICC ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट किया डिसाइड, वनडे वर्ल्ड कप में अब होंगे सुपर सीरीज और सुपर सेवन राउंड, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और IPL की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
9: बात करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगी और यात्रा शुरू होने से पहले पूजा पाठ के लिए तीनों रथों को मुख्य मंदिर के द्वार तक पहुंचा दिया गया है, जिन पर सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान होंगे। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है और देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पुरी पहुँच रहे हैं।

0: भोलेनाथ महाप्रभु जगन्नाथ अब से कुछ ही घंटों बाद अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त अब उस ऐतिहासिक और पावन क्षण का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं जब प्रभु अपने भक्तों के बीच विराजमान होंगे। महाप्रभु की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य रथ मंदिर के बाहर सज धज कर तैयार है। वहीं उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सजा दिए गए हैं।
1: प्रभु जगन्नाथ जी का सकाल धूप खिचड़ी भोग के बाद में प्रभु जगन्नाथ जी से शरीर से आज्ञा माला आकर तीनों रथों को अभी सिंह द्वार पर रथ खड़ा से सिंह द्वार खींचा हुआ अभी नंदगेश रथ लग गए हैं और उसके बाद में माता सुभद्रा जी का आएगा, उसके बाद में बलदाव जी का रथ आएगा। ये रथ यात्रा के लिए शुभ संकेत है, बहुत पाग अनुकूल है, मौसम भाई बहुत अच्छा है। जगन्नाथ की कृपा से काल जो रथ यात्रा होगा ये जिला प्रशासन राज्य सरकार और सेवायत के लिए बहुत कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा रथ यात्रा होगा।
0: प्रभु के नगर भ्रमण पर आने की खुशी में उनकी नगरी पूरी भक्ति के रंग में सराबोर है। ढोल मजीरे और कीर्तन की गूंज के बीच श्रद्धालु गली गली जय जगन्नाथ का जय घोष कर रहे हैं। भजन कीर्तन से पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो उठा है। चारों तरफ गूंजती प्रभु भक्ति की मधुर ध्वनि हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है और इस दिव्य उत्सव में शामिल होने का मानो निमंत्रण दे रही है।
2: भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की अहेतु की कृपा है कि यहाँ चराचर के मृतलोक के प्राणी तो आते ही आते हैं, यह जगत विदित है, लेकिन उससे अनोखी बात यह है स्कंद पुराण में इसकी महिमा वर्णित हुई है कि देवलोक से देवता भी आते हैं।
3: हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। हम फर्स्ट टाइम यहाँ रथ यात्रा में आए हैं, मेरा घर वाराणसी में है और मैं हैदराबाद में रहकर काम करता हूँ।
4: बहुत अच्छा लग रहा है, रथ यात्रा के लिए आया हूँ, पहली बार आए हैं यहाँ पे। बहुत सौभाग्य था कि मेरा एग्जाम अभी था तो एग्जाम के बहाने इधर रथ यात्रा देखने को भी मिल गया मुझे।
5: अगर हम भगवान को नहीं भी देख पाएंगे तो वो तो हमें देख ही पाएंगे, देख ही लेंगे, उन्हें पता है कि ये लोग आए हुए हैं। तो वी आर सो एक्साइटेड दैट ऑल द रथ आर वेरी कलरफुल एंड वी हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी।
0: गुरुवार सुबह भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के बीच जाएंगे। मान्यता है कि रथ यात्रा का ये पावन अवसर वो दुर्लभ क्षण होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार उन्हें दर्शन देने पहुंचते हैं, इसलिए इस दिव्य आयोजन को भक्त और भगवान के महामिलन का पर्व भी कहते हैं।
6: भगवान का मिलन के लिए अब पूरा विश्व तैयार है, अब पूरी में तीनों रथ भी तैयार हैं, भगवान तैयार हैं और भक्त भी तैयार हैं। सब मिलन के लिए, ये अपूर्व मिलन के लिए सब एक ही वही मोमेंट के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रथ, अब तीनों रथ तालो ध्वज नंदी घोष दर्प दलन तीनों रथ अब तैयार हो चुके हैं और कल जुलाई 16 तारीख को रथ खींचा जाएगा और भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया ये रथ के ऊपर विराजमान होंगे, दर्शन देंगे।
0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि रथ यात्रा से पहले पूरी तरह भक्तिमय हो चुकी है। कल रथ यात्रा का आरंभ होगा और महाप्रभु जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर पारंपरिक शैली में रथों तक पहुंचाया जाएगा। उससे पहले भगवान की मंगला आरती होगी और फिर भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही महाप्रभु नगर भ्रमण पर निकलेंगे।
1: अभी भगवान का सकल खिचड़ी भोग होता है, खिचड़ी भोग खत्म होने के बाद भगवान महाप्रभु का आज्ञामाल वो तीनी रथ में आएंगे, वो आज्ञामाल लगने के बाद तीनी रथ रथ खला में जाएंगे हमारा सिंहद्वार में, और सिंहद्वार में कल सुबह रात 4 बजे मंगला आरती होगा, इसका अवकाश होगा, इसके बाद महाप्रभु का खिचड़ी भोग होगा, मंगला अर्पण होगा। 8:30 बजे भगवान मैया निकलेंगे तीनी रथों में, एक धाड़ी पांडी होकर आएंगे, पहले सुदर्शन महाप्रभु आएंगे, इसके बाद बलभद्र महाप्रभु आएंगे, इसके बाद माँ देवी सुभद्रा और सब लास्ट में जगन्नाथ महाप्रभु।
0: एक तरफ भक्ति के मधुर स्वर गूंज रहे हैं तो दूसरी तरफ महाप्रभु के रथ को मोटी मोटी पवित्र रस्सियों से बांधा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं रस्सियों के सहारे लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य का रथ खींचेंगे।
6: तीनों रथ में ये दिखाना चाहूंगा आपको कि तीनों रथ अब बनकर पूरा तैयार हो चुके हैं। रथ का रस्सी भी यहाँ रखा गया है। रथ में खींचने के लिए जो रस्सी व्यवहार होता है, ये रस्सी अब तैयार है, रथ भी अभी तैयार है, भक्त तैयार है।
0: मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होकर महाप्रभु के दर्शन कर और उनके रथ की रस्सी को स्पर्श कर श्रद्धालु स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। श्रद्धा और भक्ति की एक अद्भुत मिसाल ये भी है। मिनिएचर आर्टिस्ट अलेश्वर राव ने पूरी रथ यात्रा के लिए सुपारी पेड़ के पत्तों से तीन रथ बनाए हैं, जिनकी ऊंचाई 5 इंच है। इन रथों में कागज से बने छोटे घोड़े और कलश के साथ सुवा भी शामिल है। रथों पर विराजमान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता जी की मूर्तियाँ 1 इंच ऊंची नीम की लकड़ी से बनाई गई हैं। रथ यात्रा से पहले ग्रैंड रोड को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। पूरे रथ मार्ग पर 13,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों का पहरा रहेगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा, यातायात और आपदा प्रबंधन की विशेष व्यवस्था भी की गई है।
7: आपको 50 से ज्यादा नजर रखा है ये शहर के ऊपर, ये शहर का जो पथ है बड़ा दंडा इसके ऊपर। हमारा जो बैकअप सपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इंफॉर्मेशन हम कैसे भक्त जनों के पास पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक तो पूरी पुलिस का जो चैटबॉट है, एप्लीकेशन है, उसको भी लोगों को जानकारी के लिए हम दे रखे हैं। दूसरी बात है, हम लोग 65 जगह एलईडी डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करेंगे और ये जगह खाली पूरी शहर के अंदर नहीं है, घूमने तक घूमने को करते हैं।
0: ये रथ यात्रा पुरी के श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक होगी, उसके बाद गुंडीचा से श्री मंदिर वापस आएगी। ऐसे में जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा मार्ग से लेकर समंदर और सड़क तक सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद किया गया है। सबकी निगाहें उस शुभ घड़ी पर टिकी हैं जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और जैसे ही रथों के पहिए आगे बढ़ेंगे, पूरा पुरी धाम जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठेगा। ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और एकता का महाउत्सव भी है। यहाँ राजा हो या रंक, देसी हो या विदेशी, सभी एक साथ महाप्रभु के रथ की रस्सी खींचते हैं। महाप्रभु के सामने सभी बराबर हैं। हर श्रद्धालु महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की सेवा को अपना परम सौभाग्य मानता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ हो गया है। अबुधाबी के लिए पहली सेवा शुरू कर दी गई है। आज एयरपोर्ट पर लैंड हुए इंडिगो एक्सप्रेस के विमान को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। चलते न्यूज एक्सप्रेस वे पर जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
9: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, जहां कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई। 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1,365 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वाराणसी के लिए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर्स को भी मंजूरी दे दी गई है। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने और कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक अहम MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के जरिए दिल्ली की डेयरियों और गौशालाओं से निकलने वाले गोबर का इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद्य बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य डेयरियों से निकलने वाले कचरे और गोबर को नालियों या यमुना नदी में जाने से रोकना है। इससे न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यावरण सुरक्षित होगा, साथ ही साथ पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 महीने के अंदर ही 61,000 यात्रियों ने उड़ान भरी। अभी 15 शहरों के लिए फ्लाइट्स मिल रही हैं। 15 जून से एयरपोर्ट संचालन शुरू हुआ था, जिसमें जून के आखिरी 15 दिनों में 27,841 यात्रियों ने उड़ान भरी, जबकि जुलाई के पहले 13 दिनों में ही 33,446 यात्रियों ने एयरपोर्ट का उपयोग किया। 10 जुलाई को सबसे ज्यादा 3,255 यात्रियों का आवागमन हुआ। अब भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के बाद यात्रियों की संख्या में और तेजी से वृद्धि होने का अनुमान जताया जा रहा है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू कर दी हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अबुधाबी के लिए पहली विदेशी उड़ान का संचालन किया। करीब 100 यात्रियों को लेकर ये उड़ान सुबह 2:55 पर रवाना हुई। इसने लगभग 2.5 घंटे में संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबुधाबी से आने वाली पहली फ्लाइट नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जिसे हवाई अड्डे पर भव्य वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में नई पहल की शुरुआत हुई है। सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भावना दीदी की साइंस पाठशाला को हरी झंडी दिखाई है। एक तरह की निशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब है। ये लैब पंडरिया इलाके में स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी महानगरों की तर्ज पर आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक करना है, जिससे वो आने वाले तकनीक युग के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके।
8: रिलीज हुआ फिल्म तेरा यार हूं मैं का मैंने दिल तुझको दिया गाना। इसी के साथ ऐसी और कई खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
10: फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया और वाइब्रेंट डांस गाना रिलीज किया गया है। फिल्म की लीड जोड़ी अमन इंद्र कुमार और आकांक्षा शर्मा पर फिल्माए गए इस मैंने दिल तुझको दिया गाने को नकाश अजीज ने गाया है। इस गाने के बोल इंद्र कुमार ने लिखे हैं, जबकि संगीत संजीव दर्शन ने दिया है। मिलाप मिलन जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म तेरा यार हूँ मैं में परेश रावल, जॉनी लीवर, सुप्रिया पिलगांवकर, मृणाल कुलकर्णी, नेहा खान, पूजा कतुरड़े, आनंद आचार्य और दर्शन जरीवाला भी हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
11: हनुमान जी के भक्त तो निडर होते हैं।
10: फिल्म हनुमान अंश का नया भक्ति गीत जय हनुमान रिलीज कर दिया गया है। श्रेयस धर्माधिकारी के गाए और कंपोज किए इस गाने को ऋषि पाठक और श्रेयस धर्माधिकारी ने लिखे हैं। ये गाना फिल्म की आध्यात्मिक दुनिया को दर्शाता है। विशाल चतुर्वेदी लिखित और निर्देशित फिल्म हनुमान अंश में शोभिनव सत्या, विहान शेडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी और गुलशन पांडे मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 31 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भक्ति से हो
12: परिपूर्ण। मैं सुनया इश्क कमजोर बना देता है, पर मेरे इश्क ने मेनू ताकत दिती है।
10: शहनाज गिल और जय रंधावा की पंजाबी फिल्म इश्क नामा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।
12: बिठा के ओदी अखां चखां पा के पुछया कि दस,
10: जिसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी, सुकून का एहसास कराने वाला संगीत के साथ ही भावनाओं से भरपूर दृश्य देखने को मिलते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर आधारित निम्मा और नसीमा की सच्ची प्रेम कहानी से प्रेरित है।
13: किधर उठ गया फिरदा तितरा, सीधा दस कौन है तुम?
14: आंख देख के पता न लगा, चढ़ दे पंजाब।
10: ये फिल्म मशहूर किताब हिंद पाक बॉर्डर नामा पर आधारित है, जिसमें सौरभ सचदेवा भी अहम भूमिका में हैं। अरविंदर एस खैरा के निर्देशन में बनी फिल्म इश्क नामा 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
15: ओ खान दी भेणे ते सिद्धी मौत ए खान,
14: हल कोई है
15: की
14: चक्का गंडासी ते वड़दे खान ते खान दे लोंग लाने ना।
8: न्यूज़ पथ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
9: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये माँ सर आइज़क न्यूटन से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को भरपूर प्रोटीन खिलाने के लिए माँ ने जो तरकीब घड़ाई है, ऐसा प्रयोग तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। माँ ने बच्चे को लुभाने के लिए धागे से एक चॉकलेट का टुकड़ा बांध दिया और उसे प्रोटीन मिक्स मटेरियल के कटोरे में डाल दिया। बच्चे को चम्मच में खाने वाले पदार्थ के साथ चॉकलेट का टुकड़ा दिखता है, वो मुंह खोलता है और तभी धागे से बंधा वो टुकड़ा फिर कटोरी में गिरा दिया जाता है और इस तरह बच्चा उस टुकड़े के लालच में पूरा खाना खा जाता है। यूजर्स वीडियो को देखकर माँ की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन माओं को सलाह दे रहे हैं जिनके बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं और ये तस्वीरें देखकर वो इससे सीख ले सकते हैं। शैतान कौए की कारस्तानी की तस्वीरें देखिए जरा। कौआ सफेद बिल्ली की पूंछ में चोंच मारता नजर आ रहा है। बिल्ली ने सोचा कि दूसरी काली बिल्ली ने शरारत की है, बस फिर क्या था, दोनों लड़ पड़ती हैं। इधर कौआ फिर आकर चोंच मार देता है, लेकिन तभी एक सफेद कुत्ते की एंट्री होती है और उसके बीच में पड़ने पर कौआ तो उड़न छू हो जाता है और बाकी दोनों बिल्लियां अपने रास्ते भाग लेती हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। फुटबॉल की क्रेज के बीच ये वायरल तस्वीरें देखिए और फैसला करिए कि आपकी नजर में ये गोल हुआ है या नहीं। यकीनन आप कहेंगे कि गोल तो हुआ है, क्योंकि गोल करने वाला खिलाड़ी कैसे गोलकीपर को कंफ्यूज करता है और आसानी से गोल दाग देता है कि गोलकीपर हक्का बक्का रह जाता है ना। कमाल की तस्वीरें। अब यूजर्स गोलकीपर का चेहरा देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। दादी माँ और पोते की तस्वीरें लोगों को खूब भा रही है। जरा देखिए कि कैसे एक ही फ्रेम में दो अलग अलग उम्र के लोग आमने सामने बैठे हैं। एक दादी माँ है और एक 4-5 महीने का बच्चा, दोनों दांत विहीन एक दूसरे के साथ जिस तरह से आनंद ले रहे हैं, यूजर्स उन्हें देखकर आनंदित हो रहे हैं। और न्यूज मत के सफर में अब आगे सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी अयोध्या में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की इन दिनों इस ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का पद खाली है, इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। अयोध्या के रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के महज 24 घंटे के भीतर 1000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए आवेदन करने वालों में प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग, सामाजिक संगठनों के अनुभवी कार्यकर्ताओं के अलावा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर चर्चा में रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी इस पद के लिए आवेदन करने की सार्वजनिक घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 14 जुलाई से हुई है, जिसके बाद देश भर में अभ्यर्थी सीईओ पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 18 जुलाई है। ट्रस्ट की चयन समिति 19 जुलाई को बैठक कर सभी आवेदनों की प्रारंभिक जांच और छटनी करेगी और इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि 22 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ का चयन पर अंतिम मोहर लग सकती है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट को एक ऐसे सीईओ की तलाश है जो कि मंदिर प्रशासन के कामकाज को बेहतर तरीके से संभाल सके और श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करने का काम करे। ट्रस्ट के इस कदम को लेकर हमने अयोध्या में लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
16: ऐसा होना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कोई भी इस तरह वारदात ना हो फिर से, और जो उनका पहले का जो फीडबैक है काम करने का, जो भी जहाँ से उनका एजुकेशन से लेके जहाँ तक रहे हों, तो उनके बराबर मॉनिटरिंग करके फिर बनाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि भगवान राम के इस क्षेत्र में जो भी रहते हों, बाहर से लोग आते हैं तो उनके आदर्श के बारे में सोचते हैं कि वो कितने मर्यादित थे, कभी उन्होंने चोरी नहीं किया, कभी गलत नीत पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, है ना। तो भगवान के तो आदर्श पे जीना चाहिए, खासकर भगवान।
17: सीईओ की नियुक्ति की बात आ रही है, वो सीईओ की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसा आदमी बनना चाहिए?
16: वो ईमानदार होना चाहिए पूरी तरह से, एक ईमानदार अफसर होना चाहिए।
18: सीईओ हो जो जानकारी रखे चारों तरफ, और सीओ पूरा ईमानदार अगर वहाँ से रहेगा तो नीचे तक ईमानदारी आएगी। और ये घटना जो है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, तो यही आशा की जा रही है कि ऐसा हो कि यहाँ ईमानदारी से चले, जो इतना खर्चा किया गया है और इतनी भावना जुड़ी है लोगों की यहाँ से, तो यहाँ से मर्यादा का बिल्कुल ही उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा सीओ हो कि जो कड़ी से कड़ी सजा रखे ऐसे लोगों के लिए, ताकि उनको डर रहे कि ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा ऐसा सीओ आए कि जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रखे ऊपर से नीचे तक लोगों को।
1: मुझे नहीं लगता है, मानो अपने नेचर से जो है हर जगह गंदगी फैला सकता है, तो आप किसी को भी बैठाइए, कोई उसका निकलने वाला हल नहीं है।
19: तो कैसी चीजें बेटर होगी?
1: ये तो आदमी खुद सोचे, जिनको वहाँ बैठाया जा रहा है वो सोचे कि हम किस पद पे हैं और क्या कर रहे हैं। ये तो अंदर से ही उनकी आवाज़ आएगी तभी कुछ हो सकता है, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आप किसी को भी बैठाइए।
20: नहीं, मेरे हिसाब से भी वही है, इंसान को खुद चेंज होना पड़ेगा। ऐसे किसी के बैठने से और कंटिन्यूसली मॉनिटर करने से अगर चीज़ें बदलती तो बहुत चीज़ें बदल जाती। वैसे इंसान को खुद ही चेंज होना पड़ेगा।
21: आई फील ये सिविक सेंस और वो खुद में समझदारी होना कि आप किस जगह काम कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से आनी चाहिए फ्रॉम विद इन। तो मुझे नहीं लगता कि किसी सीईओ के आने से इट वुड मेक एनी डिफरेंस अंटिल आपको खुद इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कहाँ है आप और आपके पद का आपको कितने सावधानी से रहना चाहिए अपने पद पे।
22: जो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह इस टाइप की एडमिन से रिलेटेड होनी चाहिए, कुछ कॉमर्शियल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि ये चोरी जिस तरह से हुई उसको कंट्रोल करना, बैंकिंग फंडामेंटल्स भी का नॉलेज उनको होना चाहिए। हाँ, फाइनेंस रिलेटेड नहीं, बैकग्राउंड उसका अच्छा होता तो क्यों नहीं, शायद इतनी इस तरह से तो नहीं होती जिस तरह से हुआ है।
23: हो सकता है, नीट एंड क्लीन आदमी हो तो अच्छा तो हो ही सकता है, क्योंकि पीछे उनका बैकग्राउंड बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए, सब नॉलेज होना चाहिए। तो इतनी पब्लिक आए कोई परेशानी का मतलब, लोग बोले कि भाई ऐसा के चोरी हुई, ये हुआ वो हुआ, तो अपना भी सब नाम खराब हुआ कि भाई हाँ ऐसा हुआ, तो सीओ ऐसा होना चाहिए।
24: देखिए, बेहतर तभी होगा जब ये आप ब्यूरोक्रेट्स अगर जैसे इसकी चुनने की जो प्रक्रिया होगी वो पहले की अकॉर्डिंग, इसमें जो अनैतिकता जो भरी हुई है वो ठीक किया जाएगा, तभी ब्यूरोक्रेट्स कुछ अच्छे से काम कर पाएंगे। वैसे उम्मीद नहीं है कि सुधर पाएगी।
8: ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 होगा एकदम अनोखा और रोमांचक। आईसीसी लेकर आया है नई सुपर सीरीज और सुपर सेवन फॉर्मेट। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
25: आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे तीन चरणों में बांट दिया है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें सुपर सीरीज और सुपर सेवन जैसे नए राउंड से गुजरना होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में सबसे कम रैंकिंग वाली तीन क्वालिफाइड टीमों के बीच एक सुपर सीरीज होगी। इस फेज से केवल शीर्ष पर रहने वाली टीम यानी नंबर वन टीम ही

0: के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरे राउंड में कुल 7 टीमें पहुंचेंगी और इसे सुपर 7 नाम दिया गया है। सुपर 7 में शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 4 टीमें अंत में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में इतिहास रचते हुए एक अनूठा तिहरा कीर्तिमान बना दिया है। बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स यानी टेस्ट में 200 से ज्यादा, वनडे में 150 से ज्यादा और T20 में 100 से ज्यादा विकेट लेकर सभी में विकेटों का शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने लगभग 968 दिनों के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैच के दौरान इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक का विकेट लेते ही उनके वनडे करियर के 150 विकेट पूरे हो गए। इसके साथ ही इंग्लैंड की धरती पर बुमराह के 31 विकेट हो गए हैं और उन्होंने रविंद्र जडेजा के 30 विकेट को पीछे छोड़कर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। मुंबई इंडियंस का कप्तान बदला जा सकता है और इस पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी का मैनेजमेंट कप्तानी और कोचिंग स्टाफ में भारी फेरबदल करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या से कप्तानी वापस ली जा सकती है और उनके टीम से बाहर होने की भी पूरी संभावना है। हार्दिक के बाद कप्तानी की रेस में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर अंतिम और आधिकारिक फैसला मैनेजमेंट की आगामी रिव्यू मीटिंग में लिया जाएगा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
2: A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: आज पुरी में शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, कंट्रोल रूम से रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। गुजरात के डाकोर में उमड़ा आस्था का मेला, धूमधाम से निकली भगवान रणछोड़ राय की रथ यात्रा, भजन मंडलियों ने बांधा समा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बढ़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन हुआ लॉन्च, टेस्टिंग के फीडबैक के बाद पोर्टल में किए जाएंगे सुधार। ICC ने वर्ल्ड कप का फॉर्मेट किया डिसाइड, वनडे वर्ल्ड कप में अब होंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और IPL की तर्ज पर खेले जाएंगे एलिमिनेटर मुकाबले।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
5: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी पर पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी जो है कई बार सच और झूठ की रेखा को लांघ जाती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पर

0: सी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियोस जो हैं चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: देखिए सोशल मीडिया पर दो वीडियो खूब तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि ये दोनों वीडियोस चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: चीन की सेना के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के दावे से दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिकों को मार्च करते हुए देखा जा रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में हथियारबंद सैनिकों को ट्रक से उतरते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियो चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वायरल पोस्ट को शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, चीन की सेना 60 किलोमीटर भारत के अंदर घुस आई। वहीं एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, चीन ने भारत पर 60 किलोमीटर का कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: देखिए सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियोस धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं। पहले वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिकों को मार्च करते हुए देखा जा सकता है, वहीं पर दूसरे वीडियो में हथियारबंद सैनिकों को ट्रक से उतरते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियोस चीनी सैनिकों के हैं जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, 60 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने दोनों वीडियो उसकी जांच की। तो देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे दोनों वीडियो को गौर से देखा और सुना। दोनों वीडियो के बैकग्राउंड में आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये चीन की आधिकारिक भाषा यानी मैंड्रिन जैसा नहीं हमको सुनाई दिया, ये कोई और भाषा थी। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने फिर से दोनों वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान दूसरे वीडियो में जवानों के यूनिफॉर्म पर गया। जब हमने इसे गौर से जूम करके देखा तो ये थाईलैंड के झंडे जैसा नजर आया। इसके अलावा सर्च के दौरान ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि सरकार और भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि चीनी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए। ये रिपोर्ट गलत है और इनका कोई आधार नहीं है। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा तो पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल हो रहे दोनों वीडियोज के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर दोनों वीडियोस के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने दोनों वीडियो की बारी बारी से पड़ताल की। पहले वीडियो का सच जानने के लिए सबसे पहले हमने इसके कई की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो थाईलैंड के फेसबुक पेज पर 16 जून 2026 को शेयर किया हुआ मिला। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो थाई सेना का है। इसमें दूसरी रेजिमेंट की तीसरी बटालियन के नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के जवानों की ट्रेनिंग को दिखाया गया है। पेज पर थाई सेना और उसकी ट्रेनिंग से जुड़ी कई और पोस्ट भी मौजूद हैं। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि थाई सेना के ट्रेनिंग के कई वीडियो यहां मौजूद हैं। जवानों को वायरल वीडियो में जो झंडा पकड़े हुए दिखाया गया है उसी हुबहू झंडे को इस पेज पर मौजूद कुछ वीडियो में भी जवानों को पकड़े हुए देखा जा सकता है। दूसरे वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने इसके कई की फ्रेम निकाले और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो थाईलैंड के कई टिकटॉक यूजर्स की प्रोफाइल पर मिला। भारत में प्रतिबंधित होने की वजह से इन वीडियो को हमने एक्सप्रेस वीपीएन टूल की मदद से चेक किया। एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए थाई आर्मी का बताया, जिसमें ट्रक से उतर रहे सभी जवानों के यूनिफॉर्म पर थाईलैंड के झंडे को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि भारतीय सेना भी अपने आधिकारिक फैक्ट चेक अकाउंट से इस दावे का खंडन करते हुए इसे थाई आर्मी का बताया है। यानी दोनों ही वीडियो का भारत चीन मामले से कोई संबंध नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के घुसपैठ करने का दावा फेक है और इस दावे से वायरल हो रहा वीडियो थाईलैंड की आर्मी का है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भारतीय सेना ने भी चीन के घुसपैठ के दावे का खंडन किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: सोशल मीडिया पर मानव पिरामिड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मानव पिरामिड बनाया है। कुछ ही देर में यह पिरामिड डगमगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद संभल जाता है और लोग गिरने से बच जाते हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मानव पिरामिड तेज हवा में डगमगाने लगा, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि कोई भी नीचे नहीं गिरा। क्या आप इस मानव पिरामिड के सबसे ऊपर खड़े होने की हिम्मत करेंगे? वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मानव पिरामिड बनाया है। कुछ ही देर में यह पिरामिड डगमगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद संभल जाता है और लोग गिरने से बच जाते हैं। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये तेज हवा में मानव पिरामिड के डगमगाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो की जांच की तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर की फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कोई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने ये पाया कि पिरामिड बनाने वाले लोग अजीब तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं। जब ये मानव पिरामिड हिलने लगता है तब सभी लोग अस्वाभाविक तरीके से बिल्कुल हिलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई हाल फिलहाल में प्रमाणिक रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो सच्चा है तो उसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें क्यों नहीं मिली? दूसरा ये कि कहीं एडिटेड मॉफ्ट वीडियो को वायरल करके गुमराह तो नहीं किया जा रहा? क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी अस्वाभाविक चीजें नजर आईं, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। लिहाजा पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल्स के जरिए जांचा गया। हमने हाई मॉडरेशन का इस्तेमाल किया। इस टूल ने वीडियो के एआई से बने होने की करीब 100% संभावना जताई। इस टूल के एनालिसिस के मुताबिक इस वीडियो को सीडेंस 2 मॉडल की मदद से बनाए जाने की संभावना अधिक है, जो एआई वीडियो जनरेट करने वाला एक टूल है। हमने एक दूसरे टूल undetectable.ai की मदद से भी वायरल वीडियो को सर्च किया। इस टूल ने भी वीडियो के 97% तक एआई से बने होने की संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले, फिर इन्हें सर्च किया गया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 9 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को एआई की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ एआई की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि मानव पिरामिड का वायरल हो रहा वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फिलहाल ले रहा छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: और इसी के साथ वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
6: इंटरनेट पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं। ये वीडियो एक माँ और उसके एक साल के बच्चे के उस खूबसूरत रिश्ते को दिखाता है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपने एक साल के बच्चे को बिस्तर पर लेटाने की कोशिश कर रही है, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़ती है। चोट इतनी तेज थी कि मां दर्द से कराहते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी का दिल जीत लिया। अपनी मां को दर्द में देखकर वो छोटा सा बच्चा फौरन अपनी जगह से उठा और बिना देर किए अपनी मां की तरफ भागा। आमतौर पर इतने छोटे बच्चे खुद गिरने पर रोने लगते हैं, लेकिन यहां नन्हे बच्चे ने अपनी मां के दर्द को महसूस किया। वो रेंगते हुए अपनी मां के पास पहुंचा और अपने छोटे छोटे हाथों से मां के सिर को बड़े प्यार से सहलाने लगा, मानो वो कह रहा हो, मां रो मत, मैं हूं ना। बच्चे का ये निस्वार्थ प्यार और उसकी मासूमियत देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख भर आई।
7: हेलो गाइस, ये मेरी परदादी और अभी 90 ईयर्स की हो चुकी है।
0: 90।
6: सोशल मीडिया पर 90 साल की बुजुर्ग परदादी और उनके छोटे से परपोते का एक बेहद इमोशनल और प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे की जिद पर दादी ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया।
8: सुनो सया, हम का बोला वो सनकार के नहीं और गए
7: पूरा गांव
8: पूरा गए।
6: दोनों के बीच का प्यार और मासूमियत लोगों को बहुत पसंद आ रही है।
7: दादी बस आप गाना गाओ।
6: चलती ट्रेन में पूजा पाठ और हवन का ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। वायरल वीडियो में एक पुजारी ट्रेन के फर्श पर हवन कुंड रखकर रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहा है। चलती ट्रेन में हवन कुंड चलता देख लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे और देखते ही देखते ये मामला बड़ा विवाद बन गया। इंटरनेट पर भारी बवाल मचने के बाद उत्तर रेलवे ने एक बयान जारी कर स्थिति साफ की है। रेलवे के मुताबिक ये पूजा किसी सामान्य डिब्बे जैसे जनरल, स्लीपर या एसी कोच में नहीं हो रही थी। ये एक पूरी तरह से प्राइवेट कोच था, जिसे एक यात्री ने विशेष यात्रा के लिए बुक किया था। इस विशेष कोच को 10 जुलाई को नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12926 में जोड़ा गया था। रेलवे ने ये भी साफ किया कि इस यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन किया गया है और किसी तरह की अनहोनी या दुर्घटना की कोई खबर नहीं है। सैलून कोच आम ट्रेनों के डिब्बों से बिल्कुल अलग होते हैं। इन्हें पटरी पर दौड़ता हुआ 5-स्टार होटल भी कहा जाता है।

हाथों में हथियार और चेहरों पर मुस्कान लिए जवानों का ये अंदाज उनके हौसले, भाईचारे और देशभक्ति की खूबसूरत झलक दिखाता है। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए जरा, कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। यही होता है कि बाढ़ जैसी हालात में लोग सड़कों से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तक्ष ने स्थिति का फायदा उठाते हुए जो किया वो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर भारी बारिश के कारण काफी पानी भरा हुआ है और पानी का बहाव भी बना हुआ है। तभी अचानक एक शख्स हाथ में एक बड़ा फोम का टुकड़ा लेकर आता है और वो बड़े आराम से उस फोम को सड़क के पानी पर बिछाता है और उस पर लेट जाता है। जैसे ही वो फोम पर लेटता है, पानी का बहाव उसे एक नाव की तरह धीरे धीरे आगे की ओर ले जाने लगता है। वो शख्स बिना किसी डर या हिचकिचाहट के मजे से लेटा रहता है, मानो वो किसी एडवेंचर ट्रिप पर हो। शख्स का ये अंदाज देखकर वहाँ मौजूद राहगीर भी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने तुरंत अपने फोन निकाल कर इस नज़ारे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो यूजर्स का खूब ध्यान खींच रहे हैं। एक महिला ने प्यास से परेशान एक लंगूर की मदद करके हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंगूर काफी देर से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने एक नल मौजूद है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। बंदर बार बार नल को छूता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो काफी देर से प्यासा है और किसी तरह पानी पीना चाहता है। उसी दौरान वहाँ मौजूद एक महिला की नज़र उस लंगूर पर पड़ती है। वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास जाती है। महिला को देखकर लंगूर भी कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करता। महिला तुरंत नल खोल देती है और इस तरह पानी बहने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ की मदद से बंदर को आराम से पानी पीने देती है। वीडियो में सबसे खास बात यह है कि लंगूर पूरे समय बिल्कुल शांत रहता है। वो आराम से पानी पीता है और महिला पर पूरा भरोसा करता हुआ नजर आता है। वहीं महिला भी पूरे धैर्य और प्यार के साथ उसकी मदद करती है। दोनों के बीच का ये भरोसा और अपनापन लोगों को काफी भावुक कर रहा है।

दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सैंटोस और उनके K9 पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से ये दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मोमेंट करते हैं, कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच के गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनकी इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी है कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलैन के नाम से जानते हैं। हुआ यू के एनरिचमेंट सेशन के दौरान कैटेकर ने थोड़ी सी मस्ती करने की सोची। उन्होंने एक विग पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलैन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि आखिर कैटेकर करने क्या वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विग को हवा में उछाल दिया और अचानक उसका चमकता हुआ गंजा सिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आए ट्विस्ट को देखकर मैंगलैन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे कि जैसे वो पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू हुआ कैसे। वो इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो ये प्रैंक किया, उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: To right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर चमोली जिले में मौजूद यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक का धरोहर फूलों की घाटी में इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे। सीजन शुरू होने के बाद से अब तक 11,000 से ज्यादा सैलानी फूलों की घाटी की सैर कर चुके हैं और देखिए जिससे सरकारी खजाने को 20 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है।

0: बादलों से घिरे पहाड़, हरी भरी वादियाँ और इन वादियों के दामन में खिले एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूल। ये किसी चित्रकार या फिर किसी कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो इन दिनों अपनी बेपनाह खूबसूरती से देखने वालों का मन मोह ले रही है, खासकर उन सैलानियों का जो इस खूबसूरती का दीदार करने के लिए देवभूमि में मौजूद फूलों की घाटी पहुंच रहे हैं। इस साल 1 जून को फूलों की घाटी के द्वार पर्यटकों के लिए खोले गए थे। तब से अब तक यहां 11,000 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है।
1: विश्व धरोहर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार दिखाई दे रही है। फूलों की घाटी का मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है। इस दौरान मानसून होने के साथ ही जो घाटी का दायरा है वो हर तरफ अलग अलग रंग के अलग अलग किस्म की जो प्रजातियां हैं यहाँ पे खिली हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी अब फूलों की घाटी पूरी तरह से यहाँ पे खिल चुकी है। हर तरफ पर जो प्रकृति का यौवन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने आप में बेहद खूबसूरत फूलों की घाटी दिखाई दे रही। तो वहीं इस बार रिकॉर्ड पर्यटक जो है 10,000 से अधिक पर्यटक अब तक फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं।
0: यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल फूलों की घाटी हमेशा से प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद रही है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि पिछले साल 13 जुलाई तक फूलों की घाटी में 5,490 सैलानी पहुंचे थे। ये संख्या इस साल दोगुनी हो गई है। इतनी संख्या में सैलानियों के आने से सरकारी खजाने को भी फायदा हुआ और इस साल अब तक 20 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या और आय दोनों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
2: यहाँ पे आने वाले पर्यटकों की जो संख्या थी वो 11,080 पर्यटक थे और हमारे पास इन पर्यटकों से जो आय प्राप्त हुई है वो है 20,16,250। इसके साथ ही हमारे पास जो विदेशी पर्यटक हैं वो 45 रहे इस सीजन में अभी तक। अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो पिछले साल हमारे पास अभी तक 13 जुलाई 2025 तक आने वाले जो पर्यटकों की संख्या थी वो 5,490 थी, जो कि इस बार जो पर्यटकों की संख्या वो लगभग हमारी दोगुनी हो चुकी है और जो आय थी पिछले साल वो भी 11,11,950 रुपये थी।
0: फूलों की घाटी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ केवल एक तरह के ही फूल नहीं खिलते, बल्कि पूरी घाटी में 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ फूल भी शामिल हैं। हर 15 दिन बाद यहाँ नई किस्म के फूल खिलते हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नजारा लगातार बदलता रहता है। फूलों की घाटी का यही बदलता स्वरूप यहाँ आने वाले सैलानियों को खूब भाता है। इस खूबसूरती को यादों में सजोने के लिए कोई यहाँ सेल्फी लेता है और कोई दुर्लभ फूलों की तस्वीरें खींचता है।
3: हम लोग ओडिशा से आए हैं, हमारा टीम है, 6 लोगों का टीम है, आए थे इस वैली ऑफ फ्लावर्स के, अभी नीचे आए, अच्छा लगा।
4: हम लोग बहुत एंजॉय किए, ट्रैकिंग इजी टू मॉडरेट था,
3: पहली बार था हमारा, अच्छा लगा,
4: पहला ट्रैक था हमारा, मजा आ रहा है और सबको बोलेंगे कि एक बार
3: ट्राई करना चाहिए, वैली ऑफ फ्लावर्स करना तो चाहिए।
0: रेंज अधिकारी चेता कांडपाल ने बताया कि जुलाई अगस्त में घाटी में फूलों के खिलने का चरम समय होता है, इसलिए हर साल इस दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। अनुमान यह है कि अगर मौसम सही रहा तो इस साल फूलों की घाटी पर्यटकों की संख्या के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
2: इस बार फूलों की घाटी में अच्छा फूल अच्छे खिले हैं, कैंपेनुला लैटिफोलिया, पोटेंटिला, जेरेनियम और रोडोडेंड्रॉन, लैपिडोटम, बिस्टोटा, पेडिकुलारेंस, काफी प्रजातियों में काफी अच्छा फ्लावरिंग हुई है जो पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।
0: फूलों की घाटी में सैलानियों की बढ़ती संख्या का फायदा यहाँ के होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट, पोर्टर और घोड़ा खच्चर मालिकों को भी मिल रहा है। यानी स्थानीय रोजगार भी फूलों की घाटी की वजह से तेजी से फल फूल रहा है। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।